कोई। जम्मण मरण तिसैते होई, गुरमुख साख्या सदा त्यावहु। गत मुक्त तिसैते पाहाई, सच संयम सतगुरु द्वारे। हों मैं क्रोध शब्द निवारे, सतगुर सेव सदा सुख पाई है। सील संतोख सब ताहाई, हों मैं मोह उपजै संसारा। सब जग बिन सै नाम वसारा, बिन सतगुर सेवे नाम ना पाई है। नाम सच्चा जग लाहाई, सच्चा अमर शब्द सुहाया। पंच शब्द मिल वाजा वाया, सदा कार्य सच नाम सुहेला। बिन शब्द है कार्य के हाही, खिन मह हसै खिन मह रोवै।

दुख भारी, बिस्ता माहे समाहाई, वेद पढ़े पढ़ बाद बखान है, काट मह ब्रह्म तिस शब्द ना पछाण है, गुरमुख हो वैसो तत् बलोवे, रसना हर रस ताहाई, तर वत छोड़ है बाहर तावे है, मन मुखे अंधे साधना पावे है, अनरस राती रसना फीकी बोले, हर रस मूल ना ताहाई, मन मुख देही परम पतारू, दुर्मत मरै

बैरागी निज करवा सा पाएंदा गुर की साखी अमृत पाखी सच्चा शब्दे सच सुपाखी सदा सच रंग राता मन मेरा सच्चे सच सुमाएंदा गुरमुख मन निर्मल सत सर नावे मैल न लागे सच सुमावे सचो सच कमावे सद ही सच्ची भगत दिरड़ाएंदा गुरमुख सच बैणी गुरमुख सच नैणी गुरमुख सच कमावे करनी सद ही सच कह दिन राती अवरा सच कहाएंदा गुरमुख सच्ची उत्तम बाणी गुरमुख सचो सच वखाणी गुरमुख सद सेव है सचो सच्चा गुरमुख शब्द सुनाएंदा गुरमुख होवै सो सोजी पाए हम मैं माया परम गवाए गुर की पौड़ी उत्तम उची दर सच्चा हर गुण गाएंदा गुरमुख सच संजम करनी सार गुरमुख पाए मोख द्वार पाए भगत सदा रंग राता आप गवाए समाएंदा गुरमुख होवै मन खोज सुनाई सच्चा नाम सदा निभलाई जो तिस भावै सोई करसी जो सच्चे मन पाएंदा जां तिस भावै सतगुरु मलाई जां तिस भावै ता मन वसाई अपने भाणे सदा रंग राता भाणे मन वसाएंदा मन हथ कर्म करे सो सीजै बहुते भेख करे नहीं पीजै भिखिया राते दुख कमावै दुखे दुख समाएंदा गुरमुख होवै सो सुख कमाए मरण जीवन की सोजी पाए मरण जीवन जो सम कर जाणै सो मेरे प्रभ पाएंदा गुरमुख मरहै सो है परवान आवण जाना शब्द पछाण मरे न जम्मे ना दुख पाए मन ही मन समाएंदा सेवड भागी जिन्नी सत गुर पाया हम मैं विचोह मोह चकाया मन निर्मल फिर मैल ना लागे दर सच्चै सोभा पाएंदा आपे करे कराए आपे आपे वेखे थापे उथापे गुरमुख सेवा मेरे प्रभ भावे सच सुन लेखे पाएंदा गुरमुख सचो सच कमावे।

करता आपे मन वसाईंदा। निर्मल भगत है निराली मन तन धोवै है शब्द विचारी। अन दिन सदा रह रंग राता कर कृपा भगत कराईंदा। इस मन मंदर मह मनुआ तावै सुख पल्लर त्याग महा दुख पावै। बिन सतगुर भेटे ठौर न पावै आपे खेल कराईंदा। आप अपरंपरे

खबर न पाई अंत गया पछताएंदा जिन अपाए सो विद जाने गुरमुख देवे शब्द पछाणे।

अंतर परम गया पौ भागा सदा आनंद सच्चे गुण गावह सच बाणी बोला एंदा जिन तू जाता कर्म विधाता पूरा भाग गुर शब्द पछाता जात पात सच सच्चा सच सोई हम मैं मार मलाएंदा मन कठोर दूजे पाए लागा परमे भूला फिरे अभागा कर्म होवे ता सतगुर सेवे सहजे ही सुख पाएंदा लख चौरासी आप उपाई मानस जन्म गुर भगत दृढ़ाई बिन भगती बिस्ता।

करता ज्यो भावे तिवे चलाईंदा सिमरत सास्ते अंत न जाने मूर्ख अंधा तत ना पछाने आपे करे कराई करता आपे परम फलाईंदा।

पाई, सब खेल तमाशा तेरी वड्याई। आपे वेक करे सब साचा, आपे पन कढ़ाएंदा। बाजीगर इक बाजी पाई, पूरे गुर ते नदरी आई। सदा अलिपत रह गुर शब्दी, साचे स्यों चित लाएंदा। बाजह बाजे तुन अकारा, आप बजाए बजावन हारा। कट कट पौन वह

0: रंग राता गुर कृपा ते सुख पाएंदा जप तप संयम नाम प्यारा किल विख काटे काटन हारा हर कै नाम तन मन शीतल हुआ सहजी सहज समाएंदा
1: अंतर लोभ मन मैले मन लाई
0: मैले कर्म करे।

हट नाले सतगुर दिखाए अंतर नाले नावे काबा पारी होवे गुर शब्दी को पाएंदा सतगुर सेवे सहज आनंदा हृदय आए बुठा गोविंदा सहजे भगत करे दिन राती आपे भगत कराएंदा सतगुर ते विछड़े तिन्नी दुख पाया आन दिन मारी है दुख सबाया मत्थे काले महल ना पावे दुख ही विच दुख पाएंदा सतगुर सेव है सेवड भागी सहज पाए सच्ची लिवलागी सचो सच कमावे सदही सच्चा मेल मलाएंदा जिसनो सच्चा दे सो पाए अंतर साच परम चुकाए सच सच

आप बुझाए बूझै कोई, आपे बख्शे दे वड्याई, आपे मेल मलाएंदा, हम मैं कर दिया जन्म गवाया, आगे मोह ना चूकै माया, अगे जम काल लेखा लेवे, ज्यो तिन कहानी पीड़ाएंदा, पूरा भाग गुरसेवा होई, नदर करे ता सेवे कोई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, महल सच्चै सुख पाएंदा, तिन सुख पाया जो तुद पाई।

रतन सदा घट चानन अज्ञान अंधेर गवाएंदा अज्ञानी अंधे दूजे लागे बिन पानी डुब मुए अभागे चल दिया घर दर नजर न आवे जम दर बांदा दुख पाएंदा बिन सतगुर सेवे मुक्त न होई ज्ञानी ध्यानी पूछो कोई सतगुर सेवे तिस मिले वडियाई दर सच्चे सोभा पाएंदा सतगुर नो सेवे तिसे आप मलाई ममता काट सच लिवलाई सदा सच बन जह वापारी नामो लाहा पाएंदा आपे करे कराए करता शब्द मरे सोई जन मुक्ता नानक नाम वसै मन अंतर नामो नाम त्याएंदा मारू महला तीजा।

वा पारा निःचलवा सह पाईला अंतर कर बंके थान सुहाया गुरमुख विरलै किने थान पाया इत साथ निभै सलाही सच्ची हर सच्चा।

हर दिन हर सेवे हो सच्ची बाणी हर जियो शब्द मलाएंदा हर चेत है तिन बले हार है जाऊं गुर कै शब्द तिन मेल मलाऊं तिनकी धूर लाई मुख मस्तक सत संगत बह गुण गाएंदा हर के गुण गावां जे हर प्रभ पावां अंतर हर नाम शब्द सुहावा गुरबाणी चहो कुंडी सुनिए साचे नाम समाएंदा सो जन साचा जे अंतर पाले गुर कै शब्द हर नदर निहाले ज्ञान अंजन पाए गुर शब्दी नदनी नदर मलाएंदा वड्डे भाग एहो शरीर पाया मानस जन्म शब्द चित लाया बिन शब्द है सब अंध अंधेरा गुरमुख किसह बुझाएंदा एक कित आए जन्म गवाए मनमुख लागे दूजे पाए एह वेला फिर हाथ ना आवे पग खिस

दूजे पाए परम पलाया, हर ना चेते सदा दुख पाए, बिन हर चेते दुख पाएंदा, जे सतगुर सेवे सो परवान, काया हंस निर्मल दर सच्चे जान, हर सेवे हर मन वसाए, सो है हर गुण गाएंदा, बिन भागा गुर सेविया न जाए, मन मुख भूले मोए बिल लाए, जिन को नदर होवे गुर केरी, हर जियो आप मलाएंदा, काया कोट पक्के हट नाली, गुरमुख लेवे वस्त संभाली, हर का नाम त्याए दिन राती, उत्तम पदवी पाएंदा, आपे सच्चा है सुखदाता, पूरे गुर कै शब्द पछाता, नानक नाम सलाए साचा, पूरे भाग को पाएंदा, मारू महला तीजा, निरंकार आकार उपाया, माया मोह हुक्म बनाया, आपे खेल करे सब करता, सुन साचा मन वसाएंदा, माया माई त्रै गुण परसूत जमाया, चारे वेद ब्रह्मे नू फरमाया, वरे महावार तिथि कर, इस जग मह सोजी पाएंदा, गुर सेवा ते करनी सार, राम नाम राखो उरतार, गुरबाणी वर्ती जागे अंतर, इस बाणी ते हर नाम पाएंदा, वेद पढ़े अनदिन वाद समाली, नाम ना चेते बद्दा जम काली, दूजे पाए सदा दुख पाए, त्रै गुण परम पलाएंदा, गुरमुख एकस स्यों लिवलाए, त्रिविध मन

आय इतरंग साचे माहे समाए पूरे भाग को एहो रंग पाए गुरमती रंग चढ़ाईंदा मन मुख बहुत करे अपमान।

आपे मेल मलाए आपे शब्दे सहज समाइंदा आपे सच्चा शब्द मलाई शब्दे विच्चो परम चुकाई।

रस न हर रस पाया, शब्द मर है से मरन सवार है, हर के गुण हृदय उरतार है, जन्म सफल हर चरणी लागी, दूजा पाओ चुकाया, हर जियो मेले आप मलाई, गुर कै शब्दे आप गुआई, अन दिन सदा हर भगती राती, इस जग महला पा।

मन पाई, मन तन सच्चे भगती राता, सच्चे सिहो चित लाया, हउ मैं विच सद जलै शरीरा, कर्म होवै भेटे गुरपूरा, अंतर अज्ञान शब्द बुझाई, सतगुर ते सुख पाया, मन मुखे अंधा अंध कमाई, बहु संकट जोनी परमाई, जम का जेवड़ा कदे ना काटे, अंते बहु दुख पाया, आवन जाना शब्द निवारे, सच नाम रखे उरतारी, गुर के शब्द मरे मन मारी, हउ मैं जाहि समाया, आवन जाने परज बिगोई, बिन सतगुर थिर कोई ना होई, अंतर जोत शब्द सुख वसिया।

है, पंच दूत वस आया, बाज गुरु है मोह गुबारा, फिर डुबे वारू वारा, सतगुर भेटे सच दृढ़ाई, सच नाम मन पाया, साचा दर साचा दरबारा, सच्चे सेव है शब्द प्यारा, सच्ची धुन सच्चे गुण गावा, सच्चे माही समाया, घरे अंदर को घर पाई, गुर कै शब्द सहज सुपाई, उथे सोग वजोग ना व्यापे, सहजे सहज समाया, दूजे पाए दुष्टा का वासा, पौंदे फिर है बहु मोह प्यासा, कुसंगत बह सदा दुख पाव है, दुखो दुख कमाया, सतगुर बाजो संगत ना हुई, बिन शब्दे पा

नाम रतन धन पाया, सतगुर की सेवा पाई। बिन सतगुर जो दूजे लागे, आवह जाहे भ्रम मरह अपागे। नानक तिनकी फिर गत हुए, जे गुरमुख रह सरनाई। गुरमुख प्रीत सदा है साची,

अमृत रस सतगुरु चवाया, दसवें द्वार प्रगट होए आया। तह अनहद शब्द बजह धुन बाणी, सहज सहज समाई है जिनको करत तुर लिख पाई। अन दिन गुर गुर करत विहाई, बिन सतगुर को सीजै नाही। गुर चरनी चित लाई है, जिस भावै तिसे

रतन मन परगट पया नाम पदार्थ सहजे लया एह वडे आई गुरते पाई सतगुरु कहो सद बल जाई हे प्रगटया सूर निस मिटया अंधियारा अज्ञान मिटया गुर रतन अपारा सतगुर ज्ञान रतन अत भारी।

सदा मन बिगसै हर चरणी मन लाई। हम मूर्ख अज्ञान ज्ञान किस नाही, सतगुर ते समझ पड़ी मन माही। हो दयाल कृपा करा हर जीव, सतगुर की सेवा लाई। जिन सतगुर जाता तिनेक पछाता,

तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया। जो शरण परै तिसकी पत राखै, जाए पूछो वेद पुराणी हे। जिस हर सेवा लाए सोई जन लागै, गुर कै शब्द परम भव भागै। विचे ग्रह सदा रह उदासी, ज्यों कमल रह।

तुझै पै करते हर अनदेन नाम बखाणी हे। किस ही जोर अहंकार बोलन का किस ही जोर देबान माया का मैं हर बिन टेक तारे अवर ना काई तू करते राख मैं निमाणी हे। निमाणे मान करह तुद पावे।

प्रभ तेरी, बिनस गई हम मैं मत मेरी, अंगीकार किया प्रभ अपने, जग में है सोभ सुहाई है, जय जयकार जपो जगदीश, बल बल जाई प्रभ अपने ईसै, तिस बिन दूजा अवर न दिसै, एका जगत सबाई है, सत सत सत प्रभ जाता, गुर प्रसाद सदा मन राता, सिमर सिमर जीव है जन तेरे, एक अंकार समाई है, भगत जना का प्रीतम प्यारा, सब उदाहरण खसम हमारा, सिमर नाम पुन्नी सब इच्छा, जन नानक पैज रखाई है, मारू सोले महला पंजवा।

ग्रह पीतर जित उतरे भूख प्यासा ही सगले कर्म धर्म जुग सादा बिन हर रस सुख तिल नहीं लादा पई कृपा नानक सत संगी तौ धन फिर आनंद उलासा ही तन अंधी फिर चपल सियाना पंच तत् कारच नरचाना जिस वखर को तुम आए हो सो पायो सतगुर पासाई तन कह तू वस मैं नाली प्रिय सुखवासी बाल गोपाली तुझे बिना हों कित ही ना लिख है वचन देह छोड़ ना जासा ही फिर कह आहो हुक्मी बंदा ओ भारू ठाकुर जिस कान ना छंदा जिचर राख है पिचर तुम संग रहना जा सदे ता ऊठ सदा साहे जो प्रिय बचन कहे तन साचे तन कशु ना समझे चंचल काचे बहोर बहोर फिर ही संग मांगे ओह बात जाने कर हासा ही आई आ गया फिर हो बुलाया ना तन पूछी ना मता पकाया ऊठ सदायो छूटर माती देख नानक मिथन मुहासा ही रे मन लोभी सुन मन मेरे सतगुर सेव दिन रात सदेरे बिन सतगुर पचमुए साकत नगुरे गल जम फासा ही मनमुख आवै मनमुख जावै मनमुख फिर चोटा खावै जितने नरक से मनमुख भोगै गुरमुख लेप ना मासा ही गुरमुख सोए जे हर जियो पाया तिस कौन मिटावै जे प्रभ पहराया सदा आनंद करे आनंदी जिस सिर पाओ पया गल खासा ही हौ बलिहारी सतगुर पूरे शरण के दाते बचन के सूरे ऐसा प्रभ मिलिया सुखदाता विचरना कत ही जासा ही गुण निदान किश कीम ना पाई कट कट पूर रहो सब ठाई नानक सरन दीन दुख भंजन हौ रेण तेरे जो दासा ही मारू सोलह महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा कट कट पूरन सिर सिर नबेरा सिर साहा कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजा ही हरकवंत आनंत दयाला प्रगट रहो प्रभ सर्ब उजाला रूप करे कर वेख बिगसै आपे ही आप पूजा ही आपे कुदरत करे विचारा आपे ही सच करे पसारा आपे खेल खलावे दिन राती आपे सुन सुन पीजा ही साचा तखत सच्ची पातशाही सच खजीना साचा साही आपे सच तारियो सब साचा सच्चे सच वरती जाही सच

तू है वड राजा, हुक्म सच्ची कह पूरे काजा, अंतर बाहर सब किस जाने, आपे ही आप पति जाहे। तू वड रसिया तू वड भोगी, तू निर्वाण तू है ही जोगी, सर्व सुख सहज घर तेरे, अम्यो तेरी दृष्टि जाहे, तेरी दात तुझे ते होए, देह दान सब सह जंत लोए, टोट न आवे पूर भंडारे, तृप्त रहे आगी जाहे। जाच है सिद्ध साधक बनवासी, जाच है जति सती सुखवासी, एक दा तार सगल है जाचिक, देह दान सृष्टि जाहे। कर है भगत अर रंग अपारा, खिन मह था पयो था पनहारा, भारू तोल बेअंत स्वामी, हुक्म मन भगति जाहे। जिस देह दरस सोई तुद जाने, ओ गुर कै शब्द सदा रंग माने।

सो साचा साहा, जिस चीते आवह तिस पौ केहा, अवर कहां किस की जाहे। तृष्णा बूझी अंतर ठंडा, गुरपूरै लै टूटा गंडा, सुरत शब्द हृदय अंतर जागी, हम्यो चोल चोल पी जाहे। मरै नाही सद सद ही जीवै, अमर भया अबनासी थी।

सुवाया नित नित रंगा कटे नाही तोली जाहि बारहा कंचन शुद्ध कराया नदर सराफ बन्नी सचड़ाया परख खजाना पाया सराफी

महा सुख पाया देख दर्शन एहो मन पी जाहे मारू महला पंजवा सोले एक ओंकार सतगुर पर

सिमरत खट कर्मा गुर पवित्र अस्थान नाही। गुर सिमरत सब किल विख नास है, गुर सिमरत जम संग ना फास है। गुर सिमरत मन निर्मल होवे, गुर काटे अपमान नाही। गुर का सेवक नरक ना जाई, गुर का सेवक पार ब्रह्म त्याई। गुर का सेवक साध संग पाई, गुर करता नित जी दानाई। गुर द्वारे हर कीर्तन सुनिए, सतगुर भेट हर जस मुख भणिए। कल कलेश मटाए सतगुर, हर दरगाह देवे मानाई। अगम अगोचर गुरु दिखाया, भूला मार्ग सतगुर पाया। गुर सेवक को बिघन ना भगती, हर पूर दरड़ाया ज्ञान नाही। गुर दृष्टाया सबनी ठाई, जल थल पूर रहया गोसाई। ऊच ऊन सब एक समाना, मन लागा सहज ध्यान नाही। गुर मिले सब तृष्ण बुझाई, गुर मिले नह जो है माई। सत संतोख दिया गुर पूरे, नाम अमृत पी पानाही। गुर की बाणी सब माहे समाणी, आप सुनी तै आप बखाणी। जिन जिन जपी केई सब निस्तरे, तिन पाया निचल थानाही। सतगुर की महिमा सतगुर जाने, जो किछ करे सो आपन पाणे। साधु तूर जाच है जन तेरे, नानक सद कुर्बानाई। मारू सोले महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आद निरंजन प्रभ निरंकारा, सब मह वरतै आप नरारा। वर्ण जात चिहन नहीं कोई, सब हुक्मे सृष्ट उपाएंदा। लख चौरासी जोन सबाई, मानस कहो प्रभ दी वड्याई। इस पौड़ी ते जो नर चूकै, सो आए जाए दुख पाएंदा। कीता होवे तिस क्या कहिए, गुरमुख नाम पदार्थ लहिए। जिस आप भुलाए सोई भूले, सो बूझे जिस है बुझाएंदा। हरख सोग का नगर एह किया, से उभरे जो सतगुर सरनिया। त्रिहां गुणा ते रह निरारा, सो गुरमुख सो बापाएंदा।

श्रवण सुनिए दूजी अवरना जाप सकाई सगल तुम्हारी तारना आप चितारे अपना किया आपे आप आप प्रवथिया आप उपाय रच्यों पसारा आपे कट कट सारना एक उपाय वड दरबारी एक उदासी एक घर बारी एक भूखे एक तृप्त अगाए सबसे तेरा पारना आपे सत सत सत साचा पोत पोत भगतन संग राचा आपे गुपत आपे है प्रगट अपना आप पसारना सदा सदा सद होवन हारा।

स्वामी तुम मना मारू महला पंजवा प्रव समरथ सर्व सुख दाना सिमरो नाम हो मेरवाना हर दाता जी जंत पेखारी जन बांछ जा चंगना मांगो जन तूर परम गत पावो जन्म जन्म की मैल मिटावो दीर्घ रोग मिट है हर औखद हर निर्मल रापे मंगना सरवणी सुनो बिमल जस स्वामी एकाओट तजो बिख कामी निव निव पाए लगो दास तेरे कर सो कृत नाही संगना रसना गुण गावे हर तेरे मिट है कमाते अव गुण मेरे सिमर सिमर स्वामी मन जीवे पांच दूत तज तंगना चरण कमल जप बोहित चरिये संत सांग मिल सागर तरिये अर्चा बंदन हर समत नवासी बहुड़ जोन ना नंगना दास दासन को कर ले हो गोपाला कृपा निदान दीन दयाला सखा सहाय पूर्ण परमेश्वर मिल कदे न होवी भंगना मानता ने अर्प धरी हर आगे जन्म जन्म का सोया जागे जिसका सा सोई प्रतपालक हाथ त्यागी हौ मैं हंतना जल फल पूर्ण अंतर जामी कट कट रव्या अशल स्वामी परम पीत खोई गुरपूरे एक रव्या सरबंगना जत कत पेखो प्रभ सुख सागर हर टोट भंडार नाही रतनागर अगह अगाह किस मित नहीं पाईए सो बूझै जिस किरपंगना छाती शीतल मन तन ठंडा जन्म मरण की मिटवी दंजा कर गह काड लिए प्रभ अपने हमें उतार दृश टंगना एको एक रव्या सब ठाई तिस बिन दूजा कोई नाई आद माद अंत प्रभ रव्या त्रिशन बुझी परमंगना गुर परमेश्वर गुर गोबिंद गुर करता गुर सद बख्शंद गुर जप जाप जपत फल पाया ज्ञान दीपक संत संगना जो पेखा सो सब किस स्वामी जो सुनना सो प्रभ की बानी जो कीनो सो तुम्हें करायो सरल सहाई संत है तना जाचक जा

का कर्ण करामन सब तू है नाही किस असाड़ा तुम है पठाए ता जग मह आई जो तुझ पाणा से कर्म कमाई तुझ ते बाहर किशु ना हुआ ता भी नाही किस काड़ा ऊहा हुक्म तुम्हारा सुनिए इहां हर जस तेरा भणिए आपे लेख अलेख है आपे तुम सियो नाही किस झाड़ा तू पिता सब बारक थारे ज्यों खलावे है त्यों खेलन हारे उजड़ मार्ग सब तुम ही कीना चले नाही कोवे पाड़ा एक बसाए रखे ग्रह अंतर एक पठाए देश दसंतर एक ही को कास एक ही को राजा इन मैं कही है क्या कूड़ा कमन सो मुक्ति कमन सो नरका कमन संसारी कमन सो भगता कमन सो दाना कमन सो होचा कमन सो सुरता कमन जड़ा हुक्मे मुक्ति हुक्मे नरका हुक्म संसारी हुक्मे भगता हुक्मे होचा हुक्मे दाना दूजा नाही अवर धड़ा सागर कीना आत तुम पारा एक खड़े रसातल कर मनमुख गावारा एक ना पार लंघावे आपे सतगुर जिनका सच बेड़ा कौतक काल एहो हुक्म पठाया जी जंत उपाए समाया विखै विगसै सब रंग माणी रचन कीना एक अखाड़ा वड्डा साहिब वड्डी नाई वड दा तार वड्डी जिस जाई अगम अगोचर बे अंत अतोला है नाही किस आहाड़ा कीमत कोई ना जाने दूजा आपे आप निरंजन पूजा आप सो ज्ञानी आप त्यानी आप सतवंता अत गाड़ा केतड़िया दिन गुप्त कहाया केतड़िया दिन सुन समाया केतड़िया दिन धुंधू कारा आपे करता प्रगटड़ा आपे शक्ति सबल कहाया आपे सूरा अमर चलाया आपे शिव वरताई नियंतर आपे शीतल ठार गड़ा जिसह नवाजे गुरमुख साजे नाम वसै तिस अनहद वाजे तिस ही सुख तिस ही ठकुराई तिसह न आवे जम नेड़ा कीमत कागद कही ना जाई कहो नानक बे अंत गुसाई आद मद अंत प्रभ सोई हाथ तिसै कह निबेड़ा तिसै शरीक ना ही रे कोई किस ही बुतै जवाब ना होई नानक का प्रभ आपे आपे कर कर वेखै चोज खड़ा मारू महला पंजवा अचुत पार ब्रह्म परमेश्वर अंतर जामी मद सूदर दामोदर स्वामी रिखि केस गोवर्धन तहारी मुरली मनोहर हर रंगा मोहन माधव कृष्ण मरारे जगदीश्वर हर जियो असुर संघारे जग जीवन अबनासी ठाकुर घट घट वासी है संगा धरनी तर ईस नरसिंह नारायण दाड़ा अगरे प्रथम तरायण बावन रूप किया तुद करते सब ही सेती है चंगा श्री राम चंद जिस रूप नारेखिया बनवाली चक्र पान दर्श अनूपिया सहस नेत्र मूर्त है सहसा एक दाता सब है मंगा भगत वचल अनाथ है नाथे गोपी नाथ सगल है साथे वासुदेव नरंजन दाते वर्ण ना साको गुण अंगा मकंद मनोहर लक्ष्मी नारायण द्रौपदी लज्जा निवार उदाहरण कमला कंत करह कंतूहल आनंद बनोदी निसंगा मोग दर्शन अजूनी संभव अकाल मूरत जिस कदे नाही खो अवनासी अवगत अगोचर सब किस तुझ ही है लगा श्री रंग बैकुंठ के वासी माश काश

आग्या अवतरासी केशव चलत करह निराली कीता लोड़ है सो होएगा निराहारी निरवैर समाया धार खेल चतुर्भुज कहाया सावल सुंदर रूप बनावह देन सुनत सब मोह हैगा बनमाला बेभूखन कमल नैन सुंदर कुंडल मुकुट बैन शंख चक्र गदा है तारी महासारथी सतसंगा पीत पितंबर त्रिपवन धनी जगन्नाथ गोपाल मुख पणी सारंग धर भगवान बीठुला मैं गणत न आवै सरबंगा निह कंटक निह केवल कही है तनंजय जल थल है मही है मृत लोक पै आल समीपत अस्तर थान जिस है अपगा पतत पावन दुख पै पंजन हंकार निवारण है पव खंडन भगति तोखत दीन कृपाला गुणे न कित ही है पिगा निरंकार अशल अडोलो ज्योत स्वरूपी सब जग मौलो सो मिले जिसे आप मलाही आप हो कोहे ना पावेगा आपे गोपी आपे काना आपे गऊ चरावे बाना आप उपावे है आप खपावे है तुझ लेप नहीं एक तिल रंगा एक जी ही गुण कमन बखाने सैस फनी सेख अंत न जाने नवतन नाम जपै दिन राती एक गुण नाही प्रभ कह संगा ऊट गही जगत पित सरनाया पै भयानक जमदूत दुतर है माया हो कृपाल इच्छा कर रख हो साध संतन कह संग संग।

परम पद पावो जिस प्राप्त सो पावेगा जिनको कृपा करी सुख दाती तिन साधु चरण लै हृदय पराती सगल नाम निधान तिन पाया अनहद शब्द मन वाजंगा कीर्तम नाम कथे तेरे जिहवा सत नाम तेरा परा पूर्बला कहो नानक भगत पये सरनाई देहो दर्स मन रंग लगा तेरी गत मित तू है जान है तू आपे कथ है तै आप बखान है नानक दास दासन को करियो हर भावे है दासा राख संगा मारू महला पंजवा अल्लाह अगम खुदाई बंदे छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे हुए पै खाक फकीर मुसाफर एहो दरवेश कबूल दरा सच निवाज यकीन मसल्ला मनसा बार निवार हुआसा देह मसीत मन मौलाना कलम खदाई पाक खरा सरासरयत लेख मावहु तरीकत तर्क खोज टलावहु मारफत मन मारहु अबदाला मिलहु हकीकत जित फिर न मरा करान कतेब दिल माहे कमाही दस औरात रखहु बदराही पंच मर्द सिदकले बंदहु खैर सबूरी कबूल परा मक्का मेहर रोजा पै खाका पिसत पीर लफज कमाए अंदाजा पूर नूर मुस्क खुदाया बंदगी अल्लह आला हुजरा सच कमावे सोई काजी जो दिल सोदे सोई हाजी सो मुल्ला मलऊन निवारे सो दरवेश जिस सिफत तरा सबे वक्त सबे कर वेला खालक याद दिले मह मौला तस्बी याद करहु दस मर्दन सुन्नत सील बंधान बरा दिल मह जानहु सब फिलहाला खिलखाना बिरादर हमू जंजाला मीर मलक उमरे फानाया एक मुकाम खुदाए दरा अवल सिफत दूजी साबूरी तीजै हलेमी चौथे खैरी पंजवें पंजे इकत मकामे एह पांज वक्त तेरे अपर परा सगली जान करो मौदीफा बद अमल छोड़ करो हाथ पूजा खुदाए एक बुज देव हो बांगा बुरगू बर खुरदार खरा हक हलाल बखोरो खाना गिल दरियाओ तो वो मैलाना पीर पछाणे पिस्ती सोई अजराइल ना दोज ठरा काया किरदार औरत यकीना रंग तमाशे मान हकीना नपाक पाक कर हदूर हदीसा साबत सूरत दस्तार सिरा मुसलमान मोम दिल होवे अंतर की मल दिल ते धोवे दुनिया रंग ना आवे नेड़े ज्यो कुसम पाट घ्यो पाक हरा जाको मेहर मेहर मेहरवाना सोई मर्द मर्द मर्दाना सोई सेख मसाय कहाजी सो बंदा जिस नजर नरा कुदरत कादर करन करीमा सिफत मोहब्बत अथाह रहीमा हक हुकम सच खुदाया बुझ नानक बंद खलास तरा मारू महला पंजवा पार ब्रह्म सब ऊच बराजी आपे थापे उथापे साजी प्रभ की शरण गहत सुख पाई है किस भौ न व्यापै बालका गर्भ अगन मह जिन्ह उभारिया रक्त किरम मह नहीं संघारिया अपना सिमरन दे प्रतपालिया ओहो सगल कटां का मालका चरण कमल शरण आई आया साध संग है हर जस गाया जन्म मरण सब दुख नवारी जप हर हर भौ नहीं काल का समरथ अकथ अगोचर देवा जी जंत सब तां की सेवा अंडज जेरज सेतज उत्पुज बहु प्रकारी पालका किसह प्राप्त हुए निधाना राम नाम रस अंतर माना कर गहली ने अंध कूपते विरले के साल का
आदि अंत मद प्रभ सोई, आपे करता करे सो होई, ब्रह्म पो मिटिया साध संगते, दालत ना कोई काल का, उत्तम बाणी गाओ गोपाला, साध संगत की मंगो होर वाला, बासन मेट न बासन होई है, कल मल सगले जाल का, संता की एह रीत नराली, पार ब्रह्म कर देख नाली, सास सास आराधन हर हर, क्यों सिमरत की जय आल का, जह देखा तह अंतर जामी, निमख न विसरहो प्रभ मेरे स्वामी, सिमर सिमर जीव है तेरे दासा, बन जाल पूर्ण थाल का, तत्ती वाओ ना ताको लागे, सिमरत नाम अन दिन जागे, अनद बनोद करे हर सिमरन, तिस माया संग ना ताल का, रोग सोग दुख तिस नाही, साध संग हर कीर्तन गाही, अपना नाम देहे प्रभ प्रीतम, सुन बेनंती खाल का, नाम रतन तेरा है प्यारी, रंग रते तेरे

जिन विसरह नाही काहू बेरा, तिनकै संग परम पद पाई, सदा संगी हर नाल का, साजन मीत प्यारा सोई, एक दृढ़ाए दुर्मत खोई, काम क्रोध अहंकार जाए, किस जन को उपदेश निर्माल का, तुद विण नाही कोई मेरा, गुर पकड़ाए प्रभ के पैरा, हौ बलिहारी सतगुर पूरे, जिन खंडिया परम अनाल का, सास सास प्रभ बिसरै नाही, आठ पहर हर हर को त्याई, नानक संत तेरे रंग राती, तू समरथ बडाल का, मारू महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, चरण कमल हिरदय नित तारी, गुरपूरा खिन खिन नमचकारी, तन मन अर्प धरी सब आगे, जग मह नाम सुहावना, सो ठाकर क्यों मनो वसारी, जियो पिंड दे साज सवारी, सास ग्रास संभाले करता, कीता अपना पावना, जाते बिरथा को नाही, आठ पहर हर रख मन माही, साध संग भाजे चुत स्वामी, दरगाह सोभा पावना, चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध, नाम निधान सहज सुख नौ निद,

पदार्थ जीत पराणी, काम क्रोध निंदा पर हरिय, हर रसना नानक गावना, जिस रूप ना रेखिया कुन नहीं जाती, पूर्ण पूर रहे दिन राती, जो जो जपै सोई बड़ भागी, बहुड़ना जोनी पावना, जिसनो बिसरै पुरख बधाता, जलता फिरै रह नित ताता, किरत कणै को रखै ना कोई, नरक कोर मह पावना, जियो प्राण तन धन जिन साजिया, मात गर्भ मह राख निवाजिया।

विण गाहक गुण वेतीय तौ गुण सहगो जाय गुण का गाहक जे मिले तौ गुण लाख बकाय गुण ते गुण मिल पाई है जे सतगुर माहि समाय मोल अमोल ना पाई है बंजना लीजै हाथ नानक पूरा तोल है।

एक बांधे एक ढीलिया एक सुखिए हर प्रीता नानक सच्चा मन ले सच करनी सच रीत पौड़ी गुरते ज्ञान पाया हथ खड़ग करारा दूजा भ्रम गढ़ कटिया मोह लोभ अहंकारा हर का नाम मन वसिया गुर शब्द विचारा सच संजम मत उत्तम हर लगा प्यारा सब सचो सच वर्तदा सच सिरजनहारा सलोक महला तीजा केदारा रागा विच जानिए भाई शब्दे करे प्यार सत संगत स्यों मिल दूर है सच्चे तरे प्यार विचों मल कटे अपनी कुल्ला का करे उदार गुणा की रास संग्रह अवगण कड्डै वडार नानक मिलिया सो

होए सेव गति गए, मर जन्म है फिर आवे है। सलोक महला तीजा, कागो होए न उजला लोहे नाव ना पार, पिरम पदार्थ मन ले धन सवार नहार। हुक्म पछाण उजला सिर काष्ट लोहा पार, तृष्णा छोड़े भय वसे नानक करनी सार। महला तीजा, मारू मारन जो गए मार ना सकह गवार, नानक जे उह मारी है गुर शब्दी विचार। इहो मन मारिया ना मरे जे लोचे सब कोई, नानक मन ही कहो मन मारसी जे सतगुर पेटे सोई। पौड़ी, दोए तरफा उपायन विच सख्त शिव वासा, शक्ति किने ना पायो फिर जन्म बनासा। गुर सेवे शांत पाई है जप सास ग्रासा, सिमरत सास्त सोध देख उत्तम हरदासा। नानक नाम बिना को थिर नहीं, नामे बल जासा। सलोक महला तीजा, हुआ पंडित जोत की वेद पढ़ा मुख चार, नव खन मदे पूजिया अपने चज विचार। मत सच्चा अखर भुल जाए चौके पिटे ना कोए, झूठे चौके नानका सच्चा एको सोए। महला तीजा, आप उपाय करे आप आपे नदर करे, आपे देवड़िया कहो नानक सच्चा सोए। पौड़ी, कंटक काल एक है होर कंटक ना सूजै, अफर्यो जग मह वर्तदा पापी स्यो लूजै। गुर शब्दी हर भेदी है हर जप हर बूजै, सो हर सरनाई छुट्टी है जो मन स्यो जूजै। मन विचार हर जप करे हर दरगाह सीजै। सलोक महला पहला, हुक्म रजाई साखती दरगाह सच कबूल, साहिब लेखा मंगसी दुनिया देख ना भूल। दिल दरवानी जो करे दरवेसी दिल रास, इश्क महबत नानका लेखा करते पास। महला पहला, अलगो जोए मधुकड़ो सारंग पान सबाय, हीरे हीरा बेदिया नानक कंठ सुपाए। पौड़ी, मनमुख काल वे आपदा मोहे माया लागे, खिन मह मार पछाड़सी पाए दूजे खागे। फिर वेला हाथ न आवई जम का डंड लागे, तिन जम डंड न लगई जो हर लिव जागे। सब तेरी तुद छामणी सब तुदे लागे। सलोक महला पहला, सर्बे जोए अगछमी दुख कनेरो आथ, कालर लादस सर लांगणो लाभ ना पूंजी साथ। महला पहला, पूंजी साचो नाम तू अखुटो दर्ब अपार, नानक वखर निर्मलो धन साहा वापार। महला पहला, पूरब प्रीत प्राण ले मोटो ठाकुर मान, माथे उभे जम मारसी नानक मेलण नाम। पौड़ी, आपे पिंड सवारियों विच नव निद नाम, एक आपे परम पलायन तिन निफल काम। इकनी गुरमुख बुझिया हरे आत्म राम, इकनी सुनकै मन्या हरे उत्तम काम। अंतर हर रंग उपजिया गाया हर गुण नाम। सलोक महला पहला, पोल तन पै मन वसै हेकै पद रहीद, अत डाहपन दुख कणु तीने थाम परीद। महला पहला, मांडल बेद सेवा।

ਪਹਿਲਾ ਸਾਗਰ ਗੁਣੀ ਅਥਾਹਾ ਕਿਨ ਹਥਾਲਾ ਦੇਖੀਐ ਵੱਡਾ ਵੇ ਪਰਵਾਹ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਪਾਰ ਪਵਾਂ ਮਝ ਭਰ ਦੁੱਖ ਬਦੁੱਖ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਸੈ ਨਾ ਲੱਥੀ ਭੁੱਖ ਪੌੜੀ ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਭਾਲਿਆ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵੈ ਜੋ ਇੱਛਣ ਸੋ ਪਾਏ ਦੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਜਿਸਨੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੈ ਧਰਮ ਰਾਏ ਤਿਨਕਾ ਮਿਤ ਹੈ ਜਮ ਮਗ ਨਾ ਪਾਵੈ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੈ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਵੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣੀਐ ਏਕ ਵਖਾਣੀਐ ਸੁਰਗ ਮਿਰਤ ਪਿਆਲ ਹੁਕਮ ਨਾ ਜਾਈ ਮੇਟਿਆ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਸੋ ਨਾਲ ਕੌਣ ਮੂਆ ਕੌਣ ਮਾਰਸੀ ਕੌਣ ਆਵੈ ਕੌਣ ਜਾਏ ਕੌਣ ਰਹਿਸੀ ਨਾਨਕਾ ਕਿਸ ਕੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਉ ਮੂਆ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਪੌਣ ਵਹਿ ਦਰਿਆਓ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਥੱਕੀ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ ਮਨ ਰੱਤਾ ਨਾਏ ਲੋਇਣ ਰੱਤੇ ਲੋਇਣੀ ਕੰਨੀ ਸੁਰਤ ਸਮਾਏ ਜੀਵ ਰਸਾਇਣ ਚੂਨੜੀ ਰੱਤੀ ਲਾਲ ਲਵਾਏ ਅੰਦਰ ਮੁਸ਼ਕ ਚ ਭੋਲਿਆ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਇਸ ਯੁਗ ਮਹਿ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਨਾਮੋ ਨਾਲ ਚੱਲੈ ਇਹੋ ਅਖੁੱਟ ਕਦੇ ਨਨ ਖੁੱਟਈ ਖਾਏ ਖਰਚਿਓ ਪੱਲੈ ਹਰ ਜਨ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵਈ ਜਮ ਕੰਕਰ ਜਮ ਕੱਲੈ ਸੇ ਸਾਹਾ ਸੱਚੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਨ ਹਰ ਧਨ ਪੱਲੈ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਜਾਂ ਆਪ ਹਰ ਕੱਲੈ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਮਨਮੁਖ ਵਪਾਰੈ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਬਿਖ ਵਿਹਾਜੈ ਬਿਖ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਬਿਖ ਸਿਉ ਧਰੈ ਪਿਆਰ ਬਾਹਰੋ ਪੰਡਤ ਸਦਾਏ ਦੇ ਮਨੋ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ ਹਰ ਸਿਉ ਚੇਤਨਾ ਲਾਇਨੀ ਵਾਦੀ ਧਰਨ ਪਿਆਰ ਵਾਦਾਂ ਕੀਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰਹਿ ਆਹਾਰ ਜਗ ਮਹਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਹਰ ਨਿਰਮਲਾ ਹੋਰ ਮੈਲਾ ਸਭ ਆਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਨੀ ਹੋਏ ਮੈਲੇ ਮਰਹਿ ਗਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਬਿਨ ਸੇਵਿਐ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਆਪੇ ਦਾਤਾ ਸੁਖੈ ਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਸਜਾਏ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿਸੈ ਰਜਾਏ ਪੌੜੀ ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗਤ ਹੈ ਨਿਰਧਨ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਹੀ ਦੂਜੈ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਹਉ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪਾਹੀ ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਪਾਈਐ ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੁਚਾਹੀ ਆਵੈ ਜਾਏ ਜੰਮੈ ਮਰੈ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਛੁਟਾਹੀ ਆਪ ਕਰੈ ਕਿਸੇ ਆਖੀਐ ਦੂਜਾ ਕੋ ਨਾਹੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਸੰਤੀ ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਪ੍ਰਭ ਆਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਚ ਦਿਰੜਾਇਆ ਇਸ ਧਨ ਕੀ ਕੀਮਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਇਤ ਧਨ ਪਾਇਆ ਭੁੱਖ ਲੱਥੀ ਸੁਖ ਵਸਿਆ ਮਨ ਆਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਆਏ ਮਨਮੁਖ ਜਗਤ ਨਿਰਧਨ ਹੈ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਬਿਲ ਲਾਏ ਅੰਨ ਦਿਨ ਫਿਰਦਾ ਸਦਾ ਰਹਿ ਭੁੱਖ ਨਾ ਕਦੇ ਜਾਏ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਕਦੇ ਆਵਈ ਨਹਿ ਸੁਖ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਸਦਾ ਚਿੰਤ ਚਿਤ ਵਧਾ ਰਹਿ ਸਹਸਾ ਕਦੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਤ ਭਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲੈ ਤਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਮਹਿ ਰਹਿ ਸੱਚੇ ਮਾਹੀ ਸਮਾਏ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਜਿਨ ਉਪਾਈ ਮੇਦਨੀ ਸੋਈ ਸਾਰ ਕਰੇ ਏਕੋ ਸਿਮਰਹੁ ਭਾਈ ਰਹੋ ਤਿਸ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਸ਼ਬਦ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਸਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋਏ ਪੈਨਣ ਸਿਫਤ ਸੁਨਾਏ ਹੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਊਜਲਾ ਮੈਲਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਸਹਿਜੇ ਸੱਚ ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਥੋੜਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਏ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਜਿਤ ਸਦਾ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ
नानक गुरमुख बुझी है जिसनो आप बखाले सोए पौड़ी अंतर जप तप संजमो गुर शब्दी जापै हर हर नाम त्याई है हम मैं अज्ञान गुआपै अंदर अमृत भरपूर है चाखिया साध जापै जिन चाखिया से निरपो भये से हर रस त्रापै हर कृपा तार पी आया फिर काल ना व्यापै सलोक महला तीजा लोक अवगणा की बन्ने गंठड़ी गुण ना व्या जय कोई गुण का गाहक नानका विरला कोई होए गुर प्रसादी गुण पाइन जिसनो नदर करे महला तीजा गुण अवगुण समान है जे आप कीते करतार नानक हुक्म मन्ने है सुख पाई है गुर शब्दी विचार पौड़ी अंदर राजा तख्त है आपे करे न्याय गुर शब्दी दर जानिए अंदर महल असराव खरे परख खजाने पायन खोटिया नाही थाव सब सचो सच वर्तदा सदा सच न्याय अमृत का रस आया मन वसिया नाउ सलोक महला पहला हौ मैं करी ता तू नाही तू हो हौ नाही बूझो ज्ञानी बूझना ए अकथ कथा मन माहे बिन गुर तत् न पाईए अलख वसै सब माहे सतगुर मिलै ता जानिए जा शब्द वसै मन माहे आप गया भ्रम पहो गया जन्म मरण दुख जाहे गुरमत अलख लखाईए उत्तम मत तराए नानक सोहंग हंसा जप जापो त्रे भवन तिसै समाहे महला तीजा मन माणक जिन परखिया गुर शब्दी विचार से जन विरले जानी है कल युग विच संसार आपै नो आप मिल रहिया हौ मैं दुबदा मार नानक नाम रते दुत्तर तरे भौजल बिकम संसार पौड़ी मनमुख अंदर ना भालनी मुठे अहमते चारे कुंडा भव थके अंदर तिख तत्ते सिमरत सास्त ना सोधनी मनमुख विगुते बिन गुर किनै ना पायो हर नाम हर सत्ते तत् ज्ञान विचारिया हर जप हर गते सलोक महला दूजा आपे जाने करे आप आपे आने रास किसे अगै नानका खले की कै अरदास महला पहला जिन किया तिन देखिया आपे जाने सोई किसनो कहिए नानका जा घर वरतै सब कोए पौड़ी सबे थोक वसार इको मित कर मन पन होए निहाल पापा दह हर आवन जाना चुकै जन्म ना जाहे मर सच नाम आधार सोग ना मोहे जर नानक नाम निदान मन मह सांझ धार सलोक महला पंजवां माया मनो ना विसरै मांगै दम्मा दम सो प्रभ चेतना आवै नानक नहीं करम महला पंजवा माया साथ ना चलै क्या लपटावह अंध गुर के चरण त्याए तू टूटह माया बंद पौड़ी भाणे हुक्म मनायुन भाणे सुख पाया भाणे सतगुर मेलियुन भाणे सच त्याया भाणे जेवड़ होर दात नाही सच आख सुनाया जिनको पूर्व लिखिया इन सच कमाया नानक किस शरणागती जिन जग ते उपाया सलोक महला तीजा जिनको अंदर ज्ञान नहीं पै की नाही बिंद नानक मुया का क्या मारना जे आप मारे गोविंद महला तीजा मन की पत्री वाचनी सुखी हूं सुख सार
सो ब्राह्मण भला आखिए जे बूझे ब्रह्म विचार हर सलाहे हर पड़े गुर कै शब्द विचार आया ओ परवान है जे कुल का करे उधार अगे जात ना पुछिए करनी शब्द है सार होर कूड़ पढ़ना कूड़ कमावना विख्या नाल प्यार अंदर सुख ना होवे मन मुख जन्म खुवार नानक नाम रते से उबरे गुर कै हित अपार पौड़ी आपे कर कर वेखदा आपे सब सच्चा जो हुक्म ना बूझै खसम का सोई नर कच्चा जित भावे तित लाएंदा गुरमुख हर सच्चा सबना का साहिब एक है गुर शब्दी रचा गुरमुख सदा सलाही है सब तिस दे जच्चा ज्यो नानक आप नचाएंदा ते वही को नचा शुद्ध मारू वार महला पंजवा दखणे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद तू चौ सज्जन मैंडिया देई से उतार नैण महिंजे तरस दे कद पसी दीदार महला पंजवा नीहो महिंजा तऊ नाल ब्या नेह कुड़ावे देख कप्पड़ भोग डरावणे जिचर प्री ना देख महला पंजवा उठी झालू कंतड़े हो पसी तौ दीदार काजल हार तमोल रस बिन पसे हव रस शार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच सच सब तारिया गुरमुख की तो थाट सिरज संसारिया हर आग्या होए बेद पाप पुन विचारिया ब्रह्मा बिछन महेश त्रै गुण विस्थारिया नावखंड पृथ्वी साज हर रंग सवारिया वेकी जनते उपाय अंतर कल तारिया हेरा अंत न जाने कोई सच सिरजन हारिया तू जान है सब बेदयाप गुरमुख निस्तारिया दखणे महला पंजवा जे तू मित्र असाडड़ा एक भोरी ना वे छोड़ जियो महिंजा तौ मोहया कद पसी जानी तो हे महला पंजवा दुर्जन तू जल पहाड़ी विछोड़े मर जाहे कंता तू सौ सिजड़ी मैंडा हबो दुख अलाहे महला पंजवा दुर्जन दूजा पाओ है विछोड़ा हूं मैं रोग सज्जन सच्चा पातशाह जिस मिल की चै भोग पौड़ी तू अगम दयाल बेअंत तेरी कीमत कह कौन तुद सिरजिया सब संसार तू नायक सगल पौन तेरी कुदरत कोई ना जाने मेरे ठाकुर सगल रौन तुदे अपण कोई ना सकै तू अबनासी जग उधरन तुद थापे चारे जुग तू करता सगल धरन तुदे आवन जाना किया तुद लेप ना लगे त्रिण जिस होवै है आप दयाल तिस लावै है सतगुर चरण तू होरत अपाए ना लभही अवनासी सृष्ट करन दखणे महला पंजवा जे तू बतह अंगणे हब तरत सुहावी होए हिकस कंतै बाहरी मैंडी वात ना पुछै कोई महला पंजवा हब्बे टोल सहावणी सहो बैठा अंगण मल पही ना वंजै बिरथड़ा जो घर आवै चल महला पंजवा सेज वछाई कंतकू किया हब शिंगार इत्ती मंज ना समावई जे गल पहरा हार पौड़ी तू पार ब्रह्म परमेश्वर जोन ना आवही तू हुक्मी साजह सृष्ट साज समावही तेरा रूप ना जाई लखिया क्यों तुझह त्यावही तू सब मह वरत है आप कुदरत दिखावही तेरी भगत परे भंडार तोट ना आवही
एह रतन जवेहर लाल कीम ना पावे जिस हो वह आप दयाल तिस सतगुर सेवा लावही तिस कदे ना आवे तोट जो हर गुण गावही दखणे महला पंजवा जाम पसी हठ मैं पिरी महिंजै नाल हब्बे दुख उलाहयम नानक नदर निहाल महला पंजवा नानक बैठा पखे वाउ लम्मे सेवै दर खड़ा पिरिये तू जान महिंजा साउ जो ही साई मुह खड़ा महला पंजवा क्या गलायो भूष पर वेल ना जो हे कंत तू नानक फुला संधी वाड़ खिड़िया हब संसार ज्यो पौड़ी सुगण सुजान स्वरूप तू सब मह वर्तनता तू आपे ठाकुर सेवको आपे पूजनता दाना बिना आप तू आपे सतवंता जति सती प्रभ निर्मला मेरे हर भगवंता सब ब्रह्म पसार पसारे हो आपे खेलंता एहो आवा गौण रचायो कर चोज देखंता तिस बहुड़ गर्भ ना पावही जिस देव है गुरमंता ज्यो आप चलाव है त्यों चल दे किस वस ना जनता दखणे महला पंजवा कुरिये कुरिये वैद्या तल गाड़ा महरीर वेखे शिकड़ थीम दो जाम खिसन दो पेर महला पंजवा सच जाने कच वैद्यो तू आगू आगे सलवे नानक आत सड़ी मांज नैनू ब्या ढल पबण ज्यो जुम्यो महला पंजवा पोरे पोरे रूहड़े से वेंदे आलक मुद्दत पई चराणिया फिर कड्डू आवे रुत पौड़ी तुद रूप ना रेखिया जात तू वरना बाहरा ये मानस जान है दूर तू वरत है जाहरा तू सब कट भोग है आप तुद लेप ना लाहरा तू पुरख आनंदी अनंत सब जोत समाहरा तू सब देवा महदेव पदाते नरहरा क्या अरादे जिहवा एक तू अबनासी अपर परा जिस मेल है सतगुरे आप तिसके सब कुल तरा सेवक सब कर दे सेव दार नानक जन तेरा दखणे महला पंजवा गह डरड़ा तृण छाया गाफल जलियो पाहे जिन्ना भाग मथाहड़ै तिन उस्ताद पनाहे महला पंजवा नानक पीठा पक्का साजिया धरिया आण मौजूद बाजो सतगुरे अपने बैठा झाक दरूद महला पंजवा नानक पुसरियां पकाइया पाइया थाले माहे जिन्नी गुरु मनाया रज रज से ही खाहे पौड़ी तुद जग मह खेल रचाया विच हों मैं पाइया एक मंदर पंच चोर है नित करह बुरियाइया दस नारी एक पुरख कर दसे साध लुभाइया एन माया मोहनी मोहिया नित फिरह परमाइया हाथा दोवै कीतियो शिव सकत वरताइया शिव अग्गै सकति हारिया केवै हर पाइया एक विचों ही तुद रखिया जो सतसंग मलाइया जल विचों बिंब उठालियो जल माहे समाइया दखणे महला पंजवा अगाह कूतरांग पिछा फेरना मोहडड़ा नानक सिज अवेहावार बहुड़ ना होई जन्मड़ा महला पंजवा सज्जन मैंदा चाइया हब कही दा मेतर हब्बे जानने अपना कहीं ना खाहे चित महला पंजवा गुजड़ा लदम लाल मथे ही प्रगट थिया सोई सहावा खान जिथे प्रिये नानक जी तू उठिया पौड़ी जा तू मेरे वल है ता क्या मुह छंदा तुद सब किस मैनू सौंपया जा तेरा बंदा।
लखमी टोट ना आवई खाए खर्च रहंदा लख चौरासी मेदनी सब सेव करंदा ए वैरी मित्र सब कीतिया नह मंगै मंदा लेखा कोई ना पुछे जा हर बख्शंदा आनंद भया सुख पाया मिल गुर गोविंदा सबे काज सवारिया जा तुद पावंदा दखणे महला पंजवां देखण कु मुस्ताक मुख कजिया कौ तनी फिरदा कितै हाल जा डिठम ता मन त्रापिया महला पंजवां दुखिया दर्द घणे वेदन जाने तू तनी जाना लख पवे इरी दिखंदो ता जीवसा महला पंजवां कहंदी जाए करार वैण वहंदे मैं डिठिया से ही रहे अमान जिन्ना सतगुरु भेटिया पौड़ी जिस जन तेरी भुख है तिस दुख ना व्यापै जिन जन गुरमुख बुझिया सो चौह कुंडी जापै जो नर उसकी सरनी परै किस कंबह पापै जन्म जन्म की मल उतरै गुर तूड़ी नापै जिन हर पाणा मन्या तिस सोग ना संतापै हर जियो तू सबना का मित है सब जान है आपै ऐसी सोबा जने की जे वड़ा हर प्रतापै सब अंतर जन वरताया हर जन ते जापै दखणे महला पंजवा जिन्ना पिछे हो गई से मैं पिछे पीर व्यास जिन्ना की मैं आसड़ी तिना महिंजी आस महला पंजवा गिल्ली गिल्ली रोडड़ी पौंदी भव पावे आए जो बैठे से फाथिया उबरे भाग मथाए महला पंजवा डिटा हब मजाए खाली कोई ना जानिया तै सखी भाग मथाए जिन्नी मेरा सज्जन रावया पौड़ी हों ढाडी दर गुण गावंदा जे हर प्रभ पावै प्रभ मेरा थिर थावरी होरे आवै जावै सो मंगा दान गुसाइया जित भुख लह जावै प्रभ जियो देवो दर्शन अपना जित ढाडी तृपतावै अरदास सुनी दातार प्रभ ढाडी कौ महल बुलावै प्रभ देखदिया दुख भुख गई ढाडी को मंगण चेतना आवे सबे इच्छा पूरिया लग प्रभ कह पावे हो निर्गुण ढाडी बख्शियोन प्रभ पुरख वेद आवे दखणे महला पंजवा जा छुटे ता खाक तू सुनी कंत ना जानही दुर्जन सेती ने हो तू कै गुण हर रंग माणही महला पंजवा नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद किस स्यों क्यों मन रूसी है जिस है हमारी किंद महला पंजवा रत्ते रंग पार ब्रह्म कै मन पने अत गुलाल नानक बिन नावै आलू दिया जित्ती होर ख्याल पवड़ी

मार निवाड़ा, गुर पौ जल पार लंघाया, जिता पावाड़ा, गुरमती सब रस भोगदा, वड्डा आखाड़ा, सब इंद्रियां वस कर दित्तियो, सतवंता साड़ा, जित लायन तितै लग दिया, नह खिंचो ताड़ा, जो इच्छी सो फल पाएंदा, गुरे अंदर वाड़ा, गुर नानक तुठा पाए रहो, हर वसदा नेड़ा, दखणे महला पंजवा, जां मूं आवह चित तू, तां हब्बे सुख लहाओ, नानक मन ही मंज रंगावला, प्री तिहिंजा नाओ महला पंजवा, कप्पड़ भोग वकार, ए हब्बे ही शार, खाक लड़ेंदा तन के, जो रत्ते दीदार महला पंजवा, क्या तक है व्यापास, कर ही अड़े एक आधार, थियो संतन की रेण, जित लब्बी सुख दातार पौड़ी, बिन कर्मा हर जियो ना पाईए, बिन सतगुर मनुआ ना लगे, धर्म तीरा कल अंदरे, एहो पापी मूल ना तगे, एह कर करे सो एह कर पाए, एक घड़ी मोहत ना लगे, चारे युग मैं सोदिया, बिन संगत अहंकार ना भगे, हऊ मैं मूल ना छुटई, बिन साधु सत संगे, तिचर था ना पावई, जिचर साहिब स्यो मन भंगे, जिन जन गुरमुख सेविया, तिस कर दी बाण अपगे, हर किरपा ते सुख पाया, गुर सतगुर चरणी लगे, दखणे महला पंजवा, लोड़ींदो हब जाए, सो मीरा मेरा नसिर, हठ मंजाहू सो तनी, चौंदो मुख अलाए महला पंजवा, माणकू मोहे माओ, दिन्ना तनी अपाए, ह्याओ मिंजा ठंडड़ा, मुख हो सच अलाए महला पंजवा, मूथ आउ सेज, नैना पिरी विशावना, जे देखै एक वार, ता सुख कीमा हूं बाहरे पौड़ी, मन लोचै हर मिलन को, क्यों दर्शन पाईया, मैं लख विड़ते साहेबा, जे बिंद बुलाईया, मैं चारे कुंडा पालिया, तुद जेवड़ ना साइया, मैं दस्यो मार्ग संत हो, क्यों प्रभु मिलाइया, मन अर्पे हो हऊ मैं तजो, इत पंत जलाइया, नित सेवे हो साहिब अपना, सतसंग मलाइया, सबे आसा पूरिया, गुरमहल बुलाइया, तुद जेवड़ होर ना सुजई, मेरे मित्र गुसाइया, दखणे महला पंजवा, मूथ आऊ तख, प्री महिंजे पातशाह, पाव मलावे कोल, कमल जिवै बिग साम दो महला पंजवा, प्रिया संदड़ी

कालेखं पेखी प्रभु न लभई बिन सच्ची सिखं पूला मार्ग सो पवे जिस तुर मस्तक लेखं किन जन्म सवारिया अपना जिन गुर अखी देखं दखने महला पंजवां सो निवाहू गड जो चलाऊ ना थिया कार कूड़ा भी छड संभल सच तनी महला पंजवां हब समाणी जोत ज्यो जल कटाऊ चंद्रमा प्रगट थी आयाप नानक मस्तक लिखिया महला पंजवा मुख सहावे नाम चौ आठ पहर गुण गाव नानक दरगाह मनी है मिली न थावे थाओ पौड़ी बाहर भेख ना पाई है प्रभ अंतर जामी इक सहार जियो बाहरी सब फिरे निकामी मन रता कटंब स्यों नित गर्भ फरामी फिर है गमानी जग मह क्या गर्भ है दामी चल दिया नाल ना चलई खिन जाए बिलामी विचर दे फिर है संसार मह हर जी हो कामी कर्म खुला गुर पाया हर मिलिया स्वामी जो जन हर का सेव को हर तिस की कामी।

प्रसाद अनभव किनै ना देखिया बैरागी अड़े बिन पै अनभव होए बणा हंबै सहो हदूर देखै ता भव पवै बैरागी अड़े हुक्मै बूझै ता निरपो होए बणा हंबै हर पाखंड ना कीजई बैरागी अड़े पाखंड रत्ता सब

मूर्ख मुग्ध ग्वार राम नाम जान्यो नहीं कैसे उतरस पार। राग मारू बाणी जय देओ जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चंद सत भेदया नाद सत पूरिया सूर सत खोड़ सा दत किया। अबल बल तोड़िया अचल चल थपिया अघड़ घड़िया तहां अपियो पिया। मन आद गुण आद वखाणिया तेरी दुबदा दृष्ट समानिया। रहाओ अर्ध को अर्धया सर्द को सर्दया सलल को सलल सम्मान आया। बदत जय देव को रम्या ब्रह्म निर्वाण लिवलीन पाया। कबीर मारू राम सिंह।

कारी प्रभ मन कर्म सकर्मा नानक पंथ निहाली सा धन तू सुने आत्म रामा बाबीहा प्रयो बोले को किल बाणिया सा धन सब रस चूले अंक समाणिया हरे अंक समाणी जा प्रभ पाणी सा सुहागण नारी नव कर थाप महल कर ऊंचो निज कर वास मरारी सब तेरी तू मेरा प्रीतम निसबासुर रंग रावे नानक प्रियो प्रियो चवे बबीहा कोकिल शब्द सुहावे तू सुन हर रस भिन्ने प्रीतम अपने मन तन रवतर वन्ने घड़ी ना बिसरे क्यों घड़ी बिसारी हों बलिहारी हों जीवा गुण गाई ना कोई मेरा हों किस फेरा हर बिन रहन ना जाए ओट गही हर चरण निवासी भये पवित्र शरीरा नानक दृष्ट धीरग सुख पावे गुर शब्दी मन तीरा बरसे अमृत धार बूंद सुहावनी साजन मिले सहज सुभाए हर स्यो प्रीत बणी हर मंदर आवे जा प्रभ पावे तन उभी गुण सारी घर घर कंत रवे सुहागण हौ क्यों कंत वसारी उन्नव कन छाए बरस सुपाए मन तन प्रेम सुखावे नानक वरसै अमृत बाणी कर कृपा कर आवे चेत बसंत भला भवर सुहावड़ी बन फूले मंझ भार मैं फिर घर बहुड़ै फिर घर नहीं आवे तन क्यों सुख पावे बिरह विरोध तन सीजै कोकिल अंब सुहावी बोले क्यों दुख अंक सहीजै पवर पवंता फूली डाली क्यों जीवा मर माए नानक चेत सहज सुख पावे जे हर वार घर धन पाए वैसाख भला साखा वीस करी धन देखै हर द्वार आव दया करी कर आओ प्यारे दुत्तर तारे तुद बिन अड ना मोलो कीमत कौन करे तुद पावा देख दिखावे ढोलो दूर ना जाना अंतर माना हर का महल पछाना नानक वैसाखी प्रभ पावे सुरत शब्द मन माना माह जेठ भला प्रीतम क्यों बिसरे थल तप है सर भार सा तन बिनो करे।

नैन अंधले तन पसम से नानक दुखिया जोग चारे बिन नाम हर के मन वस्से खुली गंठ उठो लिखिया आया राम रस कस सुख ठाके बंद चलाया राम बंद चलाया जा प्रभ पाया ना दिसै ना सुनिए आपन वारी सब सह आवे पक्की खेती लुनिए घड़ी चसे का लेखा लीजे बुरा भला सहो जिया नानक सुर नर शब्द मलाए तिन प्रभ कारण किया तुखारी महला पहला तारा चढ़िया लम्मा क्यों नदर निहालिया राम सेवक पूर करम्मा सतगुर शब्द दिखा लिया राम गुर शब्द दिखा लिया सच संभालिया एहन सदेख बिचारिया।

साची सच मत तेरी साजन देश वदेसी अड़े सनेहड़े देंदी सार संभाले तिन सजना मुंद नैन परेंदी मुंद नैन परेंदी गुण सारेंदी क्यों प्रभ मिला प्यारी मार्ग पंथ ना जानो विखड़ा क्यों पाई है पिर पारी सतगुर शब्दी मिला विछुनी तन मन आगे राखे नानक अमृत बिरख महारस फलिया मिल प्रीतम रस चाखे महल बुलाएड़िए बिलम ना कीजे अनदिन रतड़िए सहज मलीजे सुख सहज मलीजे रूस ना कीजे गर्भ निवार समाणी साचे राती मिले मलाई मनमुख आवन जानी जब नाची तब घूंघट कैसा मटकी फोड़ न

लाल रंगीले हम लालन के लाले गुर अलख लखाया अवरना दूजा पाले गुर अलख लखाया जां तिस पाया जां प्रभ कृपा धारी जग जीवन दाता पुरख बधाता सहज मिले बनवारी नदर करह तू तार है तरिय सच देव हो दीन दयाला प्रणवत नानक दासन दासा तू सर्व जिया प्रतपाला भरपुर धार रहे अत प्यारे शब्दे रव रहे आ गुर रूप मरारे गुर रूप मरारे त्रे भवन धारे ताका अंत ना पाया रंगी जिनसी जंत अपाए नित देव है चढ़ सुआया अपरंपर आपे थाप उथापे तिस भावे सो होवे नानक हीरा हीरे बेदिया गुण कै हार परोवे गुण गुण है समाने मस्तक नाम निशानु सच साच समाया चूका आवन जानु सच साच पछाता साच राता साच मिले मन पा।

मूल नरारी, नानक ज्योति ज्योत समाणी, जा मिलिया अत प्यारी, सच कर खोज लहे साचा गुर थानो, मनमुख नह पाईए गुरमुख ज्ञानो, देवै सच दानो सो परवानो, सद दाता वड दाना अमर अजोनी।

अल्लाराम हर सिमर एकंकार साचा सब जगत जिन उपाया पौन पानी अग्न भांदे गुर खेल जगत दिखाया आचार तू विचार आपे हर नाम सन्या।

गुण गाए राम रसाए रसियह गुर ज्ञान अंजन सारे त्रैलोक दीपक शब्द चानन पंच दूत संघारहे।

गुर शब्द सुरत लंगावे मिल साध संगत करह रलिया फिर ना पछोतावे कर दया दान दयाल साचा हर नाम संगत पावो नानक पयम पै सुनो प्रीतम गुर शब्द मन समझावो।

राम जब लग दर्शना होए क्यों अमृत पीवी राम क्यों अमृत पीवी है हर बिर जीवी है तिस बिन रहन ना जाए अन दिन प्रियो प्रियो करे दिन राती फिर बिन प्यास ना जाए अपनी कृपा करो हर प्यारी हर हर नाम सद सारिया गुर कै शब्द मिलिया मैं प्रीतम हौ सतगुर विट हो वारिया जब देखा फिर प्यारा हर गुण रस रवा राम मेरा अंतर हुए विगास प्रियो प्रियो सच नित चवा राम प्रियो चवा प्यारी शब्द निस्तारी बिन देखे तृप्त ना आवई शब्द श्रृंगार हो।

अन दिन गुरु गोपाल त्याई, हम सतगुर बिटोह कुमाए, हम पाथर गुर नाव, बिख भवजन तारिए राम, गुरदेव हो शब्द सुपाए, मैं मूड़ निस्तारिए राम, हम मूड़ मुगद किशमित नहीं पाई, तू अगम वड जानिया, तू आप दयाल दया कर मिल है, हम निर्गुणी निमाणिया, अनेक जन्म पाप कर परमे, हुन तौ शरणागत आई, दया करो रख ले वो हर जियो, हम लाग है सत गुर पाए, गुर पारस हम लोह, मिल कंचन होया राम, ज्योति ज्योत मलाए, काया गढ़ सोहया राम, काया गढ़ सोहया मेरे प्रभ मोहया, क्यों सास ग्रास वसारी है, अदृष्ट अगोचर पकड़िया गुर शब्दी, हों सतगुर कै बलिहारी है, सतगुर आगै सीस भेट देओ, जे सतगुर साचे पावै, आपे दया करहु प्रभ दाती, नानक अंक समावै, तुखारी महला चौथा, हर हर अगम अगाद, अपरंपर अपरपरा, जो तुम प्यावै जगदीश, ते जान पाओ बिखम तरा, बिखम पाओ तिन तरिया सुहिला, जिन हर हर नाम ते आया, गुरवात सत गुर जो पाए चले, तिन हर हर आप मलाया, ज्योति ज्योत मिल ज्योत समाणी, हर कृपा कर तरनी तरा, हर हर अगम अगाद अपरंपर अपरपरा, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, तू अलख अपेयो अगम, गुर सत गुर बचन लहया, तन तन ते जन पुरख पूरे, जिन गुर संत संगत मिल गुण रवे, विवेक बुद्ध विचार गुरमुख, गुर शब्द खिन खिन हर नित चवे, जां बह गुरमुख हर नाम बोल है, जां खड़े गुरमुख हर हर कहया, तुम स्वामी अगम अथाह, तू घट घट पूर रहया, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तिनके कोट सब पाप खिन पर हर हर दूर करे, तिनके पाप दुख सब बिन से, जिन मन चित एक अराध्या, तिनका जन्म सफलियो सब किया करतै, जिन गुरबचनी सच भाखिया, ते तन जन वड पुरख पूरे, जो गुरमत हर जप भौ बिखम तरे, सेवक जन सेवह ते प्रवान, जिन सेविया गुरमत हरे, तू अंतर जामी हरे आप, ज्यों तू चलावह प्यारे हो तिवै चलना, हमरे हाथ किश नाही, जां तू मेलह ता हो आए मिला, जिनको तू हर मेलह स्वामी, सब तिनका लेखा छुटक गया, तिनकी गणत ना करे ओहो को पाई, जो गुर बचनी हर मेल लया, नानक दयाल हुआ तनी ऊपर, जिन गुर का पाणा मन्या भला, तू अंतर जामी हरे आप, ज्यों तू चला वह प्यारे हो तिवै चलना, तुखारी महला चौथा, तू जग जीवन जगदीश सब करता श्रेष्ट नाथ, तिन तू त्याया मेरा राम, जिन कै तुर लेख मात, जिनको तुर हर लिखिया स्वामी, तिन हर हर नाम अराध्या, तिनके पाप एक निमक सब लाथे, जिन गुरबचनी हर जापिया, तन तन ते जन जिन हर नाम जपिया, तिन देखे हो भया सनाथ, तू जग जीवन जगदीश सब करता श्रेष्ठ नाथ, तू जल थल मही अल भरपूर सब ऊपर साच धनी, जिन जपिया हर मन चीत हर जप जप मुक्त घणी, जिन जपिया हर ते मुक्त पराणी, तिनके उजल मुख हर द्वार, ओए हलत पलत जन भये सोहेले, हर राख लिए रखण हार, हर संत संगत जन सुनो पाई, गुरमुख हर सेवा सफल बणी, तू जल तल मही अल भरपूर सब ऊपर साच तणी, तू थान थरंतर हर एक
हर एको एक रविया, वण त्रिण त्रे भवन सब श्रेष्ठ, मुख हर हर नाम चवया, सब चवह हर हर नाम करते, असंख अगणत हर त्यावै, सो धन तन हर संत साधु, जो हर प्रभ करते पावे, सो सफल दर्शन देहो करते, जिस हर हृदय नाम सद चवया, तू थान तनंतर हर एक, हर एको एक रविया, तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है, जिसकै मस्तक गुर हाथ, तिस हृदय हर गुण टिक है, हर गुण हृदय टिक है तिसकै, जिस संतर भौ भावनी होई, बिन भय किनै ना प्रेम पाया, बिन भय पार ना उतरिया कोई, भौ भावो प्रीत नानक किसह लागै, जिस तू अपनी कृपा करहै, तेरी भगत भंडार असंख, जिस तू देव है मेरे स्वामी तिस मिल है, तुखारी महला चौथा, नावण पुरब अपीच, गुर सतगुर दर्श भया, दुर्मत मैल हरी, अज्ञान अंधेर गया, गुर दर्श पाया अज्ञान गवाया, अंतर ज्योत परगासी, जन्म मरण दुख खिन मह बिनसे, हर पाया प्रभ अविनासी, हर आप करतै पुरब किया, सतगुरु कुल खेत नावण गया, नावण पुरब अपीच, गुर सतगुर दर्श भया, मार्ग पंथ चले, गुर सतगुर संग सिखा, अन दिन भगत बणी, खिन खिन निमुख विखा, हर हर भगत बणी प्रभ केरी, सब लोक वेखण आया, जिन दर्श सतगुर गुरु किया, तिन आप हर मेलाया, तीर्थ उदम सतगुरु किया, सब लोक उदरन अर्था, मार्ग पंथ चले, गुर सतगुर संग सिखा, प्रथम आए कुल खेत, गुर सतगुर पुरब हुआ, खबर भई संसार आए त्रै लोआ, देखण आए तीन लोक, सुर नर मुन जन सब आया, जिन परसया गुर सतगुरु पूरा, तिनके किल विख नास गुआया, जोगी दिगंबर सन्यासी खट दर्शन, कर गए गोष्ट ढोआ, प्रथम आए कुल खेत, गुर सतगुर पुरब हुआ, दुतिया जमन गए, गुर हर हर जपन किया, जगाती मिले दे भेट, गुर पिछे लंघाए दिया, सब छुट्टी सतगुरु पिछे, जिन हर हर नाम ते आया, गुर बचन मार्ग जो पंथ चाले, तिन जम जगाती नेड़ ना आया, सब गुरु गुरु जगत बोले, गुर कै नाए लय सब छुटक गया, दुतिया जमन गए, गुर हर हर जपन किया, तृतीया आए सुरसरी, तह कौतक चलत भया, सब मोही देख दर्शन गुर संत, किने आड़ ना दाम लया, आड़ दाम किस पया ना बोलक, जगातिया मोहन मुंदन पई, भाई हम करहें क्या किस पास मांग है, सब पा

तृतीया आए सुरसरी तह कौतक चलत भया मिल आए नगर महाजना गुर सतगुरु उठ गही गुर सतगुरु गुर गोविंद पुछ सिमरत कीता सही सिमरत शास्त्र सबनी सही कीता सुख प्रहलाद श्री राम कर गुर गोविंद त्याया देही नगर कोट पंच चोर बटवारी तिनका थाउ थे हो गुवाया कीर्तन पुराण नित पुन हो वह गुरबचन नानक हर भगत लही मिल आए।

प्रभु मेरे निमक दृष्ट पेख जीवा अमृत नाम सुनिजै तेरा कृपा करह ता पीवा आस प्यासी पिरकै ताई ज्यों

उस्तत कहन न जाए तुम्हारी, कौन कह तू कद का, नानक दास ता कह बलिहारी, मिले नाम हर निमका। केदारा महला चौथा कर पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन राम नाम नित गावियरी, अगम अगोचर ना जाई हर लखिया, गुरपुरा मिले लखावियरी, रहाओ जिस आपे कृपा करे मेरा स्वामी, तिस जन को हर लिव लावियरी, सब को भगत करे हर केरी, हर पावै सो थाए पावियरी, हर हर नाम अमो

अंतर का अवमान जोर तू किस किस किस जानता ए दूर करहो आपन गहोरे जन नानक को हर दयाल हो स्वामी।

आई संत संग जागी प्रिय रंग देखै जपती नाम निधानी रहाउ दर्शन प्यास लोचन तार लागी बिसरी त्यास बडानी अव गुर पायो है सहज सुखदायक दर्शन पेखत मन लपटानी देखत मोदर रहस मन उपजेउ नानक प्रिय अमर

तीन दोखी एक मन अनाथ नाथ रात हो कृपाल रहाओ अनक जतन गवन करूं खट कर्म जुगत ध्यान धरूं अपाव सगल कर हारियो नह नह हुटह बिकराल शरण बंदन करना पति भाव हरन हर हर हर हरे।

नाम प्रीत लागी मन भीतर मांगन को हरदान रहाव सुखदाई पूर्ण परमेश्वर कर कृपा राखु मान देहो प्रीत साधु संग स्वामी हर गुण रसन बखान गोपाल दयाल गोविंद दामोदर निर्मल कथा ज्ञान नानक को हर कै रंग रंग हो चरण कमल संग ध्यान केदारा महला पंजवां हर के दर्शन को मन चाओ कर कृपा सत संग मलाव हो तुम देव हो अपनो नाओ रहाओ करो सेवा सत पुरख प्यारे जत सुनिए तत मन रहसाओ वारी फेरी सदा कुमाई कवन अनूप तेरो ठाओ सर्व प्रित पाल है।

नानक के प्रभ पुरख बधाती कट कट तुझह दिखाओ। केदारा महला पंजवा प्रिय की प्रीत प्यारी मगन मन मह चितवों आसा नैनो तार तुहारी तो रहाओ। ओए दिन पहर मूरत पल कैसी ओए पल करी के हारी खुले कपट तपत भुज तृष्णा।

साध संग मन लाभ ब्रह्म भउ मोह कट्यो गुरबचनी अपना दर्श दिखावहु सब की रेन होए मन मेरा अहम बुद्ध तजावहु अपनी भगत देह दयाला वड भागी नानक हर पावहु किदारा महला पंजवा हर बिन जन्म अकारथ जात ताज गोपाल आन रंग राचत मिथ्या पहरत खात रहाऊ धन जोबन संपै सुख भोगवै सांगना निबहत मात मृग तृष्णा देख रचियो बावर द्रम छाया रंग रात मान मोह महामद मोहत काम क्रोध कै खात कर गह लेहो दास नानक कहो प्रभ जियो होए सहात केदारा महला पंजवा हर बिन कोए ना चाल साथ दीना नाथ करुणा पत स्वामी अनाथा के नाथ रहाउ सुत संपत बिखिया रस भुगवत नह लिबहत जम कै पाथ नाम निधान गाओ गुण गोबिंद उधर सागर के खात सरन समरथ अकाथ अगोचर हर सिमरत दुख लाथ नानक दीन तूर जन बाछत मिले लिखत तुर माथ किदारा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद बिसरत नाही मन ते हरी अब एह प्रीत महा प्रबल भई आन बिखै जरी रहाऊ बूंद कहा त्याग चात्रक मीन रहत ना करी गुण गोपाल उचार रसना तेव एहे परी महानाद करंक मोहयो बेद तीखन सरी प्रभ चरण कमल रसाल नानक गांठ बांध तरी।

और रहाउ अधिक गर्त संसार सागर कर दया चारुह तूर संत संग हर चरण बोहित उदर तेले मोर गर्भ कुंट मह जिनह तारियो नहीं बिखै बन मह होर हर सकत सरन समरत नानक।

रहाउ त्याग चलना सगल संपत काल सिर पर जान मितन मोह दूरंत आसा झूठ सर परमान सतपुरख अकाल मूरत हृदय धारो ध्यान नाम निधान लाभ

पूर रहया सर्वतन में सो पुरख बधाता मार्ग प्रभ का हर किया संतन संग जाता संतन संग जाता पुरख बधाता घट घट नदर निहालिया जो सरनी आवे सर्ब सुख पावे तिल नहीं भन्ने ढालिया हर गुण निद गाई।

पुरख बधाता हर प्रेम भगत जन बेदया सियान कत जाही मीन बशोहा ना सह जल बिन मर पाही हर बिन क्यों रही है दुख किन सही है चातरक बूंद प्यासिया कबरैन बिहावे चकवी सुख पावे सूरज किरण परगासिया हर दर्श मन लागा दिन सुसभागा अन दिन हर गुण गाही नानक दास कह बेनंती कत हर बिन प्राण टकाही सास बिना ज्यो देहुरी कत सोभा पावे दर्श बिहूना साध जन खिन टिकन ना आवे हर बिन जो रहना नरक सो सहना चरण कमल मन बेदया हर रसक बैरागी नाम लिव लागी कतोह ना जाए न खेदया हर स्यो जाए मिलना साध संग रहना सो सुख अंक ना मावे ओहो कृपाल नानक के स्वामी हर चरण है संग समावे खोजत खोजत प्रभ मिले हर करुणा धारे निर्गुण नीच अनाथ में नहीं दोख बिचारे नहीं दोख बिचारे पूर्ण सुख सारे पावन बिरद बखानिया भगत वशल सुन अंचलो गहया कट कट पूर समानिया सुख सागरो पाया सहज सुपाया जन्म मरण दुख हारे कर गह लीने नानक दास अपने।

बिन पानी चलत कत टेडे टेडे टेडे हस्त चरम बिस्टा के मुंडे दुर्गंध ही के बेटे रहाओ राम ना जप हो कमन भ्रम भूले तुम ते काल ना दूरे अनक जतन कर एहो तन राख हो रह अवस्था पूरे आपन किया कछु ना होवे क्या को करे प्राणी जा तिस भावै सतगुर भेटै एको नाम बखानी बलुआ के करुआ मह बसते फुलवत देह।

खान भाऊ भगत सिंह काज न कछु है मेरो काम दीवान राम बसारियो है अभमान कनक कामनी महासुंदरी पेख पेख सच मान रहाओ लालच झूठ बिकार महामद एह बिद औद बिहान कह कबीर अंत की बेर आई लागो काल निदान चार दिन अपनी नौबत चले बजाए इतनक खटिया गठिया मतिया संग ना कछ लह जाए रहाओ गहरी बैठी मेहरी रोवे द्वारे लो संग माए मरहट लग सब लोग कटंब मिल हंस अकेला जाए वै सुत वै बित वै पुर पाटन बहुर ना देखे आए कहत कबीर राम की ना सिमर हो जन्म अकारथ जाए राग के दारा बाणी रविदास जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद खट कर्म कुल संयुगत है हर भगत हृदय नाही चरनार बिंद ना कथा भावे सुपच तुल।

क्या कहिए किस कही ना जाए, जो किस अहै सब तेरी रजाए रहाओ, जो किस करना सो तेरे पास,

मन समझै है गुण गाई, गुर ते मन मारिया शब्द विचारिया, ते विरले संसारा, नानक साहिब भरपुर लीना, सात शब्द निस्तारा।

रूप रंग रहस नहीं साचा, क्यों छोड़े जम जालू प्राणी, हर जप जन्म गयो साच, शब्द बिन कभू ना छूटस, बिरथा जन्म भयो रहाओ, तन मह काम क्रोध हौ ममता, कठन पीर अत भारी, गुरमुख राम जपो रस रसना, इन बिद तर तू तारी, बहरे करन अकल पई होशी, शब्द सहज नहीं बूझिया, जन्म पदार्थ मन मुख हारिया, बिन गुर अंध ना सूझिया, रह उदास आस नरासा, सहज ध्यान बैरागी, प्रणवत नानक गुरमुख छूटस, राम नाम लिव लागी, भैरो महला पहला, पूंदी चाल चरण कर खिसरे, तुचा देह कुमलानी, नेत्री धुंद करन पए बहरे, मनमुख नाम ना

जेहवा रंग नहीं हर राती, जब बोले तब फीके। संत जना की निंदा व्यापस, पशु भये कदे होहे ना नीके। अमृत का रस विरली पाया, सतगुर मेल मलाए। जब लग शब्द भेद नहीं आया, तब लग काल संताए। अन को दर कर कबहू ना जानस, एक को दर सचियारा। गुर प्रसाद परम पद पाया, नानक कह विचारा। भैरू महला पहला, सगली रैन सोवत गल पाही। दिन सजंजाल गुआया, खिन पल घड़ी नहीं प्रभ जानिया। जिन एहो जगते उपाया, मन रे क्यों छूटस दुख भारी। क्या ले आवस क्या ले जावस, राम जपो गुणकारी। रहाओ ऊंदो कवल मनमुख मत होशी, मन अंधे सिर धंधा। काल बकाल सदा सिर तेरे, बिन नावे गल फंदा। डगरी चाल नेत्र फुन अंधले, शब्द सुरत नहीं पाई। शास्त्र वेद त्रै गुण है माया, अंध लो तंद कमाई। खोयो मूल लाभ कह पावस, दुर्मत ज्ञान विहूणे। शब्द बीचार राम रस चाखिया, नानक साच पतीने। भैरू महला पहला, गुर कै संग रह दिन राती। राम रसल रंग राता, अवर ना जानस शब्द पछाणस। अंतर जान पछाता, सो जाने ऐसा मैं मन भावै। आप मार

साच रक्ते सच अमृत जिहवा मिथ्या मैल न राई निर्मल नाम अमृत रस चाखिया शब्द रते पत पाई गुणी गुणी मिल लाहा पावस गुरु।

पहला जगन होम पुन तप पूजा दे दुखी नित दुख सह राम नाम बिन मुक्त ना पावस मुक्त नाम गुरमुख लह राम नाम बिन बिरथे जग जन्मा बिख खावे बिख बोली बोले बिन नावे निःफल मर भ्रम ना रहाउ पुस्तक पाठ व्याकरण वखाणे संध्या कर्म तिकाल करे बिन गुर शब्द मुक्त कहां प्राणी राम नाम बिन उर्ज मरे दंडक मंडल सिखा सूत धोती तीर्थ गमन अत भ्रमण करे राम नाम बिन शांत ना आवे जप हर हर नाम सो पार परे जटा मुकट तन भस्म लगाई वस्त्र छोड़ तन नग्न भया राम नाम बिन तृप्त न आवे किरत कै बांधे भीख भया जेते जी जंत जल थल महियल जतर कतर तू सर्ब जिया गुर प्रसाद राख ले जन को हर रस नानक झोल पिया राग भैरो महला तीजा चौप दे घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जात का गर्भ ना करियो कोई ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण होई जात का गर्भ ना कर मूर्ख गवारा इस गर्भ पे चल है बहुत बेकारा रहाउ चारे वर्ण आखे सब कोई ब्रह्म बिंद ते सब उपत होई माटी एक सगल संसारा बहु विद भांडे घड़े कुम्हारा पंच तत् मिल देही का अकारा घट वध को करे बीचारा कहत नानक एहो जियो कर्म बंद होई बिन सतगुर भेटे मुक्त ना होई भैरो महला तीजा जोगी गृही पंडित भेख धारी ए सूते अपने अहंकारी माया मद माता रहया सोए जागत रहे ना मूसे कोई रहाउ सो जागे जिस सतगुर मिले पंच दूत ओह वसगत करे सो जागे जो तत बीचार है आप मरे अवरा नह मारे सो जागे जो एको जाने परकिरत छोड़े तत पछाण चहो वरना विच जागे कोई जमे काले ते छूटे सोई कहत नानक जन जागे सोए ज्ञान अंजन जाकी नेत्री होए भैरो महला तीजा जाको राख है अपनी सरनाई साची लागे साचा फल पाई रे जन कह स्यो करो पुकारा हुक्मे हुआ हुक्मे वर्तारा रहाउ एहो आकार तेरा है तारा खिन मैं बिनसै करत ना लागे बारा कर प्रसाद एक खेल दिखाया गुर कृपा ते परम पद पाया।

जे मन की दुविधा मारे, दुविधा मार ब्रह्म विचारे, इस मन को कोई खोजो हो पाई, मन खोजत नाम नौ निध पाई, रहाओ मूल मोह कर करते जगते पाया, ममता लाए भरम भुलाया, इस मन ते सब पिंड पराणा, मन कै विचार हुक्म बुझ समाणा, कर्म होवै गुर कृपा करै, एहो मन जागै इस मन की दुविधा मरै, मन का सुभाव सदा बैरागी, सब मह वसै अतीत अनरागी।

तीजा कल युग में है राम नाम उरतार, बिन नावे माथे पावे शार। राम नाम दुलभ है भाई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाउ। राम नाम जन पाल है सोए, पूरे गुरते प्राप्त होए। हर का पाणा मन है से जन परवान, गुर कै शब्द नाम निशान। सो सेव हो जो कल रहे आतार, नानक गुरमुख नाम प्यार। पैरों महला तीजा कल युग में बहु कर्म कमाहे, ना रुत ना कर्म थाए पाहे। कल युग में राम नाम है सार, गुरमुख साचा लगे प्यार रहाउ। तन मन खोज करे मैं पाया, गुरमुख राम नाम चित लाया। ज्ञान अंजन सतगुर ते होए, राम नाम रव रहया त्यो लोए। कल युग में हर जियो एक, होर रुत ना काई। नानक गुरमुख हिरदय राम नाम लेहो जमाई। भैरों महला तीजा कर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद। दुबदा मनमुख रोग व्यापे, तृष्णा जलह अधकाई। मर मर जमह ठौर ना पावह, बिरथा जन्म गवाई। मेरे प्रीतम कर कृपा देहो बुझाई। हऊ मैं रोगी जगत अपाया, बिन शब्द रोग न जाई रहा। सिमरत शास्त्र पढ़ मुन केते, बिन शब्द सुरत ना पाई।

हर का नाम निदानो पाया सुख वसिया मन आई। चौथी पदवी गुरमुख वरत है तिन निज कर वास्ता पाया। पूरे सतगुर कृपा कीनी विचो आप गवाया। एक सकी सिरकार एक जिन ब्रह्मा विष्ण रुद्र उपाया। नानक निहचल साचा एको ना ओह मरे ना जाया। पैरू महला तीजा मनमुख दुबदा सदा है रोगी रोगी सगल संसारा। गुरमुख बूझै है रोग गवाव है गुर शब्दी विचारा। हर जियो सत संगत मेलाए नानक तिसनो दे वडियाई। जो राम नाम चित लाए रहाउ ममता काल सब रोग व्यापे। तिन जम की है सिरकारा गुरमुख प्राणी जम नेड़ ना आवै। जिन हर राखिया उर तारा जिन हर का नाम न गुरमुख जाता। से जग मह काहे आया गुर की सेवा कदे ना कीनी बिरथा जन्म गवाया। नानक से पूरे वडभागी सतगुर सेवा लाए। जो इच्छ सोई फल पावे गुरबाणी सुख पाए। भैरो महला तीजा दुख विच जमे दुख मरे दुख विच कार कमाए। गर्भ जोनी विच कदे ना निकलै बिस्टा माही समाए। त्रिग त्रिग मन मुख जन्म गवाया पूरे गुर की सेवना कीनी हर का नाम ना पाया रहाउ। गुर का शब्द सब रोग गवाए जिसनो हर जियो लाए। नामे नाम मिले वडियाई जिसनो मन वसाए। सतगुर भेटे ता फल पाए सच करनी सुख सार। से जन निर्मल जो हर लागे हर नामे तरह प्यार। तिनकी रेण मिले ता मस्तक लाई जिन सतगुर पूरा त्याया। नानक तिनकी रेण पूरे भाग पाई जिन्नी राम नाम चित लाया। भैरो महला तीजा शब्द बीचारे सो जन साचा। जिनकै हिरदय साचा सोई साची भगत करै दिन राती ता तन दुख ना होई। भगत भगत कह सब कोई बिन सतगुर सेवे भगत ना पाई। पूरे भाग मिले प्रभ सोई रहाओ। मनमुख मूल गवाव है लाभ मांग है लाहा लाभ किडू होई। जम काल सदा है सिर ऊपर दूजे पाए पत खोई। बहले भेख पवह दिन राती हमें रोग ना जाई। पढ़ पढ़ लूजे है बाद बखान है मिल माया सुरत गवाई। सतगुर सेव है परम गत पाव है नाम मिले वडियाई। नानक नाम जिन्ना मन वसिया दर साचे पत पाई। भैरो महला तीजा मनमुख आसा नहीं उतरे दूजे भाए खुआई। उदर नै सान ना परिये कबहू तृष्णा अग्न पचाई। सदा आनंद राम रस राती हिरदय नाम दुबदा मन भागी। हर हर अमृत पी त्रिपताते रहाउ। आपे पार ब्रह्म सृष्ट जिन साजी सिर सिर तंदै लाई।

अनुजात हौ तुद सलाही तू मेरा हर प्रभ बाप रहाउ जह जह देखा तह हर प्रभ सोई सब तेरे वस दूजा अवर ना कोई जिस को तुम हर राखिया पावे तिस कह नेड़े कोई ना जावे तू जल थल महियल सब तै भरपूर जन नानक हर जप हाजरा हजूर भैरू महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का संत हर की हर मूरत जिस हिरदय हर नाम मरार मस्तक भाग होवै जिस लिखिया सो गुरमत हिरदय हर नाम सुमार मद सूदन जपिया उरतार देही नगर तस्कर पंच धातु गुर शब्दी हर काढे मार रहाउ जिनका हर सेती मन मानिया तिन कारज हर आप सवार तिन चूकी मोहताजी लोकन की हर अंगीकार किया करतार मता मसूरत ता किश कीजै जे किश होवै हर बाहर जो किश करे सोई भल होसी हर त्यावो हो अन दिन नाम मरार हर जो किश करे सो आपे आपे ओहो पूछ ना किसै करे बीचार नानक सो प्रभ सदा त्याई जिन मेलिया सतगुर कृपा धार भैरू महला चौथा ते साधु हर मेलो स्वामी जिन जपया गत होए हमारी तिनका दर्श देख मन बिगसै खिन खिन तिनको हौ बलिहारी हर हिरदय जप नाम मरारी कृपा कृपा कर जगत पित स्वामी हम दासन दास की जय पनेहारी रहाउ तिन माते उत्तम तिन पाते उत्तम जिन हिरदय वसिया पनवारी तिनकी सेवा लाए हर स्वामी तिन सिमरत गत होए हमारी जिन ऐसा सतगुर साधना पाया ते हर दरगाह काढे मारी ते नर निंदक सोभ ना पावह तिन नक काटे सिरजनहारी हर आप बुलावै आपे बोलै हर आप निरंजन निरंकार निराहारी हर जिस तू मिलह सो तुद मिलसी जन नानक क्या एह जंत विचारी भैरू महला चौथा सत संगत साई हर तेरी जित हर कीरत हर सुनने जिन हर नाम सुनिया मन भीना तिन हम श्रेवह नित चरने जग जीवन हर त्याए तरने अनेक असंख नाम हर तेरे ना जाई जेवायत गनने रहाउ गुरसिक हर बोलो हर गावहु ले गुरमत हर जपने जो उपदेश सुने गुर केरा सो जन पावे हर सुख कने धन सो वंश धन सो पिता धन सो माता जिन जन जने जिन सास ग्रास त्याया मेरा हर हर से साची दरगाह हर जन बने हर हर अगम नाम हर तेरे विच भगता हर धरनी नानक जन पाया मत गुरमत जप हर हर पार पवनी।

मद भाग हर प्रेम रसायन प्रभु हमारे शास्त्र सोण सुख सहज आनंद ग्रह पौन रहाव रसना नाम करण सुन जीवे प्रभ सिमर सिमर अमर थिर थीवे जन्म जन्म के दुख निवारी अनहद शब्द बजे दरबारी कर कृपा प्रभ लिए मलाई नानक प्रभ शरणागत आई पैरों महला पंजवा कोट मनोरथ आवह हाथ जम मार्ग कै संगी पाक गंगा जल गुरु गोविंद नाम जो सिमरै तिस की गत होवै पीव

सोभा पावे प्रभ कै द्वार, सर्व कल्याण चरण प्रभ सेवा, धूर बांछ सब सुर नर देवा, नानक पाया नाम निदान, हर जप जप उदरिया सगल जहान, भैरो महला पंजवां, अपने दास कहो कंठ लगावे, निंदक कहो अगन मह पावे, पापी तेरा खे नारायण, पापी की गत कत हूं नाही, पापी पचिया आप कमाए रहाऊ, दास राम जियो लागी प्रीत, निंदक की होई विपरीत, पार ब्रह्म अपना बिरद प्रगटाया, दुखी अपना कीता पाया, आए न जाई रहया समाई, नानक दास हर की सरनाई, राग भैरो महला पंजवां, चौपदी घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, श्री तर मोहन सगल उपावन, निरंकार सुखदाता, ऐसा प्रभ छोड़ करह अन सेवा, कमन बिख्या रस माता, रे मन मेरे तू गोविंद भाज, अवर उपाव सगल मैं देखे, जो चित भी है चित बिगरस काज रहाउ, ठाकुर छोड़ दासी को सिमरह, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करह।

अहम बुद्ध दुर्मत है मैली बिन गुर पव जल फेरा होम जग जप तप सब संयम तट तीर्थ नहीं पाया मिटिया आप पई सरनाई गुरमुख नानक जगत तराया पहरो महला पंजवा बन मह पेखियो तृण मह पेखियो ग्रह पेखियो उदासाई दंड धार जट धारै पेखियो।

पीखियो जात जंगम का पड़ाई तपी तपी सर मुन मह पीखियो नाट नाटक निरताई चहो मह पीखियो खट मह पीखियो दास अस्ति सिमरताई सब मिल एको एक वखान है तौ किस्ते कहो दुराई अगह अगह बेअंत स्वामी नह कीम कीम कीमाई जन नानक तिन कह बल बल जाई जेह घट प्रगति आई भैरु महला पंजवा निकट बुझै सो बुरा क्यों करै बिक संचै नित डरता फिरै है निकते अर भेद ना पाया बिन सतगुर सब मोही माया नेड़ै नेड़ै सब को कह गुरमुख भेद बिरला को लह रहाव निकट न देखै पर ग्रह जाई दर्भ हिरै मिथ्या कर खाई पैठ गौरी हर संग न जानिया बाज गुरु है परम भुलानिया निकट न जानै बोलै कूड़ माया मोहि मूठा है मूड़ अंतर वस्तद संतर जाए बाज गुरु है परम भुलाई जिस मस्तक कर्म लिखिया लीला।

भैरू महला पंजवा जिस तू राख है तिस कौन मारे सब तुझ ही अंतर सगल संसार है कोट अपाव चितवा।

जिसे ऊपर नदर करे करतार, तिस जन के सब काज सुवार, तिसका राखा एको सोए, जन नानक अपड़ ना साके कोई। पहरों महला पंजवा, तव कड़िया जे हुए बाहर, तव कड़िया जे विसरे नरहर, तव कड़िया जे दूजा भाय, क्या कड़िया जा रहया समाय, माया मोहे कड़े कड़ पचिया, बिन नामे प्रम प्रम प्रम खपिया रहाओ। तौ कड़िया जे दूजा करता, तौ कड़िया जे अन्याय को मरता, तौ कड़िया जे किस जाने नाही, क्या कड़िया जा भरपूर समाही, तौ कड़िया जे किस हुए तिंगाने, तौ कड़िया जे फूल रिंजाने, गुर कहया जो हुए सब प्रभते, तब काड़ा छोड़ अचिंत हम सोते, प्रभ तू है ठाकुर सबको तेरा, ज्यो पावे त्यो करह निबेरा, दुतिया नास्त एक रहया समाए, राखो पैज नानक सरनाई। पहरू महला पंजवा, बिन बाजे कैसो निर्तकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी, जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरते सब काज, नाम बिना कहो को तरिया, बिन सतगुर कैसे पार परिया रहाओ, बिन जिहवा कहां को बकता।

कोई पंडत बिन अमरे कैसे राज मंडत बिन बूझे कहा मन ठहराना नाम बिना सब जग बोराना बिन बैराग कहा बैरागी बिन हौ त्याग कहा को त्यागी बिन बस पंच कहा मन चूरे नाम बिना सद सद ही चूरे बिन गुर दीख्या कैसे ज्ञान बिन पेखे कहो कैसो ध्यान।

दृष्ट रोग पच मोए पतंगा, नाद रोग खप गए कुरंगा। जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुर जोगी। रहाउ जिहवा रोग मीन ग्रसियानु।

ते अंते अपूछे राज हमारा सद ही निश्चल माल हमारा अखूट अबेचल शोभा मेरी सब जोगे अंतर बाज हमारी थान थनंतर कीरत हमारी कर कर होई भगत हमारी सबनी लोई पिता हमारे प्रगटे माज पिता पूत रल कीनी सांझ कहो नानक जो पिता पतीने पिता पूत एक रंग लीने भैरो महला पंजवा निर्वैर पुरख सतगुर प्रभदाते हम अपराधी तुम बख्शाते जिस पापी को मिले ना टोई शरण आवे ता निर्मल होई सुख पाया सतगुरु मनाए सब फल पाए गुरु त्याए रहाओ पार ब्रह्म सतगुर आदेश मन तन तेरा सब तेरा देश चूका पड़दा ता नदनी आया खसम तू है सबना के राया तिस भाणा सूके काष्ट हरिया तिस भाणा ता थल सिर सरिया तिस भाणा ता सब फल पाए चिंत गई लग सतगुर पाए हराम खोर निर्गुण कौ तूठा मन तन सीतल मन अमृत बूठा पार ब्रह्म गुर भये दयाला नानक दास देख भये निहाला भैरो महला पंजवा सतगुर मेरा बेमोहताज सतगुर मेरे सच्चा साज सतगुर मेरा सब सका दाता सतगुर मेरा पुरख बधाता गुर जैसा नाही को देव जिस मस्तक भाग सो लागा सेव रहाउ सतगुर मेरा सर्ब प्रतपाल सतगुर मेरा मार जीवाल सतगुर मेरे की वडियाई प्रगट पई है सबनी थाई सतगुर मेरा तान नितान सतगुर मेरा कर दीवान सतगुर कह हो सद बल जाया प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया जिन गुर सेवया तिस पौ ना व्यापै जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै नानक सोधे सिमरत बेद पार ब्रह्म गुर नाही भेद भैरो महला पंजवा नाम लैत मन प्रगट भया नाम लैत पाप तन ते गया नाम लैत सगल पुरबाया नाम लैत अठसठ मजनाया तीर्थ हमरा हर को नाम गुर अपदेसिया तत् ज्ञान रहाव नाम लैत दुख दूर पराना नाम लैत अत मूड सो ज्ञाना नाम लैत

मोहे दुहागने आप शिंगारी रूप रंग दे नाम सवारी मिटयो दुख अर सगल संताप गुर होए मेरे माई बाप सखी सहेरी मेरा ग्रस्त आनंद कर कृपा भेटे मोहे कंत रहाओ तपत बुझी पूर्ण सब आसा मिटे अंधेर भये परगासा अनहद शब्द अचरज बिस्माद।

बहुत निदान, जा को सतगुर दियो नाम, जा को भेट्यो ठाकुर अपना, मन तन शीतल हर हर जपना, कहो नानक जो जा

आवे बेसवा भजत किस नह शरमावे सारो दिन समझूरी करे हर सिमरन की वेला बजर सिर पर माया लग भूलो संसार आप भलाया भलावन हार राज रहया बिरथा व्यवहार रहाउ देखत माया रंग बिहाए गड़बड़ करे कौडी रंग लाए अंध व्यवहार बंद मन तावे करने हार न जी मह आवे करत करत इव ही दुख पाया पूर्ण होत न कारज माया काम क्रोध लोभ मन लीना तड़प मुआ ज्यो जल बिन मीना जिसके राखे होए हर आप हर हर नाम सदा जप जाप साध संग हर के गुण गाया नानक सतगुर पूरा पाया भैरो महला पंजवा अपनी दया करे सो पाए हर का नाम मन वसाए सात शब्द हिरदे मन माहे जन्म जन्म के किल विख जाए राम नाम जी को आधार गुर प्रसाद जप हो नित पाई तार लए सागर संसार रहाउ जिनको लिखिया हर एहो निदान सीजन दरगाह पावह मान सुख सहज आनंद गुण गाओ आगे मिले न थावे थाओ जुगा जगंतर एहो तत सार हर सिमरन साचा विचार जिस लड़ लाए लए सो लागे जन्म जन्म का सोया जागे तेरे भगत भगतन का आप अपनी मैं माया पे जाप जी

रोम रोम रविया हर नाम, सतगुर पूरे कीनो दान, नाम रतन मेरे पंडार, अगम अमोला अपर अपार, रहाओ नाम हमारे निश्चल तनी, नाम की महिमा सब मह बनी, नाम हमारे पूरा सार, नाम हमारे बेपरवाह, नाम हमारे भोजन पाओ।

सुख होए कर कृपा जा को मिले सोए रहाओ जाके करतब लखे ना जाहे जाका परवासा सब घट माए प्रगट भया साधु कै संग भगत अराध अन दिन रंग देंदे तोट नहीं भंडार जिन मह थाप्यो।

की आसा, दुख सुख हमरा तिस ही पासा, राख लीनो सब जन का पड़दा, नानक तिसकी उस्तत करदा, पैरू महला पंजवा, रोवन हारी रोज बनाया, बलन बर्तन को संबंध चेते आया, बूझ बैराग करे जे कोई, जन्म मरण फिर सोग ना होए, बिख्या का सब तंद पसार, विरले कीनो नाम आधार रहाउ, त्रिविध माया रही व्याप, जो लपटानो तिस दुख संताप, सुख नाही बिन नाम त्याए, नाम निदान बड़ भागी पाए, स्वांगी स्यों जो मन रिझावै।

मन तन नानक हर गुण गाओ साध संग जिस देवै नाओ भैरू महला पंजवा निर्धन को तुम देव हो तना अनक पाप जाहे निर्मल मना।

तुम थान बैठावो, दास अपने को भगति लावो, नमाने को प्रभ दे तो मान, मूड मुग्ध होए चतर सुगयान, सगल पयान का पो नसै, जाने अपने कै हर मन बसै।

नानक साधु संग समाए पैरों महला पंजवा संत मंडल मह हर मन वसै संत मंडल मह दुर्त सब नसै संत

संत मंडल में है जन्म मरण रहे, संत मंडल में है जम किशु ना कहे, संत संग हुए निर्मल बाणी, संत मंडल में है नाम वखाणी, संत मंडल का नेह चले आसन, संत मंडल में है पाप बनासन, संत मंडल में है निर्मल कथा, संत संग हूं मैं दुख नसा, संत मंडल का नहीं बनास, संत मंडल में है हर गुण तास, संत मंडल ठाकुर विश्राम, नानक ओत पोत भगवान, भैरव महला पंजवा, रोग कवन जा राखे आप, तिस जन होए ना दुख संताप, जिस ऊपर प्रभु कृपा करे, तिस ऊपर ते काल पर हरे, सदा सखाई हर हर नाम, जिस चीत आवे तिस सदा सुख होवे, निकट न आवे ता कह जाम रहाव, जब एहो ना सो तब किन्ह उपाया, कवन मूल ते क्या प्रगटाया, आप मार आप जीवाले, अपने भगत को सदा प्रतपाले, सब किस जान हो तिस कै हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, दुख भंजन ताका है नाऊ, सुख पावे है तिसके गुण गाओ, सुन स्वामी संतन अरदास, जियो प्राण धन तुमरे पास, इहो जग तेरा सब तुझे त्याए।

उतर गई सब मन की चिंता, लोभ मोह सब कीनो दूर, परम वैष्णो प्रभ तेख हजूर, ऐसो त्यागी बिरला कोए, हर हर नाम जपै जन सोए रहाउ। अहम बुद्ध का छोड़िया संग, काम क्रोध का उतरिया रंग, नाम ते आए हर हर हरे, साध जना कै संग निस्तरे, बैरी मीत होए सम्मान, सर्व मह पूर्ण भगवान।

आप सोई भगत जपै नाम जाप मन परगास गुर के मत लई कहो नानक ताकी पूरी पई भैरू महला पंजवां सुख नाही बहुतै धन खाटे सुख नाही पेखे निरत नाटे सुख नाही बहु देश कमाए सर्व सुखा हर हर गुण गाए सुख सहज आनंद लहो साध संग पाइय वडभागी गुरमुख हर हर नाम कहो रहाउ बंधन मात पिता सुत बनता बंधन कर्म धर्म हो करता बंधन काटन हार मन वसै तौ सुख पावै निज कर बसै सब जाचक प्रभ देवन हार गुण निदान बेअंत अपार जिसनो कर्म करे प्रभ अपना हर हर नाम तिने जन जपना गुर अपने आगे अरदास कर कृपा पुरख गुणतास कहो नानक तुमरी सरनाई ज्यो पावै त्यो रखो गुसाई पैरो महला पंजवां गुर मिल त्यागियो दूजा पाओ गुरमुख जपियो हर का नाओ बिसरी चिंत नाम रंग लागा जन्म जन्म का सोया जागा कर कृपा अपनी सेवा लाए साधु संग सर्व सुख पाए रहाओ रोग दुख गुर शब्द निवारे नाम औखद मन भीतर सारे गुर भेटत मन भया आनंद सर्व निदान नाम भगवंत।

परवान सफल होई जप हर हर नाम कहो नानक प्रभ कृपा करी सास ग्रास जपो हर हरी।

वसह माने आई सिमर मना तू साचा सोए हलत पलत तुमरी गात हुए रहाव पुरख निरंजन सिरजनहार जी जंत देवे आहार कोट खते खिन बख्शन हार भगत पाए सदा निस्तार साचा तन साची वडियाई गुरपूरे ते निहचल मत पाई कर किरपा जिस राखन हारा ताका सगल मिटै अंधियारा पार ब्रह्म से ओला।

जान रहे हर त्याय, भगत पाए प्रभ की लिव लाए। बिनसे काम क्रोध अहंकार, टूटे माया मोह प्यार। प्रभ की टेक रह दिन रात, पार ब्रह्म करे जिस दात। कर्ण कराम नहार स्वामी, सगल कटां के अंतर जामी। कर

बंधन का मूल, हर के भजन बिन बिरथा पूल, बिन खाए दूजे नहीं भूख, रोग जाए ता उतरह दुख, काम क्रोध लोभ मोह व्यापिया, जिन प्रभ कीना सो प्रभ नहीं जापिया, तन तन साध तन हर नाओ, आठ पहर कीर्तन गुण गाओ, तन हर भगत तन करने हार, शरण नानक प्रभ पुरख अपार, भैरो महला पंजवा, गुरसो प्रसन्न होए पौ गए, नाम निरंजन मन मह लई, दीन दयाल सदा किरपाल, बिनस गए सगले जंजाल, सुख सहज आनंद घने, साध संग मिटे भय भरमा, अमृत हर हर रसन भने रहाओ, चरण कमल स्यो लागो हेत, खिन मह बिन स्यो महा परेत, आठ पहर हर हर

कर्म कारण समरथ गुर मेरा, जी प्राण सुख दाता नेरा, पै भंजन अवनासी राय, दर्शन देखे है सब दुख जाए, जत कत पेखो तेरी सरना, बल बल जाई सतगुर।

योग सब किछ तेरा तू करने हार पार ब्रह्म बुरे अगमे अपार निर्मल सोभा आचर्य बाणी पार ब्रह्म पूर्ण मन पाणी जल थल महियल रविया सोए नानक सब किछ प्रभ ते होए पैरो महला पंजवा मन तन राता राम रंग चरनी सर्ब मनोरथ पूरन करनी आठ पहर गावत भगवंत।

सूजन आया प्रभ की सरना, आप पवित्र पावन सब कीने, राम रसायन रसना कीने। भैरो महला पंजवा, नाम लैत किश बिघन ना लागै, नाम सुनत जम दूर हो भागै, नाम लैत सब दुख नास, नाम जपत हर चरण निवास, निर्विघ्न भगत भज हर हर नाउ, रसक रसक हर के गुण गाओ रहाओ।

आपे घट घट जाल है भेद ज्योत स्वरूप जाति सब वथ करण कारण पूर्ण समरथ।

जन धन भैरु महला पंजवा भगता मन आनंद गोबिंद अस्थित भय बिनसी सब चिंद पै ब्रह्म बिनस गए खिन माहे पार ब्रह्म वस्या मन आई राम राम संत सदा सहाय।

नित सुख प्रतपाल, अपने दास कहो दे राखै हाथ, निमख न छोड़ै सद ही साथ, हर सा प्रीतम अवर न कोए, सार संभाले साचा सोए, मात पिता सुत बंद नारायण, आद जुगाद भगत गुण गायन, तिसकी धार प्रभ का मन जोर, एक बिना दूजा नहीं होर, नानक कै मन इहो परखारथ, प्रभु हमारा सारे।

कृहो गुण की, दास के हुए पूर्ण काम रहाव। हर के लोक सदा गुण गावे, तिनको मिलिया पूर्ण ताम। जन का दर्श बांचे दिन राती,

नहीं पंग पैरों महला पंजवा निंदक को फिटके संसार निंदक का झूठा व्यवहार निंदक का मैला आचार दास अपने को राखनहार निंदक मुआ निंदक कै नाल पार ब्रह्म परमेश्वर जन राखे निंदक कै सिर कड़के ओ काल रहाओ निंदक का कहया कोई ना माने निंदक झूठ बोल पछताने हाथ पछोर है सिर धरन लगाहे निंदक को दई छोड़े नाही हर का दास किस बुरा ना मांगे।

डर सगल चुकाया, सब ते वड समरथ गुरुदेव, सब सुख पाई तिसकी सेव, रहाउ जाका किया सब किछ होए, तिसका

सब नगरी मह भगत दिरड़ाई, दुष्ट सभा का किसना वसाई, संडै मरकै की पुकार, सभी दैत रहे चख मार, भगत जना की पत राखै सोई, कीते कै कहे क्या होई, किरत संजोगी दैत राज चलाया, हर ना बूझै तिन आप पुलाया, पुत्र प्रहलाद स्यो वाद रचाया, अंधा ना बूझै काल नेड़ै आया, प्रहलाद कोठे विच राखिया, बार दिया ताला, निरपो बालक मूल ना डरई, मेरा

आई कहां तुम्हारा जगदी सुख साई जग जीवन दाता अंत सखाई जह देखा तरह आसमाई थम अपाड़ हर आप दिखाया अहंकारी दैत मार पचाया भगता मन आनंद बजी वधाई अपने सेवक कौ दे वडियाई।

माता नरसिंह का रूप निवार। लक्ष्मी भौ करे ना साके जाए, प्रहलाद जन चरणी लागा आए। सतगुर नाम निदान बिरडाया, राज माल झूठी सब माया। लोभी नर रहे लपटाए।

गुर सेवा ते अमृत फल पाया, हम मैं तृष्ण बुझाई, हर का नाम हृदय मन बसिया, मनसा मन है समाई, हर जियो कृपा करो मेरे प्यारे, अन दिन हर गुण दीन जन मांगे, गुर कै शब्द उधारे रहाओ, संत जना कहो जम जोहे ना साके, रत्ती

अवतार कोट ब्रह्मांड जाके धर्मशाल कोट महेश उपाय समाए कोट ब्रह्मे जग साजन लाए ऐसो धनी गोविंद।

सिह जाए, कोट अपार जना तेरा अंग, कोट भगत बस्त हर संग, कोट छत्रपत करत नमस्कार, कोट इंद्र ठाडे है द्वार, कोट बैकुंठ जाकी दृष्टि माहे, कोट नाम जाकी कीमत नाही, कोट पूरियत है जा कै नाद, कोट अखारे चलत बिस्माद, कोट सकत सिव

करते पूजा, कोट विस्थारन अवरना दूजा, कोट महमा जाकी निर्मल हंस, कोट उस्तत जाकी करत ब्रह्मंस, कोट परलो उपत निमख माहे, कोट गुणा तेरे गणे ना जाहे, कोट ज्ञानी कथह ज्ञान, कोट त्यानी तरत त्यान, कोट तपीसर तप ही करते, कोट मनीसर मोन मह रहते, अवगत नाथ अगोचर स्वामी, पूर रहया काटे अंतर जा।

हर साची बहुर बहुर किस संग मन राची रहाओ। अचिंत हमारे पूजन पाओ, अचिंत हमारे ली।

आवत संग न जात संगाती, कहां पयो दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का पया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कह कबीर।

कह कबीर हो भया दीवाना, मुस मुस मनुआ सहज समाना, गंगा कै संग सलता बिगरी, सो सलता गंगा हुए निबरी, बिगरियो कबीरा राम दोहाई, साच पयो अल कत है ना जाई, रहाउ चंदन कै संग तरवर बिगरियो, सो तरवर चंदन हुए निबरियो, पारस कै संग तांबा बिगरियो, सो तांबा कंचन हुए निबरियो।

जाना, ज्यों हो बौरा तौ राम तूरा, लोग मर्म कह जाने मोरा रहाउ, तोरो ना पाती पूजो ना देवा, राम भगत बिन

जो निरतन सर तन कह जाए, आगे बैठा पीठ फुराए। जो सर धन निर्धन कह जाए, दिया आदर लिया बुलाए। निर्धन सर तन दो

सो देही पज हर की सेव पजो गोविंद भूल मत जाहो मानस जन्म का एही लाहो रहाओ जब लग जरा रोग नहीं आया जब लग काल ग्रसी नहीं काया जब लग बिकल भई नहीं बानी भज लेह रे मन सारिंग पानी अब ना भजस भजस कब भाई

तरे आने गगन मंडल मह लश्कर करे सो सुरतान सत्तर सिर तरे जोगी गोरख गोरख करे हिंदू राम नाम उच्चरे मुसलमान का एक खुदाई कबीर का स्वामी रहे आसमाई। महला पंजवा जो पाथर को कहते देव ताकि बिरता हो सेव जो पाथर की पाई पाई तिसकी काल अजाई जाई ठाकुर हमरा।

किस दे, फूकट कर्म निःफल है सेव। जे मृतक को चंदन चढ़ावे उसते कहो कवन फल पावे। जे मृतक को बिस्टा माही रुलाई ता मृतक का क्या काट जाई। कहत कबीर हो कहो पकार समझ देख साकत गावार। दूजे भाए बहुत कर गाले राम भगत है सदा सुखाले। जल मह मीन माया के बेदे दीपक पतंग माया के छेदे। काम माया कुंचर को व्यापे भुयंगम प्रिंग माया मह खापे।

राति साकर माखी अधिक संतापे तुरे उष्ट माया मह पीला सिद्ध चौरासी ही माया मह खेला शे जति माया के बंदा नवे नाथ सूरज अरचंदा तपे रखी सर माया मह सूता माया मह काल अर पंच दूता स्वान स्याल माया मह राता बंतर चीते अर सिंगाता मां जार गाडर अर लूंभरा बिरख मूल माया मह परा माया अंतर पीने देव सागर इंद्रा।

मेरी मिट जाई, तब प्रब काज सुवार है आई। ऐसा ज्ञान विचार मना, हर की ना सिमर हो दुख भंजना रहाऊ। जब लग सिंह रह बन माही,

हारू तेरे गुर प्रसादी पार उतरे दास कबीर कह समझाए केवल राम रहो लिव लाए सतर साई सलार है जाकी सवा लाख पैकंबर ताकी सेख जो कही है कोट अठासी छप्पन कोट जाके खेल खासी मो गरीब की को गुजरावे मजलस दूर महल को पावे रहाउ तेतीस करोड़ी है खेल खाना चौरासी लख फिरे दीवाना बाबा आदम को किस नदर दिखाई।

बंका पाई, दोवर कोट अर तेवर खाई, रहाउ पांच पचीस मोह मद मत्सर, आडी पर बल माया, जन गरीब को जोर ना पहुंचे, कहां करो रग राया, काम कवारी दुख सुख दरवानी, पाप पुन दरवाजा, क्रोध प्रधान महाबड़ दुंदर, तह मन मावासी राजा, स्वाद सनाहा टोप ममता को, कबुद्ध कमान चढ़ाई, तिसना तीर रहे काट पीतर, यों गाड़ लियो ना जाई, प्रेम पलीता सुरत हवाई, गोला ज्ञान चलाया, ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एक है चोट सजाया, सत संतोख ले लरने लागा, तोरे दुए दरवाजा, साध संगत अर गुर की कृपा ते, पकरियो गढ़ को राजा, भगवत पीर सकत सिमरन की, कटी काल पै फासी, दास कमीर चढ़ियो गढ़ ऊपर, राज लियो अबनासी, गंगा गुसाइन गहर गंभीर, जंजीर बांध

अनहद शब्द होत चुनकार जिह पौड़े प्रभ श्री गोपाल खंडल मंडल मंडल मंडा त्रया स्थान तीन त्रया खंडा अगम अगोचर रहया अभ्यंत पार ना पावे को धरनी तर मंत कदली पोहप धूप परगास रस पंकज महलियो निवास द्वादस दल अब अंतर मंत जह पौड़े श्री कमला कंत अर्ध उर्ध।

मन अस फिर करै कह कबीर सो प्राणी तरै कोट सूर जाकै परगास कोट महादेव अर कबलास दुर्गा कोट जाकै मर्दन करै ब्रह्मा कोट बेद उच्चरै।

फिर बासक कोट सेज बिस्थर है, समुंद कोट जाके पानी हार, रमावल कोट अथार है पार, कोट कमेर पर है पंडार, कोटक लक्ष्मी करे श्रृंगार, कोटक पाप पुन बहो हिर, इंद्र कोट जाके सेवा करह, छप्पन कोट जाके प्रतिहार, नगरी नगरी खेत अपार।

पर हरि ताके निकट बसे नर हरि जो ना पजंते नारायणा तिनका मैं ना करूं दर्शना रहाउ जिनके भीतर है अंतरा जैसे पास तैसे हुए नरा प्रणवत नाम देव ना कह बिना ना सो है बत्तीस लखना दूध कटोरे गड़वे पानी कपल गाए नामे दोहे आनी दूध पियो गोबिंदे राय दूध पियो मेरो मन पति आए नाही ता घर को बाप रसाए रहाओ सोइन कटोरी अमृत भरी लै नामे हर आगे तरी एक भगत मेरे हृदय बसे नामे देख नारायण हसे दूध पियाए भगत घर गया नामे हर का दर्शन पया मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ताको करो श्रृंगार भले निंदो भले निंदो भले निंदो लोग तन मन राम प्यारे जोग रहाओ बार।

भगत जना को देहरा फिरे, भैरों नाम देव जियो कर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद जैसे।

हम ही पाचहारी राम कह करताल बजावे चटिया सब बिगारी राम नामा जप भो करे हृदय हर जी को सिमरन धरे रहाव बसदा बस कीनी सब राजी बिनती करे पटराणी भूत प्रहलाद कहया नहीं माने तिन तो औरे ठानी दुष्ट सभा मिल मंत्र उपाया कर सह औध कनेरी गिर तर जल ज्वाला पै राखियु राजा राम माया फेरी काड खड़ग काल पै कूपियो मोहि बताओ जो तुहे राखे पीत पितांबर त्रे पवन धनी थंब माहे हर पाख हर नाखश जिन नखह बिदारे हो सुर नर किए सनाथा कह नाम देहु हम नर हर त्याव है राम अपै

ऐसी क्यों हुए, बिस्मिल किया न जीवै कोई, मेरा किया कछु न होए, कर है राम हुए है सोए, बादशाह चढ़ो अहंकार, गज हस्ती दीनो चमकार, रुदन करे नामे की माए, छोड़ राम की ना पजै खुदाए, ना हो तेरा पूंगड़ा, ना तू मेरी माए, पिंड पड़े तो हर गुण गाए।

गंग जमन जो उल्टी बह तो नामा हर करता रह। सात घड़ी जब बीती सुनी अजहो ना आयो त्रे पवन तनी। पाखन तन बाज बुझाएला गरुड़ चढ़े गोविंद आएला। अपने भगत पर की प्रतपाल गरुड़ चढ़े आए गोपाल। कह ता धरन अकोडी करूं कह ता लेकर ऊपर धरूं।

रहे जब मटकी भरी, ले बादशाह के आगे तरी। बादशाह महल में जाई, औकट की घट लागी आई। काजी मुल्ला बिनती फुरमाए, बख्शी हिंदू मैं तेरी गाय। नामा कह सुनो बादशाह, एहो किस पतिया।

कोई, पारस परसै दुबदा ना हुई रहाउ। सो मुन मन की दुबदा खाई, बिन द्वारे त्रै लोक सुमाई। मन का सुभाव सब कोई करे, करता हुई सो अन पै रह। फल कारण फूली बन राई, फल लागा तब फूल बुलाई। ज्ञान कारण कर्म अभ्यास, ज्ञान भया तह कर्म है नास। कृत कारण दद मतै सयान, जीवत मुकत सदा निर्वाण। कह रविदास परम बैराग, हृदय राम की ना जपस अपाग। नाम देव आओ कलंदर केसवा, कर अबदाली भेसवा रहाउ। जिन आकाश कुलह सिर कीनी, कौसै सपत पयाला। चमर पोस का मंदर तेरा, एह बिद बने गोपाला। छप्पन कोट का

पार उत्तर जाहे एक खिना रहाउ सिमरत शास्त्र करह वख्यान नादी बेदी पढ़ह पुराण पाखंड दृष्ट मन कपट कमाहे तिन कै रमैया नेड़ नाहि जे को ऐसा संजमी होए क्रिया वसेख पूजा करे।

बिन साधना पाई है हर का संग, बिन गुर महल मलीन अंग, बिन हर नाम ना शुद्ध होवे, गुर शब्द सलाहे साच सोए। जाको तू राख है रखन हार, सतगुरु मलावह करह सार, बिक हों मैं ममता पर हराई, सब

सेव परम सुख पावह आत्म देव रहाउ कर्म होवे ता सेवा करे गुर प्रसादी जीवत मरे अन दिन साच नाम उचरे इन विद प्राणी दुत्तर तरे देखे अमृत करतार उपाई संसार बिरख को दोए फल लाई आपे करता करे कराई जो तिस पावे तिसे खुआई नानक जिसनो नदर करे अमृत नाम आपे दे विख्या की बासना मन है करे अपना पाणा आप करे बसंत महला तीजा राते साच हर नाम निहाला दया करो प्रभ दीन दयाला तिस बिन अवर नहीं मैं कोई ज्यों पावे त्यों राखे सोई।

बहुर पछताना बिसरत मलाए गुर सेवरांगी हर नाम दियो मस्तक वड भागे पौन पानी की एह दे शरीरा हौ मैं रोग कठन तन पीरा गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया कर कृपा गुर रोग गवाया चार नदियां अग्नि तन चारी तृष्णा जलत जले अहंकारी गुर राखे वड भागी तारे जन नानक उर हर अमृत धारी।

मन मुख मोए नाही हर मन माही मर मर जमह पी मर जाहि से जन जीवे जिन हर मन माहि साच सुमल है साच सुमाहि रहाउ हर ना सेवह ते हर ते दूर दसंतर भवह सिर पावह धूर हर आपे जन लिए लाए

पाए, तौ जग जीवन वसै मन आए। भगत करे सद वेखै हजूर, मेरा प्रभ सद रहया भरपूर। इस भगती का कोई जाने पियो, सब मेरा प्रभ आत्म देव। आपे सतगुर मेल मलाए, जग जीवन स्यो आप चित लाए। मन तन हरिया सहज सुपाई, नानक नाम रहे लिव लाए। बसंत महला तीजा, भगत वचल हर वसै मन आए। गुर कृपा ते सहज सुपाए, भगत करे विचों आप खोए। तद ही साच मलावा होए, भगत सोह है सदा हर प्रभ द्वार। गुर कै हित साचै प्रेम प्यार, रहाउ भगत करे सो जन निर्मल होए। गुर शब्दी विचों

मन तन हरिया रव गुण गोविंद बिन नावे सूका संसार अग्न तृष्णा जल वारो वार सोई करे जे हर जियो पावे

मन निर्मल निर्मल सच सोए जिन ज्ञान किया तिस हर तू जान साच शब्द प्रभ एक संजान हर रस चाखै ता शुद्ध होए नानक नाम रते सच सोए बसंत महला तीजा नाम रते कुला का करह उदार साची बाणी नाम प्यार मनमुख भूले काहे आए नामो भूले जन्म गवाए जीवत मरे मर मरन सवारे गुरु कै शब्द साच उर धारे रहाउ गुरमुख सच भोजन पवित्र शरीरा मन

गुर कै शब्द हर दर निशान है, दर साचै सच सोभा हुए, निज कर वासा पावै सोए, आप अकुल सच्चा सच सोए।

गुरु तारी मन बसंत तन मन हरिया हुई नानक एहो तन बिरख राम नाम फल पाए सोई बसंत महला तीजा तिन बसंत जो हर गुण गाई पूरे भाग हर भगत कराई इस मन को बसंत की लगे ना सोई एहो मन जलिया दूजे दोई रहाउ एहो मन धंदे बांधा कार कमाई माया मूठा सदा बिन लाई एहो मन छूटे जां सतगुर भेटे जम काल की फिर आवे ना फेटे एहो मन छूटा गुर लिया छडाई नानक माया मोह शब्द जलाई बसंत महला तीजा बसंत चढ़िया फूली बनराई एह जी जंत फूल है हर चित लाई इन बिद एहो

शब्द सुनाई इहो जग हरिया सतगुर पाए फल फूल लागे जा आपे लाए मूल लगे ता सतगुर पाए आप बसंत जगत सब वारी नानक पूरे भाग भगत निराली बसंत हंडोल महला तीजा घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुर की बाणी विटों वारिया पाई गुर शब्द विटों बल जाई गुर सलाही सदा अपना पाई गुर चरणी चित लाई मेरे मन राम नाम चित लाई मन तन तेरा हरिया होवे एक हर नामा फल पाए रहाओ गुर राखे से उबरे पाई हर रस अमृत पियाई विचों हो मैं दुख उठ गया पाई सुख बुठा मन आई तुरे आपे जिन्ना नु बख्शियो नु पाई शब्दे लयन मलाई धूड़ तिन्ना की अकुलिया पाई सत संगत मेल मलाए आप कराए करे आप पाई जिन हरिया किया सब कोए नानक मन तन सुख सद वसै पाई शब्द मलावा होए राग बसंत महला चौथा कर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद ज्यों पसरी सूरज किरण ज्योत त्यों घट घट रमैया ओत पोत एको हर रविया सर्ब थाई गुर

एको एक रहे भरपूर, सागत नर लोभी जान है दूर, एको एक वरत हर लोए, नानक हर एको करे सो होए, बसंत महला चौथा, रैन दिनस दोए सदे पए, मन हर सिमरहो अंत सदा रख लए, हर हर चेत सदा मन मेरे, सब आलस दुख भंज प्रभ पाया, गुरमत गावो गुण प्रभ केरे रहाओ, मनमुख फिर हो मैं मुए, काल दैत संघारे जमपुर गए, गुरमुख हर हर हर लिव लागे, जन्म मरण दो दुख भागे, भगत जना को हर कृपा तारी, गुरु नानक तुठा मिलिया बनवारी, बसंत हंडोल महला चौथा घर दूजा, एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, राम नाम रतन कोठड़ी, गढ़ मंदर एक लुकानी, सतगुर मिले तां खोजिए, मिल ज्योति ज्योत समानी, माधो साधु जन देहो मलाए, देखत दर्श पाप सब नासह, पवित्र परम पद पाए रहाउ, पंच चोर मिल लागे नगरिया, राम नाम तन हिरिया, गुरमत खोज परे तब पकरे, तन साबत रास उबरिया, पाखंड भरम अपाव कर थाके, हृदय अंतर माया माया, साधु पुरख पुरख पत पाया, अज्ञान

सुगसाई कर कृपा साध मलावै नानक शांत होवै मन अंतर नित हृदय हर गुण गावै बसंत महला चौथा हिंडोल तुम वड पुरख वड अगम गुसाई हम कीरे किरम तुमन से हर दीन दयाल करहो प्रभ कृपा गुर सत गुर चरण हम बनसे गोविंद जियो सत संगत मेल कर कृप से जन्म जन्म के किल विक मल भरिया मिल संगत कर प्रभ हमसे रहाओ तुमरा जन जात अव जाता हर जपियो पतत पवीसे हर कियो सगल भवन ते ऊपर हर सोभा हर प्रभ दिन से जात अजात कोई प्रभ ते आवे सब पूरे मानस तिन से धन वड्डे वड पूरे हर जन जिन हर धारियो हर उरसे हम ढींदे ढीम बहुत अत पारी हर धार कृपा प्रभ मिलसे जन नानक गुर पाया हर तूठे हम किए पतत पवीसे बसंत हंडोल महला चौथा मेरा एक खिन मनुआ रह ना सकै नित हर हर नाम रस गीदे ज्यो बारक रसक पर्यो थन माता थन काढे बिलल बलीदे गोविंद जियो मेरे मन तन नाम हर बीदे वड्डा भाग गुर सत गुर पाया विच काया नगर हर सीधे रहाउ जन के सास सास है जेते हर बिरह प्रभु हर बीदे ज्यों जल कमल प्रीत अत भारी बिन जल देखे सुख लीदे जन जपयो नाम निरंजन नर हर अपदेश गुरु हर प्रीदे जन्म जन्म की हौ मैं मल निकसी हर अमृत हर जल नीदे हमरे कर्मना बिचरहो ठाकुर तुम पैज रखो अपनीदे हर भावै सुन बिनो बेनती जन नानक सरण पवीदे बसंत हंडोल महला चौथा मन खिन खिन परम परम बहुत आवै तिल घर नहीं वासा पाईऐ गुरे अंकस शब्द दारू सिर धारियो घर मंदर आन वसाईऐ गोविंद जियो सत संगत मेल हर त्याईऐ हौ मैं रोग गया सुख पाया हर सहज समाज लगाईऐ रहाउ कर रतन लाल बहुमानक लादी मन भ्रमिया लह ना सकाईऐ ज्यो ओडा कूप गोहज खिन काढ़ै त्यो सतगुर वस्त लहाईऐ जिने ऐसा सतगुर साधना पाया ते त्रिग त्रिग नर जीवाईऐ जन्म पदार्थ पुन फल पाया कौडी बदलै जाईऐ मद सूदन हर धार प्रभ कृपा कर कृपा गुरु मिलाईऐ जन नानक निर्वाण पद पाया मिल साधु हर गुण गाईऐ बसंत हंडोल महला चौथा आवन जान भया दुख बिखिया।

तिस साध बसंत जिस हृदय नाम ग्रह ताके बसंत घनी जा कै कीर्तन हर धुनी रहाऊ प्रीत पार ब्रह्म मौल मना ज्ञान कमाई पूछ जना सो तपसी जिस साध संग साध ध्यानी जिस गुरह रंग से निर्भउ जिन भउ पया सो सुखिया जिस भ्रम गया।

दयाल नाम जपत होवत निहाल मेरे प्रीतम कारण करण जोग हों पावो तुम ते सगल थोक रहाउ नाम जपत होवत उदार नाम जपत सुख सहज सार नाम जपत पत सोबा होई नाम जपत बिघन नाही कोई जा कारण ए दलभ दे

तम प्राण आधार मन जियो प्राण सब तेरो धन रहाउ जां को खोजह सुर नर देव मुन जन सेख ना लह भेव जां की गत मित कही ना जाए घट घट घट घट रहे आसमाए जां के भगत आनंद मै जा के भगत को नाही खै जा के

कैसे उदाहरण गुरह पीर तुम दाते प्रभु दीन हार निमक निमक तिस नमस्कार रहाउ जिसह परापत साध संग तिस जन लागा पार ब्रह्म रंग ते बंधन ते पये मुकत भगत अरादह जोग जुगत नेतर संतोखे दर्श पेख रसना गाए गुण अनेक तृष्णा बूजी गुर प्रसाद मन अगाना हर रसह स्वाद सेवक लागो चरण सेव आद पुरख अपरंपर देव सगल उदाहरण तेरो नाम नानक पायो एहो निदान बसंत महला पंजवां तुम बड दाते दे रहे जी प्राण मह रव रहे दीने सगले भोजन खान मोहे निर्गुण एक गुण ना जान।

अगम अगम ऊंचा ते ऊंचा हम तोरे तुम बहुत मूचा जिन तू त्याया से गनी जिन तू पाया से तनी जिन तू सेव्या सुखी से संत सरण नानक परे बसंत महला पंजवा तिस तू सेव जिन तू किया तिस अराध जिन जियो दिया तिसका चाकर होहे फिर डान ना लागे तिसकी कर पोत दारी फिर दुख ना लागे एवड भाग होहे जिस प्राणी सो पाए इहो पद निर्वाणी रहाउ दूजी सेवा जीवन बिरथा कछु ना होई है पूर्ण अर्था मानस सेवा खरी दोहेली साध की सेवा सदा सुहेली जे लोड़ है सदा सुख पाई।

सर्ब ध्यान मह एक ध्यान हर कीर्तन मह उत्तम धुना नानक गुर मिल गाए गुना बसंत महला पंजवा जिस बोलत मुख पवित होए जिस सिमरत निर्मल है सोए जिस अरादे

जह गोविंद भगत सो धन देस, हर भगत हीन उद्यान थान, गुर प्रसाद कट कट पहचान, हर कीर्तन रस भोग रंग, मन पाप करत तू सदा संग, निकट पेख प्रभ करन हार, ईत ऊत प्रभ कार्ज सार, चरण कमल स्यों लगो ध्यान।

खसम ते आई एक मन एक पहाई गुरपुरे की सदा सरनाई साचे साहेब रखिया कंठ लाई रहाउ अपने जन प्रभ आप रखे दुष्ट दूत सब भ्रम थके बिन गुर साचे नहीं जाए दुख देश दसंतर रहे ताय किरत ओना का मिटस नाही वे अपना बीजिया आप खाए जन का रखवाला आप सोए जन को पहुँच ना सकस कोए प्रभ दास रखे कर जतने आप।

ला पंजवा गुर चरण सरेवत दुख गया पार ब्रह्म प्रभ करी मया सर्व मनोरथ पूर्ण काम जप जीवै नानक राम नाम सारुत सुहावी जित हर केते आवे बिन सतगुर दीसै बिल लांती साकत फिर आवे जावे रहाउ से तनवंत जिन हर प्रभ रास काम क्रोध गुर शब्द नास पै बिन से निरपै पद पाया गुरमिल नानक खसम त्याया साध संगत प्रभ कियो निवास हर जप जप होई पूर्ण आस जल तल मही अल रव रहिया गुरमिल नानक हर हर कहिया अष्ट सिद्ध नव निध एह कर्म परापत जिस नाम दे प्रभ जप जप जीव है तेरे दास गुरमिल नानक कमल परगास बसंत महला पंजवा घर पहला एक तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद सगल इच्छा जप पुनिया प्रभ मेले चिरी वछुनिया तुम रब हो गोबिंद रमन योग जित रवे सुख सहज भोग रहाउ कर कृपा नदर निहालिया अपना दास आप संभालिया सेज सुहावी रस बनी आए मिले प्रभ सुख धनी मेरा गुण अवगुण ना बिचारिया प्रभ नानक चरण पूजारिया बसंत महला पंजवा किल बिख बिन से गाए गुना अन दिन उपजी सहज धुना मन मौल्यो हर चरण संग कर कृपा साधु जन भेटे नित रातो हर नाम रंग रहाउ कर कृपा प्रगटे गोपाल लड़ लाए उधारे दीन दयाल एहो मन होआ साध तूर नित देखै स्वामी हजूर काम क्रोध तृष्णा गई नानक प्रभ कृपा पई।

सदब संत गुरपुरे की सरणी आए, कल्याण रूप जप हर हर मंत रहाउ, सोग संताप कटे प्रभु आप, गुरे अपने को नित नित जाप, जो जन तेरा जपे नाउ, सब फल पाए निश्चल गुण गाओ, नानक भगतां भली।

पर फूल तारहे अब कलु आयो रे। एक नाम बोवहो अनरूत नाही नाही मत परम भूलो गुर मिले हर पाए जिस मस्तक है लेखा मन रुत नाम रे। गुण कहे नानक हर हरे बसंत महला पंजवा कर दूजा हिंडोल एक ओंकार सतगुर प्रसाद होए इकत्तर मिलो मेरे भाई दुबदा दूर करहो लिवलाए हर नामै के होवो जोड़ी गुरमुख बैसो सफा विछाए इन बिद

कर्म धर्म तुम चौपड़ साजो, सत करहो तुम सारी, काम क्रोध लोभ मोह जीतो, ऐसी खेल हर प्यारी, उठ इशनान करहो प्रभाते, सोए हर अरादे, बिखड़े दाओ लंगावे मेरा सतगुर, सुख सहज सेती घर जाते, हर आपे खेले आपे देखे, हर आपे रचन रचाया, जन नानक गुरमुख जो नर खेले, सो जिन बाजी घर आया।

पया द्वारे रख ले वो मुगद अजाना बसंत हंडोल महला पंजवा मूल ना बूझै आप ना सूझै भरम व्यापी अहं मनी पिता पार ब्रह्म प्रभ धनी मोहे निस्तार हो निर्गुणी रहाउ ओपत परलो प्रभ के होवे एह बिचारी हर जनी नाम प्रभु के जो रंग राते कलम है सुखिये से जनी अवर अपाओ न कोई सूझै नानक तरियै गुर बचनी एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद राग बसंत हंडोल महला नौवा साधो ए तन मिथ्या जानो जा भीतर जो राम बसत है साचो ताहे पछानो रहाओ एहो जग है संपत सुपने की देख कहां ऐडानो संग तिहारै कछु ना चाले ताहे कहां लपटानो उस्तत निंदा दो पर हर हर कीरत उरियानो जन नानक सब ही मैं पूरन एक पुरख भगवानो बसंत महला नौवा पापी ही है मैं काम बसाए मन चंचल याते गहयो ना जाए रहाउ जोगी जंगम अर सन्यास सब ही पर डारी एह फास जेह देह हर को नाम समार ते भव सागर उतरे पार जन नानक हर की सरनाए दीजै नाम रह गुण गाए।

संग तेरा हर बसत नीत निस बासर भज ताहे मीत बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण ता के गाए बसंत महला पहला अष्टपदियां घर पहला दो तुकिया

लीन सब दूर सखाई गुण है बीन मन चले न जाई ठाक राख बिन हर रस राते पत ना साख तू आपे सुरता आप राख तर धारण देख जान है आप आप भलाए किस कहो जाए गुरमेले बिरथा कहो माए अवगुण छोड़ो गुण कमाए गुर शब्दी राता सच समाए सतगुर मिले है मत उत्तम होए मन निर्मल हो मैं कदै धोए सदा मुक्त बांध ना सकै कोई सदा नाम बखाने और ना कोई मन

करता दुख घणो मरिए करतारा बिन प्रीतम को करे ना सारा सब उत्तम किसे आखो ही ना हर भगती सच नाम पतीना रहाउ औखद कर थाकी बहु तेरे क्यों दुख चूकै बिन गुर मेरे बिन हर भगती दुख कनेरे दुख सुख दाते।

लावे। मन मह मनुआ चित मह चीता, ऐसे हर के लोग अतीता। हरख सोग ते रह नरासा, अमृत चाख हर नाम निवासा। आप पछान रह लिवलागा, जन्म जीत गुरमत दुख भागा। गुर दिया सत अमृत।

रोग व्यापै घट घट रव रहिया प्रभ जापै सुख दुख ही ते गुर शब्द अतीता नानक राम रवै हित कीता बसंत महला पहला एक तुकिया मत भस्म अंधु

बसंत महला पहला दुबदा दुरमत अंदुली कार मन मुख पर मैं मज गुबार माने अंदुला अंदुली मत लागे गुर करनी बिन भरम ना भागे रहाउ मन मुख अंदुले गुरमत ना पाई पशु भय अभमान ना जाई लख 84 जनते पाए मेरे ठाकुर पाणे सिर जसमाए सगली भूलै नहीं शब्द अचार सो समझै जिस गुर करता।

आपे बशरू गऊ खीर आपे मंदर थम शरीर आपे करनी करणहार आपे गुरमुख कर विचार तू कर कर देख करणहार जोत जी असंख दे आधार तू सर सागर गुण गहीर तू अकुल निरंजन परम हीर तू आपे करता करण जोग निह केवल राजन सुखी लोग नानक त्रापे हर नाम स्वाद बिन हर गुर प्रीतम जन्म वाद बसंत हंडोल महला पहला कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नौ सत चौदह तीन चार कर महलत चार बहाली चारे दीवे चौ हथ दिए एकाएका वारी मेहरवान मधुसूदन माधो ऐसी सकत तुम्हारी रहाओ कर कर लश्कर पावक तेरा धर्म करे सिकदारी।

पार पवै नित मुदगर पाप करे कोटवारी पावे चंगा पावे मंदा जैसी नदर तुम्हारी आद पुरख को अल्लाह कही है सिखा आई वारी देवल देवत्या कर लागा ऐसी कीरत चाली कूजा बांग निवाज मुसल्ला।

तुम्हारी, चारी कुंट सलाम करहेंगी, घर घर सिफत तुम्हारी, तीरथ सिमरत पुन दान, किश लाहा मिलै दिहाड़ी, नानक नाम मिलै वड्याई, मेका घड़ी संभाली, बसंत हंडोल घर दूजा महला चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, काया नगर एक बालक वस्या, हिन पल फिर न रहाई, अनक अपाव जतन कर थाके, बारंबार परमाई, मेरे ठाकुर बालक इकत घर आन, सतगुर मिलै ता पूरा पाई, भज राम नाम निशान, रहाउ एहो मृतक मड़ा शरीर है सब जग, जित राम नाम नहीं वसिया, राम नाम गुर उदक चुआया, फिर हरिया हो आरसिया, मैं निरखत निरखत शरीर सब खोजिया, एक गुरमुख चलत दिखाया, बाहर खोज मुए सब साकत, हर गुरमति कर पाया, दीना दीन दयाल पए हैं, ज्यों कृष्ण बिदर घर आया, मिले उस दामा पावनी तार, सब किसे आगे दालद पंज।

खीली इकरती तेलना कटाई जानकी उस्तत है राम नामा दह दिस सुबा पाई निंदक साकत खाव ना सके तेल

जन प्रीतम प्यारी जो हो वह दासन दासा आपे जल अपरंपर करता आपे मेल मलावे नानक गुरमुख सहज मलाई ज्यों जल जल है समावे बसंत महला पंजवा घर पहला दो तुकिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद सुन साखी मन जप प्यार अजा मन उदरिया।

नरेन ले मस्तक लाऊ कर कृपा देन रहाऊ गन का उदरी हर कह तोत गज इंद्र त्यायो हर कियो मोख बिपर सदामे दाल पंज रे मन तू पी पज गोविंद बदक उदारे हो खम परहार कुबजा उदरी अंगुष्ट धार बिदर उदारे उदास्त पाय रे मन तू पी हर त्याय प्रहलाद रखी हर पैज आप वस्त्र सीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेव्या अंत बार रे मन सेव तू परह पार तन्नै सेव्या बाल बुद्ध त्रिलोचन गुरमिल भई सिद्ध बेणी कहो गुर कियो परगास रे मन तू पी होई दास जय देव त्याग्यो अहमेव।

भगत राख तिनका गुण अवगुण ना बिचार्यो कोई। एह बिद देख मन लगा सेव कबीर त्यायो एक रंग। नाम देव हर जियो बसह संग रविदास त्याए प्रभ अनूप। गुरु नानक देव गोविंद रूप बसंत महला पंजवां। अनक जन्म भ्रमे जो न माहे हर सिमरन बिन नरक पाहे। भगत बिहूना खंड खंड बिन बूझे जम देत दंड। गोविंद भजो हो मेरे सदा मीत साच शब्द कर सदा प्रीत। रहाउ संतोख ना आवत कहूं काज धूम बादर सब माया साज। पाप करम तव नह संगाई विख का माता आवे जाई। हौ हौ करत बदे बेकार मोह लोभ डूबो संसार। राम क्रोध मन वस किया सुपन नाम ना हर लिया। कब ही राजा कब मंगन हार दुख सुख बांधो संसार। मन उधरन का

अपार कर कृपा लड़ले हो लाई नानक दास प्रभ की सरनाई बसंत की वार महल पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर का नाम त्याए कै हो हरिया पहाई कर्म लखन तै पाई एह रुत सुहाई वण त्रिण त्रे पवन मौलिया अमृत फल पाई मिल साधु सुख उपज।

चरण ज पायन विच दयो खुड़वा रोग सोग सब मिट गए नित नवान रोआ दिन रहन नाम त्याईंदा फिर पाए ना मोआ जिस ते उपजया नानका सोई फिर हुआ कितों उपजै कह रहे कह माही समावे जी जंत सब खसम के कौन कीमत पावे कहन त्याईन सुन नित से भगत सुहावे अगम अगोचर साहिबो दूसर लवे ना लावे सच पूरे गुर उपदेसिया नानक सुनावे बसंत बाणी भगतां की कबीर जी घर पहला एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद मौली धरती मौलिया आकाश घट घट मौलिया।

सिमरत मौली सिंह कतेब, शंकर मौल्यो जोग त्यान, कबीर को स्वामी सब समान, पंडित जन माते पढ़ पुराण, जोगी माते जोग त्यान, सन्यासी माते अहमेव, तपसी माते तप कै पेव, सब मद माते को न जाग, संग ही चोर कर मुसन लाग, रहाउ जागै सुख देव अर अकूर, हनुमंत जागै तर लंकूर, शंकर जागै चरण सेव, कल जागे नामा जय देव, जागत सोवत बहु प्रकार, गुरमुख जागै सोई सार, इस देही के अधिक काम, कह कबीर पज राम नाम, जोए खसम है जाया, पूत बाप खेलाया, बिन श्रवणा खीर पिलाया, देखो लोगा कल को पाओ, सुतमक लाई अपनी माओ, रहाओ पगा बिन हुरिया मारता, बदने बिन खिर खिर हासता, निंद्रा बिन नर पैसो है, बिन बासन खीर बलोवै, बिन अस्थन गऊ लवेरी, पैंडे बिन बाट कनेरी, बिन सतगुर बाट न पाई, कहो कबीर समझाई, प्रहलाद पठाए पढ़न साल, संग सखा बहु लिए बाल, मोको कहां पढ़ाव से आल जाल, मेरी पटिया लिख दे हो श्री गोपाल, नहीं छोड़ो रे बाबा राम नाम, मेरो और पढ़न स्यों नहीं काम, रहाओ संडे मर कह कहो जाए, प्रहलाद बलाए बेगताए, तू राम कहन की छोड़ बान, तुझ तुरत छाऊ मेरो कहो मान, मोको कहां सतावो बार बार, प्रभ जल थल गिर किए पहार, एक राम ना छोड़ो गुरहगार, मोको काल जार पावे मार डार, काड खड़ग को प्यो रिसाए, तुझ राखनहारो मोहे बताए, प्रभ थंब ते निकसे कै विस्थार, हरनाक्ष छेदे हो नख बेदार, उए परम पुरख देवाद देव, भगत हेत नरसिंह पेव, कह कबीर को लखै ना पार, प्रहलाद उधारे अनक बार, इस तन मन मधे मदन चोर, जिन ज्ञान रत्न हिर लीन मोर, मैं अनाथ प्रभ कहूं काहे, को ना बेगूतो मैं को आहे, माधो दारण दुख सहयो न जाए, मेरो चपल बुद्ध स्यो कहां बसाए, रहाओ सनक सनंदन शिव सुकाद, नाभ कमल जाने ब्रह्माद, कब जन जोगी जटा तार, सब आपन अवसर चले सार, तू अथाह मोहे था नाहे, प्रभ दीना नाथ दुख कहो काहे, मोरो जन्म मरण दुख आथ तीर, सुख सागर गुण रौ कबीर, नायक एक बनजारे पांच, वरद पचीसक संग काच, नौ बहिया दस गुण आहे, कसन बहतर लागी ताहे, मोहे ऐसे बनज स्यों नहीं काज, जेह घटै मूल नित बढ़ै ब्याज, रहाउ सात सूत मिल बनज कीन, कर्म पावनी संग लीन, तीन जगाती करतरार, चलो बनजारा हाथ चार,

बैठ खाया। गोबर जूठा चौका जूठा जूठी दीनी कारा, कहत वीर तेई नर सूचे साची परी बेचारा। रामानंद जी।

तेरा चेतना चले मन भयो पंग रहाउ। एक दिवस मन भई उमंग कस चंदन चोआ बहु सुगंध पूजन चाली ब्रह्म ठाए सो ब्रह्म बतायो गुर मन ही माए।

है कैसे संत जना राम नाम ना छाड़े। गंगा गया गोदावरी संसार के कामा नारायण सो प्रसन्न होए ता सेवक नामा।

खूब राज तू तिसते खरी उतावली रहाउ, जैसे कुरंक नहीं पायो भेद, तन सुगंध ढूंढै परदेस, आप तन काजो करे विचार,

पाछे किसह पकार है पियो पियो। साधु की जो लेहे ओट, तेरे मिटह पाप सब कोट कोट। कहर वदास जो जपे नाम, तिस जात ना जन्म ना जोन काम। बसंत कबीर जीओ एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुरा की जैसी तेरी चाल, तेरी पूछत ऊपर चमक बाल। इस धर्म है

साहब ना फीकी रस बिन बिन प्रभ काल संता पै रहाउ। जब लग दर्शन परसै प्रीतम तब लग भूख प्यासी। दर्शन देखत ही मन मानिया जल रस कमल बिगासी। ऊनम कनहर गरजै बरसै कोकिल मोर बैरागै। तरवर बिरख बिहंग पोयंगम घर पेर तन सोहागै। कुचिल रूप कुनार कुलखनी फिरका सहज ना जानिया। हर रस रंग रसन नहीं तृप्ति दुर्मत दुख समानिया। आए ना जावे ना दुख पावे ना दुख दर्द शरीरे। नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मन धीरे। सारंग महला पहला दूर नाही मेरो प्रभ प्यारा। सतगुर बचन मेरो मन मानिया हर पाए प्राण अधारा। रहाउ इन विद हर मिलिया वर कामन तन सुहाग प्यारी। जात बरन कुल सहसा चूका गुरमत शब्द बिचारी। जिस मन माने अभमान ना ताको हिंसा लोभ बसारे। सहज रवै वर कामन पिरकी गुरमुख रंग सुवारी। जारो

ऐसी प्रीत कटंब संबंधी माया मूप सारी जिस अंतर प्रीत राम रस नाही दुबदा कर्म बेकारी अंतर रत्न पदार्थ हित को दुरै न लाल प्यारी नानक गुरमुख नाम अमोलक जुग जुग अंतर तारी सारंग महला चौथा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर के संत जना की हम तूर मिल सत संगत परम पद पाया आत्म राम रहया भरपूर रहाउ सतगुर संत मिले शांत पाईए किल विख दुख काटे सब दूर आत्म ज्योत पई प्रफूलत पुरख निरंजन देखिया हजूर वड्डे भाग सत संगत पाई हर हर नाम रहया भरपूर अठ सठ तीरथ मज्जन किया सत संगत पग लाए तूर दुर्मत बेकार मलीन मत होछी हिरदा कसुद लागा मोह पूर बिन कर्मा क्यों संगत पाईए हों मैं व्याप रहया मन चूर हो दयाल कृपा कर हर जी मांगो सत संगत पग तूर नानक संत मिले हर पाईए जन हर पेटिया राम हजूर सारंग महला चौथा गोबिंद चरणन को बलिहारी भवजन जगत ना जाई तरना जप हर हर पार उतारी रहाउ हृदय प्रतीत बनी प्रभ केरी सेवा सुरत बिचारी हर दिन राम नाम जप हृदय सर्ब

गुरमुख मन मानिया तिनके काज सुवारे रहाउ। जो जन दीन भये गुर आगे तिनके दुख निवारी। आन दिन भगत करह गुर आगे गुर कह शब्द सुवारी। हृदय नाम अमृत रस रसना रस गावह रस बिचारी। गुर प्रसाद अमृत रस चीनिया वे पावह मूख द्वारी। सतगुर पुरख अचल अचलह मत जिस दृढ़ता नाम अधारी। तिस आगे जियो देवो अपना हौ सतगुर कै बलिहारी। मन मुख ब्रह्म दूजै भाई लागी अंतर अज्ञान गुबारी। सतगुर दाता नदर ना आवे ना उरवार ना पारी। सर्वे कट कट रविया स्वामी सर्व कला कल तहारी। नानक दासन दास कहते है कर कृपा ले हो उभारी। सारंग महला चौथा गोविंद की ऐसी कार कमाई। जो किछ करे सो सत कर मानो गुरमुख नाम रहो लिवलाई। रहाउ गोविंद प्रीत लगी अत मीठी अवर विसर सब जाई। अन दिन रहस भया मन मानिया ज्योति ज्योत मलाई। जब गुण गाए तब ही मन तृप्तै शांत वसै मन आई। गुर कृपाल भये तब पाया हर चरणी चित लाई। मत प्रगास भई हर त्याया ज्ञान तत् लिवलाई। अंतर ज्योत प्रगटी मन मानिया हर सहज समाध लगाई। हृदय कपट नित कपट कमावह मुखो हर हर सुनाई। अंतर लोभ महा गुबारा तोह कूटै दुख खाई। जब सो प्रसन्न भये प्रभ मेरे गुरमुख पर क्या लाई। नानक नाम निरंजन पाया नाम जपत सुख पाए। सारंग महला चौथा मेरा मन राम नाम मन मानी। मेरा ही रह सतगुर प्रीत लगाई। मन हर हर कथा सुखानी रहाओ। दीन दयाल हो जन ऊपर जन देव हो अकथ कहानी। संत जना मिल हर रस पाया हर मन तन मीठ लगानी। हर कह

तापमान नरहरे नरहर स्वामी हर सगल देव देवा श्री राम राम नामा हर प्रीतम मोरा रहाउ जित ग्रह गुण गावते हर के गुण गावते राम गुण गावते तित ग्रह वाजे पंच शब्द वड भाग मथुरा तिन जन के सब पाप गए सब दुख गए सब रोग गए काम क्रोध लोभ मोह अभिमान गए तिन जन के हर मार कड्डे पंच चोरा हर राम बोलो हर साधु हर के जन साधु जगदीश जपो हो मन बचन कर्म हर हर अरादू।

मेरा प्रीतम जन संतो मोहे मार्ग दिखलावे। तिस जन के हो मल मल धुआ पाऊ, हर जन को हर मिलिया, हर श्रद्धा ते मिलिया, गुरमुख हर मिलिया। मेरा मन तन आनंद भये, मैं देखिया हर राउ। जन नानक को कृपा पई, हर की कृपा पई, जगदीश्वर कृपा पई। मैं अनदिनो सद सद सदा, हर जपिया हर नाउ। सारंग महला चौथा, जप मन निरभउ, सत सत सदा सत, निर्वैर अकाल मूरत अजूनी संभव। मेरे मन अन दिनो त्याए, निरंकार निराहारी रहाओ। हर दर्शन को हर दर्शन को, कोट कोट ते तीस, सिद्ध जति जोगी तट तीर्थ पर पवन करत रहत निराहारी। किन जन की सेवा थाए पई, जिनको कृपाल होवत बनवारी। हर के हो संत भले, ते उत्तम भगत भले,

मन प्रभु पलाए पूजड़ पाए निफल सब करमान सो ज्ञानी सो वैष्णव पढ़िया जिस करी कृपा भगवान उन सतगुर सेव परम पद पाया उदरिया सगल विस्वान क्या हम कथ है किस कथ नहीं जान है प्रभ भावै तिवै बलान साध संगत की।

सतगुर बचन लहू रहाउ। क्वार कन्या जैसे संग सहेरी, प्रिय बचन उपहास कहो। जो सुरजन ग्रह पीतर आयो, तब मुख काज लजो। ज्यो कनको कुठारी चढ़ो, कबरो होत फिरो। जब ते शुद्ध पए है बारह, तब ते थान थिरो। जो दिन रैन तौ लो बजियो, मूर्त करी पलो। बजाव नहारो ऊठ सधारियो, तब फिर बाज ना पयो। जैसे कुंभ उदक पूरे आने हो, तब यो हो भिन्न दृष्टो। कहो नानक कुंभ जले मह डारियो, अम्बे अम्ब मिलो। सारंग महला पंजवा, अब पूछे क्या कहा। लैनो नाम अमृत रस नीको।

निमुख दर्श पे खागियो, दृष्ट पई तब पीतर आयो, मेरा मन अन दिन सीत लागियो, कहो नानक रस मंगल गाए, शब्द अनाहद बाजियो, सारंग महला पंजवां, माई सत सत सत हर सत सत सत साधा, बचन गुरु जो पूरै कहियो, मैं शीक गांठरी बांधा रहाऊ, निसबासर नखे अतर बनासी, राव ससियर बेनादा, गिर बसदा जल पवन जाएगो, एक साध बचन अटलादा, हंड बनासी जेर बनासी, उत्पुज सेत बनाधा, चार बनासी खटह बनासी, एक साध बचन निहचलादा, राज बनासी ताम बनासी, सातक पी बेनादा, दृष्ट मान है सगल बनासी, एक साध बचन आघादा, आपे आप आप ही आपे, सब आपन खेल दिखादा, पायो ना जाई कहीं पांतरे, प्रभ नानक गुर मिल लादा, सारंग महला पंजवां, मेरा मन बास गो गुर गोबिंद, जहां सिमरन पयो है ठाकुर, तहां नगर सुख आनंद रहाउ, जहां बीसरे ठाकुर प्यारु, तहां दुख सब आपद, जह गुण गाए आनंद मंगल रूप, तहां सदा सुख संपद, जहां श्रवण हर कथा ना सुनिए, तह महाप्यान उदयांद, जहां कीर्तन साध संगत रास, तह सगन बास फलानंद, बिन सिमरन कोट बरख जीवे, सगली औध

सरल प्रभु पाव दीजै साध संगत किरपानंद नानक पूर रहो है सर्व मैं सगल गुणा बिद जानंद सारंग महला पंजवा अब मोहे राम भरोसो पाई जो जो सरन परयो करना निद ते ते भवै तराई रहाओ सुख सोयो अर सहज सुमायो सहसा गुरह गवाई जो चाहत सोई हर कियो मन बाछत फल पाई हृदय जपो नेत्र ध्यान लावो श्रवणी कथा सुनाई करनी चलो मार्ग ठाकुर कह रसना हर गुण गाई देखियो दृष्ट सर्व मंगल रूप उल्टी संत कराई पायो लाल अमोल नाम हर छोड़ ना

ताई सारंग महला पंजवा ओए सुख का सियो वर्ण समावत आनंद बनोद पेख प्रभ दर्शन मन मंगल गुण गावत रहाऊ विषम पई पेख बिस्मादी पूर रहे कृपावत पियो अमृत नाम अमोलक ज्यों चाक गूंगा मुस्कावत जैसे पवन बंद कर राखियो बूझ न आवत जावत जा को हृदय प्रगास भयो हर वाकी कही न जाए कहावत आन उपाव जेते किश कही है तेते सीखे पावत अचिंत लाल ग्रह पीतर प्रगट्यो अगम जैसे परखावत निर्गुण निरंकार अबनासी अतुल्यो तुल्यो न जावत कहो नानक अजार जिन जरिया किसी को बन आवत सार महला पंजवा बिखई दिन रैन इव ही गुदारै गोविंद ना भजै अहम बुद्ध माता जन्म जुवै ज्यों हारै रहाऊ नाम अमोला प्रीत ना तिस सियों।

काजर मह परया बहोर बहोर फिर चारे काटे पेड़ दाल पर ठांडो खाए खाए मुशकार गिरो जाए रसातल परयो सिति सिति सिर पारे निर्वैर संग वैर रचाए पहुंच ना सके गुवारे कहो नानक संतन का राखा पार ब्रह्म निरंकार सारंग महला पंजवा अवर सब भूले भ्रमत ना जानिया एक सदाखर जा कै हिरदय वसिया किन बेद है तत पछानिया रहाउ परविरत मार्ग जेता किश होई है तेता लोग पचारा जौ लो हृदय नहीं परगासा तौ लो अन्न अंधारा जैसी धरती साधे बहु बिद बिन बीजै नहीं जामे राम नाम बिन मुक्त ना हुई है टुटे नाही अभमान नीर बलोवे अत चरम पावे नैनू कैसे रिसे बिन गुर पेटे मुक्त ना काहू मिलत नहीं जगदीसे खोजत खोजत एह बिचारियु सर्व सुखा हर नामा कहो नानक तिस पयो परा।

अर्थ सर्ब सुख सिद्ध मन बाचत फल लहिय रहाऊ। आवहु संत प्राण सुख दाते सिमरह प्रभ अवनासी। अनाथ नाथ दीन दुख भंजन पूर रहो घट वासी। गावत सुनत सनावत शरदा हर रस पी वड भागे। कल कलेश मिटे सब तन ते राम नाम लिव जागे। काम क्रोध झूठ तज निंदा हर सिमरन बंधन टूटे। मोह मगन अहं अंध ममता गुर कृपा ते छूटे। तू समरथ पार ब्रह्म स्वामी कर कृपा जन तेरा। पूर रहो सर्ब मह ठाकुर नानक सो प्रभ नेरा। सारंग महला पंजवा बलिहारी गुरदेव चरण जा कै संग पार ब्रह्म त्याई। अपदेश हमारी गत करन रहाउ। दुख रोग पै सगल बनासी जो आवै हर संत सरन। आप जपै अवरह नाम जपावै वड समरथ तारन तरन। जाको मंत्र उतारै सहसा ऊणे कहो सुभर भरन। हर दासन की आज्ञा मानत ते नाही फुन गर्भ परन। भगतन की टहल कमावत गावत दुख काटे ताके जन्म मरन। जाको भयो कृपाल बीठला तिन हर हर अजर जरन। हर रसह अगाने सहज समानी मुख ते नाही जात बरन। गुर प्रसाद नानक संतोखे नाम प्रभु जप जप उधरन। सारंग महला पंजवा गायो री मैं गुण निद मंगल गायो। भले संजोग भले दिन अवसर जो गोपाल रिझायो रहाओ। संतह चरण मोर लो माथा हमरे मस्तक संत धरे हाथा। साध है मंत्र मोर लो मनुआ।

यत्न करूं एहो मन नहीं धीरै को है रे संत मलाई जप तप संयम पुन सब होम तिस अर्पों सब सुख जाई एक निमक प्रिया दर्शद खावै इस संतन कै बल जाई करो निहोरा बहुत बेनती सेवो दिन रह नाई मान अवमान हो सगल त्यागो जो प्रिय बात सुनाई देख चरित्र पई हो बिस्मन गुर सतगुर पुरख मलाई प्रभ रंग दयाल मोहे ग्रह मह पाया जन नानक तपत बुझाई सारी महला पंजवा रे मूड़े तू क्यों सिमरत अब नाही नरक कोर मह उर्द तप करता निमख निमख गुण गाही रहाओ अनक जन्म भ्रम तो ही आयो मानस जन्म दुलपाही गर्भ जोन छोड़ जो निकस्यो तो लागो अनठाही करह बुराई ठगाई दिन रहन निफल कर्म कमाही कण नाही तुहो गाहन लागे ताए ताए दुख पाही मिथ्या संग कूड़ लपटायो उर्ज पर्यो कुसमाही धर्म राय जब पकरस बबरे तो काल मुखा उठ जाही सो मिलिया जो प्रभु मलाया जिस मस्तक लेख लिखाही कहो नानक तिन जन बलिहारी जो अलिप रहे मन माही सारंग महला पंजवा क्यों जीवन प्रीतम बिन माई जाके बिसरत होत मृत का ग्रह मह रहन ना पाई रहाओ जी ही प्राण को दाता जा कै संग सुहाई करहु कृपा संतो मोहे अपनी प्रभ मंगल गुण गाई चरण संतन के माथे मेरे ऊपर नैनो तूर बाशाई जेहे प्रसाद मिलिए प्रभ नानक बल बल ताकै हो जाई सारंग महला पंजवा वाह अवसर कै हो बल जाई आठ पहर अपना प्रभ सिमरन वड भागी हर पाई रहाओ भलो कबीर दास दासन को उत्तम सैन जन नाई ऊच ते ऊच नाम देहो समदर्शी रविदास ठाकुर बने आई जियो पिंड तन तन साधन का एहो मन संत रे नाई संत प्रताप परम सब नासे नानक मिले गुसाई सारंग महला पंजवा मनोरथ पूरे सतगुरे आप सगल पदार्थ सिमरन जाकै आठ पहर मेरे मन जाप रहाओ अमृत नाम स्वामी तेरा जो पीवै तिस ही त्रिपतास जन्म जन्म के किल बिख नास है आगे दरगाह हुए खलास शरण तुम्हारी आयो करते पार ब्रह्म पूर्ण अविनाश कर कृपा तेरे चरण त्यावो नानक मन तन दर्श प्यास सारंग महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन कहां लभाइए।

है अघावन पान को अकाल मूर्त है साध संतन की था हरने की ध्यान को बाणी मंत्र महापुरखन की मन है उतारन मान को खोज लहो नानक सुख थाना हर नामा विश्राम को सारंग महला पंजवा मन सदा मंगल गोविंद गाए रोग सोग तेरे मिट है सगल अग निमख ही है हर नाम त्याए रहाओ छोड़ सियानप बहो चतराई साधु सरनी जाए पाए जो होए कृपाल दीन दुख भंजन जमते होए धर्म राय एक सबिन नाही को दूजा आरना बियो लवे लाए मात पिता पाई नानक को सुख दाता हर प्राण साए सार महला पंजवा हर जन सगल उधारी संग के पये पनीत पवित्र मन जन्म जन्म के दुख हरे रहाओ मार्ग चले तिन्नी सुख पाया जिन स्यो गोष्ट से तरे बूढ़त कोर अंध कूप में है ते साधु संग पार परे जिनके भाग बड़े हैं पाई तिन साधु संग मुख जोरे तिनकी धूर बांचे नित नानक प्रभ मेरा कृपा करे सार महला पंजवा हर जन राम राम राम त्याए एक पलख सुख साध समागम कोट बैकुंठ है पाए रहाउ दलाब देह जप होत पनीता जम की त्रास निवारे महापतक के पातक उतर है हर नामा उरतार है जो जो सुने राम जस निर्मल ताका जन्म मरण दुख नासा कहो नानक पाईए वड भागी।

मान करो अब मान न बोलो भूल चूक तेरी प्रिय क्रिया रहाओ निकट सुनो हर पेखो नाही परम परम दुख परिया होए कृपाल गुर लाहे पार दो मिलो लाल मन हरिया एक निमख जे बिसरै स्वामी जानो कोट दिन सलख बरिया साध संगत की पीर जो पाई तो नानक हर संग मिरिया सार महला पंजवा अब क्या सोचो सोच बिसारी करना सा सोई कर रहिया दे नाओ बलिहारी रहाओ चहो दिस फूल रही बिखिया बिख गुरमंत्र मूख गरुड़ारी हाथ दे राख्यो करे अपना जो जल कमला अलपारी हो नाही किस मैं क्या हुसा सब तुम ही कल तारी नानक भाग परयो हर पाछे राख संत सदकारी सारंग महला पंजवा अब मोहे सर्व उपाव बिरकाते कर्म कारण समरथ स्वामी हर एकस ते मेरी गाते रहाओ देखे नाना रूप बहुरंगा अन नाही तुम भांते देहे आधार सर्व को ठाकुर जी प्राण सुख दाते प्रमतो प्रमतो हार जो परयो तव गुर मिल चरण पराते कहो नानक मैं सर्व सुख पाया ए सुख बेहानी राते सार महला पंजवा अब मोहे लब दियो है हर टेका गुर दयाल पये सुखदाई अंदुलै मानक देखा रहाओ काटे अज्ञान तिमर निर्मलिया बुद्ध बिगास विवेका ज्यों जल तरंग फेन जल हुई है सेवक ठाकुर पये एका जहते उठियो तह ही आयो सब ही एकै एका नानक दृष्ट आयो सर्ब ठाई प्राण पति हर समका सारंग महला पंजवा मेरा मन एकै ही प्रिय मांगै पेखायो सर्ब थान देश प्रिय रोम ना समसर लागै रहाओ मैं नीरे अनक भोजन बहु बिंजन तिन स्यों दृष्ट ना करै रुचांगै हर रस चाहै प्रिय प्रिय मुख तेरै जो अल कमला लो भांगै गुण निधान मन मोहन लालन सुखदाई सर्वांगै गुर नानक प्रभ पाहे पठायो मिलहु सखा गल लागै।

तुम ही सुगर सुजाना सगल जोग अर ज्ञान ध्यान एक निमख ना कीमत जाना तुम ही नायक तुम्हे शत्रपत तुम पूर रहे भगवाना पामू दान संत सेवा हर नानक सद कुर्बाना सार महला पंजवा मेरा मन चीत आए प्रियरंगा विसरो तंद बंद माया को रजन सबाई जंगा रहाओ हर सेवो हर हृदय बसाओ हर पाया सतसंगा ऐसो मिलो मनोहर प्रीतम सुख पाए मुख मंगा प्रियो अपना गुर बस कर दीना भोगो भोगन संगा निरपौ भय नानक पौ मिटिया हर पायो पाठंगा सारंग महला पंजवां हर जियो के दर्शन को कुर्बानी बचन नाद मेरे श्रवण हो पूरे देहा प्रिय अंक सुमानी रहाओ छूटर ते गुर की सुहागन हर पायो सुगुड़ सुजानी जे घर मह बैसन नहीं पावत सो थान मिलियो बासानी उनके बास आयो भगत बचल जिन राखी आन संतानी कहो नानक हर संग मन

दर्शन देख पए मन आनंद गुर कृपा ते छूटा रहाउ बिखम थान बहुत बहुत तरिया अनक राख सुरूपता बिखम गार कर पहुंचे नाही संत सानथ पए लूटा बहुत खजाने मेरे पाले परिया अमोल लाल अखूटा जन नानक प्रभ कृपा तारी तौ मन मह हर रस कूटा सारंग महला पंजवा अब मेरो ठाकर स्यो मन लीना प्राण दान गुर पूरे दिया उर्जायो ज्यो जल मीना रहाओ राम क्रोध लोभ मद मत सर एह अर्प सगल दान कीना मंत्र दरडाए हर औखद गुर दियो तौ मिलियो सगल प्रबीना ग्रह तेरा तू ठाकुर मेरा गुर हौ खोई प्रभ दीना कहो नानक मैं सहज घर पाया हर भगत भंडार खजीना सारंग महला पंजवा मोहन सब जी तेरे तू तार है सुटह संघार निमख कृपा ते कोट ब्रह्मांड उदार है रहाओ करह अरदास बहुत बेनंती निमख निमख समार है हो कृपाल दीन दुख भंजन हाथ दे निस्तार है क्या ये कूपत बपरे कही है कहो ए किसनो मार है राख राख राख सुख दाते सब नानक जगत तुम्हार है सारग महला पंजवा अब मोहे धन पायो हर नामा पए अचिंत त्रिशन सब बुझी है इहो लिखियो लेख मथामा रहाओ खोजत

परगासा कट कट हर हर दीठा रहाओ पार ब्रह्म आजो नी संभव सर्व थान कट बीठा पयो प्रापत अमृत नामा बल बल प्रभ चरणीठा सत संगत की रेण मुख लागी किए सगल तीर्थ मजनीठा तो नानक रंग चलूल पए है हर रंग ना लह मजीठा सारंग महला पंजवा हर हर नाम दियो गुर साथे निमख बचन प्रभ हियरे बसेओ सगल भूख मेरी लाथे रहाओ कृपा निधान।

सुबराथी नैन त्रिपतासे देख दरसावा गुर कर धारी मेरे माथे कहो नानक मैं अतुल सुख।

पूल पूल बेख खाई रहाव। प्रव सुंदर चतुर अनूप बधाते, तिस स्यो रुच नहीं राई। मोहन स्यो बावर मन मोहयो, झूठ ठगौरी पाई। भयो दयाल कृपाल दुख हरता, संतन स्यो बन आई। सगल निदान करै मह पाए, कहो नानक जोत समाई। सारं महला पंजवां, वं प्रिय प्रीत चीत पहलरिया। जो तौ बचन दियो मेरे सतगुर, तौ मैं साज सिंगरिया रहाऊ। हम भूले हैं तुम सदा अभूला, हम पतत तुम पतत उधरिया। हम नीच बिरख तुम मैलागर, लाज संग संग बसरिया। तुम गंभीर तीर उपकारी, हम क्या बपरे जंतरिया।

सिद्ध कार्य सब सवरे अहंग रोग सगल ही खया कोट पराद छिन मह खो पई है गुर मिल हर हर कहया पंच दास गुर वसगत कीने मन निश्चल निर्भया आए ना जावे ना कत ही डोले फिर नानक राजया सार मोहल्ला पंजवा प्रभ मेरो इते उत सदा सहाई मन मोहन मेरे जी को प्यारो कमन कहां गुण।

की न्याई, जैसे मात पिताई, तिस बिन निमख नहीं रह सकी, बिसरना कब हूं जाई। कहो नानक मिल संत संगत ते, मगन पए लिवलाई। सारंग महला पंजवा, अपना मीत स्वामी गाइए, आसना अवर काहू की कीजै, सुखदाता प्रभ त्याई रहाओ, सुख मंगल कल्याण जिसह कर, तिस ही सरनी पाइए। किसह त्याग मनुख जे सेवहो, तो लाज लोन होए जाइए। एक ओट पकरी ठाकुर की, गुर मेल मत बुद्ध पाइए, गुण निधान नानक प्रभ मिलिया, सगल चुकी मोहताई है। सारंग महला पंजवा, ओट सतानी प्रभ जीओ मेरे, दृष्ट ना लियावो अवर काहू को, मान महत प्रभ तेरे रहाओ। अंगीकार कियो प्रभ अपने, काड लिया बिख केरे।

पुरखा किन्हीं बाप महतारी, सर्ब थोक नानक गुर पाए पूरन आस हमारी। सारंग महला पंजवा, झूठो माया को मदमान, त्रोहो मोह दूर कर बपरे, संग गोपाल लह जान रहाव, मिथ्या राज जोबन अर उमरे, मीर मलक अर खान, मिथ्या कापर सुगंध चतुराई, मिथ्या भोजन पान, दीन बंदरो दास दासरो, संत है की सारान, मांगन मांगो हुए अचिंता, मिल नानक के हर प्राण। सारी महला पंजवा।

ना होरी। साधक सिद्ध सगल की प्यारी, टुटै ना काहू तोरी रहाव। खट शास्त्र उचरत रसनागर, तीर्थ गवन ना थोरी। पूजा चक्कर बर्त नेम तपिया, ऊहा गैल ना शोरी। अंध कूप मह पतत होत जग, संत हो करहो परम गत मोरी। साध संगत नानक पयो मुक्ता, दर्शन पेखत पोरी। सारंग महला।

रहाऊ। ऊही ते हरेउ ऊहा ने तरेउ। जैसे बासा मास जेत चाटली, देवनहार बसारेउ अंदले। ज्यो सफरी उदर पर है बह हाटली, साध बकार बकार झूठ रस। जह

जत थानी वेद पुराण सिमरत साधु जन खोजत खोजत काठी रहाओ सेव ब्रंच अर इंद्र लोक ताम है जल तौ फिरिया सिमर सिमर स्वामी पय सीतल दुख दर्द भ्रम हिरिया जो जो तरयो परातन नवतन भगत पाए हर देवा नानक की बेनंती प्रभ जियो मिले संत जन सेवा सारंग महला पंजवा जिहवे अमृत गुण हर गाओ हर हर बोल कथा सुन हर की उच्च रहो प्रभ को नाओ रहाओ राम नाम रतन धन संचो मन तन लाभ हो पाओ आन बेभूत मिथ्या कर मानो साचा एह सो आओ जी प्राण मुक्त को दाता एक सस्यो लिव लाओ कहो नानक ता की सरनाई देत सगल अपे आओ सारंग महला पंजवा होती नहीं कमन कछ करनी यह ओट पाई मिल संत है गोपाल एक की सरनी रहाओ पंच दोख छिदर या तन मह बिखे ब्याद की करनी आस अपार दिनस गण राखी ग्रस्त जात बल जरनी अनाथ है नाथ दयाल सुख सागर सर्व दुख पै हरनी मन बाछत चितवत नानक दास देख जीवा प्रभ चरनी सारंग महला पंजवा फीके हर के नाम बिन साद अमृत रस कीर्तन हर गाइय अहनस पूर्ण नाद रहाओ सिमरत शांत महा सुख पाइय मिट जाहे।

रहाओ। समझ अचेत चेत मन मेरे, कथी संतन अकथ कहानी। लाभ लै हो हर हृदय अराद हो, छुटकै आवन जानी। उदम सकत सियान पुतुमरी, देहे ता नाम बखानी। से भगत भगत से लागे, नानक जो प्रभु पानी। सारी महला पंजवा, तनवंत नाम के बनजारी। सांझी करहो नाम तन खाट हो, गुर का शब्द विचारे रहाओ। छोड़ हो कपट होए निर्वैरा, सो प्रभ संग निहारी। सच तन बन जो हो, सच तन संचो हो, कबहू ना आव हो हारे। खात खर्चत किसन खुटत नाही, अगंत भरे पंडारी। कहो नानक सोबा संग जाव हो, पार ब्रह्म कै द्वारी। सारंग महला पंजवा, प्रभ जी मोहे कमन अनाथ बेचारा। कमन मून ते मनुख करिया, एहो पर

सर्व प्रतपालक सर्व कटा आधारा, कोई न जाने तुमरी गत मित आपे है एक पसारा। साध नाव बठावो नानक भव सागर पार उतारा। सारंग महला पंजवा, आवे राम सरन बड़ भागी, एक सबिन किस होर न जाने। अवर अपाव त्यागी रहाव, मन बच क्रम अराध हर हर, साध संग सुख पाया। आनंद बनोद कथ कथा रस, साचे सहज समाया। कर कृपा जो अपना कीनो, ताकी उत्तम बाणी। साध संग नानक निस्तरी है, जो राते प्रभ निर्वाणी। सारंग महला पंजवा, जाते साधु सरण गही, शांत सहज मन भयो परगासा। बिरथा कछ न रही रहाओ, हो कृपाल नाम देहो अपना। बिनती एह कही, आन व्यवहार बिसरे प्रभ सिमरत, पायो लाभ सही। जहते उपजेओ तही समानो, साई बस्त आही। कहो नानक परम गुरु खोयो, ज्योति ज्योत समही। सारंग महला पंजवा, रसना राम को जस गाओ, आन स्वाद बिसार सगले, भलो नाम सो।

निर्मल बहुल जोन ना आओ, जियो प्राण आधार तेरा, तू न थावे थाओ, सास सास समाल हर हर, नानक सद बल जाओ। सारंग महला पंजवा, बैकुंठ गोविंद चरण नित त्याओ, मुक्त पदार्थ साधु संगत,

दू पख पूरन पाइए सुख विश्राम। सोदत सोदत तत बिचार्यो भगत श्रेष्ठ पूरी, कहो नानक एक राम नाम बिन अवर सगल बिद उरी। सारंग महला पंजवा, साचे सतगुरु दा तारा दर्शन देख सगल दुख नास्त है, चरण कमल बलिहारा रहाओ। सत परमेश्वर सत साध जन निश्चल हर का नाऊ, भगत भावनी पार ब्रह्म की अविनाशी गुण गाओ। अगम अगोचर मित नहीं पाईए सगल घटा आधार, नानक वाहो वाहो कहो ता को जाका अंत ना पार। सारंग महला पंजवा, गुर के चरण बसे मन मेरा पूर रहे ओ ठाकुर सब थाई, निकट बसे सब नेरे रहाओ। बंधन तोर राम निवलाई संत संग बन आई, जन्म पदार्थ भयो पनीता इच्छा सगल पुजाई। जाको कृपा करो प्रभ मेरे सो हर का जस गावे, आठ पैर गोविंद गुण गावे जन नानक सद बल जावे। सारंग महला पंजवा, जीवन तो गनिय हर पेखा करहु कृपा प्रीतम मन मोहन, फोर परम की रेखा रहाओ। कहत सुनत किस शांत ना उपजत, बिन बसास क्या सेखा प्रभु त्याग आन जो चाहत, ता कै मुख लागे का लेखा। जा कै रास सर्व सुख स्वामी आन न मानत भेखा, नानक दर्श मगन मन मोहयो पूरन अर्थ बेसेखा। सारंग महला पंजवा, सिमरन राम को एक नाम कलमल दग्ध होहे खिन अंतर, कोट दान इशनान रहाओ। आन जंजार वृथा श्रम कालत बिन हर फोकट ज्ञान, जन्म मरण संकट ते छूटे जगदीश भजन सुख ध्यान। तेरी शरण पूर्ण सुख सागर कर कृपा देव दान, सिमर सिमर नानक प्रभ जीवै बिन सजाए अभमान। सारंग महला पंजवा, तूरत सोई जे तुर को लागै, सोई तुरंदर सोई बसुंदर हर एक प्रेम रस पागै रहाओ। बलबंच करे ना जाने लाभ है सो तूरत नहीं मूड़ा, स्वार्थ त्याग असार्थ रच्यो नह सिमरै प्रभ रूड़ा। सोई चतुर सियाणा पंडित सो सूरा सो दाना, साध संग जिन हर हर जपियो नानक सो परवाना। सारंग महला पंजवा, हर हर संत जना की जीवन बिखै रस भोग अमृत सुख सागर, राम नाम रस पीवन रहाओ। संचन राम नाम धन रतना मन तन पीतर सीवन, हर रंग रांग पय मन लाला राम नाम रस खीवन। ज्यों मीना जल स्यों उरझान।

हर के नामहीन मत थोरी, सिमरत नाहे श्री तर ठाकुर, मिलत अंध दुख घोरी रहाओ। हर के नाम स्यों प्रीत न लागी, अनक भेख बहु जोरी, तू तत बार न लागे तांको, ज्यो गागर जल फोरी। कर कृपा भगत रस दीजै, मन खचत प्रेम रस खोरी, नानक दास तेरी सरनाई, प्रभ बिनयान न होरी। सारंग महला पंजवा, चितवो वा अवसर मन माहे, हुए अकत्तर मिलहो संत साजन, गुण गोविंद नित गाहे रहाओ। बिन हर भजन जेते काम करियह, तेते बिरथे जाहे, पूर्ण परमानंद मन मीठो, तिस बिन दूसर नाहे। जप तप संयम कर्म सुख साधन, तुलना कछु लाहे, चरण कमल नानक मन बेदेहो, चरण है संग समाहे। सारंग महला पंजवा, मेरा प्रभु संगे अंतर जामी, आग्या कुशल पाशै खेम सूखा, सिमरत नाम स्वामी रहाओ। साजन मीत सखा हर मेरे, गुण गोपाल हर राया, बिसरना जाई।

एकालिव पूर्ण परमेश्वर पौ नहीं नानक ताके सारंग महला पंजवा जाके राम को बल होए सगल मनोरथ पूर्णता होके दुख ना व्यापे कोई रहाओ जो जन भगत दास निज प्रभ का सुन जीवा तिस सोए उद्म करो दर्शन पेखन कहो कर्म प्राप्त होए गुर प्रसादी दृष्ट निहारो दूसर नाही कोए दान दे नानक अपने को चरण जीवा संत होए सारंग महला पंजवा जीवत राम के गुण गाए करो कृपा गोपाल बीठले बिसरना कब ही जाए रहाओ मन तन धन सब तुम।

तेरी सरनाई ज्यों भावै तिवें चलाई। सारंग महला पंजवा मन रे नाम को सुख सार आन काम विकार माया सगल दी सह शार रहाओ। ग्रह अंध कूप पतत प्राणी नरक घोर गुबार अनक जोनी भ्रमत हारे हो भ्रमत बारंबार। पतत पावन भगत बच्छल दीन कृपा तार कर जोड़ नानक दान मांगे साध संग उधार। सारंग महला पंजवा विराजित राम को प्रताप आद बियाद उपाद सब नास्ती।

मन तन आत्म त्राप काम क्रोध लोभ मद मत्सर साधु कै संग खाप भगत वचल तै काटन हारे नानक के माई बाप सारंग महला पंजवा आतुर नाम बिन संसार त्रिपत न होवत कुकरी आसा इत लागो बिखिया चार रहाव पाए ठगौरी आप पलायो जन्मत बारो बार हर का सिमरन निमख ना सिमरियो जम कंकर करत खुआर हो कृपाल दीन दुख पंजन तेरिया संत है कीरावार नानक दास दर्स प्रभ जाचे मन तन को आधार सारंग महला पंजवा मैला हर के नाम बिन जियो तिन प्रभ साचे आप भुलाया बिखै ठगौरी पियो रहाओ कोट जन्म भ्रम तो बहु भांति थित नहीं कतहु पाई पूरा सतगुर सहज ना भेटिया साकत आवै जाई राख ले हो प्रभ समृत दाती तुम प्रभ अगम अपार नानक दास तेरी सरनाई पव जल उतरियो पार सारंग महला पंजवा रमण को राम के गुण बाद साध संग त्याई परमेश्वर अमृत जाके स्वाद रहाव सिमरत एक अचुत अबनासी बिनसे माया माद सहज आनंद अनहद तुल बाणी बहुर न पये बिखाद सनकादक ब्रह्मादक गावत गावत सुख प्रहलाद पीवक अमेओ मनोहर हर रस जप नानक हर बिस्माद सारंग महला पंजवा कीने पाप के बहु कोट दिन सरैणी थकत नाही कतह नाही छोट रहाव महाबज्जर बिख ब्यादी सिर उठाई पोट उगर घन्या खिनह पीतर जमह ग्रासे चोट पशु परेत उष्ट गर्धव अनक जोनी लेट भज साध संग गोविंद नानक कस न लागै फेट सारंग महला पंजवा अंधे खावह बिसु के गताक नैन श्रवन शरीर सब हुट्यो सास गयो तत घाट रहाओ अनाथ रिझान उदर लै पुख है माया गईया हाट किल बिख करत करत पछताव है कबू ना साक है शांत निंदक जमदूती आए संघारेओ देव है मूड ऊपर मटाक नानक आपन कटारी आपस को लाई माने अपना की नो फाट सारंग महला पंजवा टूटी निंदक की अद बीच जानकार राखा आप स्वामी बेमुख को आए पहुंची मीच रहाव उसका कहया कोई ना सुनी कहीं ना बैसन पावे इहां दुख आगे नरक पुंचे बहु जोनी परमावे प्रगट भया खंडी ब्रह्मणी कीता अपना पाया नानक शरण निरपहु करते की आनंद मंगल गुण गाया सारंग महला पंजवा कृष्णा चलत बहु प्रकार पूर्ण होत न कतहु बात है अंत प्रतिहार रहाव सांत सूख ना सहज उपजे एह इस व्यवहार आप पर का कछ ना जाने काम करो दहजार संसार सागर दुख ब्यापियो दास लेवो तार चरण कमल सरनाए नानक सद सदा बलिहार सारंग महला पंजवा रे पापी तैं कवन की मत लीन निमख करी ना सिमर स्वामी जियो पिंड जिन दीन रहाव खात पीवत स्वंत सुखिया नाम सिमरत कीन गर्भ उदर बिललाट करता तहां होवत दीन महामाद विकार भांदा अनक जोन परमीन गोविंद बिसरे कमन दुख गनी है सुख नानक हर पद कीन सारंग महला पंजवा माई रे चरण है उठ गही दर्शन पेख मेरा मन मोहयो दुर्मत जात बही रहाओ
अगह अगाध ऊच अबनासी कीमत जात न कही जल थल पेख पेख मन बिगस्यो पूर रहो सब मही दीन दयाल प्रीतम मन मोहन मिल साध कीनो सही सिमर सिमर जीवत हर नानक जम की पीर ना पही सारंग महला पंजवा मायरी मन मेरो मतवारू पेख दयाल आनंद सुख पूरन हर रस रप्यो खुमारू रहाओ निर्मल पये उजल जस गावत बहोर न होत कारू चरण कमल स्यो डोरी राखी भेट्यो पुरख अपारू कर गहलीने सरबस दीने दीपक पयो उजारू नानक नाम रसक बैरागी कुलह समूहा तारू सारी महला पंजवा मायरी आन सिमर मर जाहे त्याग गोविंद जीयन को दाता माया संग लपताहे रहाओ नाम बसार चलह अनमार्ग नरक कोर मह पाहे अनक सजाई गणत ना आवै गर्भ गर्भ परमाहे से तनवंते से पतवंते हर की सरन समाहे गुर प्रसाद नानक जग जीत्यो बहुर ना आवह जाहे सारंग महला पंजवा हर काटी कुटलता कुठार ब्रह्म बन दहन पये खिन पीतर राम नाम परहार रहाओ काम क्रोध निंदा परहरिय काढे साधु कै संग मार जन्म पदार्थ गुरमुख जीते आ बहुर ना जुए हार आठ पहर कब के गुण गावे पूर्ण शब्द विचार नानक दासन दास जन तेरा पुनः पुनः नमस्कार सारंग महला पंजवा पोथी परमेश्वर का थान साध संग गावह गुण गोविंद पूर्ण ब्रह्म ज्ञान रहाओ साधक सिद्ध सगल मुन लोचह बिरले लागे ध्यान जिसे कृपाल हुए मेरा स्वामी पूर्ण ताको काम जा कै हृदय वसै पै पंजन तिस जानै सगल जहान खिन पल बिसर नहीं मेरे करते एहो नानक मांगे दान सारी महला पंजवा बूठा सर्ब थाई मेह आनंद मंगल गाओ हर जस पूर्ण प्रगट्यो नेह रहाओ चार कुंट दह दिस जल निद ऊन थाओ न के कृपा निद गोविंद पूर्ण जी दान सब देव सत सत हर सत स्वामी सत साध संगेव सत तेज अन जिन प्रतीत उपजी नानक नह परमेव सारी महला पंजवा।

रहाओ। कर मस्तक धार्यो मेरे माथे, साध संग गुण गाए, तुम्हारी कृपा ते सब फल पाए, रसक राम नाम त्याए, अब चलनी मतराई सतगुर, कबहू डोलत नाही, गुर नानक जब भये दयारा, सर्व सुखा निद पाही। सारंग महला पंजवा, निभे नाम की सच खेप, लाभ हर गुण गाए निद तन, बिखे माहे अलेप रहाव। जी जंत सगल संतोखे, अपना प्रभ त्याए, रत्न जन्म अपार जीत्यो।

जानो दुतिया भाऊ सब लूह रहाओ त्याग गोपाल अवर जो करना ते बिखिया के खूह दर्श प्यास मेरा मन मोहयो काडी नरक ते तूहू संत प्रसाद मिलियो सुख दाता बिनसी हूं मैं हूहू राम रंग राते दास नानक मौल्यो मन तन जूहू सारंग महला पंजवा बिनसे काच के व्यवहार राम भज मिल साध संगत एह जग मह सार रहाव ईत ऊत ना डोल कतहु नाम हृदय तार गुर चरण बोहत मिलियो भागी उतरियो संसार जल थल महियल पूर रहियो सर्वनाथ अपार हर नाम अमृत पियो नानक आन रस सब खार सारंग महला पंजवा ताते करन पलाह करे महा विकार मोह मद मातो सिमरत नाहे हरे रहाओ साध संग जपते नारायण तिनके दोख जरे सफल देहे तन ओए जन्मे प्रभ कै संग रले चार पदार्थ अष्ट दशा सिद्ध सब ऊपर साध पले नानक दास तूर जन बांचे उदरह लाग पले सारंग महला पंजवा हर के नाम के जन कांखी मन तन बचन एही सुख चाहत प्रभ दर्श देख है कब आखी रहाओ तू बेअंत पार ब्रह्म स्वामी गत तेरी जाए न लाखी चरण कमल प्रीत मन बेदया कर सर्बस अंतर राखी वेद प्राण सिमरत साधु जन एह बाणी रसना भाखी जप राम नाम नानक निस्तरी है होर दुतिया बिरथी साखी सारंग महला पंजवा माखी राम की तू माखी जह दुर्गंध तहां तू बैसह महा बिखिया मद चाखी रहाव कितह स्थान तू टिकन ना पावह एह विद देखी आखी संता बिनत कोई ना छाडिया संत परे गोविंद की पाखी जी जंत सगले तै मोहे बिन संता किने ना लाखी नानक दास हर कीर्तन राता शब्द सुरत सच साखी सारंग महला पंजवा मायरी काटी जम की पास हर हर जपत सर्ब सुख पाए बीचे ग्रस्त उदास रहाओ कर कृपा लीने कर अपने उपजी दर्श प्यास संत संग मिल हर गुण गाए बिनसी दुतिया आस महाध्यान अतवी ते काडे मार्ग संत कहियो देखत दर्श पाप सब नास्ते हर नानक रतन लहियो सारंग महला पंजवा मायरी अरे ओ प्रेम की खोर दर्शन रुचत प्यास मन सुंदर सकत न कोई तोर रहाव प्राण मान पत पित सुत बंधप हर सर्बस धन मोर त्रिग शरीर अस्त बिष्टा क्रिम बिन हर जानत होर पयो कृपाल दीन दुख भंजन परा पूर्व ला जोर नानक सरन कृपा निध सागर बिन से आन निहोर सारंग महला पंजवा नीकी राम की धुन सोए चरण कमल अनूप स्वामी जपत साधु होए रहाओ चितवता गोपाल दर्शन कलमला कगत होए जन्म मरण विकार अंकुर हर काट छाडे खोए परा पूर्व जिसह लिखिया बिरला पाए कोए रमण गुण गोपाल करते नानका सच जोए सारंग महला पंजवा हर के नाम की मत सार हर बसार जो आन राच है मिथन सब विस्थार रहाओ साध संगम भज स्वामी पाप होवत खार चरनार बिंद बसाए हृदय बहुर जन्म ना मार कर अनग्रह राख लीने एक नाम आधार दिन रैन सिमरत सदा नानक मुख उज्जल दरबार सारंग महला पंजवा।
मानी तू राम कै दर मानी साध संग मिल हर गुण गाय बिनसी सब अवमानी रहाओ तारे अनुग्रह अपनी कर लीनी गुरमुख पूर ज्ञानी सर्ब सुख आनंद कनेरे ठाकुर दर्श त्यानी निकट वर्तन सा सदा सुहागन दह दिस साई जानी प्रिय रंग रंग रती नारायण नानक तिस कुर्बानी सारंग महला पंजवां त्वा चरण आसरो ईस तुम्हें पछानू साख तुम्हें संग

बेअंत अपरंपर स्वामी गुर कृपा कोई लाख है। बिन बकने बिन कहन कहावन अंतर जामी जाने जां को मेल लए प्रभ नानक से जन दरगाह मानी। सारंग महला पंजवा चौपदे घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर भज आन कर्म बेकार मान मोह ना बुझत तृष्णा काल ग्रस संसार रहाव खात पीवत हस्त सोवत औद बिति आसार नरक उदर परमंत जल तो जमह की निसार पर द्रोह करत बेकार निंदा पाप रत कर चार बिना सतगुर बूझ नाही तम मोह महा अंधार बिख ठगौरी खाए मूठो चेतना सिरजनहार गोविंद गुप्त होए रहो नियारू मातंग मत अहंकार कर कृपा प्रभ संत राखे चरण कमल आधार कर जोर नानक सरने आयो गोपाल पुरख अपार सारंग महला पंजवा कर शिवा पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद शुभ बचन बोल गुण अमोल किंकरी बेकार देखरी विचार गुर शब्द त्याए महल पाए हर संग रंग करती

सर्वरी प्रीत प्यार प्रभ सदारी दयार काए आन आन रुचि है हर संग संग खची है जो साध संग पाए कहो नानक हर त्याए अब रहे जमह मेल सारंग महला पंजवा कंचना बहु दत करा भूम दान अर्प धरा मन अनक सोच पवित्र करत नाही रे नाम तुल मन चरण कमल लागे रहाओ चार भेद जेहव भने दस अष्ट खष्ट सरवन सुने नहीं तुल गोविंद नाम तुने मन चरण कमल लागे बरत संद सोच चार क्रिया कुंट निराहार अपरस करत पाक सार निवली कर्म बहु विस्तार धूप दीप करते हर नाम तुल ना लागे राम दयार सुन दीन बेनती देहो दर्श नैन पेखो जन नानक नाम मिष्ट लागे सारंग महला पंजवा राम राम राम जाप रमत राम सहाई रहाओ संतन कै चरण लागे काम क्रोध लोभ त्यागे गुरु गोपाल भये कृपाल लभदे अपनी पाई बिनसे भ्रम मोह अंध टूटे माया के बंद पूर्ण सर्वत्र ठाकुर नह को बैराई स्वामी सो प्रसन्न भये जन्म मरण दुख गए संतन कै चरण लाग नानक गुण गाई सारंग महला पंजवा हर हरे हर मुख बोल हर हरे मन तारे रहाओ श्रवण सुनन भगत करन अनक पातक पुनः चरण।

कलमल दुख जारी कहत मुक्त सुनत मुक्त रहत जन्म रहते राम राम सार भूत नानक तत बिचारे सारंग महला पंजवां नाम भगत मांग।

हर जन के रेन बांछ दैन हार स्वामी सर्ब कुशल सुख विश्राम आनंदा आनंद नाम जम की कछ नाहीं त्रास सिमरे अंतर जम।

जो साध संग पग रौ रहाउ, दृष्टौ कस संग न जाय, मान त्याग मोहा, एकै हर प्रीत लाए, मिल साध संग सोहा, पायो है गुण निदान, सगले आस पूरी, नानक मन आनंद पए, गुर बिकम गार तोरी, सारंग महला पंजवा, मन बेरा गैगी, खोजती दरसार रहाउ, साधु संतन सेवकै, प्रियो ही अरै त्यायो, आनंद रूपी पेख कै, हों महल पावोंगी।

नौ परी चुनातकार सुंदर अनग पाव करत फिरत बिन गोपाल तुहे रहाओ तीन पौने लपटाए रही काच कर्म ना जात सही उनमत अंध तंद रचत जैसे महासागर होहे उदरे हर संत दास काट दीनी जम की फास पतत पावन नाम जाको सिमर नानक ओहे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सारंग महला नौवां हर बिन तेरो को ना सहाय का की मात पिता सुत बनता को काहू को पाई रहाओ तन धरनी अर संपत सगरी जो मान्यो अपनाई तन छूटै कछ संग ना चाले कहां ताहे लपटाई दीन दयाल सदा दुख भंजन ता स्यो रुचना बढ़ाई नानक कहत जगत सब मिथ्या ज्यों सुपना रह नाई सारंग महला नौवा कहां मन बिखिया स्यों लपटाही या यग मह को रहन ना पावे।

सगल बला सह ज्यो बादर की शाही ताज अभमान सरन संतन गहो मुक्त हो हे शिन माही जन नानक भगवंत भजन बिन सुख सुपन पी नाही सारंग महला नौवा कहा नर अपनो जन्म गुआवे माया मद भिख्या रस रचियो राम शरण नहीं आवे रहाव एह संसार सगल है सुपनो देख कहां लोभावे।

जन नानक सो जन मुक्ता राम भजन चित लावे सारंग महला नौवां मन कर कबहू ना हर गुण गायो बिख्या सकत रहो निस बासुर कीनो अपनो पायो रहाओ गुर उपदेश सुनियो नह कानन पर दारा लपटायो पर निंदा कारण बहु तावत समझियो नह समझायो कहां कहो मैं अपनी करनी जेह विद जन्म गवायो कह नानक सब औगन मोह मह राख लेहो सरनायो राग सारंग अष्टपदियां।

आई। जय जगदीश तेरा जस जाचो, मैं हर बिन रहन ना जाई रहाओ। हर की प्यास प्यासी कामन, देखो रहन सुबाई। श्री तारनाथ मेरा मन लीना, प्रभ जाने पीर पराई। गणत शरीर पीर है हर बिन, गुर शब्दी हर पाई। हो दयाल कृपा कर हर जियो, हर सियो रहा समाई। ऐसी रबत रवो मन मेरे, हर चरणी चित लाई। विषम भये गुण गाए मनोहर, निरपौ सहज समाई। हृदय नाम सदा तुन निश्चल, घटै न कीमत पाई। बिन नावै सब कोई निरतन, सतगुर बूझ बुझाई। प्रीतम प्राण भये सुन सजनी, दूत मोए बिख खाई। जब की उपजी तब की तैसी, रंगुल पही मन पहाई। सहज समाध सदा निव हर सियो, जीवा हर गुण गाई। गुर कै शब्द रत्ता बैरागी,

ऐसी गुरमत पाई सनक सनाद ब्रह्माद इंद्रादिक भगत रते बन आई नानक हर बिन करी न जीवा हर का नाम बढ़ाई सारंग महला पहला हर बिन क्यों तीरै मन मेरा कोट कल्प के दुख बनासन साच दृढ़ाए निबेरा रहाओ क्रोध नवार जले हो ममता प्रेम सदा नौरंगी अनुभव बिसर गए प्रभ जाचिया हर निर्माल संगी चंचल मत त्याग भव भंजन पाया एक शब्द लिव लागी हर रस चाख त्रिखा निवारी हर मेल लय बड भागी अपरत सिंच पये सुपर सर गुरमत साच निहाला मन रतना अमृते नेह केवल आद जुगाद दयाला मोहन मोहे लिया मन मोरा बड़े भाग लिव लागी साच विचार किल विख दुख काटे मन निर्मल अनरागी गहर गंभीर सागर रतनागर अवर नहीं अन पूजा शब्द विचार परम पहु पंजन अवर न जानिया दूजा मनुआ मार निर्मल पद चीनिया हर रस रते अदकाई एक सबिन मैं अवर न जाना सतगुर बूझ बुझाई अगम अगोचर अनाथ अजोनी गुरमत एको जानिया सुपार भरे नाही चित डोले मन ही ते मन मानिया गुर प्रसादी अकथो।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद मन मेरे हर कै नाम बढ़ाई हर बिन अवर न जाना कोई हर कै नाम मुक्त गत पाई रहाओ शब्द पौ भंजन जम काल निखंजन हर सेती लिवलाई हर सुख दाता गुरमुख जाता सहजे रहिया समाई भगतां का भोजन हर नाम निरंजन पैनन भगत बढ़ाई निज कर वासा सदा हर सेवन हर दार शोभा पाई मनमुख बुद्ध काची मनुआ डोलै अकथ न कथै कहानी गुरमत निश्चल हर मन वसिया अमृत साची बानी मन के तरंग शब्द निवारे रसना सहज सुपाई सतगुर मिल रही है सद अपने जिन हर से ती लिवलाई मन शब्द मरे ता मुक्तो होवे हर चरणी चित लाई हर सर सागर सदा जल निर्मल नावे सहज सुपाई शब्द विचार सदा रंग राती हम मैं तृष्णा मारी अंतर नेह केवल हर रविया सब आत्म राम मरारी सेवक सेव रहे सच राते जो तेरे मन पानी दुबदा महल ना पावे जग झूठी गुण अवगण ना पछाणी आपे मेल लए अकथ कथिया सच शब्द सच बाणी नानक साचे सच समाणी हर का नाम बखाणी सारंग महला तीजा मन मेरे हर का नाम अत मीठा जन्म जन्म के किल विख पौ भंजन गुरमुख एको डीठा रहाओ कोट कुटंतर के पाप बनासन हर साचा मन पाया हर बिने अवरना सूजै दूजा सतगुर एक बुझाया प्रेम पदार्थ जिन घट वसिया सहजे रहे सुमाई शब्द रते से रंग चलूले राते सहज सुपाई रसना शब्द विचार रस राती लाल पई रंग लाई राम नाम ने केवल जानिया मन तृप्तिया शांति आई पंडित पढ़ पढ़ मोनी सब थाके भ्रम भेख थके भेख तारी गुर प्रसाद निरंजन पाया साचै शब्द विचारी आवा गौण निवार सच राती साच शब्द मन पाया सतगुर सेव सदा सुख पाईऐ जिन विचों आप गुआया साचै शब्द सहज धुन उपजै मन साचै लिव लाई अगम अगोचर नाम निरंजन गुरमुख मन वसाई एक समय सब जगतो वरतै विरला एक पछाणै शब्द मरे ता सब किस सूजै अन दिन एको जाने जिसनो नदर करे सोई जन बूजै होर कहना कथन ना जाई नानक नाम रते सदा बैरागी एक शब्द लिवलाई सारंग महला तीजा मन मेरे हर की अकथ कहानी हर नदर करे सोई जन पाए गुरमुख विर ले जानी रहाओ हर गहर गंभीर गुणी गहीर गुर कै शब्द पछानिया बहु विध कर्म करह भाई दूजे बिन शब्द बहुरानिया हर नाम नावै सोई जन निर्मल फिर मैला मूल ना होई नाम बिना सब जग है मैला दूजे परम पथ खोई क्या दृढ़ा क्या संग्रह त्यागी मैं ता बूझ ना पाई हो दयाल कृपा कर हर जियो नामो हुए सखाई सच्चा सच दाता कर्म विदाता जिस भावै तिस नाए लाए गुरु द्वारे सोई बूझे

मुख द्वारा जिन दर सूझै से कदे ना बगाड़ै सतगुर बूझ बुझाई सत संयम करनी किरत कमावै आवण जान रहाई से दर साचै साच कमावै जिन गुरमुख साच अधारा मन मुख दूजै भरम भुलाए ना बूझै विचारा।

सिद्धि से संग ना कछु हो जाई। कहो नानक हर हर अराध हो, कवन उपमा देओ कवन बढ़ाई। पूछो संत मेरो ठाकुर कैसा, हियो अरापो देहो संदेसा। देहो संदेसा प्रभ जीओ कैसा, कह मोहन परवेसा। अंग अंग सुखदाई पूर्ण ब्रह्माई, थान थान अंतर देसा। बंधन ते मुक्ता कट कट जुगता, कह ना सको हर जैसा। देख चिरित नानक मन मोहयो, पूछे दीन मेरो ठाकुर कैसा। कर कृपा अपने पह आया, तन सोरदा जे चरण बसाया। चरण बसाया संत संगाया, अज्ञान अंधेर गुवाया। भया प्रगास हृदय उलास, प्रभ लोड़ींदा पाया। दुख नाठा सुख घर मह बूठा, महा आनंद सह जाया। कहो नानक मैं पूरा पाया, कर कृपा अपने पह आया। सारंग की वार महला चौथा, राय महमे हसने की धुन। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सलोक महला दूजा। गुर कुंजी पाहु निवल, मन कोठा तन छत। नानक गुर बिन मन का ताक न उगड़े, अवरना कुंजी हाथ। महला पहला, ना पी जय रागी ना दी बेद। ना पी जय सुरती ज्ञानी जो, ना पी जय सोगी की तैरोज। ना पी जय रूपी माली रंग, ना पी जय तीत पवे नंग। ना पी जय दाती की तै पुन, ना पी जय बाहर बैठिया सुन। ना पी जय भेड़ मरह भिड़ सूर, ना पी जय केते हो धूड़। लेखा लिखिए मन कै पाए, नानक पी जय साचे नाए। महला पहला, नव शे खटका करे विचार। निस दिन उचरै पार अठार, तिन पी अंत न पाया तोहे। नाम बिहून मुक्त क्यों होए, नाभ वस्त ब्रह्म अंत ना जानिया। गुरमुख नानक नाम पछाणिया, पौड़ी आपे आप निरंजना। जिन आप उपाया, आपे खेल रचायोन। सब जगत सबाया, त्रै गुण आप सिरजियन। माया मोह वधाया, गुर प्रसादी उबरे जिन पाणा पाया। नानक सच वरतदा, सब सच समाया।

तोल घोर हौली मतनी हौले बोल तरती पानी पर्वत पार क्यों कंडे तोले सुनियार तोला मासा रतक पाए नानक पुछिया दे सजाए मूर्ख अंधिया अंधी तात कह कह कहन कहाँ आप महला पहला आखने औखा सुनने औखा आख न जापी आख एक आख आख है शब्द पाख है अर्ध उर्द दिन रात जे कहो होए ता केहो दिसे जापै रूप न जात सब कारण करता करे काटे ओ काट काट थाप आखने औखा नानका आख न जापै आख पौड़ी नाए सुने मन रहसी है ना मेशा ते आई नाए सुने मन तृप्ति है सब दुख गवाई नाए सुने ना उपजे नामे वडे आई नामे ही सब जात पत नामे गत पाई गुरमुख नाम ते आई है नानक लिवलाई सलोक महला पहला झूठ न रागी झूठ न वेदी झूठ न चंद सूरज की भेदी झूठ न अन्नी झूठ न नाई झूठ न मिंबर है सब थाई।

अण सबे करने तप सब सबे गीत ज्ञान सबे बुद्धि सुध सब सब तीर्थ सब थान सब पातशाहियां अमर सब सब खुशियां सब खान सबे

हुक्म चलाए अपने करमी वह कलाम, नानक सच्चा सच नाए सच सभा दीवान पौड़ी, नाए मने सुख उपजे नामे गत होई, नाए मने पत पाईए हिरदय हर सोई, नाए मने पव जल लंघिए फिर बिघन ना होई, नाए मने पंथ प्रगटा नामे सब लोई, नानक सतगुर मिले नाओ मनिए जिन देवे सोई। श्लोक महला पहला। पुरियां खंडा सिर करे इक पैर ते आए, पौन मार मन जप करे सिर मुंडी तले दे, किस ऊपर ओह टिक टिक किसनो जोर करे, किसनो कहिए नानका किसनो करता दे, हुक्म रहाए।

अवतार सिद्ध समाधि सब सुनी जाए देखा दरबार अगे सच्चा सच नाय निरपो भय विनसार होर कच्ची मती कच पिच अंधिया अंध बीचार नानक करमी बंदगी नदर लंघाए पार पौड़ी नाए मन दुरमत गई मत प्रगटी आया नाओ मन हों गई सब रोग गवाया नाए मन नाम उपजै सहजे सुख पाया नाए मन शांत उपजै हर मन वसाया नानक नाम रतन है गुरमुख हर त्याया सलोक महला पहला होर श्री कहो है कोई तेरा तिस अगे तुदे आखा तुद अगे तुदे सलाही मैं अंधे नाओ सुजाखा जेता आखन साही शब्दी भाखिया पाए सुपहाई।

सब कारण करता करे देखै वारो वार जे चुपै जे मंगिए दात करे दातार एक दाता सब मंगते फिर देखै आकार नानक ए मैं जानिए जीवै देवन हार पौड़ी नाए मन्ने सुरत उपजै नामे मत होई नाए मन्ने गुण उच्चरै नामे सुख सोई नाए मन्ने भ्रम कटिए फिर दुख ना होई नाए मन्ने सालाहिए पापा मत धोई नानक पूरे गुर ते नाउ मन्निए जिन देवै सोई सलोक महला पहला शास्त्र वेद पुराण पढ़मता ऊ कारणता अजानता जा बूझै ता सूझै सोई नानक आखै कूक ना होई महला पहला जा हो तेरा ता सब किश मेरा हो नाही तू होवै आपे सकता आपे सुरता शक्ति जगत परोवै आपे भेजे आपे सदे रचना रच रच वेखै नानक सच्चा सच्ची नाही सच पवै धुर लेखै पौड़ी नाम निरंजन अलख है क्यों लखिया जाई नाम निरंजन नाल है क्यों पाइए पाई नाम निरंजन वर्तदा रविया सब ठाई गुर पूरे ते पाइए हिरदै दे दिखाई नानक नदरी कर्म होए गुर मिलिए पहाई सलोक महला पहला कल होई कुत्ते मुही खाज हुआ मुरदार कूड़ बोल बोल भौंकना चूका धर्म विचार जिन

पाई, घर मंदिर गच गीरिया किस साथ ना जाई, सोएन साखत पौन वेग त्रिग त्रिग चतुराई, शक्ति अमृत प्रकार करह बहु मैल वधाई, नानक जो देवै तिसह ना जाननी मन मुख दुख पाई। श्लोक महला तीजा। पढ़ पढ़ पंडित मोनी थके, जे संतर भव थके भेख तारी, दूजै पाए नाओ कदे ना पाइन दुख लागा अत पारी, मूर्ख अंधे त्रै गुण सेव है माया कै व्योहारी, अंदर कपट उदर भरन कै ताई, पाठ पढ़ गवारी, सतगुर सेवे सो सुख पाए जिन्हों मैं विचों मारी, नानक पढ़ना गुणना एक नाओ है बूझै को बीचारी। महला तीजा। नांगे आवना नांगे जाना, हर हुक्म पाया।

सहजे हर रस पीजे, नानक सुखदाता सदा सलायो, रसना राम रवीजे। पौड़ी गढ़ काया शिंगार बहु भांत बनाई, रंग परंग कतीफिया पहरह धर्माई, लाल सफेद दुलीचिया बहु सभा बनाई।

सहजे सुख सुत्ती शब्द समवाय, आपे प्रभ मेल लई गल लाए, दुबदा चूपी सहज सुपाय, अंतर नाम वसया मन आए, से कंठ लाए जे पन कढ़ाए, नानक जो तुर मिले से हुण आन मलाए। महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया क्या जप जप है होर, बिस्ता अंदर कीत से मुठे तंदे चोर, नानक नाम न विसरे झूठे लालच होर पौड़ी, नाम सलाहन नाम मन अस्थर जग सोई, हिरदय हर हर चितवे दूजा नहीं कोई, रोम रोम हर कुचरे खिन खिन हर सोई, गुरमुख जन्म सकार था निर्मल मल खोई, नानक जीवन दा पुरख त्याया अमरा पद होई। सलोक महला तीजा, जिन्नी नाम वसारिया बहु कर्म कमावे होर, नानक जानपुर बदे मारी है ज्यो सन्नी उपर चोर। महला पंजवा, तरत सुहावड़ी आकाश सुहंदा, जपंदिया हर नाउ नानक नाम मिहूणिया, तिन तन खावह काउ पौड़ी, नाम सलाहन भाउ कर निज महली वासा, उए बहुड़ जोन ना आमनी फिर होहे ना बनासा, हर से ती रंग राव रहे सब सास ग्रासा, हर का रंग कदे ना उतरे गुरमुख परगासा, उए कृपा कर कै मेलियन नानक हर पासा। सलोक महला तीजा, जिचर इह मन लहरी विच है हौ मैं बहुत अहंकार, शब्दै साध ना आवई नाम ना लगे प्यार, सेवा थाए ना पवई तिसकी खप खप हुए खुआर, नानक सेवक सोई आखी है जो सिर धरे उतार, सतगुर का भाणा मन ले शब्द रखे उर धार। महला तीजा, सो जप तप सेवा चाकरी जो खसमै भावे, आपे बख्शे मेल ले आपत गुआवे, मिलिया कदे न विछड़े ज्योति ज्योत मलावे, नानक गुर प्रसादी सो बुझसी जिसे आप बुझावे पौड़ी, सब को लेखे विच है मनमुख अहंकारी, हर नाम कदे ना चेतई जम काल सिर मारी, पाप विकार मनूर सब लदे बहु भारी, मार्ग बिखमंड रावणा क्यों तरिये तारी, नानक गुर राखे से उभरे हर नाम उधारी। सलोक महला तीजा, बिन सतगुर सेवे सुख नहीं मर जम्मे वार वार, मोह ठगौली पाईन बहु दूजे पाए विकार, एक गुर प्रसादी उभरे किस जन को करह सब नमस्कार, नानक अन दिन नाम त्याए तू अंतर जित पावह मूख द्वार। महला तीजा, माया मोहे वसारिया सच मरना हर नाम, तंदा करतिया जन्म गया अंदर दुख सहाम, नानक सतगुर सेव सुख पाया जिन पूर्व लिखिया कराम पौड़ी, लेखा पढ़िया हर नाम फिर लेख ना होई, पुछ ना सकै कोई हर दर सद ढोई, जम काल मिले दे भेट सेवक नित होई, पूरे गुरते महल पाया पत प्रगट लोई, नानक अनहद धुनी दर वज दे मिलिया हर सोई। सलोक महला तीजा, गुर का कहया जे करे सुखी हूं सुख सार, गुर की करनी पौ कटियै नानक पावै पार। महला तीजा, सच पराणा ना थीयै नाम ना मैला होए, गुर कै भाणै जे चलै बहुड़ ना आवण होए, नानक नाम वसारिऐ आवण जाना दोए पौड़ी, मंगत जन जाचै दान हर देहु सुभाए, हर दर्शन की प्यास है दर्शन तृप्ताए, खिन पल घड़ी ना जीवऊ बिन देखे मरा माए, सतगुर नाल दिखालिया रव रहिया सब थाए, सुत्या आप उठाल दे नानक लिव लाए। सलोक महला तीजा,
मनमुख बोल न जाननी, ओना अंदर काम क्रोध अहंकार थाओ कथाओ न जाननी। सदा चित वह बेकार, दरगाह लेखा मंगी है उथे होए कूड़ियार। आपे श्रेष्ठ उपायन आप करे विचार, नानक किसनो आखी है सब वरत आप सत्यार। महला तीजा, हर गुरमुख तिनी अराध्या, जिन कर्म प्राप्त होए नानक हो बलिहारी तिन को। जिन हर मन बसिया सोए पौड़ी, आस करे सब लोक बहु जीवन जानिया। नित जीवन को चित गढ़ मंडप सवारिया, वलवंच कर अपाव माया हेरे आणिया। जमकाल निहाले सास आव घटे बेतालिया, नानक गुर सरनाई उबरे हर गुर रखवालिया। सलोक महला तीजा, पढ़ पढ़ पंडित वाद बखान दे माया मोह सवाए। दूजे पाए नाम वसारिया, मन मूरख मिले सजाए। जिन कीते तिसै ना सेवनी, देंदा रिजक समाए। जम का पाहा गलहो ना कटी है, फिर आवह जाए। जिनको पूर्व लिखिया सतगुर मिलिया तिन आए, अन दिन नाम त्याएंदे नानक सच समाए। महला तीजा, सच वणंज है सच सेवंदे, जे गुरमुख पैरी पाए। नानक गुर कै पाण जे चल है, सहजे सच समाए पौड़ी। आसा विच अत दुख घणा, मन मुख चित लाया। गुरमुख भये निरास परम सुख पाया, विचे ग्रह उदास अलिपत लिव लाया। उन्ना सोग वजोग ना व्यापई, हर भाणा पाया। नानक हर सेती सदा रव रहे, तुर लए मलाया। सलोक महला तीजा, पराई अमान क्यों रखी है, दित्ती ही सुख होए। गुर का शब्द गुर थै टिकै, होर थै प्रगट ना होए। अन्ने बस माणिक पया, घर घर वेचण जाए। ओना परख ना आवई, अड ना पल्ले पाए। जे आप परख ना आवई, तां पारखियां थावो लयो परखाए। जे ओस नाल चित लाए, तां वत लह नौ नित पल्ले पाए। घर हुंदै धन जग भुखा मोआ, बिन सतगुर सोजी ना होए। शब्द सीतल मन तन वसै, कितै सोग वजोग ना कोए। वस्त पराई आप गर्व करे, मूर्ख आप गणाए। नानक बिन बूझे किनै ना पायो, फिर आवै जाए। महला तीजा, मन आनंद भया मिलिया हर प्रीतम। सरसे सज्जन संत प्यारे, जो तुर मिले ना विचड़ है कबहू। जे आप मेले करतारे, अंतर शब्द रविया गुर पाया। सगले दुख नवारे, हर सुख दाता सदा सलाही। अंतर रखा उरतारे, मन मुख तिनकी बखीली के करे। जे सच्चा शब्द सवारे, उन्ना दी आप पात रख सी मेरा प्यारा। शरणागत पए गुरुद्वारे, नानक गुरमुख से सुहेले पए। मुख उजल दरबारे पौड़ी, स्त्री पुरख है बहु प्रीत मिल मोह वधाया। पुत्र कलत्र नित वेखै बिकसै मोह माया। देश परदेश धन चुराए, आन मोहे पाया। अंत होवै वैर विरोध, को सकै ना छडाया। नानक बिन नावै त्रिग मोह, जित लग दुख पाया। सलोक महला तीजा, गुरमुख अमृत नाम है, जित खादै सब भुख जाए। तृष्णा मूल ना हो गई, नाम वसै मन आए। बिन नावै जे होर खाना, तित रोग लगै तन धाए। नानक रस कस शब्द सलाहना, आपे लए मलाए। महला तीजा, जिया अंदर जियो शब्द है, जित सह मेलावा होए। बिन शब्द जग अनेर है, शब्दे प्रगट होए। पंडित मोनी पर पड़ थके, पेख थके तन धोए। बिन शब्द किनै ना पायो, दुखिए चले रोए।
नानक नदरी पाई है कर्म प्राप्त हुए पौड़ी। स्त्री पुरख अत ने हो बह मंद पकाया दिसदा सब किस चल सी मेरे प्रभ पहाया। क्यों रही है थिर जग को कढ़ो उपाया गुर पूरे की चाकरी थिर कंध सबाया। नानक बख्श मलायन हर नाम समाया। सलोक महला तीजा माया मोहे वसारिया गुर का भउ हेत अपार। लोभ लहर सुध मत गई सच ना लगे प्यार। गुरमुख जिन्ना शब्द मन वसै दरगाह मूख द्वार। नानक आपे मेल लय आपे बख्शन हार। महला चौथा नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना विसरे सरै ना बिंद। किस स्यों क्यों मन रूसी है जिसे हमारी चिंद। महला चौथा सामने आया चिम चिमा हर गुरमुख नाम त्याय। दुख भुख काड़ा सब चुकाए सी मीह उठा शहबर लाए। सब तरत पई हरियावली अन जमया बोहल लाए। हर अचिंत बुलावे कृपा कर हर आपे पावे थाए। हरत सह त्यावो संत जन हो जो अंते लय छाए। हर कीरत भगत आनंद है सदा सुख वसै मन आए। जिन्ना गुरमुख नाम अरादया तिन्ना दुख भुख लह जाए। जन नानक तृपतै गाए गुण हर दर्शन देहो सुभाए। पौड़ी गुर पूरे की दात नित देवै चढ़ै सवाइया। तुस देवै आप दयाल ना छपै छपाइया। हिरदै कवल परगास उन मन लिव लाइया। जे को करे उस दी रीस सिर छाई पाइया। नानक अपड़ कोय ना सकई पूरे सतगुर की वडियाइया। सलोक महला तीजा अमर वे परवाहो है तिस नाल सियाणप ना चलई ना हुज्जत करनी जाए। आप छोड़ सरनाए पवे मन लए रजाए। गुरमुख जम डंड ना लगई हौ मैं विचों जाए। नानक सेवक सोई आखी है जे सच रह लिवलाए। महला तीजा दात जोत सब

मन बिखिया बन जाए, भूलोरे ठगमूरी खाए रहाओ। जैसे मीन पानी में रह, काल जाल की सुध नहीं लह। जेह बा स्वादी लीलत लोह, ऐसे कनक कामनी बांध्यो मोह। ज्यों मद माखी संचय अपार, मद लीनो मुख दीनी शार। गऊ

आड्या तरै हाथ संचय समझ नहीं मूड़, धन धरती तन होए गयो धूड़, काम क्रोध तृष्णा अत जरै,

पूरा दास अनिन मेरो निज रूप दर्शन निमुख त्राप त्रई मोचन परसत मुकत करत ग्रह कूप रहाउ मेरी बांदी भगत छिडावै।

हर के संग बसे हर लोक तन मन अर्प सर्बस सब अर्प्यो आनंद सहज तुन झोक रहाओ दर्शन पेख भय निर्भिखे पाए है सगले थोक आन बस्त स्यो काज न कछु है सुंदर बदन अलोक श्याम सुंदर ताजे आन जो चाहत

दी। हर बिन कौन सहाई मन का, मात पिता भाई सुत बनता, हित लागो सब पन का रहाउ, आगे कौ किछ तुलहा बंद हो, क्या परवासा धन का, कहां बसासा इस भांडे का, इतनक लागै ठन का, सगल धर्म पुन फल पाव हो, तूर बांच हो सब जन का, कह कबीर सुन।

पुर तारा मलार मोहल्ला पहला जिन धन पिर का साधना जानिया सा बिलख बदन कुमलानी पई नरासी कर्म की फासी बिन गुर भरम पुलानी बस घना मेरा पिर घर आया बल जावा गुरे अपने प्रीतम जिन हर प्रभ आन मलाया रहाउ नौ तन प्रीत सदा ठाकुर सिउ अन दिन भगत सुहावी मुक्त भये गुरदर्श दिखाया जुग जुग भगत सुभावी हम थारे त्रे पवन जग तुमरा तू मेरा हो तेरा सतगुर मिलया निरंजन पाया बहुर ना भवजन फेरा अपने पिर हर देख बगासी तो धन साच शिंगारू अकुल निरंजन सिउ सच साची गुरमत नाम आधारू मुक्त पई बंधन गुर खोले शब्द सुरत पत।

ठहरै सोई। मलार महला पहला दुख वे छोड़ा एक दुख भूख, एक दुख सकतवार जमदूत, एक दुख रोग।

ज्ञान उठ खलोए रोग मन अंधे को मिले सजाए वैद ना भोले दारू लाए चंदन का फल चंदन वास मानस का फल घट महसास सास गए काया ढल पाए ताके पाछे कोई ना खाए कंचन काया निर्मल हंस जिसमें नाम निरंजन अंश दुख रोग सब गया गवाए नानक छूटस सत्य नाई मलार महला पहला दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख पीसन हथ दान नित नित लेहो ना सीजै दे अंत

स्थान है। ब्रह्मा विष्णु में हिस्सा यह त्रिगुण माया जिन जगत पलाया जन्म मरण का सहसा गुरु प्रसादी एको जाने चूकै मनो अंदेसा हम दीन मूर्ख आविचार।

बुद्ध बदा तैसा एहो संसारा जिस ते होआ तिसै समाना चूक गया पासारा मलार महला तीजा जिन्नी हुक्म पछाणिया से मेले हम मैं शब्द जलाए सच्ची भगत करह दिन राती सच रहे लिवलाए सदा सच हर वेख दे गुर कै शब्द सुपाए मन रे हुक्म मन सुख होए प्रभ पाणा अपना भावदा जिस बख्शे तिस बिघन ना कोई रहाव त्रै गुण सभा धात है ना हर भगत ना पाए गत मुक्त कदे ना होवे हम मैं कर्म कमाए साहिब भावे सोथी है पय किरत फराए सतगुर भेटे मन मर रह हर नाम वसे मन आए तिसकी कीमत ना पवे कहना किशु ना जाए चौथे पद वासा होया सच्चे रह समाए मेरा हर प्रभ अगमे अगोचर है कीमत कहन ना जाए गुर प्रसादी बुझी है शब्दे कार कमाए नानक नाम सलाहे तू हर हर दर शोभा पाए मलार महला तीजा गुरमुख कोई विरला दूजै जिसनो नदर करे गुर बिन दाता कोई नाही बख्शे नदर करे गुर मिले शांति उपजै अन दिन नाम लए मेरे मन हर अमृत नाम ते आए सतगुर पुरख मिले।

अंतर वसिया अलाख्य पीवा गुरमुख हुए लखाई नानक जिस भावै तिसे आपे देवै भावै तिवै चलाई मलार महला तीजा तो तुके सतगुर ते पावै घर दर महल सोथान गुर शब्दी चूकै अभमान जिनको ललाट लिखिया धुर नाम अन दिन नाम सदा सदा त्यावह साची दरगाह पावह मान रहाऊ मन की बिद सतगुर ते जाने अन दिन लागै सद हर स्यो ध्यान गुर शब्द रते सदा बैरागी हर दरगाह साची पावह मान इहो मन खेलै हुक्म का बांधा एक खिन मह दह दिस फिर आवै जा आपे नदर करे हर प्रभ साचा ता इहो मन गुरमुख तत्काल वस आवै इस मन की बिद मन हूं जाने बूझै शब्द विचार नानक नाम त्याए सदा तू भव सागर जित पावह पार मलार महला तीजा जियो पिंड प्राण सब तिसके घट घट रहे समाई एक सबिन मैं अवर ना जाना सतगुरु दिया बुझाई मन मेरे नाम रहो लिवलाई अदृष्ट अगोचर अपरंपर करता गुर कै शब्द हर त्याई रहाऊ मन तन भीजै।

हर रहाउ माया ममता कर पैलाई एहो हुक्म कार श्रेष्ठ उपाई गुर प्रसादी बूझो पाई सदा रहो हर की शरणाई सो पंडित जो त्यहां गुणा की पांड उतारे अनदिन एको नाम वखाणे सतगुर की ओहो दीखिया ले सतगुर आगे शीस तरे सदा अलग रह निर्वाण।

नानक कवन बिद करे क्या कोई सोई मुकत जाको कृपा होए अन दिन हर गुण गावे सोए शास्त्र वेद की फिर कूक ना होए मलार महला तीजा प्रम प्रम जोन मनमुख परमाई जम काल मारे नित पत गुआई सतगुर सेवा जम की कान चुकाई हर प्रभ मिलिया महल घर पाई प्राणी गुरमुख नाम त्याए जन्म पदार्थ दुखदा खोया कौडी बदलै जाए रहाउ कर कृपा गुरमुख लगे प्यार अंतर भगत हर हर उरतार भवजल शब्द लंघावन हार दर साचै दिसै सचियार बहु कर्म करे सतगुर नहीं पाया बिन गुर परम भूले बहु माया हम मैं ममता बहु मोह बधाया दूजै पाए मनमुख दुख पाया आपे करता अगम अथाहा गुर शब्दी जपिए सच लाहा हाजर हजूर हर वे परवाहा नानक गुरमुख नाम समाहा मलार महला तीजा जीवन मुक्त गुरमति लागे हर की भगत अन दिन सद जागे सतगुर सेव है आप गवाए हों तिन जन के सद लागो पाए हों जीवा सदा हर के गुण गाई गुर का शब्द महा।

मन मुख मोहे मुग्ध गुवार अन दिन तंदा करत विहाय मर मर जम्मह मिले सजाय गुरमुख राम नाम लिव लाई कूड़ै लालच ना लपटाई जो किछ होवै सहज सुभाय हर रस पीवै रसन रसाय।

तीर्थ आठ साठ मज्जन नहाई, सत संगत की धूर परी उड नेतनी, सब दुर्मत मैल गवाई रहाओ। जाहर नवी तपै भगीरथ आनी, केदार थाप्यो महसाई, कांसी कृष्ण चरावत गाऊ। मिलहा

ताई। नानक ललाट होवै जिस लिखिया तिस साधु धूर दे हर पार लंघाई। मलार महला चौथा तिस जन को हर मीठ लगाना। जिस हर हर कृपा करे तिस की भूख दुख सब उतरे। जो हर गुण हर उच्चरे जप मन हर हर हर निस्तरे। गुर के बचन करन सुन त्यावे भव सागर पार परे रहाउ। तिस जन के हम हाट बिहाजे जिस हर हर कृपा करे। हर जन को मिलिया सुख पाइए सब दुर्मत मैल हरे। हर जन को हर भूख लगानी जन तृप्तै जा हर गुण बिचरे। हर का जन हर जल का मीना हर बिसरत फूट मरे। जिन एह प्रीत लाई सो जानै कै जानै जिस मन धरै। जन नानक हर

कीने तितने सिर कार लखावै हर जन को हर दीन वडाई हर जन हर कारै लावै सतगुर हर हर नाम जरडावै हर बोलो हो गुर के सिख मेरे भाई हर भौजल जगत तरावै रहाउ जो गुर को जन पूजे सेवे सो जन मेरे हर प्रभु पावै हर की सेवा सतगुर पूजो हो कर कृपा आप तरावै परम भूले अज्ञानी अंधले भ्रम भ्रम फूल तरावै निर्जियो पूज है मड़ा सरेव है सब बिरथी काल गवावै ब्रह्म बिंदे सो सतगुर कही है हर हर कथा सुनावै तिस गुर को साधन भोजन पाठ पटंबर बहु विध सतकर मुख संचो हो तिस पुन की फिर टोट न आवै सतगुर देव प्रतख हर मूरत जो अमृत बचन सुनावै नानक भाग भले

बसियो मेरा सतगुर ते संत भले पल भांत तिन देखे मेरा मन बिगसै हों तिन कै सद बल जांत ज्ञानी हर बोलो दिन रात तिनकी तृष्णा भूख सब उतरी जो गुरमत राम रस खांत रहाउ हर के दास साध सखा जन जिन मिलिया।

बहु बिंजन मिसटाए करी पाक साल सोच पवित्रा हुन लाभ हो भोग हर राय दुष्ट बदारे साजन रहस्य एह मंदर घर अपनाए जो ग्रह लाल रंगियो आया तो मैं सब सुख पाए संत सभा ओट गुरपूरे तुर मस्तक।

खीर आधार बारिक जब होता बिन खीरे रहन ना जाई सार संभाल माता मुख नीरे तब ओह तृप्त अघाई हम बारक पिता प्रभ दाता भूलह बारक अनक लख बरिया अनठौर नाही जह जाता रहाउ चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अग्न कर मेले मात पिता कंठ लाए राखे आनंद सहज तब खेले जिसका पिता तू है मेरे स्वामी तिस बारक भूख कैसी नाव निद नाम निदान ग्रह तेरे मन बांचे सो लैसी पिता कृपाल आग्या एह कीनी बारक मुख मांगे सो देना नानक बारक दर्श प्रभ चाहे मोहे हृदय बस है नित चरना मलार महला पंजवा सगल विधि जुर आहर करया तजियो सगल अंदेसा कार्य सगल आरंभ यो

गुर कार्य हमरे पूरे, कहो नानक वर मिलिया सुख दाता, छोड़ ना जाई दूरे। मलार महला पंजवा, राज ते कीट, कीट ते सुरपत, कर दोख जठर कौ भरते, कृपा निध छोड़ आन को पूजह, आत्म घाती हरते, हर बिसरत ते दुख दुख मरते, अनक बार ब्रह्मह बहु जोनी, टेक न काहू धरते रहाऊ, त्याग स्वामी आन को चितवत, मूड़ मुग्ध खल खरते, कागर नाव लंघ कत सागर, बिरथा कथत हम तरते, सेव ब्रंच असुर सुर जेते, काल अगन मह जरते, नानक सरन चरण कमलन की, तुम ना डार हो प्रभ करते।

प्रिय संग राती ए हम मैं की तिठाई भई निमाणी शरण एक ताकी गुर सतगुर पुरख सुखदाई एक निमख मह मेरा सब दुख काटिया नानक सुख रैन बेहाई मलार महला पंजवा बरस मेघ जी तिल बिल मना लाओ बरस प्यारे मनह सधारी।

नानक मेरो बन्यो सुहागो पत सोभा भले अचारी मलार महला पंजवा प्रीतम साचा नाम त्याय दुख दर्द बिनसै भव सागर गुर की मूर्त हृदय बसाए रहाऊ दुश्मन हत्ते दुखी सब व्यापे हर सरनाई आया राखन हारे हाथ दे राखियो नाम पदार्थ पाया कर कृपा किलविख सब काटे नाम निर्मल मन दिया गुण निदान नानक मन वसिया बहुड़े दुख ना थिया मलार महला पंजवां प्रभ मेरे प्रीतम प्राण प्यारे प्रेम भगत अपनो नाम दीजै दयाल अनुग्रह तारे रहाउ सिमरो चरण तुहारे प्रीतम हृदय तुहारी आसा संत जना पह करो बेनती मन दर्शन की प्यासा बिसरत मरण जीवन हर मिलते जन को दर्शन दीजै नाम आधार जीवन धन नानक प्रभ मेरे कृपा कीजै मलार महला पंजवां अब अपने प्रीतम सिंह बन आई राजा राम रमत सुख पायो बरस मेघ सुखदाई रहाउ एक पल बिसरत नहीं सुख सागर नाम नमै निद पाई उदहुत पयो पूर्ण भावी को टेटे संत सहाई सुख उपजे दुख सगल बनासे पार ब्रह्म लिवलाई तरयो संसार कठन पैस

मेरे आनंद मंगल सुख पाया रहाऊ। मिटे कलेश त्रिशन सब पूजी, पार ब्रह्म मन त्याया, साध संग जन्म मरण निवारी, बहुर न कतहु तहाया। मन तन नाम निरंजन रातहु, चरण कमल लेव लाया। अंगीकार कियो प्रभ अपने, नानक दास शरण आया। मलार महला पंजवां।

मर जाही। मन तन रव रहे आ जगदीश्वर, देखत सदा हजूरे। नानक रव रहे हो सब अंतर, सर्ब रहे आ पर पूरे। मलार महला पंजवा, हर कै भजन कौन कौन ना तारी। खग तन मीन तन मृग तन ब्राहा तन, साधु संग उधारी रहाउ। देव कुल दैत कुल जख किनर नर, सागर उतरी पारी। जो जो भजन करे साधु संग, ताके दुख बदारी। काम क्रोध महा बिख्या रस, इनते भय नरारी। दीन दयाल जप

अचोते अबनासी किलबिख काढे है शांत काल कलेश मिटे दास नानक बहुर ना जोनी मात मलार महला पंजवा बहु विद माया मोह हिरानू कोट मध्ये को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानू रहाउ इत उत डोल डोल श्रम पायो तन तन होत बिरानू लोग दराए करत ठगियाई हुतो संग न जानू मृग पंखी मीन दीन नीच एह संकट फिर आनु कहो नानक पाहन प्रवतारु साध संगत सुख मानु।

अंतरजामी सब मह वर्ते ता भौ कैसा पहाई संग सहाई छोड़ ना जाई प्रभ दिसै सबनी ठाई अनाथा नाथ दीन दुख भंजन आप लिए लड़ लाई हर की ओट जीवह दास तेरे

न मह पायो कंठ लाए अपनो दास राखियो ताती वाव न लायो अंगीकार कियो मेरे स्वामी प्रम पौ मेट सखायो महानंद करहु दास हर के नानक विश्वास मन आयो। राग मलार महला पंजवा चौपदे घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गुरमुख दिसै ब्रह्म पसार गुरमुख त्रै गुणिया बिस्तार गुरमुख नाद वेद विचार बिन गुर पूरे कोर अंधार मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाई गुर उपदेश हर हिरदय वस्यो सास ग्रास अपना खसम त्याई रहाओ गुर के चरण विटोह बल जाओ गुर के गुण अन दिन नित गाओ गुर की धूड़ करो इशनान साची दरगाह पाईए मान गुर बोहित भवजल तारनहार गुर भेटे ना हुए जोन अवतार गुर की सेवा सोजन पाए जा को कर्म लिखिया तुर आई।

नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम न पाई। मलार महला पंजवां गुर के चरण हृदय वसाई। कर कृपा प्रभ आप मलाई, अपने सेवक को लय प्रभ लाई। ताकी कीमत कही ना जाई, कर कृपा पूर्ण सुख दाती।

व्याप, सदा सदा मन किसनो जाप, दृष्ट धार राखे सब जंत, गुण गाव हो नित नित भगवंत, एको करता आपे आप, हर के भगत जान है प्रताप, नावे की पैज रखदा आया, नानक बोले तिसका बुलाया, मलार महला पंजवां, गुर सरनाई सगल निदान, साची दरगाह पाईए मान, प्रम पौ दुख दर्द सब जाई, साध संग सद हर गुण गाई, मन मेरे गुर पूरा सलाही, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाई रहाउ, सतगुर जे वडे अवर ना कोई, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सो।

गुआई कै कर साधन सिंह संग बाजे बजह मृदंग अनाहद को कलरी राम नाम बोले मधुर बैन अत सुहिया ऐसी तेरे दर्शन की शोभ अत अपार प्रिय अमोग तैसे ही संग संत बने भाव उतार नाम भने राम राम राम माल मन फेरते हर संग संगिया जन नानक प्रियो प्रीतम थिया मलार महला पंजवा मन कने

रूप गुण गावत सुख चैन रहाउ हर चरण सरम तरन सागर तुन अनहता रस बैन पथक प्यास चित सरोवर आत्म जल लैन हर दर्श प्रे

फिर भावै प्रेम सखाई, तिस बिन घड़ी नहीं जग जीवा, ऐसी प्यास तसाई रहाओ, सरवर कमल किरण अकासी, दिगसै सहज सुपाई, प्रीतम प्रीत

आई कन हर कोर दसो दिस बरसै बिन जल प्यास न जाई मीन नवास उपजै जल ही ते सुख दुख पुरब कमाई खिन तिल रह न सकै पल जल बिन मरन जीवन तिस ताई तन वांडी पिर देश निवासी सच्चे गुर पह शब्द पठाई गुण संग्रह प्रभ हृदय निवासी भगत रत्ती हर खाई प्रयो प्रयो करै सबै है जेती गुर भावै प्रयो पाई प्रयो नाले सद ही सच संगे नदरी मेल मलाई सब मह जियो जियो है सोई घट घट रहे आसमाई गुर प्रसाद घर ही प्रगासिया सहजे सहज समाई अपना काज सुवारो आपे सुख दाते गोसाई गुर प्रसाद घर ही फिर पाया तौ नानक तपत बुझाई मलार मोहल्ला पहला जागत जाग रह गुर सेवा बिन हर मैं को नाही अनक जतन कर रहन ना पावे आच काच धर पाही इस तन धन का कहो गर्भ कैसा बिन सतबार न लागे बबरे हौ मैं गर्भ खपै जाग ऐसा रहाऊ जय जगदीश प्रभु।

जैसे कर तरवर सरपन कर कर माही, उल्टी नदी कहां कर तरवर सरपन दसै दूजा मन माही।

अपना नानक सो प्रभु प्रभु दिखावे बिन साचे जग सुपना मलार महला पहला चातरक मीन जल ही ते सुख पावे सारंग शब्द सुहाई

सतगुर शब्दी पादर जान, गुर कै तकिया साचै तान, नाम संभालस रूड़ी बाण, थै पावै दर लहस प्राण, पूडा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार, ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज कर वासा तह मगना चालनहार, जित कर वसै तू है बिद जान है, बीजो महल ना जापै, सतगुर बाजो समझ ना होवी, सब

गुर शब्द संयापे, एक मूर्ख अंधे मुग्ध गुआर, एक सतगुर कै पै नाम आधार, साची बाणी मीठी अमृत तार।

अचार करे विवेक बुद्ध पाई, पुरख है पुरख मलाई, धातुर बाजी संसार अचेत है, चले मूल गवाई, लाहा हर सत संगत पाई है, कर्मी पल्ले पाई, सतगुर विण किने ना पाया, मन वेखो हृदय विचार, वड भागी गुर पाया, भव जले उतरे पार, हर नामा हर टेक है, हर हर नाम आधार, कृपा करो गुर मेलो हर जियो, पावो मोख द्वार, मस्तक ललाट लिखिया तुर ठाकुर, मेटना ना जाय, नानक से जन पूर्ण होए, जिन हर पाणा पाय, मलार महला तीजा, वेद बाणी जग वर्तदा, त्रै गुण करे बीचार, बिन नावे जम डांड सह, मर जन्मै वारु वार, सतगुर भेटे मुख

हर हर नाम त्याई रहाऊ। हरे अपने पाने सेठ पाई, हरे आपे दे आधार। हरे अपने पाने मन निर्मल किया, हर स्यों लागा प्यार। हर कै पाने सतगुर भेटिया, सब जन्म सवारन हार। वाह वाह बाणी सत है, गुरमुख बूझै कोई। वाह वाह कर प्रभ सलाही है, तिस जेवड़े अवर ना कोई। आपे बख्शे मेल लई,

कमल परगास, तित काट नामे नाम निवास, हऊ मैं भगत करे सब कोई, ना मन पीजे ना सुख होए, कह कह कहने आप जनाई, बिरथी भगत सब जन्म गवाई, से भगत सतगुर मन पाई, अन दिन नाम रहे लिवलाई, सद ही नाम वेख है हजूर, गुर कै शब्द रहया भरपूर, आपे बख्शे दे प्यार, हम मैं रूप

आप सुख साचो नाम पौड़ी आपी न आप साज आप पुछाणिया अंबर धरत विछोड़ चंदोआ ताणिया विण थम्मा गगन रहाए शब्द निशाणिया सूरज चंद उपाए जोत समाणिया किए रात दिनंत चोज वडाणिया तीर्थ धर्म विचार नावन कुर्बाणिया तुद सारे अवर ना कोई के आख बखाणिया सच्चा तख्त निवास।

पौड़ी तू सच्चा सच्यार जिन सच वरताया बैठा ताड़ी लाए कवल छपाया ब्रह्म वड्डा कहाए अंत ना पाया ना तिस बाप ना माए किन तू जाया ना तिस रूप ना रेख वर्ण सबाया ना तिस भुख प्यास रज्जा ताया गुरमह आप समोए शब्द वरताया सच्चे ही पति आए सच समाया। श्लोक महला पहला। वैद बुलाया वैदगी पकड़ ढोले बाह भोला वैद ना जानई करक कले जे माही। महला दूजा। वैदा वैद सो वैद तू पहला रोग पछान ऐसा दारू लोड़ लहो जित मन्य रोगा कान जित दारू।

हो नानक चूर मरह दोहागनी जिन अवरी लागा ने हो महला दूजा सावणे आया हे सखी जल हर बर सुनहार नानक सुख समन सोहागनी जिन सह नाल प्यार पौड़ी आपे सिंह पवाए मल्ला खाड़ा रचिया लथे पड़तू पाए गुरमुख मचिया मनमुख मारे पछाड़ मूर्ख कचिया आप भिड़ै मारे आप।

वरसै लाए झड़ी नानक पाणे चलै कंत कै सो माणी सदा रली महला तीजा क्या उठ उठ देखो बपणे इस मेघै हाथ किस नाही जिन इहो मेघ पठाया किस राखो मन माहे तिसनो मन वसाए सी जाको नदर करे नानक नदरी बाहरी सब करन पलाहा करी पौड़ी सोहर सदा सरेवी है जिस करत न लागे वार आडाने आकाश कर खिन मह ढाहे उसारन हार आपे जगत उपाय कै कुदरत करे विचार मन

नित त्याई है, सदा सदा सुख होए। नानक अमृत सदे वरसदा, गुरमुख देवै हर सोए महला तीजा। कलमल होई।

संबाहि जित खादे सुख उपजे फिर दुख न लागे आए पौड़ी हर जियो सच्चा सच तू सच्चे लह मलाई दूजे दूजी तरफ है कूड़ मिले ना मिले आ जाई आपे जोड़ बछोड़े।

जो हर चरनी रहे लिवलाय। ज्यो जल मह कमल अलिपत है ऐसी बणत बनाई। से सुखिए सदा सोहणे जिन विचो आप गवाय। तिन सोग वजोग कदे नहीं जो हर कै अंक संवाय। सलोक महला तीजा नानक सो सलाही है। जिस वस सब किश होए तिसै सरे विहो प्राणी हो। तिस बिन अवर ना कोई। गुरमुख हर प्रभ मन वसै ता सदा सदा सुख होए। सहसा मूल ना हो वई।

वरसै कृपा तार, नानक गुरमुख नजरी आया, हरि आत्म राम मरार। पौड़ी अतुल क्यों तोलिय, बिन तोले पाया ना जाय, गुर कै शब्द विचारिय, गुण मह रह समाय। अपना आप आप तोलसी, आपे मिले मलाई, तिसकी कीमत ना पवै, कहना किशु ना जाय। हौं बलिहारी गुरे अपने, जिन सच्ची बूझ दित्ती बुझाई, जगत मुस्से अमृत लुटिय, मनमुख बूझ ना पाई। बिन नावै नाल ना चलसी, जासी जन्म गवाई, गुरमती जागे तिन्नी घर रखिया, दूतां का किसना वसाई। सलोक महला तीजा, बबीहा ना बिललाए, ना तरसाए एहो मन, खसम का हुक्म मन। नानक हुक्म मन्या ते खोतरै, चढ़ै चवगल वन महला।

पौड़ी आपे जगत उपाय कै गुण औगण करे विचार त्रै गुण सर्ब जंजाल है नाम ना धरे प्यार गुण छोड़े औगण कमाम दे दरगहा हुए खुआर जुए जन्म तिन्नी हारिया केते आए संसार सच्चा शब्द मन मारिया अहनस नाम प्यार जिन्नी पुरखी उर तारिया सच्चा अलख अपार तू गुणदाता निदान है असी अवगण यार जिस बख्शे सो पाए सी गुर शब्दी विचार सलोक महला पंजवा रात ना विहावी साकता जिन्ना विसरे नाउ राती दिन सुसुहेलिया नानक हर गुण गाउ महला पंजवा रतन जवे हर मान का हब्बे मणि मथन नानक जो प्रभ पाणिया सच्चै दर सोहन पौड़ी सच्चा सतगुर सेव सच संभालिया अंत खलोआ आई जे सतगुरे अगै घालिया ओहे ना सकै जमकाल सच्चा रखवालिया गुर साखी जोत जगाए दीवा बालिया मनमुख बिन नावै कूड़ियार फिर है बेतालिया पशु मानस चम पलेटे अंदरों कालिया सबो वरतै सच सच्चै शब्द निहालिया।

कै सहज सुपाई मेघ वर्ष दया कर गुड़ी शह पर लाई बबी हे कूक पकार रह गई।

जाए, दूजे पाए परमिया, अमृत जल पल्ले ना पाए, नदर करे जे अपनी ता सतगुर मिले सुपाए, नानक सतगुर ते अमृत जल पाया, सहजे रहे आसमाए पौड़ी, एक वन खंड बै सह जाए साधना देवही, एक पाला ककर भन शीतल जल हेवही, एक भस्म चढ़ावह अंग मैल ना धोवही, एक जटा बिकट बिकराल कुल घर खोवही, एक नग्न फिरह दिन रात नींद ना सोवही, एक अगन जलावह अंग आप विगोवही, विण नावै तन शार क्या कह रोवही, सोहन खसम द्वार जे सतगुर सेवही।

पुकार, नदरी सतगुर पाईऐ नदरी उपजै प्यार, नानक साहिब मन वसै विचों जाहे विकार। पौड़ी एक जैनी उजड़ पाए तुरों खुआया, तिन मुख नाही नाम ना तीरथ नहाया, हथी सिर खुहाए ना पद कराया, कुचल रह दिन रात शब्द ना पाया, तिन जात ना पात ना कर

मनथन सच्चा सच मन सच्चे सच्ची सोए अंदर सच्ची भगत है सहजे ही पत होए। कलयुग में घोर अंधार है मनमुख राह न कोय से वडभागी नानका जिन गुरमुख प्रगट होए। महला तीजा इंद वरसै कर दया लोका मन उपजै चाऊ जिसकै हुक्म इंद वरसदा तिसकै सद बलिहार जाऊ। गुरमुख शब्द संभालिए सच्चे के गुण गाऊ नानक नाम रते जन निर्मले सहजे सच समाऊ। पौड़ी पूरा सतगुर सेव पूरा पाया पूरा कर्म त्याई पूरा शब्द मन वसाया पूरा ज्ञान ध्यान मैल चुकाया हर सर तीर्थ जान मनुआ नाया शब्द।

बन्ना शाज देन दुआई से मर है जिनको देन से जाए नानक हुक्म ना जापई किथे जाए समाही फसल आहारी।

खसम मिट्टी फिर पानी अद गुल्ला चिड़ी का चुगन गैन चढ़ी बिललाई खसमे भावे वोहा चंगी जे करे खुदाई खुदाई सख्त।

भूख सनावै खसमै मूल ना भावै अक स्यों प्रीत करे अक तिद्दा अक डाली बह खाए खसमै भावै ओहो चंगा जे करे खुदाए खुदाए नानक दुनिया चार दिहाड़ी।

तिन भौ सागर तरना पौड़ी अगमय गोचर तू धनी सच्चा अलख अपार तू दाता सब मंगते इको देवन हार जिन्नी सेव्या तिन्नी सुख पाया।

सलाही है। अंतर प्रेम प्यार विण प्रीति भगत ना हो गई, विण सतगुर ना लगे प्यार। तू प्रभ सब तुध सेव दे, एक ढादी करे पुकार। देह दान संतोखिया सच्चा नाम मिले आधार। सलोक महला पहला राती काल कट है दिन काल, सिज्जै काया हुए पराल। वर्तन वर्त्या सर्ब जंजाल, भुलिया चुक गया तपताल। अंधा चख चख पया चेर, पिछै रोवह लिया वह फेर। बिन बूझे

मुआ प्यार प्रीत मुई मुआ वैर वादी वन गया रूप विनसिया दुखी देह रुली कित्थों आया कह गया केहो ना सीओ केहो सी मनमुख गल्ला गोईया कीता चाओ रली नानक सच्चे नाम बिन सिर खुर पत पाटी पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता अंते होए सखाई बाज गुरु जग

सच जानिए हुक्मी हुए नबेड़ गया जानिए भौजल तारन हार शब्द पछाणिए चोर जार जुआर पीड़े कहानिए निंदक लाए तबार मिले हड़वाणिए गुरमुख सच समाए सो दरगाह जानिए।

तीर्थ का नाव चौधरी कूड़ी पूरे थाव नानक गुरमुख जानिए कल का इहो नियाव महला पहला हरना बाजा तै सिकदारा इना पढ़िया नाव फांदी लगी जात पहाइन अग्गै नाही थाव सो पढ़िया।

पलंग पौकै कोप खुआर हुए फक्कड़ पिटे अंध चुपै चंगा नानका विण नावै मोहे गंध महला पहला।

आण पौड़ी पड़िया नाम सलाह और बुद्धि मिथ्या बिन सच्चे वापार जन्म बिरथया अंत ना पारावार ना किन्ही पाया सब जग गर्भ गवार तिन सच ना पाया चले नाम विसार तावन तत्या।

कानक माद कपाह तोय हो त्रिभवन गन्ना तो आख हो बो बिदहचा तो है बहुत बेकारा ए तेरा सुछोड़ हो।

राम पूजै हिकमत खुदाया मन तवाना तू कुदरती आया सग नानक दे बान मस्ताना नित चढ़ै सवाया।

तुद बिन दूजा को नहीं, तू रहे आसमाई, तेरी गत मित तू है जानदा, तुद कीमत पाई, तू अलख अगोचर अगम है, गुरमत देखाई, अंतर अज्ञान दुख भरम है, गुर ज्ञान गवाई, जिस कृपा करह तिस मेल लह, सो नाम ते आई, तू करता पुरख अगम है, रव्या सब ठाई, जित तू लाए सच्चिया तित को लगे, नानक गुण गाई, शुद्ध

सहसरफनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी सिनवे करोड़ी मेघ माला पानी हारिया नाख परसेव जाचे सुरसरी सप्त समुंद जाचे कड़खली एते जी जाचे वर्तनी सो ऐसा राजा त्रे पवन धनी जाचे कर निकट वर्ती अर्जन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद नेजै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व बान वहेला एते जी जाचे है करी सर्व व्यापक अंतर हरी।

तास पत तास सम तुल नहीं आन को एक ही एक अनेक होए बिस्तरयो आन रे आन भरपूर सो रहाओ जाके भागवत लिखी है अवर नहीं पेखी है तास की जात अशोक शिपा व्यास मह लिखी है सनक मह पेखी है नाम की नाम ना सप्त दीपा जाके ईद बकरी

पूरे लोक प्रसिद्ध कबीरा, जाके कुटंब के ढेर सब ढोर टवंत फिर है। अजहो बनारसी आस पासा आचार सहत बिपर करह डंडौत, तिन तनै रवदास दासान दासा मलार। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मृत प्यारो प्राणनाथ कमन भगत ते, साध संगत पाई।

मीना वसगत खरिया हर के संत संत पल नीके मिल संत जना मल लहिया हौ मैं दुर्त गया सब नीकर ज्यों साबुन कापर करिया मस्तक ललाट लिखिया तुर ठाकुर गुर सतगुर चरण उर धरिया सब दालद दुख पांच प्रभ पाया जन नानक नाम उधरिया कानड़ा महला चौथा मेरा मन संत जना पागरेन हर हर कथा सुनी मिल संगत मन कूरा हर रंग पेन रहाओ हम अचेत अचेत न जान है गात मेत गुरु किए सुचित चितेन प्रभ दीन दयाल कियो अंगीकृत मन हर हर नाम जपेन हर के संत मिलह मन।

नाम तिहाय सत संगत मिल साधु पाथ हर हर कथा सुनी मिल संगत हर हर जपयो अकथ कथ काथ हमरे प्रभ जगदीश गुसाई हम राख ले हो जगन्नाथ जन नानक दास दास दासन को प्रभ करहु कृपा राखो जन साथ कानड़ा महला चौथा पड़ताल कर पंजवां।

ही सुहाग हर हर हरे हरे गुण गावे गुरमत हों बल बले हों बल बले जन नानक हर जप पई निहाल निहाल निहाल कानड़ा महला चौथा हर गुण गावो जगदीश एका जी कीचै लख बीस जप हर हर शब्द जपीस हर हो किरपीस रहाओ हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा हर जप जपे हर जप जपे जप

कान्हड़ा महला चौथा पाज रामो मन राम जिस रूप नरेख वडाम सत संगत मिल पाज राम बड़ हो भाग मथाम रहा जित ग्रह मंदर हर होत जास

फूल सगल तरादो कानड़ा महला चौथा हर जस गावो भगवान जस गावत पाप नहान मत गुरमत सुन जस कान हर हो किरपान रहाओ तेरे जन त्याव है एक मन एक चित ते साधु सुख पाव है जप हर हर नाम निदान उस्तत करह प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत गुरु भगवान जिनकै हृदय तू स्वामी ते सुख फल पाव है ते तरे भव सिंध ते भगत हर जान तिन सेवा हम लाए हरे जन नानक के हर तू तू तू तू तू भगवान कानड़ा महला पंजवां घर दूजा एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद गाइया गुण गोपाल कृपा निद दुख बदारन सुख दाते सतगुर जां को भेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मन साधारै वोट पराधी खिन महतारै जा को चीत आवै गुर अपना ता को दुख नहीं तिल सुपना जा को सतगुर अपना राखै सो जन हर रस रसना चाखै कहो नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उजल भया कानड़ा महला पंजवां अरादों तुझै स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास।

रतना अनक बार कर बंदन संतन उहां चरण गोविंद जी के बस न रहाओ अनक भांत कर द्वार न पावो होए कृपाल ता हर हर त्यावो कोट कर्म कर दे न सोदा साध संगत मेहमान प्रबोधा त्रिशन्ना बूजी बहु रंग माया नाम लैत सर्व सुख पाया पार ब्रह्म जब

सैल संतन की संग साधु का हर नामा जप परम गते रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना सोई कुशल जो प्रभ जियो करना सफल होत एह दुर्लभ देही जां कौ सतगुर मया करे ही अज्ञान भरम बिनसै दुख डेरा जां कै हृदय बसहै गुर पैरा साध संग रंग प्रभ त्याया कहु नानक तिन पूरा पाया कानड़ा महला पंजवां भगत भगतन हूं बन आई तन मन गलत भये ठाकुर स्यों।

तेरो जन हर जस सुनत उमायो रहाओ मनह परगास पेख प्रभ की शोभा जत कत पेखो आहयो सब ते परे परे ते उच्चा गहर गंभीर अथाहयो ओत पोत मिलियो भगतन को जन स्यों परदा लाहयो गुर प्रसाद गावे गुण नानक सहज समाध समाहयो कानड़ा महला पंजवा संतन पह आप उदाहरण आयो रहाओ दर्शन भेट होत पुनीता हर हर मंत्र गरड़ायो काटे रोग पय मन निर्मल हर हर औखद खायो आस्थित पय बसे सुख थाना बहुर न कतहु तहायो संत प्रसाद तरे कुल लोगा नानक लिपत नाम आयो कानड़ा महला पंजवा बिसर गई सब तात पराई जब ते साथ संगत मोहे पाई रहाओ ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हम को बन आई जो प्रभ कीनो सो पल मान्यो एह समत साधु ते पाई सब मह रव रहया प्रभ एक है पेख पेख नानक बिगसाई कानड़ा महला पंजवा ठाकुर जियो तुहारो परना मान महत तुम्हारे ऊपर तुमरी ओट तुम्हारी सरना रहाओ तुमरी आस भरोसा तुमरा तुमरा नाम हृदय लै तरना तुमरो बाल तुम संग सुहेले।

भौजल तरना अपै दान नाम हर पायो सिर डारियो नानक संत चरना कानड़ा मोहल्ला पंजवा साध सरन चरण चित लाया सुपन की बात सुनी पेखी सुपना नाम मंत्र सतगुरु दरडाया रहाओ नह तृप्तानो राज जोबन धन बहुर बहुर फिर ताया सुख पाया तृष्णा सब बुझी है शांत पाई गुण गाया बिन बुझे पशु की न्याई भ्रम मोहे व्याप्यो माया साध संग जम जेवरी काटी नानक सहज समाया कानड़ा महला पंजवा हर के चरण हृदय गाय शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याय रहाओ सगल आस होत पूरन कोट जन्म दुख

आन दा सुख सहज मूरत तिस आन नाही भांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमल जात गुण रमंत दुख नासह रित भयंत शांत अमृता रस पियो रसना नानक।

तो परम राख लीजे काट बेरी रहाओ बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्ण हो ठाकुर प्रभ मेरा दीन दर्द निवार तारन हर कृपा निद पतत उदारन कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुरु नाम दरडायो कानड़ा महला पंजवा ताने ओह प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड भागी रहाओ मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ओट सगली मोहे त्यागी भोर भरम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी तू अथाह अत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रत लागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्त ज्ञान धरियो प्रभ पागी कानड़ा महला पंजवा कुचल कठोर कपट कामी ज्यों जान है त्यों तार स्वामी रहाओ तू समरथ सरन जोग तू राख है अपनी कल तार जाप ताप नेम सुच संयम नाही इन विदे छुटकार गर्त घोर अंध ते काढ हो प्रभ नानक नदर निहार कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहे तारे रहाओ कवन कवन कमन गुण कहिए।

समानु मुख बकनो मन मान रहाउ कट कट पूर रहे सुख सागर पै भंजन मेरे प्राण मनह प्रगास पयो भ्रम लास्यो मंत्र दियो गुर कान करत रहे करतग है करना मैं अंतर जामी ज्ञान आठ पहर नानक जस गावे मांगन कहो हर दान कानड़ा महला पंजवा कहन कहावन कहो कई केत ऐसो जन बिरलो है सेवक जो

सब भला ही है रे, हार नहीं सब जीतै, सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ नाही किस लेतै, कहो नानक जन हर हर हर है, कत आवै कत रमतै, कानड़ा महला पंजवां, कि एको प्रीतम बिसर ना जाए, तन मन गलत भय तिह संगे।

तू गहे रहे अटकाए अनक भांत की एकै जाली ताकी गंठ नहीं शोराए फिरत फिरत नानक दास आयो।

अरबिंद खोजत खोजत रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाओ चरण कमल हृदय धार उतरिया दुख मंद राज धन परिवार मेरा सर्ब सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर ना मरंद कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूजो नाम अराध गुर सतगुर चरणी लाग हर पाव हो मन आगाद जग जीतो हो गुर कृपाद रहाऊ अनक पूजा मैं बहु विद खोजी सा पूजा जे हर पवास माटी की एह पुत्री जोरी क्या एह कर्म कमास प्रभ बहा पकर जिस मार्ग पावहु सो तुद जंत मलास अवर ओट मैं कोए ना सूजै एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा हौं बल बल सद बल जास कानड़ा महला पंजवा घर छेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगत उदाहरण नाम प्रिय तेरा नवनिध नाम निदान हर केरा हर रंग रंग रंग अनुपेरा काहे रे मन मोहे मगनेरा नैन देख साध दर्शे।

टुलेरे, दर्शन प्यास बहुत मन मेरे, मिल नानक देव जगत गुर केरे, कानला महला पंजवा, ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाऊ, आस प्यास सफल मूरत, उमंग ही ओ तरस।

कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाउ वर्त नेम तीर्थ सहत गंगा जल हेवत भूख अरनंगा पूजा चार करत मेलंगा चक्कर कर्म तिलक खाटंगा दर्शन भेटे बिन सतसंगा हठन ग्रह अत रहत बटंगा हौ रोग व्यापै चुकै ना पंगा काम क्रोध अत त्रिशन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा कानड़ा महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई मिल साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखैनो

करो, ये तुम्हारे बल बले बल बले बल गई। पहले पै संत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए, प्रवथान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनक दास कीत करह तुहारी,

जाय। पतत पावन बिरद स्वामी उदरत हे हर त्याय रहाओ। सहसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध। विकल माया संग तंद कर गहे प्रभ आप काढ़ु। रख ले हो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन। कोट पाप बनास मन दर्शन की प्यास। प्रभ पूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक। हर रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा। वार वारों अनक डारों सुख प्रिय सुहाग पलक रात रहाउ। कनक मंदिर पाठ सेज सखी मोहे नाही इन स्यों तात। मुक्त लाल अनक भोग बिन नाम नानक हात। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रिय संग सूख बेहात।

मना हर जाप, जो संत वेद कहत पंथ गाखरु, मोह मगन अहंताप रहाउ, जो राते माते संग बपरी माया, मोह संताप, नाम जपत सो जन उदरह, जिसह उदार हो आप, बिन सजाए मोह पै परमा, नानक संत प्रताप, कानड़ा महला पंजवां कर दसवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ऐसो दान देहो जी संतो, जाप जियो बलिहार, मान मोही पंच दोही, उर्ज निकट बसेओ, ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार, रहाओ कोट जन्म जोन भ्रम्यो, हार परयो द्वार, कृपा गोविंद पई मिलियो नाम आधार, दलभ जन्म सफल नानक पाव उतार पार, कानड़ा महला पंजवा घर ग्यारवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सहज सुभाए अपने आए, कछु न जानो कछु दिखाए, प्रभ मिलियो सुख बाले भोले रहाओ, संजोग मलाए साध संगाए, कतहु न जाए करह बसाए, गुण निधान प्रगट्यो एह चोले, चरण नभाए आनत जाए, थान थनाए सर्ब समाए, रसक रसक नानक गुण बोले, कानड़ा महला पंजवां, गोविंद ठाकुर मिलन दुराई, परमत रूप अगम अगोचर, रहियो सर्ब समाई रहाउ, कहन भवन नाही पायो पायो, अनक उकत चतराई, जतन जतन अनक उपावरी, तौ मिलियो जो कृपाई, प्रभु दयार कृपार कृपा निद, जन नानक संत रे नाई, कानड़ा महला पंजवां, माई सिमरत राम राम राम, प्रभ बिना नाही होर, चितवो चरनार बिंद, सासन निसपोर रहाओ, लाए प्रीत कीन आपन, टूटत नहीं जोर, प्राण मन तन सर्ब सो, हर गुण निजे सुख मोर, ईत ऊत राम पूरन, निरखत रिद खोर, संत सरन तरन नानक, बिन से ओ दुख कोर।

मुकत जुगत भुगत पूरन परमानंद परम निदान पै पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान कानड़ा महला पंजवा करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान भेख ज्ञान फिरत फिरत धरत धरत धरचरी रहाउ अहं अहं अह अवर मूड़ मूड़ मूड़ बबरई।

मृत निकट निकट सदा ही हर हरे हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड़ बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई कानड़ा अष्टपदिया।

सुख पावे, सतगुर सेव समावे गुर हाउ, भगत जना की खिन खिन लोचा, नाम जपत सुख पावे गु, अनरस साध गए सब नीकर, बिन नावे किस ना सखावे गु, गुरमत हर हर मीठा लागा, गुर मीठे बचन कढावे गु, सतगुर बाणी पुरख पुरखोतम, बाणी स्यों चित लावे गु, गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या, मन पीना निज कर आवै गु, तह अनहत धुनी बाजह नित बाजे, नीचर धार चवावै गु, राम नाम इक तिल तिल गावै, मन गुरमत नाम समावै गु, नाम सुनै नामो मन पावै, नामे ही तृप्तावै गु।

माया पटल पटल है भारी, कर घूमन घेर कलावै गो। पाप बकार मनूर सब भारी, दिख दुत्तर तरयो ना जावै गो। भौ बैराग भया है बोहित, गुर खेवट शब्द तरावै गो। राम नाम हर पेटी है, हर रामै नाम समावै गो। अज्ञान लाए सवालिया।

हर हर नाम तरावै गु जो जो जपै सोई गत पावै ज्यो ध्रुव प्रहलाद समावै गु रहाउ कृपा कृपा कृपा कर हर जियो कर कृपा नाम लगावै गु कर कृपा सतगुरु मलावहु मिल सतगुर नाम त्यावै गु जन्म जन्म की हम मैं मल लागी मिल संगत मल लह जावै गु ज्यो लोहा तरियो संग कास्ट लग शब्द गुरु हर पावै गु संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गु बिन संगत कर्म करे अभिमानी खड पानी कीकड़ पावै गु भगत जना के हर रखवारी जन हर रस मीठ लगावै गु खिन खिन नाम दे वडियाई सतगुर उपदेश समावै गु भगत जना को सदा निव रही है जन निवह ता फल गुण पावै गु जो निंदा दुष्ट करह भगता की हरनाक्ष ज्यो पच जावै गु ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गु जो जो भगत होए सो पूजो हो परमन परम चुकावै गु जात निजात देख मत परम हो सुख जनक पगी लग त्यावै गु जूठन जूठ पई सिर ऊपर खिन मनुआ तिल ना डलावै गु जनक जनक बैठे सिंघासन नौ मुनि धूर लै लावै गु नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावै गु कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गु जिहवा एक होए लख कोटि कोट त्यावै गु रहाउ सहस फनी जप्यो सेख नागै हर जपत्या अंत न पावै गु तू अथाह अत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावै गु जिन तू जप्यो तेई जन नीके हर जपत्या हो कौ सुख पावै गु बिदरदासी सुत छोक शोहरा कृष्ण अंक गल लावै गु जल ते ओपत पई है कासत कासत अंग तरावै गु राम जना हर आप सुवारी अपना बिरद रखावै गु हम पाथर लोहो लोहो बड पाथर गुर संगत नाव तरावै गु ज्यो सत संगत तरयो जुलाहो संत जना मन पावै गु खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ त्यावै गु सतगुर बचन बचन है सतगुर पाधर मुक्त जनावै गु सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम त्यावै गु गुर प्रसादी हम मैं बूझै तौ गुरमत नाम समावै गु सतगुर दाता जी जीअन को भागहीन नहीं पावै गु फिर एह वेला हाथ न आवै पर तापै पछतावै गु जे को भला लोड़ै भले अपना गुर आगै टह टह पावै गु नानक दया दया कर ठाकुर मैं सतगुर भस्म लगावै गु।

तलकुंडे गुरियंकस शब्द दरडावैगु रहाउ चल तो चले चले दह दह दिस गुर राख हर लिव लावैगु सतगुर शब्द दे हृदय अंतर मुख अमृत नाम चवावैगु बिसियर बिसु परे है पूरन गुर गरुड़ शब्द मुख पावैगु माया पोयंग तिस नेड़ ना आवै बिख चार चार लिव लावैगु स्वान लोभ नगर मह सबला गुर खिन मह मार कढावैगु सत संतोख धर्म आन राखी हर नगरी हर गुण गावैगु पंकज मोह निगरत है प्राणी गुर निगरत काड कढावैगु त्राहे त्राहे शरण जन आई गुर हाथी दे निकलावैगु सुपनंतर संसार सब बाजी।

लै खर्च चले पत पावै गो, खाए खर्च देवै बहुतेरा, हर दिन दे तोट ना आवै गो। राम नाम धन है हृदय अंतर, धन

सतगुर सरण त्यावै गु लोहा हिरन हुवै संग पारस गुण पारस को हुए आवै गु रहाउ सतगुर महापुरख।

सतगुर बचन बचन है नीको गुर बचनी अमृत पावै गो ज्यो अमरीक अमरा पद पाए सतगुर मुख बचन त्यावै गो सतगुर सरन सरन मन पाई सुधा सुधा कर त्यावै गो दयाल दीन भए है सतगुर हर मार्ग पंथ दिखावै गो सतगुर सरन पए से थापे तिन राखन को प्रभ आवै गो जे को सर समदै जन ऊपर फिर उल्टो तिसै लगावै गो हर हर हर हर हर सर सेवह तिन दरगाह मान दवावै गो गुरमत गुरमत गुरमत त्यावह हर गल मेल मेल मलावै गो गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुरु परचै नाम त्यावै गो हर हर रूप हर रूपो होवै हर जन को पूज करावै गो साकत नर सतगुर नहीं पिया ते बेमुख हर परमावै गो लोभ लहर सुवान की संगत बिख माया करंग लगावै गो राम नाम सब जग का तारक लग संगत नाम त्यावै गो नानक राख राख प्रभ मेरे सत संगत राख।

आए, जतन माया के काम न आए, राम ते आए सब फल पाए, तन तन ते बड़ भागिया, सतसंग जागे नाम लागे, एक स्यों लिव लागिया, तज मान मोह बेकार साधु, लग तरहु तिन कै पाए, बिनवंत नानक शरण स्वामी, बड़ भाग दर्शन पाए, मिल साधु नित भजह नारायण, रसक रसक स्वामी गुण गायन, गुण गाए जीवह हर अमयो पीवह, जन्म मरना भागे, सतसंग पाई हर त्याई, बहुड़ दुख ना लागे, कर दया दाते पुरख बधाते, संत सेव कमायन, बिनवंत नानक जन तूर बांछ, हर दर्श सहज समायन, सगले जंत भजो गोपाल, जप तप संयम पूरन काल, नित भजो स्वामी अंतर जामी, सफल जन्म सुबाया, गोविंद गाइय नित त्याइय, प्रवान सोई आया, जप ताप संयम हर हर निरंजन, गोविंद धन संग चाल, बिनवंत नानक कर दया दीजै, हर रत्न बांध हो पाल, मंगल चार चोज अनंदा, कर कृपा मिले परमानंदा, प्रभ मिले स्वामी सुखा गामी।

जिन गुरमत हर रस सार महला चौथा गोविंद गोविंद गोविंद हर गोविंद गुणी निधान गोविंद गोविंद गुरमत त्याई ता दरगाह पाई है मान गोविंद गोविंद गोविंद जप मुख उजला प्रधान नानक गुर गोविंद हर जित मिल हर पाया नाम पौड़ी तू आपे ही सिद्ध साधिको तू आपे ही जुग जोगिया तू आपे ही रस रसियड़ा तू आपे ही भोग भोगिया तू आपे आप वरतदा तू आपे करह सो हो गिया सत संगत सत गुर तन तनो तन तन तनो जित मिल हर बुलग बुलो गिया सब कहो मुखो हर हर हरे हर हर हरे हर बोलत सब पाप लोहो गिया सलोक महला चौथा हर हर हर हर नाम है गुरमुख पावे कोई हों मैं ममता नास होए दुर्मत कड्डे धोए नानक अन दिन गुण उच्चरे जिनको धुर लिखिया होए महला चौथा हरे आपे आप दयाल हर आपे करे सो होए हरे आपे आप वरतदा हर जेवड अवर ना कोई जो हर प्रभ भावे सो थी है जो हर प्रभ करे सो होए कीमत किने ना पाईया बेअंत प्रभु हर सोए नानक गुरमुख हर सा लाहया तन मन शीतल होए पौड़ी सब जोत तेरी जग जीवना तू घट घट हर रंग रंगना सब त्यावह तुद मेरे प्रीतमा तू सत सत पुरख निरंजना एक दाता सब जगत पिखारिया हर जाचह सब मंग मंगना।

फल फलना सलूक महला चौथा हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान जो इच्छा है सो फल पाए सी गुर शब्दीन लगे ध्यान किल विख पाप सब कटी है हो मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभु जन नानक जप हर नाम महला चौथा हर हर नाम पवित्र है नाम जपत दुख जाए जिनको पूर्व लिखिया तिन मन वसिया आए सतगुर कै भाणे जो चले तिन दालद दुख लह जाए अपने भाणे किने ना पायो जन वेखो मन पति आई जन नानक दासन दास है जो सतगुर लागे पाई पौड़ी तू थान थनंतर भरपूर है करते सब तेरी बणत बनावनी रंग परंग शिष्ट सब साजी बहु बहु विद भांत उपावनी सब तेरी जोत ज्योति विच वरत है गुरमती तुदै लावनी जिन होए दयाल तिन सतगुर मेलै मुख गुरमुख हर समझावनी सब बोलो हो राम रमो श्री राम रमो जित दालत दुख भुख सब लह जावनी सलोक महला चौथा हर हर अमृत नाम रस हर अमृत हर उरतार विच संगत हर प्रभु वरतदा बुझो हो शब्द विचार मन हर हर नाम त्याया विख हो मैं कड्डी मार जिन हर हर नाम ना चेतियो तिन जूऐ जन्म सबहार गुर तुठे हर केताया हर नामा हर उरतार जन नानक ते मुख उजले तित सच्चे दरबार महला चौथा हर कीरत उत्तम नाम है विच कल युग करनी सार मत गुरमत कीरत पाई है हर नामा अर हुर हार वड भागी जिन हर त्याया तिन सौंपया हर भंडार बिन नावे जे कर्म कमावनी नित हो मैं होए खुआर जल हस्ती माल नवाली है

आपे वर्तै, सब जगत किया बणजारा, सब जोत तेरी ज्योति विच करते, सब सच तेरा पासारा, सब त्यावह तुद सफल से गावह, गुरमति हर निरंकारा, सब चवह मुख हो जगन्नाथ, जगन्नाथ जग जीवनो, जित भवजन पार उतारा। श्लोक महला चौथा। हमरी जेहबा एक प्रभ, हर के गुण अगम अथाह, हम क्यों कर जप है इयाणिया, हर तुम वड अगम अगाह, हर देहो प्रभु मत उत्तमा, गुर सतगुर कै पग पाह, सत संगत हर मेल प्रभ,

हर करहो कृपा जग जीवना, गुर सत गुर मेल दयाल, गुर सेवा हर हम पाईया, हर हुआ हर कृपाल, सब आसा मनसा विसरी, मन चूका आल जंजाल, गुर तुठे नाम दरडाया, हम किए शब्द निहाल, जन नानक अतुट धन पाया, हर नामा हर धन माल पौड़ी, हर तुम वड वड्डे वड्डे वड ऊचे, सब ऊपर वड्डे वडौना, जो त्यावह हर अपरंपर हर हर, हर त्याए हरे ते होना, जो गाव है सुन है तेरा जस स्वामी, तिन काटे पाप कटोना, तुम जैसे हर पुरख जाने मत गुरमत, मुख वड वड भाग वडोना, सब त्याव हो आद सते, जुगाद सते, प्रतख सते।

हर स्वामी हर प्रभ तिन मिले, जिन लिखिया तुर हर प्रीत, जन नानक नाम ते आया, गुर बचन जपियो मन कीता। महला चौथा, हर प्रभ सज्जन लोड़ लहो, भाग वस्या बट भाग, गुर पूरे देखा लिया, नानक हर लिव लाग पौड़ी, तन तन सुहावी सफल घड़ी, जित हर सेवा मन पानी, हर कथा सुनावो मेरे गुर सिखो, मेरे हर प्रभ अकथ कहानी, क्यों पाई है क्यों देखी है, मेरा हर प्रभ सुगड़ सुजानी, हर मेल दिखाए आप हर, गुरबचनी नाम समाणी, तिन विटो नानक वारिया, जो जप दे हर निर्बाणी। श्लोक महला चौथा, हर प्रभ रत्ते लोयना, ज्ञान अंजन गुर दे, मैं प्रभ सज्जन पाया, जन नानक सहज मिले। महला चौथा, गुरमुख अंतर शांत है, मन तन नाम समाई, नाम

नाम उपजे तृष्णा भुख सब जाए नानक नामे रतिया नामो पल्ले पाए पौड़ी तुदे आपे जगते पाए कै तुदे आपे वसगत कीता एक मनमुख कर हरायन एक ना मेल गुरु तिना जीता हर उत्तम हर प्रभ नाम है गुरबचन सुभागै लीता दुख दालद सबो लह गया जा नाम गुरु हर दीता सब सेव हो मोहनो मन मोहनो जग मोहनो जिन जगत अपाए सबो वस कीता श्लोक महला चौथा मन अंतर हों मैं रोग है भ्रम भूले मन मुख दुर्जना नानक रोग बंजाए मिल सतगुरु साधु सज्जना महला चौथा मन तन ताम संगा

जगदीशर करते अपरंपर पुरखे अतोल हर नाम त्यागो मेरे गुर सिखो हो हरि उत्तम हर नाम अमोल जिन त्याया हृदय दिन सरात ते मिले नहीं हर रोल वड भागी संगत मिले गुर सत गुर पूरा बोल सब त्याग हो नर नारायणो नारायणो जित चूका जम झगड़ चगोल श्लोक महला चौथा हर जन हर हर चौंदिया सर संध्या गावार नानक हर जन हर लिव उबरे जिन संध्या तिस फिर मार महला चौथा अखी प्रेम कसाइया हर हर नाम पिखन जे कर दूजा देख दे जन नानक काढ दे चन पौड़ी जल थल महियल पूर्णो अपरंपर सोई जी जंत प्रतपाल दा जो करे सो होई मात पिता सुत प्रात मीत तिस बिन नहीं कोई घट घट अंतर राव रहया जपे हो जन कोई सगल जप हो गोपाल गुण प्रगट सब लोई श्लोक महला चौथा गुरमुख मिले से सजना हर प्रभ पाया रंग जन नानक नाम सलाहे तू लुड लुड दरगह वान्य महला चौथा हर तू है दाता सब सदा सब जी तुम्हारे सब तुदै नो आराध दे दान दे प्यारे हर दाता दातार हाथ कढ़िया मीह उठा संसारी अनजमिया खेती भाओ कर हर नाम संभारे जन नानक मंगै दान प्रभ हर नाम अधारे पौड़ी इच्छा मन की पूरी है जपी है सुख सागर हर के चरण आराध्य है गुर शब्द रतनागर मिल साधु संग उधार होए हाटै जम कागर जन्म पदार्थ जीती है जप हर बैरागर सब पवो हो शरण सतगुरु की बिन सह दुख दागर श्लोक महला चौथा हौ टुंडेंदी सज्जना सज्जन मैंढै नाल जन नानक अलख ना लखिया गुरमुख दे दिखाल महला चौथा नानक प्रीत लाई तिन सच्चै तिस बिन रहन ना जाई।

तारे तुमरे तू बड़ पुरख पिता मेरा माया रहाउ हर के नाम असंख अगम है अगम अगम हर राया गुणी ज्ञानी सुरत बहु कीनी एक तिल नहीं कीमत पाया गोविंद गुण गोविंद सद गाव है गुण गोविंद अंत ना पाया तू अमित अतोल अपरंपर स्वामी बहु जपिया था ना पाया पुस्तत कर है तुमरी जन माधो गुण गाव है हर राया तुम जल निद हम मीने तुमरे तेरा अंत ना कतहु पाया जन को कृपा करहो मधुसूदन हर देव हो नाम जपाया मैं मूर्ख अंधले नाम टेक है जन नानक गुरमुख पाया कल्याण महला चौथा हर जन गुण गावत हसिया हर हर भगत बनी मत गुरमत तुर मस्तक प्रभ लिखिया रहाउ गुर के पग सिमरो दिन राति मन हर हर हर बसिया हर हर हर कीरत जग सारी कस चंदन जस कसिया हर जन हर हर हर लिव लाई सब साकत खोज पया ज्यो किरत संजोग चल्यो नर निंदक पग नागन शोहे जलिया जन के तुम हर राखे स्वामी तुम जुग जुग जन रखिया कहां भया दैत करी बखीली सब कर कर झर परिया जेते जी जंत प्रभ किए सब काले मुख ग्रसिया हर जन हर हर हर प्रभ राखी जन नानक सरन पया कल्याण महला चौथा मेरे मन जप जप जगन्नाथे गुर उपदेश हर नाम ते आयु सब किल बिख दुख लाथे रहाउ रसना एक जस गाए ना साकै बहु कीजै बहु रसनथे बार बार खिल पल सब गाव है गुण कह ना सकै प्रभ तुमन्थे हम बहु प्रीत लगी प्रभ स्वामी।

हम बारिक मुगद ज्ञान पिता समझावेंगे सुत खिन खिन भूल बिगार जगत पित पावेंगे जो हर स्वामी तुम देहो सोई हम पावेंगे मोहे दूजी नाही ठौर जिस पह हम जावेंगे जो हर पावे भगत

परस रे परस परस गुण गाइए नानक तत तत स्यो मिलिए हीरे हीर बेधाइए कल्याण महला पंजवा मेरे लालन की शोभा।

सहन सर्वन सुनिय अंग अंगे सुख प्राण रहाव। एते उत दह दिस रवियो मेर तिनह समान। जात कता तत पेखी है हर पुरख पत प्रधान। साध

ज्ञान भुगत सुरत शब्द तत बेते जप तप अखंडली ओत पोत मिल जोत नानक कछु दुख ना डंडली कल्याण महला पंजवा कौन बिद ता की कहां करूं धरत ध्यान ज्ञान शस्त्र गया।

दुर्गा कोट मदे मुक्त कहूं कहो नानक नाम रस पाई साधु चरण गहूं कल्याण महला पंजवा प्राण पत दयाल पुरख प्रभ सखे गर्भ जोन कल काल जाल दुख बनासन।

जुगत अनक सुख हर भगत लवै ना लाम नु प्रभ दर्श लुभद दास नानक बहुड़ जोन ना धाम नु कल्याण महला चौथा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद रामा राम रामो सुन मन भीजै हर हर नाम अमृत रस मीठा गुरमत सहजे पीजै रहाउ काष्ट मह ज्यो है बै संतर मत संयम काढ़ कढ़ीजै राम नाम है जोत सबाई तत गुरमत काढ़ लीजै नौ दरवाज नवे दर फीके रस अमृत दसवें चुईजै किरपा किरपा किरपा कर प्यारे गुर शब्दी हर रस पीजै काया नगर नगर है नीको विच सौदा हर रस कीजै रतन लाल अमोल अमोलक सतगुर सेवा लीजै सतगुर अगम अगम है ठाकुर भर सागर भगत करीजै किरपा किरपा कर दीन हम सारिंग एक बूंद नाम मुख दीजै लालन लाल लाल है रंगन मन रंगन कौ गुर दीजै राम राम राम रंग राते रस रसक घटक नित पीजै वसुधा सप्त दीप है सागर कड कंचन काढ़ तरीजै मेरे ठाकुर के जन इन्हों ना बांछ है हर मांग है हर रस दीजै साकत नर प्राणी सद भूखे नित भूखन भूख करीजै तावत ताए तावह प्रीत माया लख कोसन को बिथ दीजै हर हर हर हर हर जन उत्तम क्या उपमा तिन दीजै राम नाम तुल और ना उपमा जन नानक कृपा करीजै कल्याण महला चौथा राम गुर पारस परस करीजै हम निर्गुणी मनूर अत फीके मिल सत गुर पारस की जय रहाओ सुर्ग मुक्त बैकुंठ सब बंच है नित आसा आस करीजै हर दर्शन के जन मुक्त ना मांग है मिल दर्शन तृप्त मन तीजै माया मोह सबल है भारी मोह कालक दाग लगीजै मेरे ठाकुर के जन अलिपत है मुक्ते ज्यों मरगाई पंक ना पीजै चंदन वास पुयंगम वेड़ी किव मिलिया चंदन लीजै काड खड़ग गुर ज्ञान करारा बिख छेद छेद रस पीजै आन आन समदा बहु कीनी पल बै संतर भस्म करीजै महा उगर पाप साकत लर कीने मिल साधु लूकी दीजै साधु साध साध जननी के जिन अंतर नाम तरीजै परस न परस भय साधु जन जन हर भगवान दिखीजै साकत सूत बहु गुर जी भरिया क्यों कर तान तनीजै तंत सूत किस निकसै नाही साकत संग ना कीजै सतगुर साध संगत है नीकी मिल संगत राम रवीजै अंतर रतन जवे हर मानक गुर कृपा ते लीजै मेरा ठाकुर वड्डा वड्डा है।

साध जननी के मिल साधु हर रंग की जय रहाओ। जी जंत सब जग है जेता मन डोलत डोल करी जय। कृपा कृपा कर साध मलाव हो जग थमन को थम दीजै। बसदा तलै तलै सब ऊपर मिल साधु चरण रलीजै। अति उत्तम अत उत्तम हो वो सब सिष्ट चरण तल दीजै। गुरमुख जोत भली सिवनी की आन पानी सकत परीजै। मैन दंत निकसे गुर बचनी सार चब चब हर रस पीजै। राम नाम अनग्रह बहु किया गुर साधु पुरख मलीजै। गुण राम नाम बिसथीरन किए हर सगल भवन जस दीजै। साधु साध साध मन प्रीतम।

फुल फल गुर ज्ञान दरड़ाया बहकार बास जग दीजै एक जोत एको मन वसिया सब ब्रह्म दृष्ट एक कीजै आत्म राम सब एक है पसरे सब चरण तले सिर दीजै नाम बिना नकटे नर देखो तिन कस कस नाक वडीजै साकत नार अहंकारी कही है बिन नावे त्रिग जीवीजै जब लग सास सास मन अंतर तत बेगल सरन परीजै नानक कृपा कृपा कर धारो मैं साधु चरण पखीजै कल्याण महला चौथा रामा मैं साधु चरण तवीजै तिल बिख दहन होहे खिन अंतर मेरे ठाकुर कृपा कीजै रहाउ मंगत जन दीन खरे दर ठाढे अत तरसन को दान दीजै त्राहे त्राहे सरन प्रभ आए मोको गुरमत नाम दृढ़ीजै काम क्रोध नगर मह सबला नित उठ उठ जूझ करीजै अंगीकार करहु रख लेवहु गुरपूरा काड कढ़ीजै अंतर अगन सबल अत बिखिया हिव शीतल शब्द गुर दीजै तन मन शांत हुए अधिकाई रोग काटे सूख सवीजै ज्यों सूरज किरन रविया सरबठाई सब घट घट राम रवीजै साधु साध मिले रस पावै तत निज घर बैठिया पीजै जन को प्रीत लगी गुर सेती ज्यों चकवी देख सूरीजै निरखत निरखत रैन सब निखी मुख काढ़ै अमृत पीजै साकत सवान कहिया बहु लोभी बहु दुर्मत मैल परीजै आपन सवाए करह बहु बाता तिना का वसाहु क्या कीजै साधु साध सरन मिल संगत जित हर रस काढ़ कढ़ीजै पर उपकार बोलह बहु गुणिया मुख संत भगत हर दीजै तू अगम दयाल दया पत दाता सब दया धार रख लीजै सर्ब जी जग जीवन एको नानक प्रतपाल करीजै कल्याण महला चौथा रामा हम दासन दास करीजै जब लग सास होए मन अंदर।

राग राग प्रभाती बेपास महला पहला चौपदे कर पहला नाए तेरे तरना नाए पत पूज नाओ तेरा गहना मत मकसूद नाए तेरे नाओ मन्ने सब कोए विण नावै पत कबू ना होए।

नाम दारू अवर नासत करन हार अपार रहाउ पताल पुरियां एक पार हो वह लाख करोड़।

आई मन चित बहुत बफावे एते गुण एतियां चंगियाईयां दे ना पछोतावे तुद सलाहन तिन धन पल्ले नानक का धन सोई जे को जियो कह ओना कहो जम की तलब ना होई प्रभाती महला पहला जा कै रूप नाही जात नाही नाही मुख मासा सतगुर मिले निरंजन पाया तेरा नाम है।

मैल हरै सतगुर पाए पूरा नावण पशु परे तो देव करै रत्ता सच नाम तल हील सो गुर परमल कही है जाकी वास बनास पत सौरै तास चरण निव रही है गुरमुख जी प्राण उपजह गुरमुख शिव घर जाइय गुरमुख नानक सच समाई है गुरमुख निज पद पाई है प्रभाती महला पहला गुर प्रसादी विद्या विचार है पढ़ पढ़ पावे मान आपा मदे आप परगासिया।

पंच तस कर तावत राखी चूका मन अभमान दिष्ट विकारी दुर्मत भागी ऐसा ब्रह्म ज्ञान जत सत चावल दया कणक कर प्राप्त पाती तान दूध कर्म संतोख कियो कर ऐसा मांगो दान खिमा तीर्ज कर गऊ लवेरी सहजे बछरा खीर पिए सिफत शर्म का कपड़ा मांगो हर गुण नानक रवत रह प्रभाती महला पहला आवत किने ना राखिया।

उल्टी नदर पर गासे मन विचार देख ब्रह्म ज्ञानी कौन गिरही कौन उदासी जिसकी आशा तिस ही सौंप कै एहो रहया निर्वाण जिसते हो आसोई करमानिया नानक गिरही उदासी सो परवान प्रभाती महला पहला दिष्ट बिकारी बंधन बंद है हौ तिस कै बल जाई पाप पुन की सार ना जाने भूला फिरे अजाई बोलो सच नाम कर।

मन जोगी मन भोगिया मन मूर्ख गवार मन दाता मन मंगता मन सिर गुर करतार पंच मार सुख पाया ऐसा ब्रह्म विचार घट घट एक वकार।

आई जात जन्म नह पूछी है सच घर लेहो बताई सा जात सा पत है जे कर्म कमाए जन्म मरण दुख काटिए नानक छूट सुनाई प्रभाती महला।

जाने, जिसनो नजर करे सोई बिद जाने, मैं मैलो उजल सच सोए, उत्तम आख ना उच्चा होए, मनमुख खूल महा बिख खाई।

है कहावै सोए। प्रभाती मोहल्ला पहला खाया मैल बधाया पेंद घर की हान बक बक वाद चलाया बिन नावे बिख जान। बाबा ऐसा बिकम जाल मन वासिया बिबल झाग सहज प्रगासिया रहाउ। बिख खाना बिख बोलना बिख की कार कमाए जम दरबादे मारी है छूटस साच नाय। जिव आया तिव जाए सी किया लिख ले जाए। मन मुख मूल गवाया दरगाह मिले सजाए। जग खोटो सच निर्मलो

निजर चरै अमर आनंद स्वरूप नानक जल को मीन सै थे पावै राखो प्रीत प्रभाती महला पहला गीत नाद हरक चतुराई।

दस कमल बिगासे सस कर सूर समाया काल बिंदु मनसा मन मारी गुर प्रसाद प्रभ पाया आतरस रंग च लूले राती दूजा रंग ना कोई नानक रसन रसाए राते रव रहिया प्रभ सोई प्रभाती महला पहला बारह मह रावल खप जावह चौ छे मह सन्यासी जोगी कापड़िया सिर कूथे बिन शब्द गल पासी शब्द रते पूरे बैरागी औ हठ हस्त मह भीखे आ जाची एक पाए लिव लागी रहाउ ब्राह्मण वाद पढ़े कर क्रिया करनी कर्म कराए बिन बूझे किस सूझे नाही मन मुख विछड़ दुख पाए शब्द मिले से सूचा चारी साची दरगाह माने आन दिन नाम रतन लिव लागे जुग जुग साच समाने सगले कर्म धर्म सुच संयम जप तप तीरथ शब्द वसे नानक सतगुर मिले।

साचो एक शब्द लिवलावे निरालंब निरहार ने केवल निरपहु ताड़ी लावे शायर सप्त भरे जल निर्मल उल्टी नाव करावे बाहर जातो ठाक रहावे गुरमुख सहज समावे सो गिरही सो दास उदासी जिन गुरमुख आप पछानिया नानक कह अवर नहीं दूजा साच शब्द मन मानिया राग प्रभाती महला तीजा चौपदी।

साच रहै लिव लाई, हर हर नाम जपहु जन पाई। गुर प्रसाद मन अस्थिर हुवै, अन दिन हर रस रहिया आगाई रहाउ। अन दिन भगत करहु दिन राती, इस जुग काला हा पहाई।

सुख पाया गुर तृष्णा अग्न बुझाई जो तू करह सो होए करते अवर ना करना जाई नानक नावै जे बड़े अवर ना दाता पूरे गुर ते पाई प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर साल आया जिन्ना तिन

शब्द समाहे प्रभाती महला तीजा गुरमुख हर जियो सदा त्याहु जब लग जी प्राण गुर शब्दी मन निर्मल हुआ चूका मन अभमान सफल जन्म तिस प्राणी केरा हर कै नाम समान मेरे मन गुर की सिख सुनी जै हर का नाम सदा सुख दाता सहजे हर रस पीजै रहाऊ मूल पछाणन तिन निज कर वासा सहजे ही सुख होई गुर कै शब्द कमल परगासिया हम मैं दुर्मत खोई सबना मह एको सच वरतै बिरला बूजै कोई गुरमति मन निर्मल हुआ अमृत तत्व खाने हर का नाम सदा मन वसिया विच मन ही मन माने सद बलिहारी गुरे अपने बिटो जित आत्म राम पछाने मानस जन्म सतगुरु ना सेविया बिरथा जन्म गवाया नदर करी ता सतगुर मेले सहजे सहज समाया नानक नाम मिले वडियाई पूरे भाग त्याया प्रभाती महला तीजा आपे भांत बनाए बहुरंगी।

अमर दे अंतर पायो, गुरमंत दियो हर कान रहाओ। आवहु संत मिलो मेरे पाई, मिल हर हर नाम बखान। कित बिद क्यों पाइए प्रभ अपना, मोको करहो उपदेश हर दान। सत संगत मह हर हर वसिया, मिल संगत हर गुण जान। वड्डे भाग सत संगत पाई, गुर सत गुर परस भगवान। गुण गाव है प्रभ अगम ठाकुर के, गुण गाए रहे हैरान। जन नानक को गुर कृपा तारी, हर नाम दियो खिन दान। प्रभाती महला चौथा, उगवे सूर गुरमुख हर बोल है। सवरैन समाल है हर गाल, हमरे प्रभ हम लोच लगाई। हम करहे प्रभु हर पाल, मेरा मन साधु तूर रवाल। हर हर नाम दरडायो गुर मीठा, गुर पग चारह हम बाल रहाओ। साकत

साध संगत में बसे गोपाल, गुर मिल आए तुमरे द्वार, जन नानक दर्शन देहु मरार, प्रभाते महला पंजवा, प्रभ की सेवा जन की शोभा, काम क्रोध मिटे तिस लोभा, नाम तेरा जन कै भंडार।

कै रंग, तिन सुख पाया प्रभ कै संग, जिस रस आया सोई जानै, पेख पेख मन मह हैरानै, सो सुखिया सब ते उत्तम होए, जा कै हृदय वस्या प्रभ सोए, सोई निश्चल आवै न जाए, अन दिन प्रभ के

सेवा, नानक उदर है जन की सेवा। प्रभाती महला पंजवा, गुण गावत मन हुए आनंद। आठ पहर सिमरो भगवंत, जाके सिमरन कल मल जाहे। तिस गुर की हम चरनी पाहे, समत देव हो।

देव वड़ै भाग पाइय हर सेव प्रभाती महला पंजवा सगले दुख मिटे सुख दिए अपना नाम जपाया कर कृपा अपनी सेवा लाई सगला दुर्त मटाया हम बारिक शरण प्रभ दया।

बल जाई अगमे अगोचर बेअंत स्वामी ताका अंत न पाइये लाहा खाट हुइये तनवंता अपना प्रभु ते आइये आठ पहर पार ब्रह्म ते आई सदा सदा गुण गाया कहो नानक मेरे पूरे मनोरथ पार ब्रह्म गुर पाया प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किल बिख सब नास्ती।

गुरपूरा पाइय वड भागी निर्मल पूर्ण रीत रहाउ पाया लाभ बजी वधाई संत प्रसाद हर के गुण गाई सफल जन्म जीवन परवान गुर प्रसादी हर रंग मान बिरसे काम क्रोध अहंकार नानक गुरमुख उतरह पार प्रभाती महला पंजवा गुर पूरा पूरी ताकी कला गुर का शब्द सदा

चरण पूजारी मुख उज्जल साचे दरबारी जिस मस्तक गुर तरिया हाथ कोट मदे को विरला दास जल थल मैयल पेखै भरपूर नानक उदरस तिस जन की तूर प्रभाती महला पंजवां कुरबान जाई गुर पूरे अपने जिस प्रसाद हर हर जप जपने रहाउ अमृत बाणी सुनत निहाल बिनस गए बिखिया जंजाल सात शब्द स्यो लागी प्रीत हर प्रभ अपना आया चीत नाम जपत हुआ प्रगास

मिल भया प्रगास, हर हर जपत पूर्ण भई आस, सर्ब कल्याण सूख मन बूठे, हर गुण गाए गुरु नानक तूठे, प्रभाती महला।

क्रोध अहंकार बिनसै लगै कै प्रीत रहाउ। नाम लागै दुख भागै शरण पालन जोग। सतगुर भेटै जमना तेटै जिस तुर होवै संजोग। रैन दिन सत्याए हर हर तजहो मन के परम। साध संगत हर मिलै।

रखनहार मन अराध प्रभु मेक संतरेन करो मज्जन नानक पावे सुख अनेक प्रभाती अष्टपदी।

फुन बंद ना पाया, सतगुर राखे नाम दिरडाया, ना मन मरे ना माया मरे, जिन किश किया सोई जाने, शब्द विचार भव सागर तरे, रहाउ माया संच राजे अहंकारी, माया साथ ना चले प्यारी, माया ममता है बहुरंगी।

मन वसाय विषम बनोद रहे परमादी गुरमत मानिया एक लिव लागी देख नवारिया जल मह आगी सो बूझै होवै बड़ भागी सतगुर से।

अहंग करन है, खसम ना पावे साध, बिन नावे होर कमावना, फिक्का आवे साध, दुष्टि सभा विगुती है, बिकवाती जीवन बाद, ए ब्रह्म भूले मरो ना कोई, सतगुर सेव सदा सुख होई, बिन सतगुर

काई करो अढ़ाई धरती मांगी बामन रूप बहान क्यों पयाल जाए क्यों चली है जे बल रूप पछान राजा जनमेजा दे मती बर्ज ब्यास पढ़ाया तिन कर जग अठारह कहाय कीर्तना चले चलाया गणतना गणी हुक्म पछाण बोली भाई सुपाई।

सरनाई मनमुख मुग दया गै चीतै नाही दुख लागै पछताई आपे करे कराए करता जिन एह रचना रचियै हर अभमान न जाई जियो अभमाने पै पचियै भुलण विच किया सब कोई करता आप न भुलै नानक सच नाम निस्तारा को गुर प्रसाद अकुलै प्रभाती महला पहला आखना सुनना नाम आधार धंधा चुक गया बेकार ज्यों मनमुख दूजै पत।

इस मन माया मोहे बनास, तुर हुक्म लिखिया ता कही है कास, गुरमुख विरला चीनै कोई, नाम बिहु ना मुक्त ना होई, ब्रह्म ब्रह्म डोले लख चौरासी, बिन गुर बूझे जम की फासी, एहो मनुआ खिन खिन ऊब पयाल, गुरमुख छूटे नाम संभाल, आपे सदे ढिल ना होई, शब्द मरे सहला जीवे सोए, बिन गुर सूझी किसे ना होए, आपे करे करावे सोए, झगड़ चुकावे हर गुण गावे, पूरा सतगुर सहज समावे, एहो मन

कर्म धर्म पत पूजा काम क्रोध अग्नि मैं पूजा हर रस चाखिया तौ मन पीजा प्रणवत नानक अवर ना दूजा प्रभाती महला पहला राम नाम जप अंतर पूजा गुर शब्द विचार अवर नहीं दूजा एको रब रहया सब ठाई अवर ना दिसै किस पूज चढ़ाई रहाउ मन तन आगे जियड़ा तुझ पास ज्यो पावै त्यो रखो अरदास सच जिहवा हर रसन रसाई गुरमत छूटस।

पाई। प्रभाती महला पहला, एक तोर बख्श लए गुरपूरे, सच्ची बणत बनाई। हर रंग राते सदा रंग साचा, दुख बिसरे पत पाई। झूठी दुर्मत की चतुराई, बिन सतबार न लागे काई। रहाओ मनमुख को दुख दर्द व्यापस, मनमुख दुख ना जाई। सुख दुख दाता गुरमुख जाता, मेल लए सरनाई। मनमुख ते अब भगत ना होवस, हौ मैं पचै दीवानी। इह मनुआ खिन ऊब पयाली, जब लग शब्द ना जाने। भूख प्यासा जग भया, किपत नहीं बिन सतगुर पाई। सहज सहज मिले सुख पाई है दरगा।

खुन त्रै मिल जगत उपाया ऐसा बल शल तिनको दिया हुक्मी ठाक रहाया ऐसे जन विरले जागे अंदर

ते तीर्थ से निर्मल दुख हो मैं मैल चुकाया। नानक तिनके चरण पखाले जिन्ना गुरमुख साचा पाया।

सच्ची भगत सच्चा हर मंदर प्रगटी साची सोए रहाव। हर मंदर हो शरीर है ज्ञान रतन प्रगट होए। मनमुख मूल ना जाननी मानस हर मंदर ना होए। हर मंदर हर जियो साजिया।

टिक एक सकी सिर छाह वद पुरख स्वामी रहाउ छल नागन स्यो मेरी टूटन होई गुर कहया एह झूठी तोही मुख मीठी खाई कौराय अमृत नाम मन रहया अघाई लोभ मोह स्यो गई विखोट गुर कृपाल मोहि कीनी छोट एह ठगवारी बहुत कर गाली हम गुर राख लिए कृपाली काम क्रोध स्यो ठाट न बनिया गुर उपदेश मोहे कानी सुनिया जह देखो तह महा चंडाल राख लिए अपने गुर गोपाल दस नारी मैं करी दुहागन गुर कहया ए रसै बिखागन इन संबंधी रसातल जाई हम गुर राखे हर लिबलाय अहम मेव स्यो मसलत छोड़ी गुर कहया एह मूरख होड़ी एह नी कार कर कहीं ना पाई हम गुर राख लिए लिबलाय इन लोगन स्यो हम पये बैराई एक ग्रह मह दोए ना खटाई आए प्रभ पह अंचर लाग करहु तपावस प्रभ सरबाग प्रभ

हुए भाग ता दर्शन पाइए आप तरह सब कुटुंब तराइए रहाउ दूजा प्रभाती महला पंजवा सिमरत नाम किल बिक सब काटे धर्म राय के कागर फाटे साध संगत मिल हर रस पाया पार ब्रह्म रिद माहि समाया राम रमत हर हर सुख पाया तेरे दास चरण सरनाया रहाउ चूका गौण मिटिया अंधियार गुर दिखलाया मुक्त।

का सोए, किस बिन बीजो नाई कोए, बैर विरोध छेडे पै परमा, प्रभ पुन आत्मै कीने धर्मा, महा तरंग ते कांडै लागा, जन्म जन्म का टूटा गांडा, जप तप संयम नाम संभालिया, अपने ठाकुर नदर निहालिया, मंगल सुख कल्याण तथाई, जह सेवक गोपाल गुसाई, प्रभ सो प्रसन्न पये गोपाल, जन्म जन्म के मिटे बेताल, होम जग उर्द तप पूजा, कोट तीर्थ इशनान करीजा, चरण कमल निमख हृदय तारी, गोविंद जपत सब कार्य सारी, उच्चे ते उच्चा प्रवथान, हर जन लावह सहज ध्यान।

अमर हुए सद आखुल रहै। प्रभाती भगत बेणी जी की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, तन चंदन मस्तक पाती।

कर्मं एलंपट नाच अधर्मं मृग्यासन तुलसी माला कारियुजल तिलक कपाला हृदय कूड़ कंठ रुद्राखं रे लंपट कृष्ण अपाखं

सहस कृति महला पहला पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समाधं मुख झूठ बेभूखन सारं त्रैपाल तिहाल विचारं गल माला तिलक लाटं दोय धोती बस्तर कपाटं जो जानस ब्रह्मं कर्मं सब फोकट निश्चय कर्मं कहो नानक निश्चौ त्यावै बिन सतगुर बाट ना पावै निःपलं तस्य जन्मस्य जावद ब्रह्म ना बिन्दते सागरं संसारस्य गुर प्रसादी तरह के करण कारण समर्थ है कहो नानक विचार कारण करते वस है जिन काल रखी तार जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ता ब्राह्मण है क्षत्रिय शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं प्राकृत है सर्व शब्दं ता एक शब्दं।

विलंब पापं दृढ़ंत नामं तजंत लोभं सरण संतं किल बिखनासं प्राप्तं धर्म लखियण नानक जेह सो प्रसन्न माधवह मृत मोहं अल्प बुद्धिहं अरचंत बनता बनोद साहं जौवन बह क्रम कनक कुंडल विचित्र मंदर सुभंत बस्तरा इत्यंत माया व्यापकं हे अच्युत सरण संत नानक ओ भगवानी नमः जन्मंता मरणं।

वर्तंत बनासन गोविंद भजन साध संगेन अस्त्रिंग नानक भगवंत भजनासन किरपंत हरियं मत तत् ज्ञान बख्शी देह बुधा कुशल थान बसे अंतरिक्षं त्याग मानं शीतलंत हृदयं दृढ़ संत ज्ञानं रहंत जन्मं हर दर्श लीना बाजंत नानक शब्द बीना कहंत बेदा गुणंत गुनिया सुनंत बाला बहु विद प्रकारा दृढ़ंत सो विद्या हर हर कृपाला।

परवित माया संबंधन है। दयाल एक भगवान पुरख है, नानक सर्व जी प्रतपाल कह। अनित्य है वितंग, अनित्य है चितंग।

एक जठरागन नह सिमरंत मलीन बुद्धि हं हे गोविंद करतमया नानक पतत उदारन साध संग मह गिरंत गिर पतत पतालंग जिलंत दे दीप्य वैसवांतर है बहंत अगाहा तोयं तरंगं दुखंत ग्रह चिंता जन्मं तामरन है अनक साधन ना सिद्ध्यते नानक अस्थंबं अस्थंबं अस्थंबं शब्द साध स्वजन है कोर दुखियं अनक हत्यं जन्म दारिद्रं महाभिख्यादं मिटंत सगल सिमरंत हर नाम नानक जैसे पावक काष्ठ पसमं करोत अंधकार सिमरत प्रकाशं गुण रमंत अग खंडन है रिद बसंत भय भीत दूत है कर्म करत महा निर्मल है जन्म मरण अरहंत सरोता सुख समूह अमोघ दर्शन है शरण जोगं संत प्रिय नानक सो भगवान खेमं करोत पाशं क्रोत अग्रणी वह निरासंग आस पूर्ण है निरतन भयं तनवंत है रोगियं रोग खंडन है भगत्यं भगत दानं राम नाम गुण कीर्तन है पार ब्रह्म पुरख दातार है नानक गुर सेवा क्यंग ना लभ्यते अतरंग तरंग तारन है निरतनंग तन नाम नरहर है अनाथ नाथ गोविंद है बालहीन बल केशव है सर्वभूत दयाल अचुत दीन बांधव दामोदर है सर्वज्ञ पूर्ण पुरख भगवान है भगत वचल करुणामय घट घट बसंत वासुदेव है पार ब्रह्म परमेश्वर है जा चंत नानक कृपाल प्रसादं नह बिसरंत नारायण है नह समरथं नह सेवकं नह प्रीत परम पुरखोत्तमं ताव प्रसाद सिमरते नामं नानक कृपाल हर हर गुरं भरण पोखण करंत जिया विश्राम साधन देवंत दानं सिरजंत रतन जन्म चतुर चेतन है वर्तंत सुख आनंद प्रसाद है सिमरंत नानक हर हर हरि अनित्य है रचना निर्मोहते दानं परापूर्वेण पूजन्ते महीपते विपरीत बुद्धिं मार्त लोक है नानक चिरंकाल दुख भोगते वृत्ता अनुग्रहंग बिंद है जस्य सिमरन रदंतर है।

पीवतं संत ना त्रिप्यते सहनशील संतं सममित्रस्य दुर्जनः नानक भोजन अनक प्रकारेण निंदक आवद होए उपतिष्ठते तिरस्कार नह पवंत मान भंग नह सोबाहीन नह पवंत नह पोहंत संसार दुख नह गोविंद नाम जपंत मिल साध संग है नानक से प्राणी सुख बासन है सैना साध समूह सूर अजितं सन्नाहंग तन निमृता आवद है गुण गोबिंद रमण ओट गुर शब्द कर चरमण है अरुणते अश्वरथ नाग है बुझंते प्रभ मार्ग है विचरते निर्भयं सत्र सेना तायंते गोपाल कीर्तन है जितते विश्व संसार है नानक वस्यं क्रोत पांच तस्कर है मृग तृष्णा गंधर्व नगरं द्रुम छाया रच दुर्मत है ततः कुटंब मोह मिथ्या सिमरंत नानक राम राम नाम है नच विद्या निदान निगमं नच गुणज्ञ है नाम कीर्तन है नच राग रतन कर

ततः दृष्टं स्वर्ग मर्त पयाल लोक है सर्वत्र रमणं गोविंद है नानक लेप शेप ना लिप्यते भिख्या पयंत अमृतं दृष्टां सखा सुवज्जन है दुखियं पयंत सुखियं तै पीतंगता निर्भय है थान बिहून विश्राम नामं नानक कृपाल हर हर गुर है सर्वशील ममं शीलं सर्व पावन मम पावन है सर्व कर्तव्य ममं कर्ता नानक लेप छेप ना लिप्यते।

नानक शीतलं साध स्वजन है। मंत्रं राम राम नामं ध्यानं सर्वत्र पूर्ण है। ज्ञानं सम दुख सुखं जुगत निर्मल निर्वैरण है। दयालं सर्वत्र जिया पंच दुख विवर्जित है। भोजनं गोपाल कीर्तनं अल्प माया जल कमल रहत है। उपदेशं सम मित्र सत्र है। भगवंत भगत भावनी पर निंदा नह स्रोत श्रवणं। आप त्याग सगल रेणु कह खट लखियन पूर्णं पुरख है। नानक नाम साध स्वजन है। अजापो गंत कांड मूलं।

रमणशील परमेश्वर है, करण कारण समर्थ है, दान देत प्रभु पूर्ण है, निराश आस करण सगल अर्थ आलय, गुण निधान सिमरंत नानक सगल जाचंत जाचक है, दुर्गम स्थान सुगम महादुख सर्व सूखण है, दुर्वचन भेद भरम साकत पिसनं ता सुरजन है, अस्थितं सोग हरखं पै खीनं ता निर्भवै है, पै अत्मियं महानगर वासं धर्म लखियन प्रभमय, साध संगम राम राम रमणं शरण नानक हर हर दयाल चरणं, के अजित सूर संग्रामं हथ बलना बहुमर्दन है, गण गंधर्व देव मनुखियं पास पंखी बमोहन है,

परमावन है चित हरनं त्रैलोक गम्यं जप तप सील बदारन है अल्प सुख अवित चंचल ऊच नीच समावन है तब भय विमुंचित साध संगम ओट नानक नारायण है। हे काल मूल क्रोधं कदंच करुणा न उपर्जते विखियंत जीवं वस्यं क्रोध नृत्यं क्रोध जथा मर्कट है अनक शासन ताड़ंत जमदूत है तब संगे अधमंग नर है दीन दुख भंजन दयाल प्रभ नानक सर्ब जी रख्या करोत। हे लोबा लंपट संग सिर मोर है अनक लहरी कलोलते तावंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बहु डोलते नच मित्रं नच इष्टं नच बांधो नच मात पिता तब लज्जिया अकरणं क्रोध अखाद्य है खाद्यं

अहंकारं पापात्मा मित्रं तजंत सत्रं दृढ़ंत अनक माया बस्तीर्ण है आवंत जावंत थकंत जिया दुख सुख बहु भोगण है ब्रह्म प्यान उद्यान रमण महाबिकट असाध रोगण है वैद्यं पार ब्रह्म परमेश्वर अराध नानक हर हर हरे। हे प्राण नाथ गोविंद है कृपा निदान जगद गुरु हे संसार ताप हरण है करुणा मैं सब दुख हरु हे शरण योग दयाल है दीना नाथ मया करु शरीर स्वस्थ खीण समय

पवित्र है। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है। आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है। सर्ब रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है। भगत वच्छल अनाथ नाथी, शरण नानक पुरख अच्युत है। जेन कला धार्यो अकाशं, बैसंतरं काष्ट बेष्टं। जेन कला सस सूर नक्षत्र ज्योतियं, सासं शरीर धारणं। जेन कला मात गर्भ प्रतपालं, नह सिदंत जठर।

सिमरणं सर्वत्र जीवनः लब्धेहं संत संगेन नानक श्वास मार्ग हर भगतनः मस्कं पगनंत सैलं कर्दमं तरंत पपील कह सागरं लगंत पिंगं तम प्रकाश अंध कह साध संगेन सिमरंत गोविंद शरण नानक हर हर हरि तिलकहीनंग जथा बिपरा अमरहीनंग जथा

श्यामं आश्चर्य रूपं रहंत जन्मं नेत नेत कथंत बेदा ऊच मूच अपार गोविंद है बसंत साध हृदयं अच्युत बुजंत नानक बड़ भागी है उद्यान बसनं संसारं संबंधी स्वान सियान खर है विखम स्थान मन मोह मद्रं महा असाध पंच तस कर है हीत मोह पै भरम भ्रमणं अहं फांस तीक्षण कठन है पावक तो असाध कोरं अगम तीर नह लंघन है पज साध संग गोपाल नानक हर चरण सरण उदरहन कृपा कृपा क्रंत गोविंद गोपाल है सगलं रोग खंडन है।

साथ चलंथो पणंत नानक साध संगेन माया चित परमेण इष्ट मृतेख बांध वह लब्धे हं साध संगेन नानक सुख अस्थानं गोपाल भजनं मैला गर संगेन निम बिरख से चंदन है निकट बसंतो।

समंतर साध बचना कोट दुख बनासन है हर चरण कमल त्यानंग नानक कुल समूह उदाहरण है सुंदर मंदर सैन है जेण मध्य है हर कीर्तन है मुक्ते रमन गोविंद है नानक लब्ध अंग बड़ भागण है हर लब्धो मित्र सुमितो।

आप ज संग मटंत सत पुत्र है, सिमरतव्य है हृदय गुरमंत्रण है, प्रीतम भगवान अच्युत, नानक संसार सागर तारण है, मरणंग विसरणंग बिंद है, जीवनंग हर नाम त्यावण है, लभणंग साध संगीन, नानक हर पूर्व लिखण है, दसन बिहून पयंगं, मंत्रं गारडी निवारं, ब्याद उपारण संतं, नानक लब्ध कर्मण है, जात काथ रमणं, शरणं सर्वत्र जियण है, तात लगणं प्रेम नानक, प्रसादं गुर दर्शन है, चरणार बिंद मन भिद्यं, सिद्धं सर्व कुशलन है, गाथा गावंत नानक, पभ्यं परापूर्वण है, शुभ बचन रमणं, गवणं साध संगेन उदरण है, संसार सागरं नानक, पुनरप जन्म न लभ्यते, वेद पुराण शास्त्र विचारं, एकंकार नाम उरतारं, कुलह समूह सगल उदारं, बडभागी नानक को तारं, सिमरणं गोविंद नामं, उदरणं कुल समूहण है, लब्धं साध संगेन नानक, बडभागी भेटंत दर्शन है, सर्व दोख प्रंत्यागी, सर्व धर्म दृढ़ंतरण है, लब्धेन साध संगेन नानक, मस्तक लिखियण है, होयो है होवंतो, हरण भरण संपूर्ण है।

कसों वरंगण है, रोग सोग बियोगं नानक सुख ना सुपन है। हुनहे महला पंजवां, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, हाथ कलम अगम मस्तक लेखावती, उर्ज रहे हो सब संग अनूप रूपावती, उस्तत कहन न जाए मुख हो तोहारिया, मोही देख दर्स नानक बलिहारिया, संत सभा में बैस के कीर्त मैं कहा, हरपी सब शिंगार एहो जियो सब देवा, आस प्यासी सेज सो कंत बछाइए, हर हां मस्तक होवे भाग ता साजन पाइए, सखी काजल हार तंबोल सबे किस साजिया, सोलह किए शिंगार के अंजन पाजिया, जे घर आवे कंत ता सब किछ पाइए, हर हां कंते बाज शिंगार सब बिरथा जाइए, जिस घर वसिया कंत सावड भागणे, तिस बनिया हब शिंगार साई सोहागणे, हौ सुती होए अचिंत मन आस पुराइया, हरे हां जां घर आया कंत ता सब किछ पाइया, आसा इती आस के आस पुराइए, सतगुर भए दयाल ता पूरा पाइए, मैं तन अवगण बहुत के अवगण छाया, हरे हां सतगुर भए दयाल ता मन ठहराया, कहो नानक बेअंत बेअंत ते आया।

हाथ पदम आंगन सुख बासना सखी मूरे कंठर तन पेख दुख नासना बासो संग गोपाल सगल सुख रास हर हर हां रिद सिद्ध नव निद बस है जिस सदा कर पार त्रय रावण जाहे से लाजी है नित प्रत हिरह पर दर्ब छिदर कत ताकी है हर गुण रमत पवित्र सगल कुल तारई हर हां सुनते पय पनीत पार ब्रह्म बीचारई ऊपर बने आकाश तले तार सोहती दह दिस चमके बीजल मुख को जोहती खोजत फिरो बदेश पियो कत पाईय हर हां जे मस्तक होवे भाग ता दर्श समाईय दिठे सबे थाम नहीं तुद जेहया बदहो पुरख बधाते ता तू सोहया वसदी सगन अपार अनूप राम दास पुर हर हां नानक कसमल जाहे नाये राम दास सार चात्रक चित सुचित सो साजन चाहिए जिस संग लागे प्राण तिसै कहो आहिए बन बन फिरते उदास बूंद जल कारने हर हां त्यों हर जन मांगे नाम नानक बलिहार ने मित का चित अनूप मरम ना जानी है गाहक गुनी अपार सो तत पछानी है चित है चित समाए ता होवे रंग घना हर हां चंचल चोर है मार ता पावे सच धना सुपने उभी भई गहयो की ना अंचला सुंदर पुरख विराजत पेख मन

सब जावई। औखद नाम अपार अमोलक पीजई, मिल मिल खावह संत सगल कौ दीजई। जिसै प्राप्त होए तिसै ही पावनी, हर हां हौ बलिहारी तिन जे हर रंग रावनी। वैदा संदा संग इकट्ठा होया, औखद आए रास विच आप खलोया। जो जो ओना कर्म सुकर्म होए पसरे,

प्रीत प्रेम तन खाच रहया बीच नाराई होत चरण कमल मन बेदे हो बूजन सुरत संयोग सागर मेर उद्यान बन नवखंड बसदा परम मूसन प्रेम परम कै गनो एक कर करम मूसन मस कर प्रेम की रही जो अंबर छाए बीते बांदे कमल मह भवर रहे लपटाए जप तप संयम हरख सुख मान महत अर गर्भ मूसन निमखक प्रेम पार वार वार देओ सर्ब मूसन मर्म ना जाने मरत हित संसार प्रेम पिरम ना बेदेओ उर्जेओ मिथ व्यवहार कब दब जब जारी है बिसरत प्रेम बेहाल मूसन तब ही मूसी है बिसरत पुरख दयाल जाको प्रेम सुआओ है चरण चितव मन माहे नानक बिरही ब्रह्म के आन ना कतहू जाहे लख घाटी ऊंचो घनो चंचल कीत बेहाल नीच कीच निमृत कनी करनी कमल जमाल कमल नैन अंजन श्याम चंदर बदन चित चार मूसन मगन मरम स्यों खंड खंड कर हार मगन भयो प्रिय प्रेम स्यों सूद ना सिमरत अंग प्रगट भयो।

हम तज भलो सब कोए जिने ऐसा कर बूझिया मीत हमारा सोए कबीर आई।

पवन च फूलन हार, संतोह माखन खाया छाछ पिए संसार, कबीर माया डोलनी पवन वह हिवतार, जिन बुलोया

आए हौ बलिहारी तिनको पैस जो नीकस जाए कबीर यो तन जाएगा सको तले हो बोर नांगे पामो ते गए जिनके लाख करोर कबीर यो तन जाएगा तमने मार गलाए कै संगत कर साध की कै हर के गुन गाए कबीर मरता मरता जग मुआ मर पी ना जानिया कोई ऐसे मरने जो मरे बहुर

कह यार हरुए हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार कबीर हाड जरे ज्यो ला करी केस जरे ज्यो कास इहो जग जरता देख कै भयो कबीर उदास कबीर गर्ब ना कीजिए चामल पेटे हाड है वरी ऊपर छत।

अजो सोना उस मुंदर में क्या जानो क्या होए, कबीर गर्व ना कीजिए देही देख सुरंग, आज काल तज जाओगे ज्यों कांचुरी पोयंग, कबीर लूटना है ता लूट लै

कोई सांझा करे कबीर सियों हर संग बणज करे कबीर एह चेतावनी मत सहसारे जाए पाछे भोग जो

थोड़ा जल माछुनी चीवर मेले ओ जाल ए तो गनैना सूट सह फिर कर समुंद संभाल कबीर समुंद ना छोड़ी है जो अत खारू होए पोखर पोखर ढूंढते भलो।

ऐसनों की कुकर भली साकत की बुरी माए। ओ नित सुने हर नाम जस ओ पाप बसाहन जाए। कबीर हर

होर काया हांडी काठ की ना उह चढ़ बोहोर। कबीर ऐसी होए परी मन को भावत कीन, मरने ते क्या डरपना जब हाथ सदोरा लीन। कबीर रस को गांडो चूसिया गुण को मरिया रोए, अवगुण यारे मानस है भलो ना कह है कोय। कबीर गागर जल भरी आज काल जय है फूट, गुर जो ना चेत है अपनो अदमाज लीजे।

कबीर रमैया कंठ में चूकह सर्व जंजाल, कबीर ऐसा को नहीं मंदर दे जराय। पांचों लड़के मार के रह राम लियो लाय, कबीर ऐसा को नहीं।

जिन हर का नाम ना चेतेओ, बाद है जन्मे आए कबीर आसा करिए राम की, अवरै आस नरास नरक पर है ते मानई।

क्या करे जो राम ना करे सहाय। जेह जेह डाली पग धरो सोई मुर मुर जाय। कबीर अवरह को उपदेश ते मुख

हार जंत बचारा क्या करे चले बजावन हार कबीर माए मुंडो ते गुरु की जाते भरम ना जाए आप डुबे चौबेद में चेले दिए बहा।

आए कबीर जेते पाप किए राखे तले दुराए प्रगट भए निदान सब जब पूछे धर्म राय कबीर हर का सिमरन छाड़ के पाल्यो बहुत कुटुंब धंधा करता रह गया पाई रहया ना बंद कबीर हर का सिमरन छाड़ के रात जगावन जाए सरपन होए कै औतरे जाए अपने खाए कबीर हर का सिमरन छाड़ के होई राखे नार गदही होए कै औतरे पार सह मन चार कबीर चतुराई अत कणी

जा मुख कहिए राम देही किसकी बापुरी पवित्र हुए गो ग्राम कबीर सोई कुल पली जा कुल हर को दास जेहे कुल दास ना उपजै सो कुल ढाक पलास कबीर है गए बाहन सगन कन लाख तजा फहराहे या सुख ते भिख्या पली जो हर सिमरत दिन जाय कबीर सब जग हो फिरयो मांडल कंध चढ़ाए।

जोत बिना जगदीश की जगत उलंगे जाए। बूढ़ा वंश कबीर का उपजियो पूत कमाल, हर का सिमरन छाड़ के घर ले आया माल। कबीर साधु को मिलने जाई है,

रहो हरख गुन गाय। कबीर चुगै चितारे पी चुगै चुग चुग चितारे, जैसे बचरह कूंज मन माया ममतारे। कबीर अंबर कन हर छाया बरख परे सरताल, चातरक ज्यों तरसत रह तिनको कौन हवाल। कबीर चकई जो निस बिसर आए मिले परबात, जो नर बिसरे राम स्यों ना दिन मिले ना रात। कबीर रह नायर बिशोरिया रहो रे संख मचूर, देवल देवल ताहड़ी।

आग जाके संग ते बीशरा ताही के संग लाग। कबीर संत की गैल ना छोड़ी है मार्ग लागा जाग। पेखत ही पनीत होए पेटत जपिए नाम। कबीर साकत संग ना कीजिए दूर।

पहुंचियों, जरा पहुंचियो आए, लागी मंदिर द्वार ते, अब क्या काढ़िया जाए। कबीर कारण सो पयो, जो कीनो करतार, किस बिन दूसर को नहीं, ये कैसे जनहार। कबीर फल लागे फलन, पाकन लागे आंब, जाए पहुंचे है खसम को, जो बीच ना खाही कांब। कबीर ठाकुर पूजे मोल ले, मन हट तीरथ जाए, देखा देखी स्वांग तार, भूले पटका खाए। कबीर पाहन परमेश्वर किया, पूजे सब संसार, इस

होएगा जो सिर पर आवे काल। कबीर ऐसा जन तिक देखिया जैसी तोई लाख दिसै चंचल बहुगुना मत ही नाना।

सो जपया परवदगार कबीर कस्तूरी भया पवर पये सब दास ज्यों ज्यों भगत कबीर की त्यों त्यों राम निवास कबीर गह गच परे ओ कटंब।

कबीर साकत ते सूकर भला राखै आछा गांव। ओह साकत बपरा मर गया कोई ना लह नाव। कबीर कौडी कौडी जोर कै।

बाहर बाहर कंचन बारहा भीतर परी पंगार। कबीर रोड़ा हुए रहो बात का ताजमान का अपमान ऐसा कोई दा

चाहिए ज्यों पानी सरबंग। कबीर पानी हुआ ता क्या भया, सीरा ताता हुए। हर जन ऐसा चाहिए जैसा हर ही होए। ऊंच पवन कन कामनी शिखर तजा फहराए। ताते भली मधु करी संत संग गुण गाए। कबीर पाटन ते उजर भला,

छोरा पूजह नारथन करोड़, कबीरा एक चंपो देखियो हीरा हाट बकाय, बनजन हारे बाहरा कौडी बदल जाय। कबीरा जहां ज्ञान तह धर्म है, जहां झूठ तह पाप, जहां

मान मुनि मुनिवर गले मान सब है को खाए। कबीर साचा सतगुर मैं मिलया शब्द जो बाहया एक लागत ही भोए मिल गया परया कलेजे शेक। कबीर साचा सतगुर क्या कर है जो सिखा महचूक अंधे एक ना लागे ज्यो बांस बजाई है फूक। कबीर है गै बाहन सगन घन छत्रपति की नार ताश पतंतर ना पुजै

बहीर एक अवघट घाटी राम की तेह चढ़ रहे हो कबीर। कबीर दुनिया के दोखे मुआ चालत कुल की कान, तब कुल किस का लाज सी जब

संत मलयागर पोयंगम बेदेव ता शीतलता नात जंत कबीर मन शीतल पया पाया ब्रह्म ज्ञान जिन ज्वाला जग जारिया सो जन के उदक समान कबीर सारी सिर जनहार की जाने नाही कोय कह जाने आपन तनी कह दास देवानी होय कबीर भली पई जो पौ परया दिशा गई सब भूल उरा घर पानी।

के बिन मिले, पलट पई सब खेहे। जह अनपौ तह पै नहीं, जह पौ तह हर नाही। कहियो कबीर बिचार कै संत।

तास चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं दास कबीर मुन्ना मनारे क्या चढ़ है साई ना बहरा हुए जा कारण तू बांग दे दिल ही पीतर जोए सेख सबूरी बाहरा क्या हज काबे जाए कबीर जाकी दिन साबत नहीं ताको कहां खुदाए कबीर अल्लाह की कर बंदगी जेहे सिमरत।

तब जानिए मिटै मोह तन ताप हरख सोग दाजै नहीं तब हरे आपह आप कबीर राम कहन मैं भेद है ता मह एक विचार सोई राम सबै कह सोई कौतकहार कबीर रामे राम कहो कहबे माहे बबेक एक अनेक।

ते कार मरहत सारखे भूत बस है तिन माहे। कबीर गूंगा हुआ बावरा बहरा हुआ कान, पावहु ते पिंगल भया मारिया सतगुर बाण। कबीर सतगुर सूर में बाहया बाण जो एक, लागत ही पोए गिर परया परा करे जे शेक। कबीर निर्मल बूंद आकाश की पर गई भूम बेकार, बिन संगत इओ मानी होए गई पाठशार। कबीर निर्मल बूंद आकाश की लीनी भूम मलाए, अनक सियाने पच गए ना निर्वारी जाय। कबीर हज काबे हो जाए था आगे मिलया खुदाए, साई मुझ स्यों लर परया तुझे किन फरमाई गाय। कबीर हज काबे हुए हुए गया।

मार है जोर कर कहते है जो हलाल दफ्तर दई जब काड है होएगा कौन हवाल। कबीर जोर किया सो जुल्म है।

हुआ, मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया, जत देखो तत तू कभी।

आस कबीर हर का सिमरण जो करे सो सुखिया संसार इतोत कतह ना डोलई जिस राखै सिर जनहार कबीर कहानी पीड़ते सतगुर लिए छडाए परा पूर्व ली भावनी प्रगट होई आए कबीर टालै टोलै दिन गया ब्याज बढ़ंतो जाए ना हर भजियो ना खत फटियो काल पहुंचो आए महला पंजवां कबीर कूकर भौंकना करंग पिछे उठताए करमी सतगुर पाया जिन्हों लिया छडाए महला पंजवां कबीर धरती साध की तस्कर बै सहगाए धरती भार ना।

आए संगुक संगी बैसते तब पूछे धर्म राय नामा माया मोहया कहत लोचन मीत काहे सी पोषाय ले राम ना लावो चीत नाम।

कबीर मन जाने सब बात, जानत ही औगन करे काहे की कुसलात, हाथ दीप कुए परै।

फिर कोठे मंडप हेत कर काहे मरहो सवार कारज साडे तीन हाथ कनी ता पौने चार कबीर जो मैं चितमो ना करै या मेरे चितवे होए अपना चितवे आहर करै जो मेरे चित ना होए महला तीजा चिंता पे आप कराए सी अचिंत पे आपे दे नानक सो सलाहिया जे सबना सार करे महला पंजवा कबीर राम ना चेतेउ फिर आ लालच माहे पाप करम ता

बोला कबीर राम नाम जानियो नहीं पालियो कटक कुटंब तंदे ही मैं मर गयो बाहर पई ना बम्ब कबीर आखी केरे माटके

वीर तरवर रूपी राम है, फल रूपी बैराग, छाया रूपी साध है, जिन तजया बाद विवाद, कबीर ऐसा बीज बोए, बारह मास फलंत, शीतल छाया गहर फल, पंखी केल करंत, कबीर दाता तरवर दया फल, उपकारी जीवंत, पंखी चले दसावरी, बिरखा सुफल फलंत, कबीर साधु संग प्राप्ति, लिखिया हुए ललाट, मुक्त पदार्थ पाइए, ठाक ना अवकट काट, कबीर एक घड़ी आदि घड़ी, आदि हूं ते आद, भगतन सेती गोसटे।

आमन गुरु है जगत का, भगतन का गुर नाही। अर्ज उर्ज कह पचमुआ, चारों बेदोह माहे। हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी ना जाए। कह कबीर गुर भली बुझाई, कीती होए कह खाए। कबीर जो तुहे साध पिरम की, सीस काट कर गोए। खेलत खेलत हाल कर,

काची सरसों पेल के ना खाल पई ना तेल, टूंडत ढोल है अंधगत हर चीनत ना ही संत, कह नामा क्यों पाईए बिन भगत हो भगवंत, हर सो हीरा छाड़ के करह आन की आस, ते नर दोजक जाहेंगे सत पाख है रविदास, कबीर जो ग्रह करह ता धर्म कर नाही ता कर बैराग, बैरागी बंधन करह ताको बड़ो अपाग। श्लोक शेख फरीद के एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जित दिहाड़ है धन वरी।

कंत सियो अंग मुड़े मुड़ जाए जाए पुछो डोहागनी तुम क्यों रैण विहाय सोहरे ढूई ना लह पेय नाई थां फिर वातड़ी ना पुछई

कितनी जोबन प्रीत बेन सुख गए कुमलाय फरीदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह बिछावन लीप यो हमारा जीवना।

फरीदा जित तन बिरो ना उपजै सो तन जान मसान। फरीदा ए विस गंदला धरिया खंड लिवाड़, एक राहिंदी रह गई एक राधी गए उजाड़। फरीदा चार गवाया हंड कै चार गवाया सम, लेखा रब मगेसिया तू आहो केरे कम। फरीदा दर दरवा जय जाय कै क्यों दिठो कड़ियाल, एहो न दोषा मारी है हम दोषा दा क्या हाल। कड़िए कड़िए मार

सजाए तिनाहा प्रीदा कन मसल्ला सूफ गल गिनकाती गुड़वात बाहर दिसै चानना दिल अंधियारी रात प्रीदा रत्ती रात ना निकलै जे तन चीरै कोय जो तन रत्ते रब स्यो तिन तन रात ना होय महला तीजा एहो तन सबो रात है रात बिन तन ना होय जो सहरते अपने तित तन लोभ रात ना होय पै पै तन खीण होय लोभ रत विचों जाए ज्यों बैसंतर तात सुध होय त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाए नानक ते जन सोहणे जे रत्ते हर रंग लाए फरीदा सोई सरवर ढूंढ लहो जिथों लभी वत छप्पड़ ढूंढै क्या होवै चिक्कड़ डुबै हाथ फरीदा नंढी कंत ना रावियो वड्डी थी मुयास धन कुकेंदी गोर में तै सह ना मिलियास फरीदा सिर पलिया दाड़ी पली मुछां पी पलियां रे मन गहले बावले मान है क्या रलियां फरीदा कोठे तुकण के तड़ा फिर नींदड़े निवार जो दे लदे गाण में।

मिट्टी पई अतोलवी कोई ना हो सी मेत फरीदा मंडप माल ना लाए मर्ग सपाणी चित धार साई जाए समाल जिथे ही तो वंजना फरीदा जिन्नी कमी नाहे गुण ते कमड़े वसार मत शर्मिंदा थी वही साई दे दरबार।

वत कुवारी ना थी कलर केरी छपड़ी आए उलथे हंज चिंजू बोड़न ना पीवे उड्डन संधी डंज हंस उडर कुदरे पया लोक बडारन जाए गहला लोक ना जानदा हंस ना कुदरा खाए चल चल गईया पंखियां जिन्नी वसाए तल फरीदा सर भरिया पी चल सी थके कवल अकल।

दास फरीदा पन्नी कड़ी समन्नवी टूटी नागर लज अजराइल फरिश्ता कै घर नाथी अज फरीदा पन्नी कड़ी सम

पंजे वक्त मसीत कोठ परिदा उजू साज सुबह निवाज गुजार जो सिर साई ना निवै सो सिर कप उतार जो सिर साई ना निवै

तै पासों वे लद गए तू अजय ना पतीणो हे। फरीदा मन मैदान कर टोए तिब्बे लाही अगे मूल ना आवसी दूजक संधि पाही। महला पंजवा फरीदा खालक खलक मह खलक वसै रब माहे। मंदा किसनों आखिया जा तिस बिन कोई नाहे। फरीदा जे देह नाला कपिया

चल गए। फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन ना हंडाए, देही रोग ना लगई, पल्ले सब किश पाए। फरीदा पंख परौणी, दुनी सुहावा बाग, नौबत वजी सुबह सिउ, चलन का कर साज। फरीदा रात कठूरी वंडी है, सुत्या मिले ना पाओ, जिन्ना नैन निंदरावले तिन्ना मिलन को आओ। फरीदा मैं जानिया दुख मुझको, दुख सबाया जग, ऊचे चढ़ के देखिया ता घर करे हा अग। महला पंजवां, फरीदा भूम रंगावली, मांज वसूला बाग, जो जन पीर निवाजिया तिना अंचना लाग। महला पंजवां, फरीदा उमर सुहावड़ी, संग सुमनड़ी दे, विरले के पाइयन जिन्ना प्यारे ने कंदी।

सो सजन वीही एक टोंडेंदी नालाहा तुखां ज्यों बालीही कारण तिना मां फेरी फरीदा एहो तन भौंकना नित नित दुखी है कौन कन्नी बुझे दे रहा कित्ती वगै पौन फरीदा रब खजूरी पक्कियां माखिया नहीं बहन जो जो मंजै दिहड़ा सो उमर हाथ पवन फरीदा तन सुक्का पिंजर थिया तलियां कुंडह काग अजय सो रब ना बहुड़ो देख बंदे के भाग कागा क्रंग टंडोलिया सगला खाया मास ए दोए नैना मत छूहो फिर देखन की आस कागा चूंड ना पिंजरा बसै ता उडर जाहे जित पिंजरै मेरा सहो वसै मास ना तिदू खाहे फरीदा गोर नमाणी सड करे ने करे।

चल गई फरीदा लोका आपो अपनी मैं अपनी पई आप सवार है मैं मिले मैं मिलिया सुख होए फरीदा जे तू मेरा हुई रहे

भव करी जित बासे आवे कंत निमण सो अखर खमण गुण जिहबा मणिया मंत ए त्रै भैणी वेस कर तां वसिया वी कंत मत हुंदी होए आणा तान हुंदे होए नताणा अणहुंदे आप वंडाए को ऐसा भगत सदाए।

सद बलिहार अमृत प्रवाह सर अतुल भंडार भर परै ही ते परै अपर अपार पार आपनो पावन कर मंत्र ना दूसरो धार उपत परलो एक निमख तो घर आन नाही समसर उजियारो निर्मर कोट परास्त जाहि नाम लिए हर हर जन नानक भगत दार तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखान हां के बल बल बल बल सद बलिहार सगल भवन तारे एक थे किए बिस्थारे पूर रहे हो श्रभ

आप ही धारण धारी कुदरत है देखारी वर्ण चिन्ह नाही मुख नाम सारी जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसार एक जी ही क्या बखाने हां की बल बल बल बल सद बलिहार सर्व गुण निदानं कीमत ना ज्ञानं ध्यानं ऊचे ते ऊचो जा नीचे प्रभ तेरो थानं मन धन तेरो प्राणं एक है सूत है जहानं कवन उपमा देओ बड़े ते बडानं जाने कौन तेरो पेओ अलाखे अपार देओ अकाल कला है प्रभ सर्व को तानं जन नानक भगत दार।

आकार अशल पूर्ण अबनासी हरखवंत आनंत रूप निर्मल बेगासी गुण गावे बेअंत अंत एक तिल नहीं पासी जाको होहि कृपाल सो जन प्रभ तुम्हें मलासी धन धन ते धन जन जे कृपाल हर हर पयो हर गुरु नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोहो थे रहो सत सत हर सत सत सती सत पणिय दूसर आन ना

पर पुरख पौरातन सुनिए अमृत हर को नाम लैत मन सब सुख पाए जे रसन चाखियो ते जन तृप्त अगाय जे ठाकुर सो प्रसन्न भयो सत संगत ते प्यार हर गुरु नानक जिन परसे हो तिन सब कुल कियो उधार सच सभा दीवान सच सच्चे पह धरियो सच्चे तख्त निवास सच तपावस करियो सच सिरजियो संसार आप

पव जल तरना बिनत करो अरदास सुनो जे ठाकुर पावे देहो दर्श मन चाओ भगत एहो मन ठहरावे बले ओ चिराग अंधियार मह सब कल उदरी एक नाम धर्म प्रगत सगल हर पवन मह जन नानक गुर पार ब्रह्म।

मद माता विचरत बिकल बढ़ो अभमानी पर धन पर अपवाद नार निंदा यह मीठी जी माहे हतानी।

नानक काट भ्रम भरी रे मन मूस बिला मह गर्भत करतब करत महामुगना संपत दोल झोल संग झूलत माया मगन भ्रमत कुगना सुत बनता साजन सुख बंदप ता स्यो मोह बढ़ियो सो कना बोयो बीज अहं मम अंकुर बीतत औध करत अगना मृत मंजार पसार मुख निरखत उंचत भुगत भूख भुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुख।

असव ना गज सिंघासन छिन मह त्यागत नाग सदारु सूर ना वीर ना मीर ना खानम संग ना को दृष्ट निहारु कोट ना ओट ना कोस ना छोटा करत विकार दो कर चारु मित्र ना पुत्र कलत्तर साजन साख उल्टत जात बिरख की शारु दीन दयाल पुरख प्रभ पूरन छिन छिन सिमरु अगम अपारु श्री पतनाथ सरन नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारु प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मीत सुत पाई

संग सगल बिदहारी पास पंखी बिरख अस्थावर बहु विद जोन प्रम्यो अत पारी हिन पल चसा नाम नहीं सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठ रस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण संग उदरे होर माया मगन चले सब डारी ब्रह्मादिक शिव संत मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंदर मुनिंदर खोजते गोरख तरन गगन आवत फुन तावत सिद्ध मनुख्य देव अरदानव एक तिल ताको मर्म ना पावत प्रिय प्रभ प्रीत प्रेम रस भगती।

सगल घस जावत रे मन मूड सिमर सुख दाता नानक दास तुझे समझावत माया रंग बरंग करत भ्रम मोह कै कूप गुबार परयो है एता गब आकाश नाम आवत बिस्ता अस्त क्रिम उदर परयो है दह दिस ताए महा बिखिया को पर धन शीन अज्ञान हरयो है जोबन बीत जरा रोग ग्रस्यो जम दूतन दन मृत मरयो है अनक जोन संकट नरक पुंचत सासन दुख गर्त गर्यो है प्रेम भगत उदर है से नानक कर कृपा संत आप करयो है गुण समूह फल सगल मनोरथ पूरन होई आस हमारी औखद मंत्र तंत्र पर दुख हर सर्व रोग खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उचारी स्नान दान तापन सोच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ धारी साजन मीत सखा हर बंदप जी तान प्रभ प्राण अधारी ओट गही स्वामी समर्थ है नानक दास सदा बलिहारी आवद कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंध्यो ना जात विदे मन दर्श मग पावक जरयो ना जात रहयो जन धूर लग नीर ना साकस बोर चलहै हर पंथ पा।

विचरह अनक शास्त्र बहु खटुआ पस्म लगाए तीर्थ बहु प्रमते सूखम देह बंद है बहु जटुआ बिन हर भजन सगल दुख पावत ज्यो प्रेम बढ़ाए सूत के हटुआ पूजा चक्र करत सोम पाका अनक पांत थाट है कर थटुआ सवैये महल्ले पहले के एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक मन पुरख त्याए बरदाता संत सहार सदा बिखियाता।

दुर्त निवारण शब्द सरी गावह गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरी गावह इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह जनकाद जुगत जोगेश्वर हर रस पूरन सर्ब कला गावह सनकाद साध सिधादिक मुन जन गावह अशल चला गावह गुण धूम अटल मंडल वै भगत पाई रस जानियो कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानियो गावह कपलाद आद जुगेश्वर अपरंपर अवतार वरु गावह जमदगन परसरमेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावह सर्वात्म जिन जानियो कब कल

नानक मस्तक तुम धरियो जिन हथ ता धरियो मस्तक हथ सहज अमियो बुठो सज सुर नर गण मुन बोहे आगाज मारियो कंटक काल गर्ज धावत लियो बरज पंच भूत एक घर राख ली समझ जग जीतो गुरुद्वार खिल है समत सार रत उन्मन लिव राख निरंकार कहो कीर्त कल सहार सप्त दीप मझार लहना जगतर गुर परस मुरार जा की दृष्ट अमृत धार

नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रब लोए दर्शन परसे है गुरु कै अठ सठ मज्जन होए सच तीर्थ सच स्नान अर भोजन भाओ सच सदा सच पाखंत सो है सच पायो गुर शब्द सच नाम संगति बो है जिस सच संयम वर्त सच कब जन कल बखान दर्शन परसे है गुरु कै सच जन्म परवान हमें दृष्ट शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार है खोवे गुर नव निद दरियाऊ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनस सहज सुपाई दर्शन परसे है गुरु कै जन्म मरण दुख जाई सोइये महले तीजे के

संसारी जिन भगत भवजन तारी सिमरहो सोई नाम प्रधान तित नाम रसक नानक लहना थपियो जीन सर्व सिद्धि कावजन कल सुबुद्धि कीर्त जन

पुब अर पश्चिम जय जय कार्य पंथ नरा हर नाम रसन गुरमुख बरदायु उल्ट गंग पश्चिम धरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सिमरह सोई नाम जख अर किन्नर साधक सिद्ध समाद हरा सिमरह नखियतर अवर ध्रुव मंडल नारदाद प्रहलाद वरा ससियर अरसूर नाम उलास है सैल लो जिन उदरिया सोई नाम अशल भगत है भव तारन अमरदास गुर कौ फुरिया सोई नाम सिवर नवनाथ निरंजन शिव सनकाद समुद्धरिया चौरासी सिद्ध बुद्ध जित राती अम्बरीक भवजन तरिया।

गुर कौ भुरिया। इत नाम लागते तीस त्याव है, जति तपीसर मन वसिया। सोई नाम सिमर गंगे पतामह, चरण चित अमृत रसिया। इत नाम गुरु गंभीर गुरु मत, सत कर संगत उदरिया। सोई नाम अशल भगत है भव तारण, अमरदास गुर कौ फुरिया। नाम कित संसार किरन रव सुरतर साख है, उत्तर दक्षण पूब देश पश्चिम जस भाख है। जन्म ता एहो सकियत जित नाम हर हृदय निवास है। सुर नर गण गंधर्व छे दर्शन आशास है। भलो प्रसिद्ध तेजो तनु कल जोड़ कर त्यायो। सोई नाम भगत भवजन हरन, गुरु अमरदास तै पायो। नाम त्यावे है देव ततीस अर साधक सिद्ध नर। नाम खंड ब्रह्मांड तारी जह नाम समाधि।

लाखों लख है, एक एक कर वरनियो गुरु अमरदास जाल पपण है। तू एक लोड़ है एक मन्यो, जे मत गही जय देव, जे मत नामे सम्मानी, जे मत त्रिलोचन चित, भगत कंबीर है जानी। रुक मांगद करतूत, राम जंप हो नित पाई, अमरीक प्रहलाद सरन गोबिंद गत पाई। तै लोभ क्रोध तृष्णा तजे, सो मत जल जानी जुगत, गुरे अमरदास।

गुरु अमरदास परसीय सिद्ध साधक असास है। गुरु अमरदास परसीय ध्यान लहिया पौ मुक्क है। गुर अमरदास परसीय अपौ लब्बे गौ चुक है। एक

सो दृढ़ नानक संग रहेउ ताते अंगत लहना प्रगट तास चरण है लिव रहेउ तित कुल गुर अमरदास आसा निवास तास गुण कवण बखाणो जो गुण अलख अगम तिन्ह गुण अंत ना जानो बोहिथो विधातै निर्मयो सब संगत कुल अधरन गुर अमरदास कीरत कह त्राहे त्राहे तो पासरन आप नारायण कला तार जग मह परवरियु निरंकार आकार ज्योत जग मंडल करियो जह कह तह भरपूर शब्द दीपक दीपायो जेहे सिख है संग्रहियो तत हर चरण मलायो नानक कुल निम्मल अवतरियो अंगद लहने संग हो गुरु अमरदास तारन तरन जन्म जन्म पासरन तो जप तप सत संतोख भिख दर्शन गुर सिख है सरन पर है ते उभर है छोड़ जमपुर की लिख है भगत भाए भरपूर हृदय उचरै करतार है गुर गौहर दरियाऊ पलक डबंत्य है तार नानक कुल निम्मल।

पास साध संगत हो तको तेरा हुक्म पवे निशान तो करो साहिब की सेवा जब गुर देखे शुभ दिष्ट नाम करता मुख मेवा अगम अलख कारण पुरख जो परमाव है सो कहूं गुरु अमरदास कारण करन जिव तू रख है तिव रहूं पिखे के गुर ज्ञान अर ध्यान तत स्यों तत मिलावे सच सच जानी है एक चित्त है लिव लावे काम क्रोध वस करे पवन उडंत ना तावे निरंकार कै वसै देश हुक्म।

सहज रंग दर्शन दियो, रहियो संत हों टोल, साध बहो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्सी है, मुखों ए पंडित मिठे, वर्ष एक हों फिरियो, किन नहो परचो लायो, कहते हैं कहती सुनी, रहत को

साध सलाह ज्ञान है आसन चढ़यो ध्रम तनख कर गहयो भगत सील है सर लड़यो तय निरभउ हर अटल मन शब्द गुर नीजा गड्यो काम क्रोध लोभ मोह अपत पंच दूत बिखण।

इव जोध कार कनहर बूंद बसो रोमावल कुसुम बसंत गनंत ना आवे राव सास किरण उदर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुरु।

बाद एक मन पुरख निरंजन त्यावो गुर प्रसाद हर गुण सद गाव गुण गावत मन होए बिगासा सतगुर पूर जनह की आसा सतगुर सेव परम पद पायो अवनासी अवगत ते आयो तिस भेटे दारिद्र ना चंपै कल सहार तास गुण जंपै जंपो गुण बिमल सुजन जन केरे अमह नाम जाको फुरिया इन सतगुर सेव शब्द रस पाया नाम निरंजन उर धरिया हर नाम रसक गोबिंद गुण गाहक चाहक तत् समत सरे कव कल ठकुर हरदास तने गुर रामदास सार अपार परे छुटत परवाह अमह अमरा पद अमृत सरोवर सद भरिया ते पीवह संत करह मन मज्जन

कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी सतगुर मत गूढ़ बिमल सत संगत आत्म रंग चलूल भया जागिया मन कवल सहज प्रकाशिया अपै निरंजन करह लहा सतगुर दयाल हर नाम दिरडाया तिस प्रसाद वस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी अनभव उन्मान अकल लिव लागी पारस भेटिया सहज करी सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए भंडार परी मेटिया जन्मांत मरण भउ भागा चित लागा संतोख सरे कब कल ठकुर हरदास तनी गुर रामदास सार अपार परी अपार परे पायो अपार हृदय अंतर तारियो दुख भंजन आत्म प्रबोध मन तत बिचारियो सदा चाहे हर पाई प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज सेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास कल उचरै तैं अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसै अमै रस रसन प्रकाशै मिलत शांत उपजै दुरत दूर अंतर नासै सुख सागर पायो दिनत

सिरियो जग जस तूर बजायो गुर रामदास कल उचरै तै अपै अमर पद पायो जग जितो सतगुर प्रमाण मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दिरडायो नव निद नाम निदान रिद सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेट्यो अबनासी आदले भगत जित लागत।

भवियो जगत गुर बचन तरायु अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरै तै जगत उदाहरण पायो जगत उदाहरण नव निदान भगत है भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस की बिखै निवारण सहज तरोवर फलियो ज्ञान अमृत फल लागी गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बड़ भागी ते मुक्त भये सतगुर शब्द मन गुर परचा पायो गुरु रामदास कल उच्चरै तै शब्द निशान बुझायो सेज सदा सहज सवान संतोख सराचो सदा सील सनाह सो है गुर शब्द समाचरियो नाम टेक संगाद बो है आजोनियो पल अमल सत

पायो तिन सकियथो जन्म जग श्री गुरु शरण भज कल कब भुगत मुकत सब गुरु लग सतगुर खेमा तानिया जुग जूत समाणी अनपहु नेजा नाम टेक जित भगत आगाणी गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाणी एह राज जोग गुरु रामदास तुम हूं रस जानी जनक सोए जिन जानिया उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावै एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बण आवै।

खिन मातर जा कौ दृष्ट तारे शब्द रिद विचार काम क्रोध खोए जियो जियन सभन दाता अगम ज्ञान।

पावे गुरमुख ज्ञान दुर्मत मैल तो है जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत हो है जियो धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है जा की सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाच है।

हार अकथ कथन हार तुझ बुझाई है परम भूले संसार छुट हो जूनी संगार जम को ना दंड काल गुरमत।

ज्ञान पांच भूत बस कीने जमत ना त्रास गुरु अमर गुरु श्री सत कल जोग राखी पत अघन देखत गत चरण कमल जास सब बिद मान्यो मन तब ही भयो परसन राज जोग तखत दीयन गुर रामदास राड़।

तेरे गुर कर शब्द सुपुन अगन कट है सब तेरे गुर नैन बैन गुर गुर करो गुरु सत कव नल कह जिन गुरु ना देखो ना हो कियो ते अकियत संसार मह गुरु गुरु गुर कर मन मेरे तारन तरन समरथ कल युग सुनत समाद शब्द जिस केरे हुन दुखन नास सुखदायक सूरो जो धरत ध्यान।

तेरे जौहर बुद्ध रिद्ध सिद्ध चाहत गुरु गुरु गुर कर मन मेरे गुरु मुख देख गुरु सुख पायो हुती जो प्यास पियूस पिवन की बंचत सिद्ध कहो भिद मलायो पूरन पो मन ठौर बसो रस बासन स्यो जो दहं दिस तायो गोविंद वाल गोविंद पुरी सम जलन तीर बिपास बनायो गयो दुख दूर बरखन को सो गुरु मुख देख गुरु सुख पायो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो गुरु कीनी कृपा हर नाम दियो जिस देख चरन अगन हरियो निस बासर एक समान ध्यान सो नाम सुने सुत पान डरियो पान दास सो आस जगतर गुरु की पारस भेट परस करियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ धरियो अब राखो दास पाठ की लाज जैसी राखी लाज भगत प्रहलाद की हर नाखश फारे कर आज फुन द्रौपदी लाज रखी हर प्रभ जी सीनत बस्तर दीन बहु साज सो दामा अपदा ते राखिया

शब्द हर हर जपै नाम नव निध अपै रसन एहन सरसै सत कर जानी ओहो हुन प्रेम रंग पाईऐ गुरमुख है त्याईऐ अन मार्ग तजहो भजहो हर ज्ञानी ओहो बचन गुर रिद धरहो पंच भू बस करहो जन्म कुल उधरहो द्वार हर मानी ओहो ज्यो ता सब सुख इत उत तुम बंचवहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप प्राणी ओहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर अगम गुण जान निदान हर मन धरहो ध्यान अहनस करहो बचन गुर हृदय धार हुन गुरु जल बिमल अथाह मज्जन करहो संत गुर सिख तरहो नाम सच रंग सार सदा निर्वैर निरंकार निर्भउ जपै प्रेम गुर शब्द रस करत दृढ़ भगत हार मुग्ध मन भ्रम तजहो नाम गुरमुख भजहो गुरु गुर गुरु गुर गुरु जप सत कर गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ उदद गुर गहर गंभीर बेअंत हर नाम नग हीर मन मिलत लिव लाईऐ हुन गुरु परमल सरस करत कंचन परस मैल दुरमत हिरत शब्द गुर त्याईऐ अमृत प्रवाह छुटकंत सद द्वार जिस ज्ञान गुर बिमल सर संत सिख नाईऐ नाम निर्बाण निदान हर उर धरहो गुरु गुर गुर करहो गुरु हर पाईऐ।

जी तारहु मानस जन्म दे निस्तारहु गुर जहाज खेवट गुरु गुर बिन तरिया ना कोए गुर प्रसाद प्रभ पाई है गुर बिन मुक्त ना होए गुर नानक निकट बसै बनवारी तिन लहना थाप जोत जग तारी लहने पंथ धर्म का किया अमरदास भल्ले कौ।

जग जन्म मरण भगा ए आई ही है प्रतीत प्रतीत ही है आई जिन जन कै तिन कौ पदवी उच भई तज माया मोह लोभ अर लालच काम क्रोध की बिरथा गई अवलोकया ब्रह्म परम सब छुटकया दिव दृष्ट कारण करन सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन प्रताप सदा गुर का घट घट प्रगास भया जस जन कै एक पढ़ है सुन है गाव है प्रभात है कर है स्नान स्नान कर है प्रभात शुद्ध मन गुर पूजा विद सहत करं कंचन तन होए परस पारस कहो ज्योत स्वरूपी ध्यान धरं जग जीवन जगन्नाथ जल थल मह रहया पूर बहु विद वर्णं सत गुर गुर सेव अलख गत जाकी श्री राम दास तारन तरन जिन्हो बात निश्चल ध्रुव जानी ते जीव काल ते बचा तिन तरयो समुद्र रुदर खिन एक मह जल हर बिंब जुगत जग रचा कुंडलनी सुरजी सत संगत परमानंद गुरु मुख मचा।

यो देख रूप अत अनूप मोह महामग पय किंकनी शब्द चनतकार खेल पाहे जियो काल कलम हुक्म हाथ कहो कौन मेट सकै ईस बम्यो ज्ञान ध्यान धरत ही है चाहे जियो सत साच श्री निवास आदि।

परम धाम शुद्ध बुद्ध निरीकार बेशुमार सरबर कौ काहे जियो सुथर चित भगत हित भेख धरियो हरनाख शहरियो नाख बेदार जियो शंख चक्र गदा पदम आप आप कियो शदम अपरंपर पार ब्रह्म लखै कौन ताहे जियो सत साच श्री निवास आद

माल मुकट शीश मोर पंख चाहे दियो, देव जीर बड़े तीर धर्म अंग अलाके अगम, खेल किया अपने उशाहे दियो। अकथ कथा कथी ना जाए, तीन लोक रहे आसमाए, सुतह सिद्ध रूप धरयो, साहन कै साहे जियो। सत साच श्री निवास आ

सकल भवन कुशल करन सर्वभूत आप ही दिवाद देव सहस मुख फनिंद जियो जन्म कर्म माच काच।

गुरु समरथ गह करिया ध्रुव बुद्ध समत समारन कहो हुन धर्म तुजा फहरंत सदा अग पुंज तरंग निवारन कहो मथुरा जन जान कही जी साच सो और कछु ना विचारन कहो हर नाम बोहित।

मतरापन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है। रब के सुत को तिन त्रास कहां, जो चरण गुरु चित लावत है। निर्मल नाम सुदा पर पूरन, शब्द तरंग प्रगटत दिन आगर। गहर गंभीर

कर देखो दर्शन गुरु सगल सुख सागर जा को मन ध्यान धरे फिरत सगल जुग कबहू का को पावे आत्म परगास को वेद बाणी सहत बिरंच जस गावे जाको शिव मुन गह नात जात कबलास को जा को जोगी जति सिद्ध साधक अनेक तप जटा जूट पेख किए फिरत उदास को सो तिन सतगुरु सुख पाए कृपा धारी जी नाम की बढ़ाई दई गुर रामदास को नाम निदान ध्यान अंतरगत तेज पुंज तिहो लोग परगासे देखत दर्श भटक भ्रम भजत दुख परहर सुख सहज बिगासे सेवक सिख सदा अत लुभित अल समूह जो कुसुम सुबासे विदह मान गुरे आप थप्यो थिर।

देखत अत हुए रहस मन, सोई संत सहार गुरु रामदास। नानक नाम निरंजन जानियो, तीनी भगत प्रेम लिवलाई। तांते अंगद अंग संग भयो शायर, तिन शब्द सुरत की नीम रखाई। गुरु अमरदास की अकथ कथा है, एक जी

सिर आत पत सचो तखत जोग भोग संयुत बल गुरु रामदास सच सल भण तू अटल राज अभग दल तू सतगुर चहो जुगी आप आपे परमेश्वर सुर नर साधिक सिद्ध सिख सेवंत तुरह तुर आद जुगाद अनाद कला धारी त्रिहो लोह अगम

ब्रह्म पछाणियो कल जोड़ कर सुजस वखाणियो भगत जोग कौ जैतवार हर जन के उपायो शब्द गुरु प्रकाश्यो हर रसन बसायो गुर नानक अंगद अमर लाग उत्तम पद पायो गुर अर्जन घर गुर रामदास भगत उतर आयो बड़ भागी उन मान्यो रिद शब्द बसायो मन मानक संतोखियो गुर नाम दिरड़ायो अगम अगोचर पार ब्रह्म सतगुर दरसायो गुर अर्जन घर गुर रामदास अनभव ठहरायो जनक राज बरताया सतयुग आल।

हर पूरन ब्रह्म निवास लियो, जब लो नहीं भाग ललार उदय, तब लो भ्रमते फिरते बहुत आयो, कल घोर समुन्दर मैं बूढ़त थे, कबहू मिट है नहीं रे पछतायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। कल समुन्दर भय रूप, प्रगट हर नाम उदारन, बस है संत जिस हृदय, दुख दारिद्र निवारण, निर्मल भेख अपार, तास बिन अवर ना कोई, मन बच जिन जानियो, भयो ते समसर सोई।

किव करी निवन ना जाए थनी गच जे लगा गिड़बड़ी सखिए तौल हरी से पी तहंदी डिठ मैं मुंद ना गर्भ थनी सुन मुंदे हर नाखिए गूड़ा वैन अपार पहला

पुछतड़न कल ताहू खरे सुजान वन्या एनी कपरी झाड़ झखड़ ओहाड़ लहरी वहन लखेसरी सतगुर स्यों अलाए बेड़े।

परे गुर सरवर सच्ची पाल अग्न मरे जल लोड़ लहो विण गुर निद जल नाही जन्म मरे परमाई है जे लख कर्म कमाहे जम जागात ना लगई जे चले सतगुर पाए नानक निर्मल अमर पद गुर हर मेले मेलाए कलर केरी छपड़ी कौआ मल मल नाए मन तन मैला अवगुणी चिंज भरी गंदी आए सरवर हंस ना जानिया काग कुपंखी संग साकत स्यों ऐसी प्रीत है बूझो हो ज्ञानी रंग संत सभा जयकार कर गुरमुख कर्म कमाओ निर्मल नावन नानका गुर तीरथ दरियाओ जन्मे का फल क्या गणी जां हर भगत ना पाओ पैंदा खादा बाद है जां मन दूजा पाओ वेखण सुनना झूठ है मुख झूठा आलाओ नानक नाम सलाहे तू होर हौं मैं आवो जाओ हैन बिरले नाही घणे है।

जो लेवे सो देवे नाही, खट्टे दम सहमी पब्बर तू हरियावला, कवला कंचन वन कै दुखड़ै सड़ियो हे, काली होइया देहुरी नानक मैं तन भंग जाना पानी ना लहां, जैसेती मेरा संग।

जीवै सदा सदा सुरती ही पत होए सर्फै सर्फै सदा सदा एवै गई विहाय नानक किसनो आखिया बिन पुछिया ही लै जाए दोष ना दे राय नो मत चले जा बुढ़ा होवै गल्ला करे कनेरिया ता अन्ने पवना खाती तोवै पूरे का किया सब किश पूरा घट वध किश नाही नानक गुरमुख ऐसा जाने पूरे माहे समाही।

गुर शब्दी हर मन वसै माया की भूख जाय से जन निर्मल उजले जे गुरमुख नाम समाए नानक होर पातशाहिया कूड़िया नाम रते पातशाह ज्यों पुरख है कर भगती नार है अत लोचै भगती पाए बहु रस सालने सवार दी खट रस मीठे पाए त्यों बाणी भगत सलाह दे हर नामै चित लाए मन तन धन आगै राखिया सिर वेचिया गुर आगै जाए तै भगती भगत बहु लोच दे प्रभ लोचा पूर मिलाए हर प्रभ भी परवाह है कित खादै तिपताए सतगुर कै पाणै जो चलै तिपतासै हर गुण गाए।

ना रखियो और तार तिग तिना का जीव्या कित आए संसार गुरमति भउ मन पवै ता हर रस लगै प्यार नाउ मिलै तुर लिखिया जन नानक पार उतार माया मोहि जग भरमिया कर मुसै खबर ना होए काम क्रोध मन हिर लया मनमुख अंधा लोए ज्ञान खड़ग पंच दूत संघारे गुरमत जागे सोए नाम रतन परगासिया मन तन निर्मल हो।

ਧਨ ਖੱਟਿਆ ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ ਅਤੁੱਟ ਭਰੇ ਭੰਡਾਰ ਹਰ

आई। मन मुख चंचल मत है अंतर बहुत चतुराई, कीता करत्या बिरथा गया एक तिल थाए ना पाई। पुन दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई, बिन सतगुरु जमकाल ना छोड़ई दूजे भाए खुआई। जोबन जांदा नदर ना आवई जर पहुंचे मर जाई, पुत कलात मोह हेत है अंत बेली को ना सखाई। सतगुर सेवे सो सुख पाई नाओ वसै मन आई, नानक से वड्डे वडभागी जे गुरमुख नाम समाई। मनमुख नाम ना चेतनी बिन

अंदर शुद्ध नहीं। गुर बचन ना करहे विसास, ज्ञानिया अंदर गुर शब्द है। नित हर लिव सदा विगास, हर ज्ञानिया की रखदा। हौ सद बलिहारी तास, गुरमुख जो हर सेम दे। जन नानक ता का दास, माया पोयंगम सर्प है। जग घेरिया बिख माए, बिख का मारन हर नाम है। गुर गरुड़ शब्द मुख पाए, जिन को पूर्व लिखिया। तिन सतगुर मिलिया आए, मिल सतगुर निर्म

भूत ज्यो पिता नाम तिस जाय हर हर नाम ना चेतनी करतै आप खुआय हर गुरमुख किरपा तारियन जन बिछड़े आप मलाय जन नानक तिस

नानक बिन नावे सुख नहीं, आए गए पछताहे, चिंता तावत रह गए, ता मन भया आनंद, गुर प्रसादी बुझी है, सा तन सुती निचिंद, जिन को

बिन हर शांत न आवई किस आगै करी पुकार। वडभागी सतगुर पाया बूझया ब्रह्म विचार। तिसना अग्न सब बुझ गई जन नानक हर पुर तार। असी खते बहुत कमाव दे अंत न पारा वार। हर कृपा कर कै बख्श लैहु हऊ पापी बड गुनाहगार। हर जियो लेखै वार ना आवई तू बख्श मलावन हार।

परे शब्द रहे लिवलाए। नानक करता सब किस जानदा जिन रखी बणत बनाए। होम जग सब तीर्था पढ़ पंडित थके पुराण। बिख माया मोह ना मिटई विच हूं मैं आवन जान। सतगुर मिले मल उत्तरी हर जपया पुरख सो जान। जिन्ना हर हर प्रभ सेविया जन नानक सद कुरबान। माया मोह बहु चितवदी बहु आसा लोभ विकार। मन मुख अस्तर ना थी है मर बिन सजाई खिनवार।

जियो पिंड सब ते सदा प्रतपाल करे हर राय। चुगल निंदक भुखे रुल मोए इना हाथ ना कथाऊ पाए। बाहर पखंड सब कर्म करह मन हिरदय कपट कम।

करा उपर हर चेतिया से पाइन मोख द्वार नानक आप ओहे उदरे सब कुटंब तरे परवार शब्द मरे सो मुआ जापे गुर प्रसादी हर रस त्रापे हर दरगह गुर शब्द सिंघापे बिन शब्द मुआ है सब कोई मन मुख मुआ अपना जन्म खोए हर नाम ना चेत है अंत दुख रोए।

सदा सदा हर गुण रवहै, अंतर सहज ध्यान ओए सदा आनंद विवेक रहै, दुख सुख एक समान तिन्ना नदरी इको आया, सब आत्म राम पछान मनमुख बालक बिरद समान है, जिन्ना अंतर हर सुरत नाही विच हम मैं कर्म कमाम दे सब तर

अब किस सुझे नानक गुरमुख मन स्यों लुझे जिन्ना सतगुर पुरख ना सेवेओ शब्द ना की तो विचार होए मानस जू

हर जग जीवन उर धार, नानक गुरमुख सोहणे तित सच्चै दरबार। हर मंदर हर साजिया,

सुख पाया हत तिसना तज विकार जन्म मरण का दुख गया जन नानक शब्द बीचार हर हर नाम त्याए मन हर दरगाह पावह मान किल विख पाप सब कटी है हम मैं चुकै गुमान गुरमुख कमल विगसिया सब आत्म ब्रह्म पछान हर हर कृपा धार प्रभ जन नानक जप हर नाम तनासरी तनवंती जानी है भाई।

बूंद पवै सहज सुभाए, जल ही ते सब उपजै, बिन जल प्यास ना जाए। नानक हर जल जिन पिया, तिस भूख ना लागै आए। बाबी हा तू सहज बोल, सच्चै शब्द सुभाए।

तन मन सुख होए जा तत बूंद मोहे पाए। अन धन बहुता उपजै धरती शोभा पाए। अन दिन लोक भगत करे गुर कै शब्द समाए। आपे सच्चा बख्श लए कर कृपा करै रजाए। हर गुण गावो कामणी सच्चै शब्द समाए। पै का सहज श्रृंगार करे हो

पास सतगुर मिले जल पाई है चूकै भूख प्यास जियो पिंड सब तिसका सब किश तिसकै पास बिन बोलिया सब किश जानदा किस आग्या कीचै अरदास नानक घट घट एको वरतदा शब्द करे परगास नानक तिसै बसंत है जे सतगुर सेव समाए हर गुठा मन तन सब परफड़ै सब जग हरियावल होए शब्दे सदा बसंत है जित तन मन हरिया होए नानक नाम ना विसरै जिन सिरिया सब कोए नानक तिना बसंत है जिन्ना गुरमुख वसिया मन सोए हर गुठै मन तन परफड़ै सब जग हरिया होए वडड़ै चाल चाल चलंबलै

बोलना बुझ ना सकाकार वण तिण त्रे पवन तुजै त्याएंदा अन दिन सदा विहान बिन सतगुर किनै ना।

पाइय सतगुर कै उपदेश चारे कुंडा जे भवह वेद पढ़ह जुग चार नानक साचा भेटै हर मन वसै पावह मोख द्वार नानक हुक्म वरतै खसम का मत पवी फिरह चल चित मन मुख सहु कर दोस्ती सुख के पुछह मित गुरमुख सहु कर दोस्ती।

प्रसाद वडभागिया सुहागणी जिन्ना गुरमुख मिलया हर राय अंतर जोत परगासिया नानक नाम समाय वाहो वाहो सतगुर पुरख है जिन सच जाता सोए जित मिले तिख उतरे तन मन शीतल होए वाहो वाहो सतगुर सत पुरख है जिसनो समत सब कोए वाहो वाहो सतगुर निर्वैर है जिस निंदा उस्तत तुल होए वाहो वाहो सतगुर सुजान है जिस अंतर ब्रह्म विचार वाहो वाहो सतगुर।

का फरमाया मान ना सकी, दुत्तर तरिया ना जाए, नदर करे जिसे अपनी, सो चले सतगुर पाए, सतगुर का दर

नानक ले हो मलाए मैं जाचक दीजै नाम हर गुरमुख हसै गुरमुख रोवै जे गुरमुख करे साई भगत होवै।

जले एत सच्चै दरबार तिन बहंदियां उठदियां कदे ना विसरै जे आप बख्शे करतार नानक गुरमुख मिले।

भौजल तरै संसार मन चिंदिया फल पाए सी अंतर विवेक विचार नानक सतगुर मिले प्रभ पाईए सब दुख निवारण हार मन मुख सेवा जो करे दूजे पाए चित लाए पुत कलत कुटुंब है माया मोह वधाए।

हुक्म अरादी हुक्मे समय समाय हुक्म वर्त नियम सोच संयम मन चिंदिया पल पाए सदा।

आए मानमुख हुकुम ना बुझे बपड़ी नित हों मैं कर्म कमाए वर्त नेम सोच संयम पूजा पाखंड भरम ना जाए अंतरोह कुशुद्ध माया मोहे बेदे ज्यों हस्ती शार उड़ाए जिन उपाय तिसे ना चेत है बिन चेते क्यों सुख पाए नानक परपंच किया तुर करता है पूर्व लिखिया कमाए गुरमुख प्रतीत।

हो से सज्जन मैं नाल अंतर बाहर हो फिरा पी हृदय रखा संभाल जिन्ना एक मन एक चे

आई मनमुख माया मोह है नाम न लगे प्यार कूड़ कमावे कूड़ संगरह कूड़ करे आहार भिख माया धन संच मर है अंते हुए सब चार कर्म धर्म सुच संयम कर है अंतर लोभ विकार नानक मनमुख जे कमावे सो थाए ना पवे दरगाह हुए खुआर सबना रागा विच सो भला पाई जित वसिया मन आए राग

आय जम्मन मरन ना चुकई हो मैं कर्म कमाए गुर सरनाई उबरे नानक लए छडाई सतगुर पुरख हर ध्याईंदा सत संगत सतगुर पाए सत संगत सतगुर सेवंदे हर मेले गुर मेलाए एहो भौजल।

पार लंगाए गुरसिखा की हर तूड़ दे हम पापी पी गत पाहे तुर मस्तक हर प्रभ लिखिया गुर नानक मिलिया आए जम कंकर मार बदारियन

यागन जे रसना नाम उचारने मृग तिसना पेख भुलने वुठे नगर गंधर्व जिन्नी सच अरादिया नानक मन तन फब पतत उदाहरण पार ब्रह्म समरथ पुरख अपार जिस है उदारे नानका सो सिमरे सिरजनहार।

नानक भजे सफल होहे ते काम। जिह बा गुण गोबिंद भजो करन सुन।

कहो नानक बिन हर भजन परत ताही जम फंद जो सुख कौ चाहे सदा सरन राम की ले कहो नानक सुन रे मना दुर्लभ मानुख दे माया कारण तावही मूरख लोग अजान कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान जो प्राणी निस दिन भजे रूप राम ते जान हर जन हर

ਨਾਨਕ ਨੇਹ ਫਲ ਜਾਤ ਤੇ ਜਿਉ ਕੁੰਚਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਰ ਕੰਪਿਓ ਪਗ ਡਗ ਮਗੇ।

नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल दोहरा बल छुट क्यों बंधन परे।

पहारा खौ खटियो पौरा नद गाय अष्टमाल कौशक संग लाई पुन आयो हिंडोल पंच नार संग अष्ट सोतन।

मुद्दा अष्टपुत्र में कहे सवारी पुन आई दीपक की बारी कशेली पतमंजरी टोडी कही अलाप कामोदी।

असंख चोर हराम खोर असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वढ़त्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेश मल पख खाहे असंख

नाले गावे सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सती संतोखी गावे वीर करारे गावन पंडित पढ़ लर खीसर।

तिनका पौ सब गवासी, जिन सेवा मेरा हर जी, ते हर हा रूप सुमासी, से तन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन बल जासी, तेरी भगत पंडार जी, परे बेंत बेंता, तेरे भगत सलाहंतु जी।

नित नित जीड़े समालियन देखेगा देवनहार तेरे दाने कीमत ना पवे ते दाते तमन सुमार संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल देव सज्जन असीसड़िया जो होवे सह सो मेल।

मद देख पूला विसर तेरा चेतन आवे नाओ। श्री राग महला पहला कोट कोटी मेरी आजा पौन पीण अपे आओ। चंद सूरज दो गुफे ना देखा सुपने सौन ना थाओ। ती तेरी कीमत ना पवे

तखत अडोल गुरमुख पूरा जे करे पाईगे साज अतोल रहाओ प्रभर मंदर सोना इसमें माणक लाल मोती हीरा निर्मला कंचन कोढरी साल बिन पौड़ी गढ़ क्यों चढ़ो गुर हर ध्यान निहाल गुर पौड़ी बेड़ी गुरु गुर तुलखा हर नाव गुर सर सागर भोयत गुर तीर्थ दरियाओ जेत भावे उजली सत सर नावन जाओ

सुख होए। जग सुपना बाजी बनी फिर मैं खेल खिलाए, संजोगी मिल एक से वियोगी उठ जाए। जो भाणा सोती है अवरना करना जाए, गुरमुख वस्त विसाई है सच वखर सच रास। जिन्नी सच वणजया गुर पूरे साबास, नानक वस्त पछाण सी

जीवन की नहीं आस, तू सर्व जियां प्रतपालगी, लेखे साध विरास, अंतर गुरमुख तू वसे, क्यों भावे त्यों निरजास, जियरे राम जपत मनमान, अंतर लागी जल बुझी, पाया गुरमुख ज्ञान रखाओ, अंतर की गत जानिए, गुर मिल गए संग उतार, मोया जित कर जाइए, तिद जीम दिया मर मार, अनखा सब सुहावने।

कोते ना पवे, तिन हर गुर दर्श न होए, खोटे जात ना पत गए, खोड़ ना सीज सकोए, खोटे खोड़ कमावना आए गया पद खोए, नानक मन समझाई है गुर के शब्द सालाहा, राम नाम रंग रतिया पार ना परम तिनाहा, हर जप लहा अगला निरपो हर मन माहा, श्री राग मखला पहला कर दूजा, तन जोवन अर फुलड़ा।

दूर आपे ही आपे मंज म्यानो आपे वेख सुने आपे ही कुदरत करे जहानो जोत पावे नानक हुक्म सोई परवानो। श्री राग महला पहला कर चौथा कीता कहां करे मनमान देमन हारे कै हथ दान पावे दे न देई सोए कीते कै कह क्या होए आपे सच पावे तिस।

हथ न आवई, अंत गया पछताए, जिस नदर करे सो उबरे, हरसे ती लिव लाए, देखा देखी सब करे, मनमुख बूझ न पाए, जिन गुरमुख हिरदा शुद्ध है, सेव पई तिनताए, हर गुण गावे हर निद पड़े, हर गुण गाए सुमाए, नानक तिनकी बाणी सदा सच है, जे नाम रहे लिव लाए। श्री राग महला तीजा, जिन्नी एक मन नाम ते आया, गुरमति विचार, तिनके मुख सद उजले, तेत सच्चे दरबार, वे अमृत पीवे।

नित जोहे जम जाले, सुपने सुख ना देखनी, बहु चिंता पिर जाले, सबना का दाता एक है, आपे बख्श करे, कहना किशु ना जावई, जे पावे थे दे, नानक गुरमुख पाई है, आपे जाने सोए, श्री राग महला तीजा, सच्चा साहिब सेवी है।

अमृत सच्चा नामक है, तैना कशु न जाए, पीवत हु परवान पया, पूरे शब्द समाए, आपे देता पाई है, होर करना किशु न

जत सत संजम नाम है, विण नावे निर्मल ना होए, पूरे भाग नाम मन वसे, शब्द मिलावा होए, नानक सहजे ही रंग वर्तदा, हर गुण पावे सोए, श्री राग महला तीजा, काया साधे उर्द तप करे, विच्चों होमे ना जाए, अध्यात्म कर्म जे करे, नाम ना कब ही पाए, गुर के शब्द जीवित मरे, हर नाम से मने आए, सुन मन मेरे, भाजे सदगुर सरना, गुर प्रसादी छुट्टी है, बिग भवजर शब्द गुर तरना, हर हाव त्रैगुण सबा तात है।

आती है, जहाँ हर वस्ते मन आए रहाओ। सहजे खेती राई है, सच नाम बीज पाए, खेती जमी अगली मनुआ रजा सह सुभाए। गुर का शब्द अमृत है, जिद पीते तिख जाए, यो मन साचा सच रता सच्चे रहा सुमाए। आखण वेखण बोलना शब्दे रहा सुमाए, बाणी वजी चौजुगी सचो सच सुनाए। होमे मेरा रह गया सच्चे लया मिलाए, इनको मैल हदूर है जो सच रहे लिवलाए। नदरी नाम ते आईये विण कर्मा पाया ना जाए, पूरे भाग सतसंगत लहे सगुर भेटे जिसे आए। अनदिन ना मेर त्या दुख बिख्या विच हो जाए, नानक शब्द मिलावड़ा नामे नाम सुमाए। श्री राग महला तीजा अपना पाओ तिन पायोन, जिन गुर का शब्द विचार सत्संगति सदा मिल रहे सच्चे के गुणसार। दुबदा मैल चुकाइन हर राख्या उर तार, सच्ची बाणी सच मान सच्चे नाल प्यार। मन मेरे होमे मैल पर नाल, हर निर्मल सदा सोना शब्द सवारन हार। हरहाओ सच्चे शब्द मन मोहया, प्रभ आपे लहे मिलाए। अनदिन नाम में रत्या ज्योति ज्योत सुमाए, ज्योति हूँ प्रभ जापदा बिन सदगुर बूझ न पाए। जिनको पूर्व लिखया सदगुर भेटिया तिने आए, विण नावे सब डुमणी दूजे पाए खुवाए। तिस बिन कड़ी ना जीवदी दुखी रहन विखाए, परम पुलाना अंधला फिर आवे जाए। नदर करे प्रभ अपनी आपे लहे मिलाए, सबके सुनदा वेखदा त्यो मुकर पे आ जाए। पापो पाप कमाउं दे पापे पचे पचाए, तो प्रण दर न आवई मन मुख बूझ न पाए।

सच खटना सच रास है, सच्चे सच्ची सोए, सच मिले से ना विछड़े, नानक गुरमुख होए। श्री राग महला तीजा, आपे कारण करता करे, सिरट देखे आप उपाय, तब एको एक वर्तदा अलख न लिखया जाए, आपे प्रभु दयाल है, आपे दे बुझाए, गुरमति सद मन वसया, सच रखे लिवलाए, मन मेरे गुर की मन लेर जाए, मन तन शीतल सब थीए, नाम से मन आए, हरहाओ जिन कर कारण तारिया, सोई सार करे, गुर के शब्द पछाणिए, जां आपे नदर करे, छे जन सब दे सोने, इस सच्चे दरबार, गुरमुख सच्चे शब्द रते, आव मेले करतार, गुरमति सच सलाना, जेदा अंत न पार आवार, कड़कड़े आपे हुकम से, हुकमे करे विचार, गुर शब्दी सलाही है, हौमे विचों कोय, सातन नावे बारी, अवगुणवंती रोय, सच सलागी सच

आपे सतगुर आप हर, आपे मेल मिलाए, आप दया कर मेल सी, गुर सतगुर पीछे पाए, सब जग जीवन जग आप है, नानक जल जले सुमाए, त्रि राग महला चौथा, रस अमृत नाम रस अब भला, केत बिद मिले रसकाय, जाय पुछो सुहागणी, तुसा क्यों कर मिलया प्रव्याय, कोई वे प्रवाह ना बोलनी, हौ मरमल धोवा तिन पाए, भाई रे मिल सज्जन हर गुण सार, सज्जन सतगुर पुरख है, दुख कड्ढे हौ में मार, हरहाओ गुरमुखियां सुहागणी, तिन दया पई मन आए, सतगुर वजन रतन है, जो मन्ने सो हर रस खाए, सेवड भागी वड जानिए, जेन हर रस खादा गुर पाए, यो हर रस वणतन सबत वे, पागहीन नहीं काए, बिन सतगुर पल्ले ना पवे, मानमुख रहे बिललाए, कोई सतगुर आगे नानवे, उन्ना अंतर क्रोध बलाए, हर हर हर रस आप है, आपे हर रस होए, आप दया कर देवसी, गुरमुख अमृत टोए, सब तन मन हरिया होया, नानक हर वसया मन सोए, श्री राग महला चौथा, दिन चढ़े फिर आसवे, रैं सवाई जाए, आप कटे नर ना बुझे, नित मूसा लाज रुकाए, गुर मिठा माया पसरिया, मानुख लग माखी पते पचाए, भाई रे मैं मीत सका प्रसोए, पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोय न होए, हरहाओ गुरमत हर लिव उबरे, लिप्त रखे शरणाए, उन्नी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पद पाए, गुरमुख दर गए मनिए, हर आप लए गल लाए, गुरमुखा नु पंथ प्रगटा, दर ठाकन कोई पाए, हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिवलाए, अरह तुनी दर वज दे, दर सच्चे सोभा पाए, जिन्नी गुरमुख नाम सलाया, तिना सबको कहे साबास, इनकी संगत दे प्रभ, मैं जाजक की अरदास, नानक

उत्पत्ति आएगा। शोषण तुझे अनित अहंकार करे अहंकारिया, व्याप्या मन की मत दिन प्रभ आप पुराया, नाच जात न पात सगुर पुरुख मनाया, इको सज्जन सोए हर जन का रखा एक है, क्या मांस हो मैं रोए, जो हर जन पावे सो करे दर फेर न पावे कोय, नान करता रंग हर सब जग में चानन होए। श्री राग मोहल्ला पंजवा, मन बिलास बहु रंग घना दिट पूर खुशियां, छत्र तार बात साइया विशे से परियां, पाई रे सुख साथ संग पाया, लिखिया लेख दिन पुरख बेधाते दुख सहसा मिट गया, हरहाओ जेते थार संतरा तेते पवे आया, तन पाती वड भूमिया मेरी मेरी कर परया, हुक्म चलाए न संग होए वरते अफरिया, सबको वसगत कर लाए उन बिन नावे खा कर लिया, कोट ते तीस सेवका सिद्ध साधक दर करया, गरुंग बारी वड साबी तब नानक सुबन थिया। श्री राग महला पंजवा, पलके उठ पपोलिए विण मुझे मुगद अजान, तो प्रचेतन आयो छुट्टेगी बेबान, सतगुर सेती चेत लाए सदा सदा रंग मान, प्राणी तू आया लाहा लैण लगा कित को फकड़े सा मुगदी चली रैण, हरहाओ उदम करे पस पंखियां दिसे नाही काल, ओते साध मनुख है पाथा माया जाल, मुगते से ही पालिए जे सच्चा नाम समाल, जो कर छड गवावना सो लगा मन मागे, जिथे जाए तुद वर्तना जिसकी चिंता नागे, फाथे से ही निकले जे गुर की पैरी पागे, कोई रख ना सकई दूजा को ना दिखाए, चारे कुंडा पाल के आए पया सरनाए, नानक सच्चे पातशाह डुबदा लया कढ़ाए। श्री राग महला पंजवा, कड़ी मोहत का पौना ताज सवारण हार, माया काम व्यापया समझे नाही गावार, उड़ चलिया पछताया परया वस जंदार, अंधे तू बैठा कंधी पागे, जे हो भी पूर बिल गया ता गुर का भजन कमागे, हरहाओ हरी नाही नै डडरी

संग सुमाओ हर जपिए आराधी है आड़ पैर गोविंद जी प्राण तान तन रखे कर कृपा राखी जिंद नानक सगले दोह उतारेन प्रापार ब्रह्म बगसिंद श्री राग महला पंजवा प्रीत लगी तेज सच स्यो मरे न आवे जाए ना विछोड़िया विछड़े सब में रहा सुमाए दीन दर्द दुख पंजना सेवक कै सत

बिन सच्चे सब कूड़ है, अंते होए विनाश हरहाओ। साहिब मेरा निर्मल इस बिन रहन ना जाए, मेरे मन तन पुख अत अगली कोई आन मिलावे माए। चारे कुंडा पालिया सह बिन अवर ना जाए, इस आगे अरदास कर जो मिले करतार। तद गुरदाता नाम का पूरा जिस पंडा।

विचार क्या छोड़ी बात गुमान, रहाओ जैसे रैन प्रौने उड़चल से प्रभात, क्या तू वृत्ता ग्रस्त स्यो सब फुल्ला की बागात, मेरी मेरी क्या करे जिन दिया सो प्रलोड़, सर पर उठी चलना छड़ जासी लख करोड़, लख चौरासी।

पौ संत सरणी लाग चरणी, मिटे दुख अंधार, सत संतोख दया कमावे एक करनी सार। आव छोड़ सब होए रेणा, जे दे प्रभ निरंकार, जो दिसे सो सगल तू है पसरिया पासार। कहो नानक गुर परम काटिया सगल ब्रह्म विचार। श्री राग महला पंजवा, दुकृत सुकृत मंद संसार सगलाना, धूते रहत भगत है कोई विरला जाना। ठाकुर सर्वे समाना, क्या को सुनो स्वामी तू वड़ पुरख सो जाना। रखाओ मान अवमान मंद सो सेवक नाही, तत् समदर्शी संतो कोई कोड़ मंदाही। तैन कहामन यो कीर्त करला, कथन कैन ते मुक्ता गुरमुख कोई विरला। गात अवगत कछ नदर न आया, संतन की रेण नानक दान पा।

सबसे दे आधार सतगुर भजन कमावणे सच्चा इहो वीचार बिन साधु संगत रत्या माया मोह सब शार मेरे साजन हर हर नाम समाल साधु संगत मन वस पूर्ण होवे काल अरहाओ गुर समरथ अपार गुर वड़भागी दर्शन होए गुर अगोचर निर्मला गुर जेवड़ अवर ना कोए गुर करता गुर करणहार गुरमुख सच्ची सोए गुर ते बाहर किश नहीं गुर कीता लोड़े सो होए गुर तीर्थ गुर पार जात गुर मनसा पूर्ण हार गुर दाता हर नाम दे उदरे सब संसार गुर समरथ गुण रंकार गुर ऊंचा अगम्य पार गुर की महिमा अगम है क्या कथ कथन हार जितड़े फल मन बाचिए तितड़े सब गुर पास पूर्व लिखे पावणे साच नाम दे रास सतगुर सरणी आया बाहुड़ नहीं विनाश हर नानक कदे ना विसरो यो जियो पिंड तेरा सास श्री राग महला पंजवा संत जनो सुन पाई हो चूटन सा ते नाए गुर के चरण सरेवणे

आओ सदग बाधो काल को बिन गुर काल अफार सच रते से उबरे दुविधा छोड़ विकार हो तिन के बलहारण दर सच्चे सतियार सीचाने जो पंखिया जाली बदक हाथ गुर राखे से उबरे होर पाथे चोगे साथ बिन नावे चुन सुटिए कोई न संगी साथ सचो सच्चा आखिए सच्चे सच्चा थान इन्नी सच्चा मन्या तेन मन सच ध्यान मान मुख सूचे जानिए गुरमुख जिन्ना ज्ञान सतगुर अगे अरदास कर साजन दे मिलाए साजन मिले सुख पाया जम दूत मोए बिगकाए नावे अंदर होमसा नाव वसे मन आए बाज गुरु गुबार है बिन शब्दे भूल न पाए गुरमती प्रकाश होए सच रहे लिवलाए तिथे काल ना संचर ज्योति ज्योत सुमाए तू है साजन तू सुजान तू आपे मिलन हार गुर शब्दी साल आई है अंत न पारा वार तिथे काल ना अपड़े जिथे गुर का शब्द अपार हुक्मी सबे उपजे हुक्मी कार कुमागे हुक्मी काले वस है हुक्मी सच सुमागे नांग जोत पावे सोती है ये ना जनता वस किशनागे श्री राग महल्ला पहला मन झूठे तन झूठ गए जेवा झूठी होए मुख झूठे झूठ बोले।

आवे रंग सच सुहागण सा भली फिर मोही गुण संग भूली भूली थल चढ़ा थल चढ़ डूंगर जाओ बन में भूली जे फिरा बिन गुर बूझ न पाओ नावो भूली जे फिरा फिर आवो जाओ पुछो जाए पधाऊआ चले चक्कर होए राजन जाने अपना दर कर ठाक न होए नानक एक और अब रहा दूजा अवर न कोए श्री राग महला पहला गुरते निर्मल जानी है।

मैल नाही निर्मल जल नहाए, निर्मल साचा एक तू और मैल परी सब जाए। अरहाओ हरका मंदिर सोना किया करने हार, रवसा दीप अनूप जोत तेर पवन जोत पार, हाड पटनगढ़ कोचड़ी स सौदा व्यापार, ज्ञान अंजन पै पंजना देख नरंजन पाए, गोबत प्रट सब जानिए ये मन रखे ठाए, ऐसा सतगुरु जे मिले ता सहजे लय मिलाए, कस कस वट्टी लाई है परखे हित चित लाए, खोटे ठौर न पाए नी खरे खजाने पाए, आस अंदेसा दूर कर यूं मल जाए सुमाए, सुख को मांगे सब को दुख न मांगे कोए, सुखे को दुख अगला मन मुख बूझ न होए, सुख दुख समकर जानिए।

वारो वार सब सलाए आपको वडो वडेरी होए। गुरबिन आप ना चीनिए कै सुने क्या होए। नानक शब्द पछाणिए होमे करे न कोए। श्री राग महला पहला बिन पिर तन सी गारिये जो बनबाद खुआर। ना माने सुख सेजड़ी बिन पिर बा सीगार। दू कणो दोहा गणी ना कर सेज पतार। मान रे राम जपो सुख होए। बिन गुर प्रेम न पाईए शब्द मिले रंग होए। हरहाओ पुर सेवा सुख पाईए हर वर सह सीगार। सच माने पिर सेजड़ी गूढ़ा हेत प्यार। गुरमुख जान सजाणीए पुर मिली गुण चार। सच मिलो वर कामणी फिर मोही रंग लाए। मन तन साज विगसया कीमत कहण न जाए। हर वर कर सोहागणी निर्मल सचे नाए। मन में मनुआ जे मरे ता तिर रावे नार। इकत तागे राह मिले काल मोतियन का हार। संत सभा सुख उपजे गुरमुख नाम आधार। खिन में उपजे खिन खपे खिन आवे खिन जाए। शब्द पछाणे रब रखे ना ते काल संताए। साहेब अतुल ना तोलिए कस न पाया जाए। वापारी बन जा रहे आए वजो लखाए। तार कुमावे सच की लाहा मिले रजाए। पूंजी साची गुर मिले ना तिस तिल ना तुमाए। गुरमुख तोल तोलाए सी सच तरा जी तोल। आसा मनसा मोहनी गुर ठकी सच बोल। आप तलाए तोल सी पूरे पूरा तोल। कसने कहण ना छुट्टी है ना पढ़ पुस्तक पार। काया सोच ना पाई है

साचो साहिब सेवीए गुरमुख अकथो कात आवे जाए पवाईए पए किरत कमाए पूर्व लिखिया क्यों मेटिए लिखिया लेख रजाए बिन घर।

रहय बक्से भगत भंडार अरहाओ रे मन ऐसी हरसों प्रीत कर जैसी मछली नीर यो अर को तो सोकनो मन तन सांत शरीर व्यंजल कड़ी न जीवई प्रभ जाने अव पीर रे मन ऐसी हरसों प्रीत कर जैसी चातक मेह सर पर थर हरी आवले एक बूंद न पवी के कर मिले सो पाईए किरत पया सिर देह अरे मन ऐसी हरसों प्रीत कर जैसी जल दुध होए आवटने आपे खवे दुध को खपन ना दे आपे मेल सुनिया सच वड्याई दे अरे मन ऐसी हरसों प्रीत कर जैसी चकवी सूर खेन पल नींद न सोवई जाने दूर हजूर मनमु सोजी ना पवे गुरमु सदा हजूर मनमुख गणत गणामणि तरता करे सो होए ताकि कीमत ना पवे जे लोचे सब कोए गुरमत होए ता पाईए सच मिले सुख होए सच्चा रहो न टुटे जे सर गुर पेटे सोए ज्ञान पदार्थ पाईए तेर पवन सोजी होए निर्मल नाम ना विसरे जे गुण का घाक होए खेल गए से पंखणु जो चुगदे सर तल कड़ी के मोद के चलना खेल अज के कल जे तू मिले सो मिले जाए सच्चा पिड़ मल बिन गुर प्रीत न उपजे पौमे मैल न जाए सो हंग आ पछाणिए शब्द भेद पतियाए गुरमुख आ पछाणिए अवर के करे कराए मिलिया का क्या मेलिए शब्द मिले पतियाए मनमुख सोजी ना पवे विछड़ चोटा काए नानक दर कर एक है अवर न दूजी जाए श्री राग महला पहला मनमुख फुले फुलाईए भूली ठौर न काए गुरबिन को न दिखावई अंधी आवे जाए ज्ञान पदार्थ कोया।

मैं तुद बिन अवर ना पावई, तू पावे सुख होए हरहाओ। नाम सलाही रंग स्यों गुर के शब्द संतोख, जो दिसे सो चलसी कूड़ा मोना वेख। वाट बटाऊ आया नित चलदा सा देख, आखने आखे केतड़े गुरबिन बूझ न होए। नाम डाई जे मिले सच रपे पद होए, जुत पावे से पले खोटा खरा न कोए। कुरसरनाई छुट्टिए मनमुख खोटी रास, अच ताद पासा की घड़ी गए शब्द विगास। आपे परखे पारखू पवे खजाने रास, तेरी कीमत ना पवे सब डिठी ठोक बजाए। कहने हाथ न लभई सच के पद पाए, गुरमत तू सारहाना होर कीमत कहन न जाए। जित तन नाम न पावई तित तान हो में।

सिद्ध बह दे सदान सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन सिख पीर सलार दर कूज कूचा कर गए अवरे पे चलन हार सुल्तान खान मलूक उमरे गए कर कर कूच कड़ी मोत के चलना दिल समझ तू पे पहुच सबदा माए वखाणी है विरलाता बूझे कोए नानक वखाणे बेनती जलथल मही अलसोए अलाओ अलाखे गम कादर करनगार करीम सब दुनी आवन जावनी मुकाम एक रहीम मुकाम तिसनु आखिए जिस सिस न हो वी लेख असमान तरपी चलसी मुकाम ओही एक दिन रव चल निस सा चल तारका लख परोए मुकाम ओही एक है नानका सच बगोए महले पहले सतारे अष्टपदियां श्री राग महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एक ओंकार सदगुर प्रसाद गुरमुख कृपा करे भगत कीजे।

सदगुर सेव गुण धान पाया, तिसकी कीम न पाई, प्रभ सखा हर जी ओ मेरा, अंते हुए सखाई, पेयड़े जग जीवन दाता, मानमुख पात गवाई, बिन सदगुर को मग न जाने, अंधे ठौर न काई, हर सुख दाता मन नहीं वसया, अंत गया पछताई, पेयड़े जग जीवन दाता, गुरमत मन वसाया, अन दिन भगत करे दिन राती, होमे मोह चुकाया, जिस सिउ राता तैसो होवे, सच्चे सच सुमाया, आपे नदर करे पाओ लाए, गुर सबदी विचार, सदगुर सेवे सहज उपजे, होमे तृष्णा मार, हर गुण दाता सद मन वसे, सच रखिया उर तार, प्रभ मेरा सदा निर्मला, मन निर्मल पाया जाए, नाम निधान हर मन से, होमे दुख सब जाए।

सतगुर मिले फेर ना पवे, जन्म मरण दुख जाए, ऊरे शब्द सब सोझी होई, हर नामे रहे सुमाए, मन मेरे सतगुर से चित लाए, निर्मल नाम सद नव तनो आप वसे मन आए, अरहाओ हर जू रखो अपनी सरनाई, क्यों रखे त्यों रहना, गुर के शब्द जीवित मरे, गुरमुख पवजल तरना, वडे भाग नाव पाईए, गुरमत शब्द सुहाई, आपे मन मसिया प्रवकर्ता, तैजे रहा सुमाई, एक ना मनमुख शब्द ना पावे, बंधन बंद पवाया, लख चौरासी फिर फिर आवे, बिरता जन्म गवाया, भगता मन आनंद है, सच्चे शब्द रंग राते, अनदिन गुण गावे सद निर्मल, सहजे नाम सुमाते, गुरमुख अमृत बाणी बोले, तब आत्म राम पछाणी, एक कोसे मन एक अराध है, गुरमुख अकथ कहानी, सच्चा साहिब सेवी है, गुरमुख वस्ते मन आए, सदा रंग राते सच स्यों,

दूजे पाए पर कोई सतगुर शब्द सुनाया बिन सच्चे अवर ना कोई जो सच्चे लाए से सच लगे नित सच्ची कार कराना तिन्ना ने करवासा पाया सच्चे मैल रहन नानक भगत सुगिए सदा सच्चे नाम रचन श्री राग मोहल्ला पंजवा जाको मुश्किल अत बने ढोई कोई ना दे लागू होए दुश्मना साग पे पज खले सबो पजे आसरा चुके सब असराओ के त्यावे उस पार ब्रह्म लगे ना तत्ती वाओ साहेब निताणिया का तान आए ना जाई थिर सदा

तेरे अंतर शब्द वसाया सईया से सोहागनी जिन सय नाल प्यार जियो जिन्ना भाणे का रस आया तिन विचो परम चुकाया नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे लय मिलाए जियो सतगुर मिले फल पाया तिन विचो ऐ करण चुकाया दुरमत का दुख कटिया भाग बैठा मस्तक आए जियो अमृत तेरी बाणिया तेरिया भगतां हृदय सुमाणिया सुख सेव

तान चित वै तान संचो एवन जा रहा मित्र हर नामा हर ना सुमाल हर नामा हर घर कदे ना सुमाले जे होवे अंत सुखाई क्यों तन संपे माया झूठी अंत छोड़ चलिया पछताई जिसनू कृपा करे गुरु मिले सो हर हर नाम सुमाल कहो नानक तीजे पैरे प्राणी से जाय मिले हर नाल चौथे पैरे रहन के वन जा रहा मित्रा हर चलन वेला आंदी कर सेव पूरा सतगुरु बन जा रहा मित्र सब चली रहन वेखन दी हर सेव खिन खिन टिल मूल ना करे हो चित अस्थिर जुग जुग हो वो हर सेती सदमान हो रलिया जन्म मरण दुख खोवो गुर सतगुरु स्वामी भेद न जानो जित मिल हर भगत सुखां दी को नानक प्राणी चौथे पैरे सफल हो रहन भगतां दी श्री राग महला पंजवां पहले पैरे रहन केवन जा रहा मित्र तर पाए ता उधरे माहे दसी मासी मानस किया बन जा रहा मित्र तर मोलत कर्म कमाहे मोलत कर दीनी कर्म कमाने जैसा लिखत तुर पाया माद पिता भाई सुध बनता तिन पीतर प्रभु संजोया कर्म सुकर्म कराए आपे इस जनता